हर्ट्ज पर समय हुआ है 5:30 और 7 सेकंड। आप हैं इस वक्त अपने ही दोस्त रूपा के साथ भोर सुहानी में। दोस्तों, हमारे मन की शक्ति सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा, दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम भाव को, और इसके साथ साथ अपने मन पर विजय पाने को, इन जीवन मूल्यों से हमें परिचित कराती है। इन जीवन मूल्यों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और अगर जिंदगी की बात करें, आज की भोर की बात करें, तो देखते हैं आज ये हमें कौन सी दिशा में लेकर चलती है, कौन से गांव में, कौन सी जगह पर हमारा इंतजार है, या हम कहां जाना चाहते हैं। देखते हैं आज क्या होता है। खैर, जो भी होगा अच्छा ही होगा।

वक्त की रफ्तार के साथ सभी अपने अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, चांद जाने की तैयारी कर रहा है और सूरज देवता आगमन की तैयारी पर हैं जोरों शोरों के साथ। सूर्य की किरणों का उजियारा सारे जहां को प्रकाशमान कर रहा है। एक नए

विश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। आज का सवेरा सबकी राहों को एक अलग और एक नई दिशा दिखा रहा है। वहीं ठंडी हवाएं सबको सुकून दे रही हैं। जैसे माँ की गोद का सुकून कहता है कि सब अच्छा ही होगा।

इस दुनिया में सबका अपना एक महत्व है, अपना अस्तित्व है। हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। रहीम जी भी कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करी तरवारी।

कभी कभी हमारे छोटे छोटे प्रयास भी दोस्तों हमें सफलता दिलाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस सही समय का इंतजार करना पड़ता है। आज की कोशिश आने वाले बेहतरीन कल की दस्तक है। चिराग फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए लता जी के स्वर में।

इसी के साथ भोर सुहानी से विदा लेते हैं रूपा, आप जुड़े रहिए इसी तरह, इसी शिद्दत के साथ, इसी प्यार के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर सुबह को अपने रूप में ढाल लीजिए। जी हाँ, जैसा आप चाहते हैं उसी रूप में इसे आप ढाल लीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 सितंबर 2026। सुबह के 5:53 और 34 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए अब आपको आज के खास खास कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। छह बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण, जिसमें आपके साथ होंगी शीतल। छह बजकर चवालीस मिनट पर आप सुन पाएंगे श्री रामचरित मानस गान, जिसमें आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 59।

6:55 पर समाचार होंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में। 7:10 पर कार्यक्रम होगा गोल्ड सुप्रभात, जिसमें फिर से एक बार आपके साथ होंगी शीतल। 8:45 पर म्यूजिक दिल्ली कार्यक्रम होगा। 9:00 से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे। 9:10 पर म्यूजिकल दिल्ली लेकर आएंगे विजय सिंह। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वदन का राग। 10:00 से समाचार होंगे। 10:30 पर आप अपनी फरमाइशों के गीतों को सुन सकते हैं कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स के जरिए, जिसमें आपके साथ होंगे विजय सिंह। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, जिसमें आपके साथ होंगी शीतल। 6:00 वाले हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने

0: लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों की साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi has distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to

कब हर बार सबरी को उसके राम मिलते हैं, वर्षों की तपस्या के बाद जैसे आप हमें मिले हैं। कब हर बार राधा को मनाने श्याम आते हैं, जैसे मेरी आवाज पर हर बार आप आते हैं। कब हर बार अहिल्या को पत्थर से फिर जीवित करते हैं, जैसे आप मुझे हर बार मौत से खींच लाते हैं। कब हर बार सफर इतने आसान होते हैं, जैसे आपका साथ पाकर हम इस सफर को शानदार बनाते हैं। समय बदलता है, बदलेगा भी, पर कब हर समय हर कोई आपकी तरह साथ निभाते हैं। मैं तो तिल मात्र भी नहीं आपकी, जैसे आप मुझे चाहते हैं। मैं तो क्या कहती हूँ, क्या करती हूँ पता नहीं, पर आप वो सब निभाते हैं जो मुझसे कहकर जाते हैं। और वो ही नहीं जो कहते हैं, बल्कि बहुत सी ऐसी बातें जो कही भी नहीं गई, सुनी भी नहीं गई, लेकिन निभाई जा रही हैं। ऐसी दया, ऐसा प्रेम सिर्फ वही परमपिता परमात्मा हमें कर सकता है, और लगातार वो अपने प्रेम से हमें सराबोर करता रहता है। 6:13 और 22 सेकंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये है अर्पण। अर्पण में आज आपके साथ हूँ मैं शीतल। आप सभी का इस बेहतरीन सी सुबह में हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। ये जो भोर नई आई है, इसने हमारे जीवन में बहुत सी नई संभावनाओं को दिशा दी है। चलिए एक और संभावना को बढ़ाते हैं। जब हम अपने प्रभु के नाम को गाते हैं, तो उस नाम को गाकर हम इस जीवन में इन सारी स्वार्थी चीजों से दूर होकर प्रभु के नजदीक होते जाते हैं।

हम मनुष्यों की सबसे बड़ी व्यथा ये है कि हमारे सामने सब कुछ घटित हो रहा होता है, फिर भी हम न जाने क्यों देखकर भी उन सारी चीज़ों से कोई सबक नहीं सीखते। जब हम देख रहे हैं कि कोई किसी के साथ झूठ बोल रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी के साथ बेईमानी कर रहा है, या किसी के जीवन में बड़ा कष्ट का समय है, तो हम ये देखकर भी आगे बढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ तो कभी नहीं होगा। और जब

हमारे साथ ऐसा हो जाता है तब हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, सह नहीं पाते। अर्थात जीवन में सुख और दुख दोनों आने और दोनों का जाना तय है। यदि हम पहले से अपने जीवन में तैयारी रखें तो हम इन दोनों ही परिस्थिति में सम रह सकते हैं। ये तैयारी क्या है? ये तैयारी है अपने प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक क्षण में प्रभु के नाम को जपना, उनकी शरण में अपने आप को समर्पित कर देना। फिर जीवन में परिस्थितियां कैसी भी आएं, हम उन्हें सहर्ष मुस्कुराते हुए सह जाते हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यकता जो कुछ भी इस जीवन में घटित हो रहा है उसके लिए पहले से तैयारी, और तैयारी प्रभु नाम को लेने की।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

6:28 और 1 सेकंड हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा जीवन बिल्कुल आइसक्रीम की तरह है, जब तक आइसक्रीम हमारे हाथ में है और वक्त है तो इसका आनंद ले लीजिए। धीरे धीरे ये पिघल रही है, हमारे हाथ से निकल रही है, अगर हमने इसका आनंद नहीं लिया तो ये पिघलेगी तब भी, ख़त्म ये तब भी होगी, जाएगी ये तब भी, लेकिन अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहा तो हमारे हाथ में जो ये इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम है, ये हम इसे नहीं चख पाएंगे, ना ही इसका आनंद ले पाएंगे। तो जीवन में हम कुछ भी करें पर अपने इस जीवन रूपी आइसक्रीम का आनंद लेना बिल्कुल ना भूलें। जब तक इस आइसक्रीम को चखा नहीं जाएगा तब तक ना तो इसकी ठंडक का आनंद हम ले पाएंगे, ना इसके अंदर जितनी बेहतरीन स्वादिष्ट चीज़ें डाली गई हैं उनका स्वाद हम चख पाएंगे। तो ध्यान बाहर से हटाकर इस जीवन रूपी आइसक्रीम पर लगाइए, इसका आनंद लीजिए, क्योंकि ये अगर बह गई, ये अगर चली गई तो वापस से ये उस रूप में कभी नहीं आनी है।

हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम किसी को देखकर प्रभावित होते हैं। इसमें एक उदाहरण ये है कि कई बार जब हम अपने बाल संवरने के लिए, अपने बालों को कटवाने के लिए नाई के पास जाते हैं, तो वो नाई अपनी दुकान में बहुत से ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस के फोटोज लगा के रखता है जिन्हें देखकर हम कहते हैं कि हमें ऐसा बना दो, हमारे बाल ऐसे काट दो। हाँ, वो आपके बाल वैसे तो काट सकता है, लेकिन वो आपको ऐसा नहीं बना सकता। हम जीवन में बहुत से लोगों को देखते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। जब हम दूसरों की तरह बनने की कामना करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि हमने खुद को नहीं देखा, स्वयं से मुलाकात नहीं की। वक्त है खुद को जानने का। ये जीवन जितना निकल चुका है निकल जाने दीजिए, क्योंकि लौट कर नहीं आएगा। अगर हम ये सोचेंगे कि इतना जीवन निकल गया तो उसमें भी कुछ घड़ियां हमारी निकल जाएंगी। तो जीवन को सबसे ज्यादा जरूरी है उस रूप में स्वीकारना जिसमें हमें मिला है। हमें किसी की तरह बनना नहीं है, हम अपने जैसे बिल्कुल खास हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। ये कहावतें कि हमारे जैसे और 6 लोग होंगे, ये सिर्फ कहने की हैं। अगर वो हमारे होंगे तो क्या वो हमारे हिस्से के गम, हमारे हिस्से की खुशियां महसूस कर सकते हैं? नहीं ना। तो जीवन में हम स्वयं को पहचानें, अपने भीतर मुड़ें, अपने आप को देखें कि हम क्या हैं, क्योंकि जीवन में हम अकेले आए हैं। यहाँ इस मेले में पढ़कर न जाने हम किस किस को अपना साथी समझ बैठे हैं। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाना होगा। बस एक चीज जो हमारे साथ इस संसार में आई वो परमपिता परमात्मा, जो हमारे भीतर निवास करता है, और वही हमारे साथ यहाँ से, हमारे भीतर से चला जाएगा। तो इस हंस को उड़ने से पहले अपने भीतर महसूस करना बेहद जरूरी है।

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरित मानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है, सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर होगा आपका और मेरा साथ गोल्ड सुप्रभात में। आप सुनिए संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना 20वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्य श्रव्य माध्यमेन वितरितानि।

0: ऑन इंडिया ह्यः नवदिल्ल्याः यशोभूमौ सफलतया समाप्तम्। सिलिकॉन टू सिस्टम्स बिल्डिंग द इकोसिस्टम इति विषयस्यान्तर्गतं त्रिदिवसीयेऽस्मिन् सम्मेलने 600+ प्रदर्शकाः भागं भजितवन्तः। एतेषु प्रायः 300 अन्ताराष्ट्रिय प्रतिभागिनः, 50 देशानां प्रतिनिधयः, 150+ वक्तारः च आसन्। त्रिषु दिनेषु सेमीकंडक्टर विन्यासः, निर्माणम्, उपकरणानि तथा सामग्र्यः, विद्युत कृत्रिम बुद्धिमत्तादि 650 यावत् सन्धिपत्राणि, घोषणाः, सामरिक उपक्रमाः च दृष्टाः। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः सेमीकंडक्टर उद्योगे साइबर आक्रमणानां कृते सावधानम् अकरोत्। केचन देशाः भारतस्य सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखलायां उन्नतिं नैच्छन्ति, अतः ते कस्यापि प्रकरणस्य व्यवधानस्य च कृते सज्जाः भवेयुः। ह्यः नवदिल्ल्याम् एकस्मिन् वार्तावाहिन्या सह वार्तालापं कुर्वन् श्रीवैष्णवः अवदत् यत् भारतं सम्भाव्य भूराजनैतिक संकटानां विषये निरन्तरम् अवधानं कर्तव्यम्, यतः अधुना भारतं चिप्स विन्यासं कर्तुं च समर्थः देशत्वेन उद्भूतः अस्ति।
1: The industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
0: विकसित भारतस्य कृते शत सप्ताहानां नशा मुक्त युवाभियानम् अद्य प्रमुखं राष्ट्रव्यापि यूनां संघटनं द्रष्टुं शक्नोति। युवप्रकरणानां क्रीडा मन्त्रालयः अवदत् यत् देशस्य 67,000 स्थानेषु राष्ट्रिय संकल्प समारोहस्य आयोजनं क्रियते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् कार्यक्रमोऽयं 170+ मण्डलानां माय भारत कार्यालयेषु 96+ स्थानैः सह सहभागिसंस्थासु आयोजयिष्यन्ते। मन्त्रालयः अधोरेखितवान् यत् अयं प्रमुखः उपक्रमः प्रशासकीय युवाशाखानाम् आध्यात्मिकसमूहानां शीर्षव्यापारप्रकोष्ठानां महाविद्यालयानां स्थानीयसंघटनानां च संयोगेन शतशः स्थानेषु कार्यक्रमाणां सञ्चालनाय विशालराष्ट्रियजालस्य शक्त्या प्रवर्तते। निर्वाचनायोगः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सर्वेषु मतदान केन्द्रेषु विशेष शिविराणि आयोजयिष्यति। प्रतिदिनस्य अभियानस्य उद्देश्यं नागरिक नूतन समावेशने निर्वाचक सूच्यां प्रस्तावित समावेशनस्य अथवा नाम विलोपनस्य आक्षेपैः निर्वाचक सूच्यां विवरणानां संशोधने च साहाय्यं कर्तुं भविष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा ये करने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन का काम सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर

0: सूचित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा है कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
1: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है, तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना है और उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियम अनुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकीन ने जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा है कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के प्रति ABBP की प्रतिबद्धता को लेकर युवाओं में दृढ़ विश्वास बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि ये जीत विकसित भारत के लिए योगदान के प्रति विद्यार्थियों के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। जापान में 20वें एशियाई खेल में भारतीय निशानेबाज एलेवेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा दोनों श्रेणी में मुकाबले में उतरेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया के साथ खेलेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

थोड़ा ठहराव भी जरूरी है इस भाग दौड़ में। कुछ देर बैठकर खुद से बातें कर लिया करें। दुनिया की दौड़ में इतने भी आगे ना निकल जाएं कि पीछे छूटी खुशियों को याद ना करें। एक प्याली चाय, इस खूबसूरत सी सुबह और शांत मन, कभी कभी इतने में ही पूरा जहां मिल जाता है। गिले शिकवे भूलकर हंसते हुए जीना है हमें, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता है। तो जो लौट कर नहीं आना, उसकी याद में हमें क्यों अपना समय बर्बाद करना है। आइए इस नए क्षण की खुशियां मनाते हैं, इस नए क्षण का बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं। 7:11:40 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। शुरू हो चुका है गोल्ड सुप्रभात। गोल्ड सुप्रभात में आज आपके साथ हूँ मैं शीतल। आप सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत ही प्यारा सा ये दिन है और इस दिन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमारे पास है बहुत ही प्यारे प्यारे नगमे जो आप सभी के पसंद के होते हैं। और गोल्ड सुप्रभात, आपकी सुबह में जो चार चांद लगाता है ना, वो हम ये कहें चार सूरज लगाता है, क्योंकि हम सुबह की शुरुआत कर रहे हैं, खुशियों की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम अपने जीवन को मुस्कुरा कर जिए, बेशक से घड़ियाँ थोड़ी सी मुश्किल हों, फिर भी हंस हंस कर कांटों पर चलें और अपने जीवन में स्वीकार कर लें कि परिस्थितियां कैसी भी होंगी, हमें हर घड़ी हर पल सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराना है।

जी हाँ, ये प्यार और मोहब्बत ही ऐसा रंग है जिससे हर कोई रंग जाना चाहता है। अपने जीवन में इस रंग को यूं ही ओढ़ कर रखें, जब आपको कोई देखे तो उसे भी आपसे मोहब्बत हो जाए। देखिए ना कि हमें मोहब्बत करने के लिए किसी जेंडर को, किसी आयु को नहीं देखना होता है। ये मोहब्बत इंसानियत से होनी चाहिए, इंसान से होनी चाहिए। और जब हम इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं तो हम ये समझ

पाते हैं कि फिर वो जो चेहरे हैं ना, बहुत सारे जिनमें भेदभाव भरे हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम भरे हुए हैं, वो सब एक तरफ हो जाते हैं और एक भाव आता है कि हाँ, सामने वाला और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। और अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए ये मंत्र अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो देखिएगा, हम भी बहुत से लोगों को प्यार कर पाएंगे और बहुत से लोग हमें प्यार कर पाएंगे। और प्यार की खासियत ये है कि आपको ये ज़हनी सुकून देता है, और इस सुकून के लिए तो न जाने हम क्या क्या करते हैं। और आज रविवार की बात करें तो छुट्टी का दिन है, थोड़ा सा सुकून पाने के लिए हम घूमने फिरने भी जाते हैं, और उससे पहले ज़रूरत होती है कि हम मौसम का हाल जान लेते हैं। तो चलिए आपकी थोड़ी सी हम मदद कर देते हैं कि आज का जो तापमान है वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक आज का अधिकतम तापमान रह सकता है। तो अगर आप जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो इसी हिसाब से जो है आप अपना दिन प्लान कीजिए, इस दिन को एंजॉय कीजिए, चाहे आज का हो चाहे आने वाला हो, हर एक दिन को खूबसूरत बनाइए, मुस्कुराते रहिए, ये बेहद ज़रूरी है।

हम अक्सर सामने वाले से यही उम्मीद करते हैं कि वो ही हमें समझे, लेकिन यहाँ ज़रूरत है कि हम भी तो कभी कभी किसी दूसरे को समझें। जब हम बादल की मौसम की बात करते हैं तो ये क्या कह रहा है? बदलता हुआ मौसम, बदलते हुए बादल के आकार विकार हमें यही बता रहे हैं कि हमें अपनी भूमिका निभानी बेहद ज़रूरी है। हम अक्सर कूड़े को देख करके शिकायत करते हैं, अरे लोगों ने कितना कूड़ा इकट्ठा कर दिया है, जाम लगता है, अरे लोगों ने कितना जाम यहाँ लगा रखा है।

ध्यान दीजिए, वही दूसरे व्यक्ति आपको भी उन्हीं लोगों में शामिल करके ये बात बोल रहे हैं। तो जो हम इल्जाम दूसरों पर लगा रहे हैं उसको हम दूसरों पर ना लगाकर उसमें से चाहे छोटी सी ही जिम्मेदारी हो, हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसको निकालें, उसको देखें। और अगर हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो बेशक से बहुत सारा जाम हो लेकिन उसमें से एक आपकी गाड़ी यातायात के नियमों को फॉलो करने वाली होगी तो वो जाम में नहीं फंसेगी। हो सकता है जाम में फंस जाए पर जाम का कारण नहीं होगी। वहीं बहुत सी गंदगी होगी लेकिन आप उस गंदगी का कारण नहीं होंगे। तो जब हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, हर एक व्यक्ति एक, सिर्फ आप, सिर्फ मैं, अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो फिर आप देखिएगा कि बदलाव बहुत जल्द और बड़ी आसानी से आ जाएगा।

7:25 हुए हैं, आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम अपने दिन की योजना बनाते हैं और उस योजना में वो सारी चीजें शामिल करते हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने दिनचर्या में कुछ शामिल करें या ना करें, दो चीजें उसमें जरूर लिख लें। एक, आप कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ अध्ययन जरूर करेंगे, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप व्यायाम, एक्सरसाइजेस, योगा, कुछ ना कुछ आप उसमें जरूर करेंगे। अगर आप योग नहीं कर सकते तो आप वॉक कर सकते हैं, आप थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने साथ, घूमने के लिए जाइए। और जब हम योग की बात करते हैं, वॉक की बात करते हैं, तो यहाँ

पर हम कहेंगे कि आप सुबह की शुरुआत योग से करें। आप उसमें बहुत से ऐसे प्राणायाम हैं जिन्हें आप शांति से बैठकर कर सकते हैं। आपके दिन की बेहतरीन शुरुआत के लिए वो बहुत खास हो सकते हैं।

जी हाँ, ये दुनिया, ये संसार सब हमारे लिए ही है, लेकिन वक्त के साथ चलना जरूरी है। ठीक 7:30 पर आप सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे, और गोल्ड सुप्रभात से मुझे यानी शीतल को दीजिए इजाजत। अपना रखिए खूब ख्याल। नमस्कार।

0: अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज को उगने से रोक नहीं पाता। हर वो दिल जो हार गया लगे, अगली सुबह फिर धड़कता, फिर मुस्कुराता। रोशनी उधार नहीं मिलती किसी और से, हाँ अपने भीतर की लौ जलानी पड़ती है, तभी उजाला फैलता है यहाँ वहाँ। जी हाँ, अक्सर हम रोशनी की तलाश बाहर करते हैं, किसी मौके में, किसी बदलाव में और किसी के सहारे में, जबकि सच ये है कि रोशनी वही होती है जो हम खुद अपने भीतर जलाते हैं। हर सुबह हमें ये याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी लंबा क्यों ना रहा हो, उजाले की शुरुआत हमेशा हमारे अपने हाथ में होती है। बस जरूरत है थोड़े धैर्य की, थोड़े विश्वास की और आगे बढ़ते रहने के इरादे की। इसी उजाले और उम्मीद के साथ आज सवेरे कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूँ वैष्णवी, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेणु कटारिया। हेलो रेणु।
1: हेलो वैष्णवी, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड वैष्णवी, यू हैव टोल्ड अस सो मच अबाउट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। लेट अस आल्सो रिमाइंड ऑल आवर लिसनर्स दैट इट इज अ संडे मॉर्निंग, सो देयर इज नो रश, नो हरी टू डू एनीथिंग, जस्ट रीसेट, रिचार्ज एंड राइज अगेन एंड स्लो डाउन, because it is a Sunday. And dear listeners, for every morning we are born again. So again, today we are back with our daily news magazine program Aaj Savere, wherein we are going to give the latest in the national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 20th of September. And I can see Vaishnavi smile on that, because there is so much that Vaishnavi is going to share with all of us in our last segment. So but before all that, let us begin with the news first.
0: Ji bilkul ji.
1: Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. In a statement, Petroleum and Natural Gas Ministry said that domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price or RSP with applicable subsidy. This ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. The ministry said the process is not meant to deny LPG to any genuine household, and every eligible consumer has several easy ways to complete it. It said 27.43 crore consumers have already completed authentication and do not need to do anything further. Authentication can be completed at the time of delivery at the distributor's showroom or on oil marketing company mobile apps.
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल है। और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे, किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। नया नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6, नाम जोड़ने या हटाने पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 और विवरण में सुधार या अपडेट के लिए फॉर्म 8 जमा किया जा सकता है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है।
1: Semicon India 2026, the fifth edition of India's flagship semiconductor conference, concluded successfully at Yashobhoomi in New Delhi yesterday. The three-day conference under the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem featured over 600 exhibitors. These included around 300 international participants, representatives from 52 countries and over 150 speakers. Six country pavilions representing Japan, South Korea, Malaysia, the Netherlands, Singapore and Sweden, along with 12 state pavilions, showcased different dimensions of the semiconductor value chain. The event recorded 51,656 total registrations and a cumulative footfall of around 40,000. Prime Minister Narendra Modi had inaugurated Semicon India and highlighted India's progression from policy discussions and project planning to commercial semiconductor production. He interacted with young chip designers and students and virtually inaugurated commercial production lines at CDIL Semiconductor, Mohali and Suchi Semicon, Surat. The 3 days witnessed 56 MOUs, announcements and strategic initiatives spanning semiconductor design, fabrication, advanced packaging, equipment and materials.

0: पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
1: और रेणु कुछ खेल खबरों की ओर रुख करें।
0: जी बिल्कुल
1: शुरुआत करते हैं चेस से।
0: जी
1: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। बी सविता श्री ने मंगुनथुल बाथ्युखुया को हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख ने बायाजगालन घिशिक बातवार को हराया। हालांकि आर वैशाली और कोनोरू हम्पी की बाजी ड्रॉ रही। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा।
0: And there is so much that is happening in Asian Games, Vaishnavi. Mm-hmm. The 20th Asian Games 2026 will see several Indian athletes begin their medal hunt across multiple disciplines today. India's tech ball player Quimsy D'Souza will compete in the bronze medal match against Japan's Yuina Sakamoto and have the first opportunity to open India's medal account at the continental multi-sport event. Later, Indian shooters Elavanil Valarivan, Sonam Maskar and Vidrasa Vinod will aim for podium finishes in the women's 10-meter air rifle event. The trio will compete for both individual and team medals. The Indian women's hockey team will also begin its campaign today, facing Uzbekistan in its opening group stage match. The men's hockey team will take on Indonesia in their first match of the tournament. In today's cricket event, Indian women team will face Bangladesh in the semi-final. The knockout match will start at 10:30 a.m. IST at the Aichi Prefectural Korogi Sports Park in Nishin, Japan.
1: श्रोताओ अब जरा अपने सफर करो देश के अलग अलग शहरों की ओर करते हैं जहां आज की सुबह अपने साथ कई अहम गतिविधियां लेकर आई हैं। तो शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से जहां आज की खबरों में क्या कुछ खास है आइए जानते हैं। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज में करीब 1000 एकड़ अतिरिक्त भूमि को आरक्षित वन घोषित करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही अधिसूचित रिज क्षेत्र बढ़कर करीब 13000 एकड़ हो जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार का उद्देश्य रिज क्षेत्र का संरक्षण वैज्ञानिक जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार सुनिश्चित करना है ताकि इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। इस वर्ष दिल्ली रिज के संरक्षण और प्रबंधन के लिए दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड का भी गठन किया गया है। बोर्ड रिज की सुरक्षा वैज्ञानिक पारिस्थितिक जीर्णोद्धार वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी संभालेगा।
0: जी मूविंग ऑन टू चेन्नई मेट्रो द फर्स्ट न्यूज अराउंड 80 सेलर्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज एंड सिविलियन सेलिंग कम्युनिटी केम टुगेदर एट द रॉयल मद्रास योट क्लब यस्टरडे फॉर द फोर्थ नास सेलिंग कप 2026 इंस्टीट्यूटेड इन 2018 द एनुअल इवेंट हैज ग्रोन इनटू अ प्लेटफॉर्म फॉर सेलर्स टू कम्पीट एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट। स्पीकिंग एट द इवेंट फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग तमिलनाडु एंड पुदुचेरी नेवल एरिया रियर एडमिरल उपल Kundu said that sailing reflected the Navy's long-standing relationship with the sea. The sport helped develop discipline, judgment, teamwork, confidence, and respect for nature. Moving on to the other news, Madurai International Airport has launched a nationwide campaign titled Yatri Seva Abhiyan 2026, running for 21 days from September 17th. Organized under the auspices of the Airports Authority of India, the initiative focuses on enhancing passenger facilitation, service quality, cleanliness and operational courtesy under the themes of Seva Sankalp and Service with a Smile. The initial phase centered on operational cleanliness and passenger engagement.
1: और आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक जम्मू में देखने को मिली। जम्मू के गांधीनगर स्थित पद्मश्री पद्मा सचदेव राजकीय कॉलेज में शुक्रवार को लोककले तिलश्री गणेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महाराष्ट्र की लोक कलाएं शास्त्रीय नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपराओं को देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाना और कलाकारों को व्यापक मंच देना है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के पश्चिमी क्षेत्रीय मुख्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2026 के अवसर पर कल मुंबई के जुहू बीच और गिरगांव चौपाटी पर समुद्र तट स्वच्छता अभियान चलाया। ये अभियान स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, कचरे के उचित निपटान को प्रोत्साहन करना और भारत के तटीय पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देना था।
0: And moving on to Bengaluru Metro Vaishnavi, I have two news from there. The first one, Deputy Chief Minister of Karnataka G. Parameshwara said that the state government's priorities are development, addressing people's issues and protecting drought-affected farmers. Speaking to reporters in Bengaluru, he said a three-day special session of the legislature will discuss the drought situation and the Kasturi Rangan report, including measures to provide relief to farmers and seek assistance from the union government. Dr. Parameshwara said that the government has accorded special priority to the comprehensive development of the coastal region, including tourism and infrastructure. He said 72,000 vacant posts are being filled across departments, including more than 900 surveyor posts in the revenue department. He also said the government is committed to fulfilling its election manifesto promises and that local body elections will be held in phases. Moving on to the second news on Bengaluru Metro, the Greater Bengaluru Authority has launched Nambike Nakshe 2.0, an automated building plan approval system aimed at reducing approval time and paperwork. Launched by Greater Bengaluru Development Minister Krishna Bai Ragoda, the system will initially cover residential sites up to 4,000 square feet with up to 4 dwelling units. Eligible plans can receive approval in about 30 minutes compared to the existing 2 to 3 months. Applicants need to only enter the e-khata number with ownership and property details automatically fetched from government databases.
1: और बेंगलुरु से आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। राज्य में बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 32 लाख किसानों का पंजीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि 15 सितंबर तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाकर किसानों का पंजीकरण किया गया। पूर्व मेदिनीपुर में 7,23,000, पश्चिम मेदिनीपुर में 4,73,000 और हुगली में 1,68,000 किसानों का पंजीकरण हुआ है। उन्होंने बताया कि 2.5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों को इस योजना के अंतर्गत केवल 1 रुपये प्रीमियम देना होगा। सरकार ने प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा दिलाने और बैंक ऋण की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
0: एंड द लास्ट मेट्रो इज हैदराबाद वैष्णवी। द तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज टास्क हैज जॉइंड हैंड्स विद डेल टेक्नोलॉजीज to introduce the Udaan initiative, an endeavor aimed at equipping the state's youth with future-ready technical skills and bridging the gap between education and employment. The memorandum of understanding was finalized during a high-level meeting led by IT and Industries Minister Dudela Sridhar Babu, alongside key government officials, task leadership and industry partners. Under the Udaan program, 5,500 students across 25 training centers in Telangana will undergo a comprehensive 3-month training module. The curriculum covers cutting-edge fields including artificial intelligence, cloud computing, electronics manufacturing, emerging technologies and digital skills alongside essential workplace competencies and industry exposure. Special focus will be placed on reaching students and youth from rural backgrounds.
1: श्रोताओं, अब पलटते हैं इतिहास के वो पन्ने जिन पर आज की तारीख दर्ज है, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज के दिन की विशेषता के बारे में।
0: यस, बट बिफोर दैट लेट्स आल्सो टेल आवर लिसनर्स अबाउट सम वेदर न्यूज।
1: जी,
0: सो बिगनिंग विद चेन्नई, Chennai is likely to see rain or thunder showers that would occur towards evening or night. The temperatures are expected to range between a minimum of 26 degrees and a maximum of 35 degrees Celsius. Bengaluru is to experience generally cloudy sky with heavy rain. The minimum temperature is expected to be 21 degrees, while the maximum may reach 31 degrees Celsius. And Hyderabad is likely to see generally partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. Temperatures are expected to range from 23 degrees to 32 degrees Celsius.
1: रेनु, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में भी ऐसा ही कुछ मौसम रहने वाला है
0: जी।
1: दिल्ली की बात करें तो आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। यहाँ अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में भी आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। यहाँ अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं बात करें कोलकाता की तो आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और यहां भी कुछ जगहों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
0: एंड वैष्णवी, नाउ वी कम टू द हिस्ट्री एंड द इवेंट्स सेगमेंट, बट टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि आज वर्ल्ड क्लीन अप डे है एंड एवरी डे यू नो this is like universal. Every day more than 1 billion meals are wasted worldwide, even as millions of people face hunger. Food waste strains, waste management systems contributes to climate change, squanders land and water resources, and undermines efforts to build more resilient and equitable food systems. Aur main ye sab isliye bata rahi hu kyunki aaj, that is the 20th of September, is World Cleanup Day. This year's global observance focuses on food waste, one of the largest and the most preventable waste streams affecting cities and communities worldwide. And under the official theme, From Clean Plates to Clean Cities, World Cleanup Day 2026 connects the choices we make around our plates with the systems that shape our neighborhoods and cities. It calls for action to prevent food waste, keep edible food in use, recover unavoidable organic materials, and build cleaner, more circular, and resource-efficient cities. So everyone listening to us, please be mindful. खाना उतना ही खाइए जितना आप खा सकते हैं, ज्यादा वेस्ट ना कीजिए।
1: बिल्कुल। और आज जो आपने शुरुआत में जो आंकड़े आपने बताए, उससे यही हमें पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण है कि हम उतना ही प्लेट में ले जितना आपसे खाया जाए।
0: एग्जैक्टली,
1: व्यर्थ ना करें खाने की।
0: एंड वेरी माइंडफुली ईटिंग इज ऑल्सो टू बी डन वेरी माइंडफुली।
1: बिल्कुल,
0: तो इसका सबको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो लेट्स बिगिन टू मोर इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन दिस डे। लेट्स बिगिन विद द ईयर 1904। 20th of September, Wilbur Wright completed the first circular flight in the Wright Flyer II. In the year 1946, the first ever Cannes Film Festival commenced in France, showcasing films from 21 countries.
1: और 1952 में आज ही के दिन विज्ञान की दुनिया में एक निर्णायक प्रयोग हुआ। अमेरिकी वैज्ञानिक अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग से ये सिद्ध किया कि जीवों की आनुवंशिक जानकारी प्रोटीन में नहीं बल्कि डीएनए में संचित होती है। इस खोज ने आगे चलकर आधुनिक आनुवंशिकी और जीव विज्ञान की पूरी दिशा बदल दी।
0: In 1993, on this day, the first developmental launch of PSLV, an Indian Remote Sensing Satellite, that is IRS-1E, carried remote sensing payloads, could not be placed in the orbit on this day. In 1997, President K. R. Narayanan inaugurated the first Dr. Ambedkar Law University in Chennai.
1: और 2004 में आज ही के दिन भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अनोखा कदम उठाया। इसरो ने श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी के जरिए एडुसेट नाम का उपग्रह प्रक्षेपित किया, जो देश का पहला ऐसा सैटेलाइट था जिसे पूरी तरह शिक्षा के लिए समर्पित किया गया। एडुसेट के जरिए दूरदराज के इलाकों तक इंटरैक्टिव कक्षाएं, शिक्षण प्रशिक्षण और पाठ्य सामग्री पहुंचाना संभव हुआ। रेणु, कोविड लॉकडाउन के टाइम पे जब हुआ था, उस समय भी कई स्कूलों ने इसका प्रयोग किया था
0: जी।
1: हमने उस समय देखा ही था कि कितना ज्यादा उस समय सब ऑनलाइन ही चल रहा था और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो ये भी एक उसी का उदाहरण है।
0: बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। So, I think we are done with the history section. So, let's move on to our most awaited segment, which is...
1: जी बिल्कुल, अब श्रोताओं याद कर लेते हैं कुछ महान व्यक्तित्वों को जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
0: जी,
1: सबसे पहले बात करते हैं कनकलता बरुआ के बारे में। कभी कभी इतिहास में उम्र नहीं हौसला पहचान बन जाता है। असम की कनकलता बरुआ ऐसी ही युवा स्वतंत्रता सेनानी थी जिनका नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अदम्य साहस के साथ लिया जाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने गोहपुर थाने पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व किया। हाथ में तिरंगा लिए आगे बढ़ रही कनकलता बरुआ को ब्रिटिश पुलिस की गोली का सामना करना पड़ा और 20 सितंबर 1942 को वे शहीद हो गई। कनकलता बरुआ की कहानी इसलिए भी याद रहती है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी केवल प्रतीकात्मक नहीं थी। कनकलता जैसी युवतियों ने स्वयं मोर्चे पर खड़े होकर इसकी कीमत चुकाई। उनके हाथ में थमा तिरंगा उनके साहस और देश के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया।
0: From one woman to the other, we are now going to talk about Sophia Loren, who is an Italian film actress and singer. She's one of the last surviving stars from the golden age of Hollywood. Encouraged to enroll in acting lessons after entering a beauty pageant, Loren began her film career at the age of 16 in 1950, and she appeared in several bit parts and minor roles in the early part of the decade until her 5-picture contract with Paramount in 1956 launched her international career. And notable film appearances around this time include The Pride and the Passion, Houseboat, and it started in Naples. But here we are going to listen to Mambo Italiano, Sophia Loren.

0: तमिल सिनेमा के शुरुआती दौर में जब नायिकाओं की पहचान बनना आसान नहीं था, तब एक ऐसी अभिनेत्री सामने आई जिन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली ड्रीम गर्ल कहा गया, टी.आर. राजकुमारी। वे सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं बल्कि गायिका और नृत्यांगना भी थी। उनकी सबसे यादगार फिल्मों में हरिदास का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। 1944 में आई इस फिल्म में उन्होंने एम.के. त्यागराज भगवतर के साथ अभिनय किया। फिल्म हरिदास ने मद्रास के ब्रॉडवे सिनेमा में लगातार 114 सप्ताह चलकर उस दौर में एक असाधारण रिकॉर्ड बनाया। फिल्म का गीत मनमत्था लीलिए आज भी टी.आर. राजकुमारी की पहचान से जुड़ा हुआ है, तो आइए आपको सुनाते हैं वही गीत।
1: रंबा

0: He is a recipient of the Dada Saheb Phalke Award, the highest Indian award in the field of cinema. He was also honored with the Padma Vibhushan, and he has the second highest civilian award for his contribution to the film industry.
1: आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अजीत राम वर्मा की. विज्ञान की दुनिया में कुछ उपलब्धियां ऐसी होती हैं जो प्रयोगशाला से निकलकर पूरी वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाती है. 20 सितंबर 1921 को डलमऊ में जन्मे डॉक्टर अजीत राम वर्मा ऐसे ही भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने विशेष रूप से क्रिस्टल ग्रोथ और क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया. 1964 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वर्ष 1965 में वे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी NPL के निदेशक बने और 1982 तक इस पद पर रहे. विज्ञान में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था.
0: Moving on to James Joseph Croce, we are remembering him and paying tributes to him. He was an American folk and rock singer, songwriter. Between 1966 and 1973, Croce released 5 studio

हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जब पर्दे पर श्वेत श्याम तस्वीरें हुआ करती थी, कुछ चेहरे अपनी खूबसूरती और अदाओं से दर्शकों के दिलों में रंग भर देते थे। शकीला भी ऐसा ही एक बेहद लोकप्रिय नाम है दी। 1950 और 60 के दशक में अपनी खूबसूरती, चुलबुले अंदाज और सहज अभिनय से उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाई। इससे पहले हम उनके बारे में आगे और बताएं आपको, आइए पहले सुनते हैं उनकी खूबसूरत गीत।

0: गुरुदत्त की फिल्म आर पार में शकीला की मौजूदगी और उन पर फिल्माया गया गीत बाबूजी धीरे चलना आज भी हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीतों में गिना जाता है। तो रेनू, श्रोताओं को सुनाते हैं ये गीत जरूर।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और श्रोताओं, इसी खूबसूरत गीत के साथ आज के आज सवेरे में बस इतना ही। उम्मीद है इस मुलाकात ने आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी। तो मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक सोचिए और अपने दिन को खूबसूरत बनाइए।
1: एंड हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
1: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिलका के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
2: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
3: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पड़ नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
2: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
4: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
2: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIR News Hindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुनें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
1: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएंगे क्योंकि वो हियरिंग होनी है तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
2: We have to continuously be watchful of the
3: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
3: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिगो केश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जैमे सैंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रो रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी क्युमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहें, आगे रहें। X@AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक। राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिंदुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी। ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Government makes Aadhaar biometric authentication mandatory for subsidized refills of LPG cylinders from 1st of next month. Rashtriya Sankalp Samaroh being organized at 1067 locations across the country today as part of 100 weeks Nasha Mukti Yuva Abhiyan. Election Commission to hold special camps in all polling stations in Delhi today to assist citizens regarding inclusion and deletion of names in electoral rolls. IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Keralam, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And now the news in detail. Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. More from our correspondent.
4: Biometric Aadhaar authentication ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. The Petroleum and Natural Gas Ministry said

0: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Telangana, Andaman and Nicobar Islands today. The Met Department has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Madhya Maharashtra, Orissa, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. On to sports now. In chess Olympiad, Indian men's team defeated Spain 3-1 with world champion D. Gukesh leading the way with a clean victory over former world championship challenger Alexey Shirov in Samarkand yesterday. Meanwhile, R. Pragyananda was held to a draw by David Anton Guijarro, while Nihal Sarin also settled for a draw against James Santos Latasa. In the women's section, India recorded a 3-1 victory over Mongolia. B. Savita Shree continued her impressive run with a fourth consecutive win, defeating seasoned player Bakht Kuyag. The 20th Asian Games 2026 will see several Indian athletes begin their medal hunt across multiple disciplines today. In today's cricket event, Indian women team will face Bangladesh in the semi-final. The knockout match will start at 10:30 a.m. Indian time. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Saira. ABVP sweeps 3 of 4 DUSU seats. NSUI rebel wins VP post, writes in the Tan Times. While the Sunday Tribune headlines, ABVP sweeps DUSU poll again. Independence VP post win stunts rivals. FTA skilling incentives opening new employment avenues for youth, says Prime Minister, writes Sunday Pioneer. The Hindu also quotes the Prime Minister in its headline, developing nations wrongly blamed for emissions. The Sunday Statesman reports, Bengal bipolar drama, Mamta's Rejinagar candidate does U-turn after pull-out decision. The Asian Age headlines, India rejects new US tariffs pressure. And finally, Sunday Pioneer writes, end of an era, 1965 war hero Cook passes away. The legendary Indian Air Force fighter pilot, Flight Lieutenant Alfred Cook, played a crucial role in defending Kalaikunda in the 1965 Indo-Pak War and was awarded the Veer Chakra for the classic dogfight. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government makes Aadhaar biometric authentication mandatory for subsidized refills of LPG cylinders from 1st of next month. Rashtriya Sankalp Samaroh being organized at 1,067 locations across the country today as part of 100-week Nasha Mukt Yuva Abhiyan. Election Commission to hold special camps in all polling stations in Delhi today to assist citizens regarding inclusion and deletion of names in electoral rolls. IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andaman Nicobar. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने अगले महीने की 1 तारीख से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की रिफिलिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक तस्दीक को लाजमी करार दिया है। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज मुल्क भर में 1067 मकामात पर मुनक्किद किया जा रहा है, जो कि 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा अभियान का हिस्सा है। इंतखाबी कमीशन आज दिल्ली के तमाम पोलिंग मराकिज पर खुसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा, ताकि शहरियों को वोटर फहरिस्तों में नाम शामिल करने या उन्हें हजफ करने से मुतालिक मदद फराहम की जा सके। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारत की मर्दों की टीम ने स्पेन के खिलाफ 3-1 से शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि खवातीन की भारतीय टीम ने भी मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि इस साल 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू इस्तेमाल के एलपीजी सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार तस्दीक जरूरी होगी। काबिल इतलाक सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी ग्राहकों को इन मराकज से सिलेंडर हासिल करने के लिए बायोमेट्रिक आधार तस्दीक का अमल पूरा करना होगा। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: बायोमेट्रिक आधार तस्दीक इस बात को यकीनी बनाती है कि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर सिर्फ मजाज और अहल कुंभों तक ही पहुंचे। हर कनेक्शन को आधार तस्दीक से जोड़ने से घरेलू इस्तेमाल के गैस सिलेंडरों के कमर्शियल और सनअती इस्तेमाल में डायवर्जन की रोकथाम होगी। इसके अलावा इससे जाली और गैर मजाज कनेक्शन खत्म करने में भी मदद मिलेगी और सब्सिडी फराहम करने का अमल शफाफ और मरकूज हो सकेगा। वजारत ने कहा है कि बायोमेट्रिक आधार तस्दीक का मकसद किसी भी मजाज कुंबे को एलपीजी फराहम करने से इनकार करना नहीं है। वहीं वजारत ने यह भी कहा कि हर ग्राहक के पास इस अमल को पूरा करने के कई आसान तरीके दस्तियाब होंगे। वजारत ने कहा कि 27 करोड़ 43 लाख सारिफीन पहले ही इस अमल को पूरा कर चुके हैं और उन्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तस्दीक का यह अमल सिलेंडर की डिलीवरी लेते वक्त डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम जाकर या तेल मार्केटिंग कंपनियों के एप्स पर भी पूरा किया जा सकता है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने अब तक बायोमेट्रिक तस्दीक न करने वाले सारिफीन से अपील की है कि वह इस काम को 1 अक्टूबर 2026 से पहले मुकम्मल कर ले। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
2: विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के 100 हफ्ते के तहत आज मुल्क भर में नौजवानों की शमूलियत वाले प्रोग्राम होंगे। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने बताया कि मुल्क भर के 1067 मकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का इनेकाद होगा। इन मकामात में 471 जिले माय भारत दफातर और 596 शराकतदार तंजीमों के मकामात शामिल होंगे। ये तकरीब मुल्कगीर सतह पर नौजवानों की शमूलियत का अहम लम्हा होगा, जिसमें माय भारत, शराकतदार तंजीमें और नौजवान अफराद सेहतमंदाना फैसलों और नशा मुक्त मुस्तकबिल के अहद के लिए यकजा होंगे। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की नशा मुक्त पंजाब यात्रा, जिसे पार्टी के कौमी सदर नितिन नबीन ने 18 सितंबर को सरहदी जिले पठानकोट से शुरू किया था, रियासत के अवाम की जानिब से इसे जबरदस्त पजीराई मिल रही है। दिल्ली की वज़ीर-आला रेखा गुप्ता ने कल फतेहगढ़ साहिब से यात्रा के 4 मरहलों में से दूसरे मरहले का आगाज करते हुए इसे पंजाब में एक नई तहरीक का आगाज करार दिया। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त पंजाब यात्रा महज एक सियासी प्रोग्राम नहीं, बल्कि पंजाब को मुनशियात, जराइम और खौफ से आजाद कराने की इज्तिमाई कार्रवाई की अपील है। तफसील हमारे नामानिगार से।
4: 13 दिन तक जारी रहने वाली नशा मुक्त पंजाब यात्रा, जो भाजपा द नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ शुरू हुई है, पंजाब को दरपेश 3 बड़े चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज कर रही है। ये चैलेंजेस हैं मुनशियात का बढ़ता हुआ मसला, अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और हुक्मरानी की हर सतह पर बदनवानी। यात्रा रियासत में 4000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और तमाम 117 असम्बली हलकों से लोगों को मुतहरिक करेगी, ताकि मुनशियात के खिलाफ जंग को एक बड़े अवामी एहतजाज तहरीक में तब्दील किया जा सके। तीसरी यात्रा आज कानून इंसाफ के मरकजी वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से फाजिलका के सादिकी सरहदी इलाके से शुरू की जाएगी। कल चौथे मरहले का आगाज मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी की जानिब से भटिंडा के तलवंडी साबोह से किया जाएगा। नशा मुक्त पंजाब यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में इख्तिताम पजीर होगी, जहां मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की शिरकत मुतवक्के है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी इदारों में नई तकरीरी पाने वाले 51,000 से ज्यादा नौजवानों में तकरीरी नामे तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-आज़म ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हालिया बरसों में नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए जरूरी महारतें और मौके फराहम करने पर मुसलसल तवज्जो मरकूज की है।
5: बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु, इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईस को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका ये सफर जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अंतक अजम से इबारत है, जो आज भी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इसी नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए

0: हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ के लिए हुसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के जरिए ये अज़्म लोगों की जिंदगियों में तब्दीली ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की खसूसी सीरीज के तहत अशिया और खिदमात टैक्स GST के तारुफ के जरिए इस नज़रिए को कार्रवाई में बदलने का जायजा पेश किया जा रहा है।
1: अशिया और खिदमात टैक्स GST साल 2017 में मुतारफ कराया गया था, जिसका मकसद मुख्तलिफ मरकजी और रियासती टैक्सों में तकसीम बाजार को वसीतर टैक्स निज़ाम में लाना था। इस मुश्तरक फ्रेमवर्क के तहत 17 टैक्सों और 13 सेस को यकजा किया गया और एक मुल्क एक टैक्स एक बाजार को हकीकी शक्ल दी गई। GST से पहले बैन रियासती नकलो हरकत में मुतादिद टैक्स कागजी कार्रवाई और तवील इंतजार शामिल होता था। GST शरहों की मौजूदा असलाहत का सनत और आम आदमी दोनों ने खैर मकदम किया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के चेयरमैन और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के सदर डॉक्टर विजय कलंतरी ने कहा कि टैक्स शरहों को मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हम आहंग करने से शहरियों की टैक्स अदायगी के तहत हौसला अफजाई हुई है। मुंबई की पेशावर नेहा कुलकर्णी ने कहा कि जरूरी अशिया पर GST की गई कमी से उनके कुंबे के माहाना अखराजात में कमी आई है और बजट में इजाफा हुआ है। पिछले 9 साल के दौरान GST असलाहत में टैक्स के निजाम को आसान बनाया है, जाब्तों की तामील को सहल किया है और सार्फीन और कारोबारियों को राहत पहुंचाई है। इसके नतीजे में शहरियों की जिंदगी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इंतखाबी कमीशन आज कौमी राजधानी दिल्ली के तमाम पोलिंग मराकज पर खसूसी कैंप मुनक्किद करेगा। दिन भर जारी रहने वाली इस मुहिम का मकसद शहरियों को वोटर फहरिस्त में नए नाम शामिल कराने, मुजवजा नामों की शमूलियत या इखराज पर एतराज दर्ज कराने और वोटर फहरिस्त में मौजूद मालूमात और तफसीलात दुरुस्त कराने में मदद फराहम करना है। बूथ सतह के अफसरान BLOs मुकर्रा पोलिंग बूथ्स पर मौजूद रहेंगे और दरख्वास्तें वसूल करेंगे। नए वोटर के इंदराज के लिए फॉर्म 6, किसी नाम के इंदराज पर एतराज या नाम हजफ कराने के लिए फॉर्म 7, जबकि वोटर फहरिस्तों में किसी भी मालूमात को दुरुस्त कराने या अपडेट कराने के लिए फॉर्म 8 जमा कराया जा सकता है। कौमी राजधानी में जारी खसूसी जामे नजरसानी SIR के सिलसिले में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल अफसर अशोक कुमार ने वाजे किया कि इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसरान ERO समाअत के दौरान नोटिस में दर्ज दस्तावेजात के अलावा दीगर दस्तावेजात को भी केस की नौयत के मुताबिक जेरे गौर ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस के साथ मुंसलिक दस्तावेजात की फहरिस्त हतमी या मुकम्मल फहरिस्त नहीं है। वोटर अपना नाम, तारीख पैदाइश या नोटिस में मजकूर दीगर तफसीलात साबित करने के लिए मुतालिका दस्तावेजात पेश कर सकते हैं, जिन पर ERO हर मामले को अलग से देखते हुए फैसला करेगा।
2: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी, क्योंकि वो हियरिंग होनी है तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है, उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं, और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन DUSU इंतखाबात में 3 अहम ओहदों पर कामयाबी हासिल की है। ABVP के यश दबास सदर मुंतखब हुए हैं, जबकि रिया चावड़ी ने सेक्रेटरी और लक्ष्य राज सिंह ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदों पर जीत दर्ज की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने DUSU इंतखाबात में जीत हासिल करने पर ABVP को मुबारकबाद दी है। ईरान ने अमरीका के साथ मुजाकिरात दोबारा शुरू करने के लिए बैन अल-अक़वामी सालिसकारों को अपनी शरायत से वाकिफ करा दिया है। वहीं ईरान ने यह भी इंतबाह दिया है कि अगर वाशिंगटन उसके मुतालबात को ठुकरा देता है तो तेहरान फैसलाकुन जंग के लिए तैयार है। इस दौरान अमरीका ने अपने शहरियों से कहा है कि वह इलाकाई कशीदगी, जंग में अचानक मुमकिन तेजी, परवाजों में रखना और अमरीकी मफादात पर हमलों के तनाजुर में मगरबी एशिया के अपने सफर पर नजरसानी करें। यह मशवरा ऐसे वक्त में दिया गया है जब यमन के हूसी लड़ाकों ने सऊदी अरब की जानब मिजाइल और ड्रोन हमले शुरू

0: दिए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार जजायर में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शतरंज ओलंपियाड में मर्दों की भारतीय टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। इस दौरान आर प्रगनंदा ने डेविड एंटन गुइजारो के खिलाफ ड्रॉ खेला। वहीं निहान सरीन को भी जेमी लतासा के खिलाफ ड्रॉ खेलना पड़ा। वहीं खवातीन के जुमरे में भारत ने मंगोलिया के खिलाफ 3-1 की जबरदस्त जीत हासिल की। भारत की सविता ने मशहूर खिलाड़ी मंगुथुन बतखुया के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए लगातार चौथी जीत दर्ज की है। उज्बेकिस्तान के समरकंद के सिल्क रोड इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में आज 46वें फिडे शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड के मुकाबले होंगे। ये मुकाबले भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से मुनाकिदा दो रोजा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, गुज़श्ता 12 वर्षों में माहौलियात के लिए भारत ने गैर मामूली पेशरफ्त की। रोजनामा प्रताप ने हाई कोर्ट्स में जजों की तकरीरी से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में 14 नए जजों की तकरीरी की मंजूरी दी। रोजनामा इनकलाब ने सऊदी वजारत दिफा के ऐलान की खबर को शह सुर्खी बनाते हुए लिखा, दिफाई बहरी इतिहाद के चौथे मनसूबाबंदी इजलास में 41 ममालिक की शिरकत। अखबारात की कुछ अहम बैन अवी खबरें इस तरह हैं, ग्रीनलैंड पर अमरीका और डेनमार्क के दरमियान माहदा, इस्लामाबाद माहदा दोबारा बहाल करने की कोशिश जारी, ईरान का बयान।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर, हुकूमत ने अगले महीने की 1 तारीख से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की रीफिलिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक तस्दीक को लाजमी करार दिया है। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज मुल्क भर में 1067 मकाम पर मुनक्द किया जा रहा है, जो कि 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा अभियान का हिस्सा है। इंतखाबी कमीशन आज दिल्ली के तमाम पोलिंग मराकज पर खसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा, ताकि शहरियों को वोटर फहरिस्तों में नाम शामिल करने या उन्हें हजफ करने से मुतालिक मदद फराहम की जा सके। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारत की मर्दों की टीम ने स्पेन के खिलाफ 3-1 से शानदार कामयाबी हासिल की है, जबकि खवातीन की भारतीय टीम ने भी मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।

मैं हवा बनूं और उड़ जाऊं, तू बादल बने संग मेरे उड़े, मैं तुझसे चलूं तू मुझसे चले, ये साथ जन्मों का जन्म तक चले, तू पतंग बन उड़े मैं तेरी डोर सी जुड़ूं, तू चले तो चलूं तू रुके तो रुकूं, मैं तुझसी बनूं तेरे रंग में ढलूं, तू कहे तो चलूं तू कहे तो थमूं, वक्त कैसा भी हो रात कैसी भी हो, दिया बनना पड़े तो बन के रोशनी तेरे पथ पर चलूं, तू हंसे तो हंसूं तू रूठे तो मना लूं, ऐ काश फिर से मैं जन्मूं शुरू से तुझसे मिलूं, तू मेरा बने मैं तेरी बनूं, मैं तेरे लिए सजूं तू मुझे मोहब्बत करे मैं फूल सीख लूं। 8:46 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जिंदगी फूलों की तरह खिलती रहे इसके लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों में उस सकारात्मकता को घोल कर रखें जैसा

जीवन का पड़ाव आए, उस पड़ाव में मुस्कुराते रहें, बहुत सी मुश्किलें आएं, पर अपने लिए एक नियम, एक बात हमेशा तय रखें, जो कुछ भी होता रहे हमें मुस्कुराना है, हमें खुश रहना है। मैं शीतल आप सभी का करती हूं स्वागत म्यूजिकल दिल लगी में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

अभी कुछ दिन पहले मैं एक तस्वीर देख रही थी जिसमें एक ही आयु के दो लोगों को दिखाया गया था और उसमें एक व्यक्ति को देखकर लग रहा था कि ये बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और उसी आयु के एक और व्यक्ति को देखकर ये लग रहा था कि नहीं, ये तो बिल्कुल जवान है, बिल्कुल ऐसा है जैसे जिंदगी अभी मिली है। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क क्या था? दोनों में बहुत बड़ा फर्क ये था कि जिसे हम बुजुर्ग समझ रहे थे उसने चीजों को सीखना, नए तरीके से जीवन के हर एक दिन की शुरुआत करना बंद कर दिया था। ये स्वीकार कर लिया था कि हाँ, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। और जो इस तरह से नौजवान इतने ऊर्जा से भरे हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने जीवन में निरंतर नई चीजों को सीखना, नए एक्सपेरिमेंट्स को करना बंद नहीं किया था। उन्हें लग रहा था कि मुझे हर एक दिन नई चीज सीखनी है, नए काम करने हैं, और उससे उनके न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य पर बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी, देखिए कितना, मतलब इतना असरकारक जो है प्रभाव दिखाई दे रहा था, जिसे देख करके ये तुलना कर पाना कि ये दोनों एक ही आयु के व्यक्ति हैं,

बड़ा ही मुश्किल था। तो जस्ट ऑफ द स्टोरी ये है, उस रिसर्च का ही जो एक आउटकम है वो ये है कि हम अपने विचारों में हमेशा एक नयापन रखें और जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की ललक अपने भीतर जगाए रखें। जब हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे तो हमें फिर ये याद आता रहेगा, अरे हमें तो बहुत कुछ नहीं आता। और फिर उसके बाद हम बच्चे की तरह, एक विद्यार्थी की तरह नई चीज़ों को सीखने के लिए, गलतियाँ करने के लिए तैयार हो जाएंगे।

0: एचआईवी हो सकता है।
1: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है,
2: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के माध्यम से अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल है। ये आयोजन स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में

0: उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABVP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के प्रति ABVP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डी गोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। जापान में 20वें एशियाई खेल में आज भारत की टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटका, केरल, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. More from our correspondent.
2: Biometric Aadhaar authentication ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It said 27.43 crore consumers have already completed authentication and do not need to do anything further. Authentication can be completed at the time of delivery, at the distributor's showroom or an oil marketing company mobile app. With Suparna Saikia, Saklan Akhtar for Akashvani News, Delhi.
1: The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will hold a nationwide youth mobilization drive today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said the Rashtriya Sankalp Samaroh will be organized at 1,067 locations, including 471 district My Bharat offices and 596 partner organization venues across the country. The event will serve as a significant nationwide moment of youth participation, bringing together My Bharat, partner organizations and young people around a shared commitment to healthier choices and a Nasha Mukt future. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi, Mr. Vaishnaw said, India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips.
3: There are many challenges. It's a very difficult industry. Such a difficult industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential

आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। रविवार की सुबह और सुबह का आलस्य, बहुत ही प्यारा सा आलस्य, और वो भी रविवार की सुबह का आलस्य। लेकिन देखो ना, हमें तो ये आलस्य बिल्कुल भी हमारे रास्ते में नहीं आता। इतनी अच्छी बसें मिलती हैं और चौड़ी सड़कें, दिल्ली की सुबह सुबह जब आप आते हो बस में और खाली बस मिलती है आपको, लेकिन बहुत ही खाली नहीं होती है। बहुत से लोग हैं जो हमारी सुबह को सुबह बनाने के लिए घरों से निकल पड़ते हैं, इससे उनकी रोजी रोटी चलती है। और हमें तो आपसे मोहब्बत है ना साहब, क्या करें। म्यूजिकल दिल लगी पेश करने का जो चस्का है वो बहुत प्यारा है। आप सुन रहे हैं हमें, कहीं ना कहीं तो सुन ही रहे हैं। हाँ, अच्छा पता चल गया हमें। खैर साहब खाना बनाते हुए सुन रहे हैं ना। आज आपकी बारी है जनाब। बहुत सारे काम हैं आज, आज का दिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संदेशे लेकर आया है। जैसे सेवा संकल्प का एक अभियान चल रहा है प्रधानमंत्री महोदय के, माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के साथ वो शुरू हुआ था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, जब इसमें हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इससे जोड़ते हैं और इसके मूल सिद्धांतों वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है और एक साझा पहल होती है जो समाज के वंचितों, दिव्यांगों, युवाओं को

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और आवश्यक संसाधनों से जोड़कर उन्हें सशक्त और स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाता है, ताकि ताकि ताकि हम विकसित हो सकें। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हासिल किया जा सके। विजय आपके साथ है और बड़े प्यारे गाने लेकर आया है। दिल तो करता है कि बस गाने सुना दूं आते ही, लेकिन साहब फिर तो बात ही क्या है। ये साहब हैं जो गाना आप सुनने जा रहे हैं, इसमें हीरोइन कौन थी ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस फिल्म की मेन हीरोइन, मुख्य हीरोइन यानी हीरोइन राखी थी, मगर गाना किसी और पे फिल्माया गया। अमिताभ बच्चन साहब के साथ बेमिसाल फिल्म का ये 1981 में आई फिल्म, और इस गाने में किशोर कुमार साहब ने खास तौर पर आवाज दी आर डी बर्मन के कहने पर कि वे चाह रहे थे कि वे गाना ना गाएं। उसकी कुछ अलग वजहें थी जो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत बताना भी होता है ना गाने के बारे में। लेकिन आर डी बर्मन के साथ पक्की दोस्ती की वजह से ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 1982 में आई थी, बेमिसाल और बहुत ही प्यारा गाना।

0: कितना इंतजार था आज के दिन का, पिछले 3 हफ्ते से इंतजार कर रहा था, क्योंकि कुछ खास काम हम किसी खास दिन के लिए रखते हैं और आज विश्व सफाई दिवस है, तो सोचा कि अपना 3 हफ्ते का कचरा मैं आज साफ कर दूं, और पता लगा साथ में मैं खुद भी साफ हो गया। पापा ने घर से निकाल दिया, तू ही गंद है, निकल बाहर यहाँ से। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, मैं पापा जी आपका अच्छा बेटा बनने की कोशिश करूंगा। साफ सफाई, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाऊंगा भी और खुद भी हो जाऊंगा, और ताकि हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और फिर मेरा भविष्य टिकाऊ हो जाएगा ना। आप मुझे घर में वापस बुला लेंगे, लेकिन टिकाऊ भविष्य जो है उसके लिए कचरे का वैज्ञानिक निपटान करना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक निपटान यानी एवं कचरा घर से निकाल के सड़क पे फेंक देने से सफाई नहीं हो जाती दोस्तों, ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, और इसलिए हमें थोड़ा सा इस बारे में अपनी सोच को जागरूक करना पड़ेगा। शुरुआत इतनी तो कर ही सकते हैं कि घर में 2 डस्टबिन रखें हम, एक ऐसी जिसमें ऐसा कचरा फेंका जा सके जो सड़ जाता हो जल्दी, जिसे बोलते हैं जैविक कचरा, जैसे केला खाया तो उसके छिलके उसमें अगर आप डालेंगे तो, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, और कुछ जैसे प्लास्टिक या पन्नी वगैरह जो होती हैं, ये सब होते हैं ना, वो ऐसी चीज़ें पैकिंग की चीज़ें होती हैं जब आप कुछ चीज़ लाते हो, तो 2 अलग अलग तरह के कचरे जब सेग्रीगेट हो जाते हैं यानी उनके बीच में एक विभाजन हो जाता है, तो उनका निपटान करना अधिक आसान होता है। फिर उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस कचरे को बीनते हैं और उसको ठीक करके फिर आगे उनको उससे अपनी आजीविका भी चलाते हैं, यहाँ तक का एक कचरा प्रबंधन का एक अपना विज्ञान भी है। तो सब चीज़ों के लिए हर तरीके से काम चल रहा है, हमारा योगदान कितना है ये हमें सोचना है। फिलहाल तो ये है कि अगला गाना एकदम इसके बाद सुनेंगे और उस गाने के बारे में भी थोड़ी बहुत तो बात ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी बहुत विशेष जानकारियां रिकॉर्डेड रूप में लेकर आते हैं आपके लिए।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं, और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध

0: एचआईवी हो सकता है।
1: मेरे वाले में नेडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
2: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
8: देखिए साहब, हम अगला गाना सुन ही लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन इतना ज़रूर आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस भी आज ही है, 20 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ द्वारा घोषित इस दिवस का मुख्य उद्देश्य छात्रों में खेल, शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। तो ऐसा ही खेल खेलना है दोस्तों, शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ जीवन शैली, लेजीपना गायब, है ना। अगला गाना सुनते हैं, ये म्यूजिकल दिल लगी के अंतर्गत आखिरी गाना है। इसके बाद तो हम वतन का राग सुनेंगे और जो कुछ गाने आपके लिए सोच रखे हैं वो बचा के देखते हैं।

0: जी हाँ, के विश्वनाथ ने कामचोर से हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू किया था और इस गाने ने, इस फिल्म ने अलका याग्निक के शुरुआती करियर में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब हम सुनने वाले हैं वतन का राग और उसी सिलसिले में याद कर रहे हैं एनी बेसेंट को भी। आइए सुनते हैं वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है शहीद बूटा सिंह। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली से राजकुमार और छिंदवाड़ा से मोहन साहू। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे कलम के सिपाही की, जिनकी जीवन यात्रा एक दीपक की तरह थी, जिसने आंधियों से रोशनी का अर्थ सीखा, जिनके लिए पत्रकारिता केवल घटनाओं की खबर पहुंचाना भर नहीं था, बल्कि उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ था समय की आंखों में आंखें डालकर सच कहने का साहस। वो महान और प्रखर पत्रकार थे तुषार कांति घोष, जिनकी कलम ने गुलामी की रात में भी स्वतंत्रता का स्वप्न देखा और आजादी के बाद लोकतंत्र की चौकसी को अपना जीवन धर्म बनाया। तुषार कांति घोष का जन्म 21 सितंबर सन 1898 को अविभाजित बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। उनका परिवार बंगाल का एक सम्मानित परिवार था। भारतीय पत्रकारिता और स्वाधीनता संग्राम से इसका गहरा संबंध था। उनके पिता शिशिर कुमार घोष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन पुरोधाओं में से थे जिन्होंने

भाइयों मोतीलाल घोष और वसंत कुमार घोष के साथ मिलकर अंग्रेजी दैनिक अमृत बाजार की शुरुआत की थी। अमृत बाजार केवल एक समाचार पत्र भर नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विचारों का एक सशक्त और निर्भीक मंच बन चुका था। इस तरह बचपन से ही तुषार कांति घोष ने देश, समाज और स्वाधीनता की बातें सुनी, अन्याय के विरुद्ध उठती आवाजें सुनी। इसीलिए पत्रकारिता उनके लिए केवल पेशा नहीं, पारिवारिक संस्कार और राष्ट्रीय दायित्व था। उनकी आरंभिक शिक्षा कोलकाता के प्रतिष्ठित हिंदू स्कूल में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी मेधा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध बंगवासी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अध्ययन के साथ साथ अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य ने उनके भीतर भाषा की शक्ति जगाई तथा देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उनके भीतर प्रश्न करने की बेचैनी पैदा की।

शिक्षा पूर्ण करने के बाद तुषार कांति घोष के समक्ष कई विकल्प थे, लेकिन उन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों और राष्ट्रीय दायित्व को सर्वोपरि मानते हुए पत्रकारिता के कठिन और जोखिम भरे मार्ग को चुना। सन 1930 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका के संपादक का दायित्व संभाला। उस दौर में किसी पत्र का संपादन करना केवल सुंदर और प्रभावकारी लेख लिखना भर नहीं था, ब्रिटिश सरकार की कड़ी निगरानी, क्षेत्रीय सेंसरशिप और वित्तीय अनिश्चितताओं के बीच समाचार पत्र निकालना एक युद्ध की तरह था। प्रेस चलाने के लिए कागज चाहिए, मशीन चाहिए, श्रम चाहिए और वितरण का जाल चाहिए। तुषार कांति घोष ने पत्रकारिता को केवल संपादकीय कक्ष में बैठकर नहीं समझा, वो मुद्रण कक्षों में जाते, तकनीक समझते और संकट के समय स्वयं समाधान ढूंढ निकालते। जब जेसोर क्षेत्र में कागज की कमी हुई तो कागज निर्माण और प्रसंस्करण की तकनीक समझने के लिए वो पांडुआ तक गए। तुषार कांति घोष ने भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में सन 1937 में अमृत बाजार पत्रिका समूह ने बंगाली दैनिक समाचार पत्र जुगांतर का प्रकाशन शुरू किया। कुछ ही समय में जुगांतर बंगाल और पूर्वी भारत का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली बंगाली समाचार पत्र बन गया। ये अरविंद घोष के साप्ताहिक पत्र जुगांतर से अलग पत्र था। इसके माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में निर्भीक पत्रकारिता और राष्ट्रवादी चेतना की एक नई लहर पैदा हुई। तुषार कांति घोष के भीतर ब्रिटिश सत्ता के समक्ष न झुकने का अटूट संकल्प था। यही कारण है कि उनके संपादन काल में अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेज अधिकारियों और औपनिवेशिक न्यायपालिका की आंखों की किरकिरी बनी रही। तुषार कांति घोष के जीवन की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक था सन 1935 का वो प्रसिद्ध अवमानना का मुकदमा, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। दरअसल 21 मार्च सन 1935 को बंगाल विधान परिषद में एनके बसु ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की आलोचना की थी। इसके बाद अमृत बाजार पत्रिका में कलकत्ता हाई कोर्ट शीर्षक से संपादकीय प्रकाशित हुई। इसमें अदालत के न्यायाधीशों पर कार्यपालिका के साथ निकटता के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होने जैसी गंभीर टिप्पणी की गई थी। इसे अदालत की अवमानना मानते हुए तुषार कांति घोष और तारिक कांति बिस्वास के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अदालत में तुषार कांति घोष ने बताया कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान ये लेख छपा था, लेकिन वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। साथ ही उन्होंने अपने पक्ष में तर्क भी रखा। अदालत ने उन्हें माफी मांगने का अवसर दिया, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं हुए। परिणाम स्वरूप उन्हें 3 माह कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन वो जिंदगी भर न कभी झुके न रुके, वो निर्भीक निडर बस चलते रहे।

तुषार कांति घोष अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और हास्य व्यंग के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। अंग्रेजों के साथ उनकी संवाद शैली अत्यंत रोचक रहा करती थी। इसी तरह का एक किस्सा पत्रकारिता जगत में प्रचलित है। बताया जाता है कि एक बार बंगाल प्रांत के तत्कालीन गवर्नर ने चुटकी लेते हुए कहा, श्रीमान घोष, मैं आपकी अमृत बाजार पत्रिका नियमित रूप से पढ़ता हूँ। अखबार तो अच्छा है, लेकिन इसमें कई बार अंग्रेजी व्याकरण सही नहीं होता है और आपकी पत्रिका अंग्रेजी भाषा के साथ काफी हिंसा करती है। इस पर बिना एक क्षण गवाए तुषार कांति घोष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महोदय, अंग्रेजी भाषा के साथ हिंसा करना ही तो भारत के स्वाधीनता संग्राम में मेरा और मेरी पत्रिका का सबसे छोटा सा योगदान है। जवाब सुनकर गवर्नर महोदय चुप रह गए। इस तरह तुषार कांति घोष ने कलम के सहारे ऐसा युद्ध घोष किया कि ब्रिटिश सत्ता कभी चैन से नहीं बैठ सकी। अमृत बाजार पत्रिका और जुगांतर, मानो उनकी कलम ने दो भाषाओं में एक ही संदेश लिखा, जनता को जागना होगा। तुषार कांति घोष ने कभी शब्दों से तो कभी अपने मौन से भी जागरण का ये मंत्र फूंका। 16 अगस्त सन 1946 को अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया और कलकत्ता की सड़कों पर भयानक नरसंहार, सांप्रदायिक दंगे और आगजनी के दृश्य थे। पूरा शहर हिंसा की आग में जल रहा था। अनेक समाचार पत्र भड़काऊ खबरें छाप रहे थे, एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे थे। ऐसे समय में अमृत बाजार पत्रिका का संपादकीय कॉलम खाली छोड़ दिया गया। ऐसा 3 दिनों तक किया गया। 3 दिनों का ये मौन संपादकीय ब्रिटिश हुकूमत की विफलता और राजनीतिक उन्माद के विरुद्ध तुषार कांति घोष का तीखा और मौन प्रतिरोध था। स्वाधीनता के बाद भारत में कई बार ऐसी स्थितियां आईं जब केंद्र या राज्य सरकार ने मीडिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयास किया। तुषार कांति घोष ने सदा इसका कड़ा विरोध किया। वो इस बात के पक्षधर थे कि समाचार पत्रों को किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या कॉरपोरेट घराने का मोहरा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका को एक ऐसा मंच बनाया जहां प्रशासनिक भ्रष्टाचार, नीतिगत कमियों और सत्ता के अहंकार पर बिना किसी डर के कड़ा प्रहार किया जाता था। तुषार कांति घोष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और द इंडियन न्यूज सोसाइटी के सर्वोच्च पदों पर रहे। उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन का पुरजोर समर्थन किया ताकि पत्रकारिता सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहे। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रकार होने के साथ साथ उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद पुस्तकें भी लिखीं। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका में भी बच्चों के लिए विशेष कॉलम शुरू किए थे ताकि बच्चों में पढ़ने की आदत और नैतिक मूल्यों का विकास हो। राष्ट्र निर्माण, साहित्य, शिक्षा और स्वतंत्र पत्रकारिता में उनके योगदान को देखते हुए सन 1964 में उन्हें पद्मभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। एक समृद्ध और प्रेरणादायक जीवन जीते हुए 29 अगस्त सन 1994 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि तुषार कांति घोष का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, तुषार कांति घोष का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम,

FM Gold AIR Delhi DELHI at gmail.com FM Gold Delhi FM Gold AIR Delhi at gmail.com ये वो ईमेल आईडी है जिस पर आप अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं हमें, किसके लिए? दिल का मेल बॉक्स के लिए, जो 10:30 बजे शुरू होगा। उससे पहले हम समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, फिर विश्व दर्पण भी हिंदी और अंग्रेजी में, वर्ल्ड न्यूज़ के नाम से ही अंग्रेजी में आएगा। उसके बाद 10:30 बजे हम इस ईमेल आईडी पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। आपके पसंदीदा गीत अगर नहीं भी सुनवा सके तो कोशिश रहेगी कि आपका नाम पढ़ दें। और अगर 10 बजे आपने एक बार अपना ईमेल भेज दिया संदेशा, तो बार बार संदेशा ना भेजें, ताकि हमें कुछ आसानी हो। तो मिलते हैं 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स लेकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के प्रति ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित

0: राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पत्रकार पायल मेहता के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे जमीनी मुद्दों से गहराई से जुड़ी हुई थीं और राष्ट्रीय मुद्दों की व्यापक समझ के साथ रिपोर्टिंग करती थीं। श्री मोदी ने कहा कि पत्रकारिता के अलावा पायल मेहता लोगों के प्रति अपने स्नेह और आत्मीयता के लिए भी याद की जाएंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर समाज के सांस्कृतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। जापान में 20वें एशियाई खेल में आज भारत की टैगबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की उइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया के साथ खेलेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. More from our correspondent.
2: Biometric Aadhaar authentication ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It said 27.43 crore consumers have already completed authentication and do not need to do anything further. Authentication can be completed at the time of delivery, at the distributor's showroom or an oil marketing company mobile app. With Suparna Saikia, Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi, Mr. Vaishnaw said, India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips.
3: There are many challenges. It's a very difficult industry. Such a difficult industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
1: Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the sudden demise of journalist Payal Mehta today. In a social media post, the Prime Minister described her as a hard-working journalist who remained firmly connected to the ground, bringing a deep understanding of national issues to her reporting. Meanwhile, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw also expressed grief over the demise of journalist Payal Mehta. In a social media post, Mr. Vaishnaw said that her dedication to reporting was exemplary. Union Home Minister Amit Shah today paid tribute to Pandit Sri Ram Sharma Acharya on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Shah said that through the establishment of the All World Gayatri Parivar, Pandit Sri Ram Sharma Acharya paved the way for the cultural upliftment of society. He noted that by harmonizing science and spirituality, Pandit Acharya brought the wisdom of eternal culture to every individual. The Home Minister highlighted that with the mantra, Hum Badlenge, Yug Badlega, he inspired millions of people towards public service and social reform. Mr. Shah added that his life and values will forever remain a guiding light for the nation and society. Iran has communicated its conditions to international mediators for restarting negotiations with the United States. It has also warned that Tehran is prepared for a decisive war if Washington rejects its demands. Mohsen Rezai, Secretary of Iran's Supreme National Security Council, said Iran's conditions included an end to the war on all fronts, the release of frozen Iranian funds, and an end to the naval blockade. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Telangana, Andaman and Nicobar Islands today. The Met Department has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Madhya Maharashtra, Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. In Asian Games 2026, India secured the silver medal in the women's 10-meter air rifle team event at the Aichi Nagoya, Japan, with Elavanil Valarivan, Sonam Maskar and Vidarsa Vinod combining to deliver the country's first medal of the Games. In Chess Olympiad, Indian men's team defeated Spain 3-1 with world champion D. Gukesh leading the way with a clean victory over former world championship challenger Alexei Shirov in Samarkand yesterday. In the women's section, India recorded a 3-1 victory over Mongolia. And that is the end of this news bulletin.
0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। सेमीकंडक्टर से जुड़ा पांचवां सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न। ईरान ने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को अपनी शर्तों से अवगत कराया। अमेरिका ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने और सऊदी अरब पर हौसी विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों को देखते हुए अपने नागरिकों से पश्चिम एशिया की यात्रा सोच समझकर करने का आग्रह किया। उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। और एशियाई खेलों में भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा जापान में 2-0 से हार के बाद महिला एकल कांस्य पदक से चूक गए। अब समाचार विस्तार से। सेमीकंडक्टर से जुड़ा पांचवां सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन का विषय था सिलिकॉन टू सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। 3 दिन के सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
4: सम्मेलन में लगभग 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी, 52 देशों के प्रतिनिधि और 150 से अधिक वक्ता शामिल हुए। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के मंडपों और 12 राज्य मंडपों में सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 40,000 लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने सेमीकंडक्टर नीति निर्माण से लेकर इसके वाणिज्यिक उत्पादन तक भारत की प्रगति की चर्चा की थी। सम्मेलन के दौरान 56 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण, आधुनिक पैकेजिंग, उपकरण और सामग्री, पावर इलेक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक मेधा से जुड़ी घोषणाएं भी हुई। विश्व दर्पण के लिए चाहत सिंह।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
5: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि

समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। पिछले महीने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से जनजीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने अमेरिका के साथ फिर से बातचीत शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को अपनी शर्तों से अवगत करा दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका उसकी मांगे नहीं मानता है तो ईरान निर्णायक युद्ध के लिए तैयार है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा है कि ईरान की शर्तों में ईरान की फ्रीज की गई रकम को जारी करना, सभी मोर्चों पर लड़ाई बंद करना और नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना शामिल है। श्री रजाई ने कहा कि ईरान की सभी 7 शर्तें एकदम स्पष्ट। उन्होंने कहा कि ईरान ओमान की खाड़ी और अरब सागर तक फैले अमरीकी नौसैनिक संसाधनों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। श्री रजाई ने दावा किया कि हाल ही में ईरान ने पोतरोधी मल्टी वॉरहेड मिसाइल का एक अमरीकी पोत या विमान वाहक के पास परीक्षण किया था। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ईरान की प्रतिक्रिया अधिक व्यापक होगी, जिसमें क्षेत्र के अमरीकी ठिकानों और कंपनियों को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमरीकी प्रशासन ने चेतावनी, क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमरीकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी की है। यमन के हुजी लड़ाकू ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। अमरीकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमरीकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। चेतावनी में कहा गया है कि ईरान का समर्थन करने वाले समूह विदेशों में अमरीकी हितों, व्यवसायों और संस्थानों को निशाना बना सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यांत्रिक मेधा यानी AI फोर्स गठित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उन्होंने कहा कि वे AI के क्षेत्र में हो रही उथल पुथल पर मूर्ख दर्शन बनने नहीं रह सकते। श्री ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगली औद्योगिक क्रांति बताया और कहा कि यह अमरीका के सकल घरेलू उत्पाद में 25% तक का योगदान दे सकता है। श्री ट्रंप ने यह दावा किया कि डेमोक्रेट पार्टी AI से कथित तबाही की आशंका को लेकर गुमराह कर रही है। उन्होंने यह कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल वार्मिंग भी ऐसा ही धोखा था जो अमेरिका को नष्ट कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में अमरीकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लेंच ने कहा था कि अमरीका AI की दौड़ में चीन से हारने का जोखिम नहीं उठा सकता। उन्होंने अमरीकी तकनीक चुराने वाले चीनी व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा भी किया। उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और वहीं महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। शतरंज ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हराया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रज्ञानंद का डेविड एंटोन गुजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सेंटोस लटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग की अगर बात की जाए तो भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। और अब बात करते हैं एशियाई खेलों की। भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा महिला एकल में कांस्य पदक जीतने से चूक गई हैं। युएना साकामोटो से कड़े मुकाबले में उन्हें 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। ये मैच दोनों ही खेलों में निर्णायक क्षण तक चला, जिससे डिसूजा को कई मौके गंवाने का अफसोस रहा। वहीं भारतीय खिलाड़ी के पास मैच पर नियंत्रण करने के कई मौके थे, लेकिन साकामोटो ने शानदार वापसी की। डिसूजा ने दूसरे गेम में भी बढ़त बनाई और एक मैच प्वाइंट को विजयी सर्व बचाया, लेकिन निर्णायक क्षणों में साकामोटो की महत्वपूर्ण गलतियों का फायदा उठाते हुए वो मैच को समाप्त नहीं कर सके। हालांकि डिसूजा के पास पदक जीतने का एक और मौका होगा। अब वे मोहम्मद अनस बेग के साथ मिश्रित युगल कांस्य पदक में प्रतिस्पर्धा करेंगी।
बांग्लादेश के ढाका में कम

तीव्रता वाले बम धमाकों और बसों में आगजनी की घटनाओं के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने 200 से ज्यादा चेक प्वाइंट बनाए हैं और प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। राजधानी में फ्लाईओवर के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस ने धमाकों और बसों में आगजनी की घटनाओं की जांच शुरू कर दी है और आगे भी जांच जारी रहेगी ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेमीकंडक्टर से जुड़ा पांचवां सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न। ईरान ने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत में मध्यस्थों को अपनी शर्तों से अवगत कराया। अमेरिका ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने और सऊदी अरब पर हौसी विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों को देखते हुए अपने नागरिकों से पश्चिम एशिया की यात्रा सोच समझकर आग्रह करने के लिए कहा। उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-0 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-0 से हराया। और एशियाई खेलों में भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी किमसी डिसूजा जापान में 2-0 से हार के बाद महिला एकल कांस्य पदक से चूक गई हैं। युइना साकामोटो से कड़े मुकाबलों में उन्हें 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। ये मैच दोनों ही खेलों में निर्णायक क्षण तक चला जिससे डिसूजा को कई मौके गंवाने का अफसोस रहा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दिल का मेल बॉक्स खुला है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड चैनल पर विजय के साथ, और आपकी फरमाइशें बहुत सारी आना शुरू हो गई हैं। हम पहला गीत सुने, खूब सारे नाम पढ़ देते हैं, फिर आगे चलेंगे। महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर गायकवाड़। मुंबई से अनु बड़जात्या, शमसुल खान, अनुराज बेनारा गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार गांव टोरवाल जिला नवाशहर। पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, प्रियम, वामिका वाणी। महाराष्ट्र से रूपेश, संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश, ये परभणी से जिले से थे महाराष्ट्र के। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर। मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, संजना परी, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू, देविका चौधरी। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका, भानु प्रकाश। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ, पूजा, रेखा, रघुवंशी, ललिता, जगदीश, चंदा, युवराज, वानखेड़े, लक्ष्मी नारायण, भाऊ खड़से। कस्बा गन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा और वंदना ऑर्चिड सोसाइटी जीवन नगर नई दिल्ली से। इनकी फरमाइश पर ये बहुत प्यारा सा गाना, जो कि आपके दीवाने फिल्म जो 1980 में आई थी उसका, ये रफ़ी साहब और किशोर कुमार की आवाज़ में इस गाने को सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक साथ होना जो है उन दोनों का इस गाने को विशेष बनाता है। ऋषि कपूर, टीना मुनीम, राकेश रोशन मुख्य भूमिकाओं में हैं।

ये सब लोग मोहाली चंडीगढ़ सेक्टर 37 से थे। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा। ये अगला संदेश आया है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा। और ये है संदेशा अभिजीत गवाणकर, राही, सरिता, एकांश, अर्जुन। ये लोग कहाँ से हैं? मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। इस जगह का तो नाम भी मैंने पहली बार सुना है, उमरखेड़ जी। ये मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, हसन, बाबू अहद, मीफा नवाज, बेबी चाहत, सादिया। और ये साहब हैं गिरिडीह झारखंड, दादा बाबू रोड से। मस्किन दादा का मैसेज आया है, क्या कह रहे हैं? मैडम जी हम भी जुड़े हैं। हाँ भाई, मैडम जी तुलसी, वीना, आशीष राजा, चैतन्य, मेघा, मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना। और ये सब लोग जो थे बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से थे। एक ही नाम में, एक ही मैसेज में सारी दुनिया को समेट लेते हैं। और धर्मेंद्र साहब, आपका नाम तो हम पढ़ चुके हैं, दोबारा दोबारा मैसेज भेजकर काहे हमको। अनिल कुमार, अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। इसके अलावा ये संदेशा है राज पैलेस, मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से। राजेश राज, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन। और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, स्वर्णकार, पिंकी फिर से आर्यन, कृष्णा, पीहू। और ये नाम है दत्रेंगी भाटपाड़ा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा। वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और ये साहब हैं, ये तो नाम हमने पढ़ दिया, फिर से दोबारा मैसेज भेज दिया था इन भाई साहब ने, हम नहीं पढ़ेंगे आपका मैसेज दोबारा, कोशिश यही रहेगी। संजय धींगिया, नमन अपार, ये सब लोग हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। ये नया दौर का गाना, ये नया दौर का गाना अभी तो हम सुना नहीं पाएंगे, लेकिन आपका नाम पढ़ देते हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। और ये मैडम नीतू जी को सादर प्रणाम कर रहे हैं। मैडम नीतू, अगर आप नहीं सुन पा रही हैं अभी, तो हम खुद ही आपको इनका सादर प्रणाम भेज देंगे। कौन साहब हैं ये? अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या, सुच्चा सिंह पाठक। और साहब ये रामशरण विश्वकर्मा, ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी के साथ ये मैसेज भेज रहे हैं। इसके अलावा ये नाम है चंडीगढ़ से सतीश और बिमला। ये हरजिंदर शिंदा, गांव नधाना पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता, गीता। ताज महमूद साहब का मैसेज आया है, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर अंसारी, मेरा जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। और ये मैसेज आया है कुलदीप बग्गा का, वो रफ़ी साहब का गाना सुनना चाहते हैं। तारीफ करूं क्या उसकी? लीजिए साहब, ये आप सभी की फरमाइश को इसी में जान लीजिए, आपका नाम हमने जहां तक पढ़ सकते थे।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: दिल का मेल बॉक्स खुला हुआ है, बहुत सारे मैसेजेस हमको आ रहे हैं हम तक ईमेल के माध्यम से, और कुछ गाने हम

चुके हैं सुधाकर राजे जाधव, देशमुख प्रशांत राजे जाधव, जुगताई राजे, कुमार प्रथमेश, सर्वद हर्षिता, सानवी प्रणाली, ये लोग मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से। इनका इनकी फरमाइश अग्निपथ का गणपति वाला गाना सुनने का है। ये फरमाइश हम कार्यक्रम के अंत में पूरी करने की कोशिश करेंगे। ये चाइना टाउन, माफ़ कीजिएगा, ये पद्मा टॉकीज नेपा नगर से बोल रहे हैं। सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि वहाँ से मैसेज भेज रहे हैं। अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी, बहुत बढ़िया। और ये साहब हैं, इनका नाम हमने पढ़ दिया था, हम इनको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ये साहब हैं कौन, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ये एक निवेदन है, एक तो आप बार बार ईमेल ना भेजें, दूसरा अपना नाम सबसे पहले लिख दिया कीजिए ना। अगर हम आपका गाना नहीं सुनवा पाए आपकी फरमाइश का, तो आपका नाम तो पढ़ देंगे। और जहाँ तक फरमाइशी गाने की बात है, तो जितने भी गाने एफएम गोल्ड पर बजते हैं वो सभी आपके पसंदीदा होते हैं, होते हैं कि नहीं। सौराष्ट्र राजकोट से जूली, जगदीप गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, ये तो एक जरिया हमने बना लिया है कि आपका नाम पढ़ें तो हमें दिल को तसल्ली मिलती है। ये साहब हैं बबलेश, डैनी, मनीष, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा, राम देवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, और बबलेश ने गांधी चौक बाड़मेर से ये मैसेज भेजा था। सतीश अनेजा का नाम हम पढ़ चुके हैं, और ये नाम है जाखूद राजस्थान से, शंभू दयाल, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा, और मेहर, ममता, कीर्ति, भूमिका, ये सब अरोड़ा हैं। और पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हमें इन्होंने ये मैसेज भेजा है। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोट और निखिल कागड़ा तन्वी, ये गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से, राजेंद्र जलोड़िया, उषा जटोदलिया, ये साहब हैं दिल्ली नांगलोई से, और चंडीगढ़ वालों को हमसे खास मोहब्बत है बार बार मैसेज भेजने की। उमेश कुमार, दिनेश, अनुज, सोनित ख्याला दिल्ली से, और ये साहब हैं शिवाजी चौक कटनी से, अनिल, अमर, दिलीप वर्मा, राजू, रंजन, रज्जक, संजीव, विपिन, अरुण, संजय, सोनी, पवन, सुनील, लालू, सोना, मोना, हनी, यस, सौम्या, उनके मम्मी पापा भी, और साथ में मेरा नाम भी इसी में लिख देते, मैं खुद ही अपना नाम पढ़ लेता, एक मेरा ही नाम रह गया है। मुल्तानी ढांडा पहाड़गंज से अनिल मोहन, ये साहब इनका नाम हम पहले भी पढ़ चुके थे, देखिए गलती से दोबारा पढ़ा गया, तब तक तो एक नाम हम और ऐड कर सकते थे। शमसुल कमर राही, ये साहब हैं गंज डुंडवाड़ा से, शाहीन, फातिमा, अदनान खान और अनु खान, एक गाना तो सुन ही लेते हैं, नहीं तो नाम पढ़ते रहेंगे तो शाम हो जाएगी, है ना। ये आपकी फरमाइश का एक प्यारा सा गाना, फिल्म तीसरी मंजिल से।

दोस्तों, दिल के मेलबॉक्स का भी समय नज़दीक आ रहा है इसके समाप्त होने का, और इसको संपन्न करते हुए हम ये एक फरमाइश अग्निपथ से गणेश को समर्पित देवा श्री गणेशा सुनेंगे हम सुखविंदर की आवाज़ में, और फिर आगे कभी मुलाकात होगी। इसके बाद हम सुनेंगे क्या खबरें, खबरें सुनने के बाद वापस आएंगे तो होगा आज के मेहमान।

0: La. नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाण जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर हो रहा है। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्ष से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र

0: सभी सुनने वालों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का चैनल एफएम गोल्ड, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये कार्यक्रम है आज के मेहमान और आप हैं डॉक्टर अनु चौहान, और कई वर्षों से प्रिंट मीडिया में कार्यरत रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शिक्षण से जुड़ी हैं, मीडिया से जुड़ी हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़ी हैं और बहुत लंबा अनुभव है उनका। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है हमारी आज की मेहमान यानी डॉक्टर अनु चौहान। आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं एफएम गोल्ड के स्टूडियो में। अनु जी, कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं आ रही थी तो थोड़ा सा घबरा रही थी, लेकिन यहाँ आके सिर्फ 5 मिनट में मैं एकदम, कहते ना, वो रियल अनु आ गई जी। जो सोच के आ रही थी कि नहीं, मुझे इतना बोलना है, इतना नहीं बोलना है।
0: एफएम गोल्ड तो चैनल ही ऐसा है आकाशवाणी दिल्ली का, जो कि इंफोटेनमेंट देने वाला चैनल है, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती है, मनोरंजन मिलता है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, कैसे ये जो सफर है वो शुरू हुआ?
1: शुरुआत तो बचपन से ही थी कि सब बहन भाई एक तरफ रहते थे और मैं एक तरफ रहती थी, के विचार एक तरफ चलते थे, क्योंकि वो जो पगडंडी होती है ना, तो वो खींच दी जाती है कि आपको इसी पर चलना है
0: जी।
1: तो मैं कहती थी नहीं, मुझे इस पर नहीं चलना, मुझे तो अलग रास्ते पे चलना है। तो मेरी शुरुआत तभी से हुई कि जब मुझे कहा जाता था कि नहीं, आपको 10th के बाद आर्ट साइड लेनी है, तो मैं कहती नहीं, मेरा मैथ्स अच्छा है तो मुझे कॉमर्स साइड लेनी है
0: जी।
1: तो शुरुआत वहां से हुई, कॉमर्स साइड ली। उसके बाद कॉलेज आए, कॉलेज में एक्चुअली पत्राचार से करना था।
0: लेकिन पत्राचार से क्यों करना था? आप दिल्ली विश्वविद्यालय को एक सामान्य तरीके से भी जुड़ सकती
1: थी। हमारे वहाँ पे तब ज्यादातर लड़कियां पत्राचार से ही करती थी। मैं दिल्ली के गांव से हूँ जिसका नाम है समसपुर जागीर, वो चौहानों का गाँव है।
0: अच्छा।
1: कभी भी आप अक्षरधाम मंदिर जाएंगे, एक तरफ अक्षरधाम मंदिर नजर आएगा और उसके पुल पर जब खड़े होंगे तो उसके सामने एक गाँव दिखेगा, वो है समसपुर जागीर। तो आज तो गाँव बिल्कुल बदल गया है, लेकिन 24 साल पहले वो एक गाँव था, उसके सामने वाले चिल्ला गांव के सामने था, तो चिल्ला खेत बोलते थे। 36 के हमारे कुछ खेतों के नाम होते थे, जो अक्षरधाम मंदिर वाला खेत थे हमारे, अब जो अब नहीं है, तो हम उन्हें पास का खेत बोलते थे। वहां हम जाते थे, जामुन के पेड़ होते थे। ऐसा नहीं है कि खेतों में नहीं घूमे, बहुत घूमे हैं, दिल्ली के खेतों में बहुत घूमे
0: जी। दिल्ली में रहना और खेतों में ये अनुभव आप कर चुकी हैं जी।
1: ऑर्गेनिक चीजें खाना आज महसूस होता है कि ऑर्गेनिक क्या होता है। जब
0: वो आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आपका बचपन जो है विशुद्ध, जिसे कहते हैं
1: बिल्कुल
0: ग्रामीण परिवेश में, और बिल्कुल शुद्ध खान पीन रहा है आपका।
1: बिल्कुल वैसा रहा है।
0: इसी से शायद मुझे लगता है ये खुले विचार और अपना रास्ता खुद बनाने की क्षमता और मन में ये भावना शायद जागृत हुई हो।

0: हाँ, ये भी कह सकते हैं। दूसरा, मेरी माँ भी ऐसी थी कि वो बहुत मेहनती थी। मतलब सुबह 4 बजे मैं उनको उठते हुए देखती थी, सारा काम करती थी। लेकिन आप उनकी पर्सनैलिटी देखेंगे तो आपको नहीं लगेगी कि वो खेतों में जाके काम करती थी।
1: जी।
0: लेकिन उसके बावजूद उनका शाम को अपने आप जैसे प्रेजेंटेबल रहना होता था, जैसे रहते हैं मैं आप हम सब लोग रहते हैं। उस टाइम सोचिए जब मैं बहुत छोटी थी, आज मैं 40+ हो चुकी हूँ,
1: अच्छा
0: तो आप सोच सकते हैं कि कितने साल पहले की बात है कि जब हम छोटे थे और अपनी माँ को देखते थे, तो वो हर काम बैलेंस करके चलती। तो सबसे पहला मेरे ऊपर जो छाप पड़ी वो मेरी माँ की थी।
1: तो यानी होशियार
0: हाँ
1: और कर्मठ माँ की जो पुत्री
0: जी
1: है वो
0: जी
1: डॉक्टर अनु चौहान। और उसके बाद फिर जब आप आगे बढ़ी तो फिर
0: फिर कॉलेज में आई तो गलती से मैंने फॉर्म खरीदा था, ये
1: अच्छा गलती से
0: पत्रकारिता।
1: क्या
0: हाँ,
1: गलती हुई थी?
0: गलती ये हुई थी कि मैं सिर्फ कॉमर्स का बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम पास करना चाहती थी, क्योंकि हम भी स्कूल से आए थे, हमें ज्यादा नॉलेज थी नहीं। तो मैंने ये फॉर्म जो पत्रकारिता का था ये फॉर्म खरीद लिया। ये फॉर्म खरीदा और जब वो उस टाइम में 30 रुपए का फॉर्म होता था और
1: अच्छा
0: वो वाला फॉर्म 1 रुपए का होता, तो 1 रुपए और
1: जी
0: 30 रुपए में अंतर समझिए कितना होता है।
1: जी
0: फिर उसके बाद मेरी मामी थी एक दूर की, उन्होंने कहा तुम बहुत तेज हो, बोलने में अच्छी हो। और उस टाइम में ना मैं अपनी छोटी बहनों के ऐसे लिखती थी, वुमेन ओरिएंटेड,
1: जी
0: जैसे स्कूल की तरफ से जाते थे तो हैबिटेट और इनमें वो ऐसे है ना सेलेक्ट हो गए थे, सेकंड आए थे। तो वहां से मुझे पता चला कि मैं महिलाओं के ऊपर बहुत अच्छा लिखती हूँ। फिर वहां से फिर पत्रकारिता में आई। पेरेंट्स ने मना कर दिया था नहीं करवाना, मेरे पापा क्योंकि चौहान फैमिली है, खाना हमारे यहाँ किसी ने, लड़के नौकरी नहीं करते हमारे यहाँ, किराया आता है किराया आता है
1: लड़के
0: सबके,
1: भी नहीं करते तो लड़कियों का तो
0: लड़कियों का तो सवाल
1: फिर,
0: ही नहीं, बीस
1: लेकिन
0: इक्कीस
1: लड़की तो 30 रुपए का निवेश कर चुकी थी तो फॉर्म तो भरना ही था, है ना?
0: जी, 30 रुपए लग गए थे। और पैसे की वैल्यू मैं समझती हूँ, बचपन से
1: जी
0: ही समझती हूँ, ट्यूशन
1: जी
0: पढ़ाती थी मैं
1: ओ
0: 10th क्लास से, तो 30 रुपए लग गए थे। तो फिर अब लगा कि चलो अब कोई वापस तो लेगा नहीं यूनिवर्सिटी, कॉलेज में फॉर्म भर दिया, सोचा चलो रिटर्न दे देती हूँ, रिटर्न टेस्ट दिया, पास हो गया। फिर इंटरव्यू के लिए आ गया तो पापा ने मना कर दिया था। मेरी मम्मी का एक ही डायलॉग चलता था, कौन सा हम इससे नौकरी करवाएंगे,
1: हाँ
0: अरे करने दो
1: वाह, घर की समझदार
0: ये
1: महिलाएं ऐसा ही करती
0: मम्मी ऐसे
1: हैं।
0: खेलती थी, रिटर्न टेस्ट दे दिया, इंटरव्यू दे दे, पढ़ा देंगे लेकिन नौकरी नहीं करवाएंगे। तो ऐसे करते करते मेरे 3 साल निकल गए।
1: निकल गए
0: और मैं बता दूं, मैं क्योंकि गर्ल्स स्कूल से पढ़ी थी, थोड़ा सा लड़कों के प्रति ये था, फैमिली में थोड़ा सा वो रखते हैं कि लड़कियों को पीछे रहें, दबा के नहीं कहूंगी क्योंकि लड़ने के लिए जब बुलाते हैं तो लड़कियां आगे जाती हैं या महिलाएं लेकिन
1: जी
0: पीछे रखते हैं। तो कॉलेज से पहले मैं ना कभी पानी पे, जैसे होता ना हमारे पेपर होते थे तो कोएड का होता था, दोनों आते थे लड़का लड़की,
1: जी
0: तो कभी मैं पानी पीने नहीं जाती थी स्कूल डेज में, कि लड़के जब हट जाएंगे ना तब मैं अकेले जाके चुपचाप पानी पी के आ जाऊंगी, एक
1: अच्छा
0: अंदर का डर। और आज मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि अब मैं वो अनु हूँ, जब मैं, जब लड़के होते हैं या मेरे ऑफिस के लड़के मेरी टीम में लड़के हैं तो मैं कहती हूँ ओ साइड हो जाओ मैडम आई है
1: यानी कि एक बिल्कुल
0: ये मैंने कमाया है
1: जहां ये सोचती कि भाई ज्यादा नहीं पढ़ना, और
0: हाँ
1: आज आप बिल्कुल, आपने नया क्षेत्र, वाकई
0: नया
1: आपने बिल्कुल पगडंडी छोड़
0: छोड़ दी
1: दी,
0: मैंने
1: कॉमर्स और विज्ञान
0: ये
1: और
0: सब
1: जैसे कला
0: चीजें।
1: क्षेत्र से हटकर आप
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: जी
1: पत्रकारिता के क्षेत्र में गई, और जहां पढ़ना मना था, कम पढ़ना था, वहां आप PhD पर, रिसर्च पर गई
0: रिसर्च कर
1: बिल्कुल, और
0: लिए।
1: आज आपने थीसिस लिख दी है। डॉक्टर अनु चौहान है। बातें होती रहेंगी, ये चैनल है FM गोल्ड, और क्योंकि ये गीत संगीत से बुना हुआ टॉक शो है तो हम चाहेंगे कि आप अपनी मनपसंद का कोई गीत बताएं।
0: मेरा पसंदीदा गाना है चलो फिर से एक बार अजनबी बन जाए।

0: बहुत मधुर ये गीत था। और आगे बढ़ते हैं तो अनु, आप फिर पत्रकार बन गई और आपने जर्नलिज्म शुरू किया,
1: जी
0: तो उस समय की जो पत्रकारिता थी और आज की पत्रकारिता, दोनों के बारे में मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताएं, जब शुरू किया तब क्या था, आज जब आप बिल्कुल इस क्षेत्र में जम चुकी हैं, पढ़ चुकी हैं और पढ़ा रही हैं, तब का जो माहौल था और आज के माहौल में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: तब की पत्रकारिता, क्योंकि मैंने प्रिंट से शुरू किया था
0: जी
1: और मेरी पहली जॉब मैंने एज ए इंटर्नशिप मैंने शुरू की थी दैनिक भास्कर से। तो वहां पे ना तब इतना ज्यादा वो नहीं था कि आपको इतना एक्सपोजर मिलता था, राइट? आपको फीचर के ऊपर लिखना है तो फीचर ही लिखना है, आपको न्यूज लिखनी है तो न्यूज लिखनी है। लेकिन आज का जो पत्रकारिता आप देख रहे हैं कि इतना एक्सपोजर है, आप किसी के ऊपर भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब से ये सोशल मीडिया आया है, मैं 10th में थी तब दैनिक नभारा टाइम्स ने अपना फीचर लॉन्च किया था, तो हमारे घर आया था उस पर बड़ा सा एड, तो मैंने ये वो तब पढ़ा था कि ये वैकेंसी निकली है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं उसी न्यूज़पेपर में 12 साल काम करूंगी
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: उसी फीचर में काम करूंगी।
0: नवभारत टाइम्स में जब आपने काम किया, वहां पर कैसा अनुभव रहा? कोई यादगार विशेष अनुभव हमसे बांटिए।
1: जब मैंने नवभारत टाइम्स में शुरुआत की थी, वहां न्यूज में भी काम किया मैंने, फीचर में भी काम किया। मैं Page 3 कवर करती थी वहां पे, और डेली फैशन वीक कुछ भी होता था हम रात में कवर करने जाते थे। एक जो टाइम होता था ना कि रात में नहीं काम कर सकते, जैसे मेरी एक बार मेरी माँ ने कहा कि रात की नौकरी करोगी और 1:30 बजे फैशन शो कवर करके कौन लाएगा। मैंने कहा वो तो फोटोग्राफर छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा इतने अंधेरे में, तो मैंने कहा मम्मी वहां सुई भी गिरती है तो मिल जाती है।
0: दिल्ली जैसे महानगर में और उस
1: हाँ
0: समय में
1: जी
0: और ऐसे परिवार से निकलकर और वहां पर एक लड़की बिल्कुल ही ऐसा माहौल में निकलती है और रात को काम करती है, तो किसी भी माँ के लिए
1: तो
0: चिंता
1: मेरी माँ
0: होती
1: ये
0: है।
1: कहती थी कि मुझे तुझ पे तो विश्वास है लेकिन मुझे समाज पे विश्वास नहीं है।
0: जी बिल्कुल।
1: बहुत से अचीवमेंट किए वहां पे, बाइक रैली स्टार्ट हुआ तो हमारे ब्रांड मैनेजर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हम औरत को ये ना दिखाएं लड़कियों को कि वो दबी है वैसी है, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं। तब मैंने वहां पे बोला कि आप ऐसा कीजिए कि आप एक बाइक रैली शुरू कीजिए, महिला बाइक रैली। ये उस टाइम शुरू हुई थी जो अब
0: अच्छा
1: आज सब जगह होती है, कि हम में भी है ना पावर है और हम किसी से कम नहीं है। जब हम अपने पे आती है ना तो अच्छे अच्छों को हिला देती है।
0: मुझे लगता है हर महिला के अंदर ना वो
1: हाँ
0: शक्ति होती है, उस शक्ति को बिल्कुल जागृत करने की
1: जी
0: जरूरत है।
1: जी हाँ
0: और अगर
1: जरूरत
0: आपके
1: है
0: पास अच्छी शिक्षा है, अच्छा पोषण है, तो आप अपने लिए वो माहौल
1: जी
0: तैयार कभी ना कभी
1: बिल्कुल
0: कर लेंगी।
1: कर लेंगे
0: आप खुद एक माँ
1: जी
0: हैं और आपके सामने एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है।
1: जी जी
0: तो अनुजी, इस समय जो युवा है उसके बारे में बताइए कि हिंदी की स्थिति उनके लिए क्या है, हिंदी से क्या कहीं एक कटाव तो नहीं महसूस कर रहे, क्योंकि ये भी आज की जरूरत है। तो युवाओं का जो रुख है वो कैसा देख रही हैं आप?
1: जो आज के युवा है ना, बस वो वायरल होना चाहते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं कि मैं हिंदी बोल रही हूँ या इंग्लिश बोलूँ या इंग्लिश बोलूँ। क्योंकि मैं गेस्ट लेक्चर लेने जाती हूँ, मैं बच्चों को देखती हूँ,
0: जी
1: हिंदी नहीं लिखनी आती, बिंदी नहीं पता, बड़े
0: यानी
1: हो कि
0: देवनागरी से थोड़ा टूट रहे
1: टूट
0: हैं।
1: रहे हैं,
0: जी
1: बड़े हो छोटे हो की मात्रा नहीं मालूम उनको,
0: अच्छा
1: बिंदी कहाँ लगानी है। और मैं कहती हूँ एक महिला के लिए बिंदी की वैल्यू तुम जानते नहीं हो, बिंदी सबको हिला देती है
0: जी
1: लेकिन आप ये
0: बिल्कुल।
1: बिंदी हिला देते हैं,
0: और हिंदी तो हमारे माथे की बिंदी है।
1: माथे की बिंदी है।

0: जी
1: और जब भी कभी कुछ होता है ना, तो जब मैं बिंदी पे गोली लगाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ यार तुम मेरी बिंदी हिला देते हो। तो मैं सच बता रही हूँ कि आज का युवा वायरल होना चाहता है, लेकिन वो है ना अपने अंदर ऐसा बदलाव नहीं करना चाहता कि जो हमेशा याद रखा जाए कि मैंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली, मुझे कोई हिला नहीं सकता। मैं कह रही हूँ हिंदी नहीं आती, हिंग्लिश आती है, लेकिन हिंग्लिश में जो आप बोल रहे हैं उसमें जब मुंह से शब्द निकाल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपके दिमाग को कि आप क्या निकाल रहे हैं, बस वायरल नहीं होना है। लेकिन आज के बच्चे सोचते हैं कि क्लास में नहीं आना है, बस एक दो वीडियो बना लेंगे, वायरल हो जाएंगे, बस यही हमारा काम हो जाएगा। आज के बच्चे पत्रकार भी नहीं बनना चाहते। क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो उसमें से 30 बच्चे कह देते हैं कि गलती से आ गए, क्योंकि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी आना था, या हम गांव से आए, या हमें किसी दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं मिल रहा था, इस वजह से आ गए। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मैं कहती हूँ कि आप बीए पास थे, बीए ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैंने कहती आप जॉब कीजिए लेकिन 2 साल जरूर बिताइए। मेरी उम्र अगर 40+ है तो, लेकिन मेरी एक्सपीरियंस की उम्र 80 साल है,
0: जी
1: क्योंकि मैं डेली 100 लोगों से मिलती हूँ, 100 लोगों को जानती हूँ, समझती हूँ, उनसे कैसे बात करनी है मुझे मालूम है। अगर आपने 2 साल भी पत्रकारिता में काम कर लिया तो आप कोई भी बिजनेस करें, कोई भी काम करें, लेकिन आपको पता रहेगा कि आपको क्या ज्ञान है, क्या नहीं है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। लेकिन आज के बच्चे नहीं करना चाहते, झटाक से चाहिए,
0: हाँ
1: फटाक से चाहिए।
0: जी
1: आजकल तो फास्ट फूड भी 2 मिनट में तैयार नहीं होता
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल सही कहा। और जो जमाना है, जो कंटेंट बनाने का,
1: जी
0: सोशल
1: जी
0: मीडिया का जो जमाना है, तो सारी इच्छाएं यही रहती है कि भाई मेरा कोई रील या मेरी कोई शॉर्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए
1: बिल्कुल
0: और मैं
1: बिल्कुल
0: छा जाऊं,
1: छा
0: लोग मेरे
1: जाऊं,
0: बारे में जाने, चाहे
1: हाँ
0: उसके लिए कुछ भी
1: करना
0: करना पड़े, है
1: पड़े।
0: ना।
1: हाँ उनको उससे कोई मतलब ही नहीं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ मैं मानती हूँ कि नेगेटिव जो होता है ना वो बहुत जल्दी वायरल होता है, लेकिन वो बहुत क्षणिक होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है। लेकिन जो पॉजिटिव होता है वो जहन पे लोगों के ज्यादा टाइम तक रहता है, ये समझना चाहिए।
0: और इस मौके पर हम सुनवाते हैं एक और गीत।

0: बहुत मधुर ये गीत और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। गहराई से उतरे, अपनी भाषा में उतरे और जड़ें जमाए, इसके लिए आप क्या समझती हैं, क्या करना चाहिए, क्या आप देख रही हैं कि बच्चे किस प्रकार से कंटेंट ऐसा जनरेट कर रहे हैं? क्योंकि अब सोशल मीडिया एक बहुत ही शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है, आप क्या कहना चाहेंगी?
1: कॉलेज में जब बच्चे आते हैं ना मैम, और जब मुझे बुलाया जाता है कि चलो इन्हें मोटिवेट करना है, इवन मेरे कॉलेज में जब मुझे बुलाया जाता है कि मोटिवेट करो अनु, तो मैं ये कहती हूँ कि हाँ मैं मानती हूँ गोल्डन पीरियड है, 3 साल खूब इंजॉय करो, ठीक है, लेकिन डिवाइड कर लो 20-20-20 कि 20% तो आप अपने करियर पे दे दो ना, 20% आप अपने घूमने पे दे दो, 20% आप कैफेटेरिया में बैठ के गप्पे मार लो। तो मेरा कहना है कि अगर आपने 100% कैफेटेरिया में बैठ के अपना 3 साल बिता दिए, तो 3 साल बाद आपको ये कॉलेज भी एंट्री नहीं देगा। अगर जो बच्चा समझ लेता है, 60-70 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चे समझ पाते हैं,
0: अच्छा,
1: और समझ लेते हैं जो बच्चे, वो क्या करते हैं कि पढ़ाई भी अच्छी करते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं कहते हैं ना हमें पता चल जाता है, अपनी परसेंटेज भी अच्छी रखेंगे, स्टेज परफॉर्मेंस भी अच्छी करेंगे, सर्टिफिकेट भी रखेंगे, में ऐसे नहीं घूम नहीं रहे, मैं कहती हूँ दोस्ती भी करो लेकिन बैलेंस में करो। क्योंकि मैं आज उन बच्चों को पढ़ा रही जो जेंजी है, अगर मैं बिल्कुल एक टिपिकल टीचर की तरह पढ़ाऊंगी ना, मेरी क्लास में एक भी बच्चा नहीं आएगा। तो कई बार है ना मैं कुछ ज्यादा जब बोलती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं टीचर कम हूँ, मैं पत्रकार ज्यादा हूँ, तो कभी सीरियस मत होना कि मैडम कभी डांट देती है या कुछ ऐसा बोल देती है।
0: मुझे लगता है आप बड़ी फेवरेट टीचर होंगी बच्चों की।
1: हाँ फेवरेट तो हूँ
0: जी। तो ये जो फेवरेट टीचर है, ये क्या भूमिका निभा रही है कि बच्चों के मन में हिंदी के प्रति प्यार पैदा हो, अपनी भाषा के प्रति प्यार पैदा हो? और ये समझा पा रही है कि आप दूर से बैठे भी, अगर कहीं दूर दराज कहीं भी बैठे हैं, तो सोशल मीडिया कितना शक्तिशाली है, अच्छी हिंदी के जरिए भी आप वायरल हो सकते हैं।
1: प्रिय

0: अभी फर्स्ट ईयर का जो बैच आया है, मेरा उनसे यही कहना था कि आप जो भी कर रहे हैं लेकिन अपना एक चैनल बना लीजिए, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। तो मैम क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं जो क्रोशिया बहुत अच्छा करती हैं लड़की,
1: अच्छा
0: ऐसी लड़कियां भी हैं जो खाना अच्छा बनाती हैं और फोटो भी करती हैं, ये भी टैलेंट है। मेरा कहना है कि ये भी टैलेंट है, आप ये मत सोचिए पत्रकार बन के किसी बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करना है। हमारा क्या मोटो होता है या मेरा या सभी का क्या उद्देश्य है कि हमें एक पहचान मिले और पैसा मिले, क्योंकि पैसा हमारी जरूरत है। और ये दोनों चीजें मेरे उस जमाने में 2003 में तो मुझे किसी मीडिया में या जाके कमाना और पहचान बनानी थी, लेकिन आज नहीं जरूरत है। आज बस मेरे पास एक मोबाइल होना चाहिए, बोलने का तरीका होना चाहिए और एक स्किल होनी चाहिए। और स्किल्स मैं नहीं कहती बचपन से आती है, जैसे वीडियो एडिटिंग मुझे थोड़ा सा कम आती थी, मैंने देखा है कि बच्चे आ रहे हैं और ये मेरे बड़े ज्ञान देते हैं, मैडम ये कर लो, तो मैंने रुको, टीचर तो टीचर ही रहेगा या जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट रहेगा ना ऑफिस में
1: जी।
0: मैंने 2 दिन पे वीडियो देखी मैम एडिटिंग की और उनसे अच्छी एडिटिंग करने लगी, क्योंकि हमारा अनुभव इतना हो चुका है कोई भी चीज हमें पीछे नहीं कर सकती, चाहे एआई है। तो अभी बच्चों को मैं ये कहती हूँ कि अगर आप वाकई चाहते हैं ना कि आपकी पहचान बने, आप जो कोर्स, जैसे एआई आ गया, आप एआई का कोर्स कर लीजिए, जाने 15 दिन का है, अपना एक चैनल बना लीजिए, बस यही करते जाइए। और ये ना डिजिटल बेबी है, मेरा एक कॉन्सेप्ट चलता है और ये मैं लोगों को बोलती हूँ, एक बच्चा होता है डिजिटल बेबी।
1: अच्छा,
0: अब आप कहेंगे डिजिटल बेबी क्या होता है? सपोज मैंने कोई चैनल लॉन्च कर दिया या अपना चैनल बना दिया, 2 साल मुझे उसको फीड कराना है, मतलब उसमें मुझे कंटेंट डालना है, इस डिजिटल बेबी को खिलाना है मुझे।
1: अच्छा,
0: 2 साल बाद ये मेरा डिजिटल बेबी मुझे कमा के देने लगेगा।
1: क्या बात है,
0: और ये मैं हर बच्चे को बोलती हूँ।
1: बहुत सुंदर बात है, बड़ी खूबसूरत भाषा में हमारे सुनने वाले मुझे लगता है आनंद ले रहे होंगे उस भाषा का।
0: कॉलेज के दिनों से ही शुरू कर दीजिए, बस ये सोचिए कि फर्स्ट ईयर में आए हैं, मेरे अंदर क्या स्किल्स है, जब आप आंख बंद करेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा
1: जी
0: कि मेरे अंदर ये स्किल है। तो चलो मैंने मान लिया मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे डिजिटल में कंटेंट डालना आता है, CMS आता है जिसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, कीवर्ड्स पता है, SEO पता है, ये लोगों को नहीं पता, मैं इसी का ही एक चैनल बना दूं, तो जो आपको आता है, हिंदी आती है आप हिंदी में बोलिए, एक अच्छी हिंदी कैसे बोली जाती है, आप इस पे भी एक चैनल बना लेंगे ना, और इसे 3 या 2 साल तक फीड कराइए डिजिटल बेबी को, मैं कह रही हूँ आपके फॉलोअर्स आएंगे और आपको बेबी फीड करने के बाद कमा के देने लगेगा।
1: मुझे लगता है कि जो लोग वायरल होना चाहते हैं उनको ये समझने की जरूरत है,
0: बहुत जरूरत
1: कि
0: है।
1: आपको पहले तो नींव अपनी मजबूत करनी होगी,
0: बिल्कुल।
1: तो 2 साल तो उस नींव की मजबूती पर ही काम करना होगा, ये मान के चलिए,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ये वायरल होने के जो आकर्षण है ये बच्चों में, तो क्या संदेश देना चाहेंगी ऐसी जो हमारी जेंसी है कि ऐसा ना हो कि आप वायरल होने के चक्कर में फेक न्यूज दे दें या ऐसा हम कंटेंट बना दें जो कि सही ना हो?
0: ये परिवार को पहले समझना होगा
1: जी।
0: बच्चा तो उस उम्र में है मैम कि वो कुछ भी बोलेगा, मेरा बच्चा 9 साल का है आके बोल देता है, फिर रात को कहानी के माध्यम से उसको मैं समझाती हूँ, और ऐसे ही मैंने उसके अंदर आदत डाली है कि उसको कहानी सुननी ही है। जैसे कल रात भी उसे सुननी थी और मैं थक गई थी ऑफिस से आके, लेकिन मुझे लगा कि उसके समझाना चाहिए क्योंकि उसका आज पेपर था, तो मैंने, वो जल्दबाजी बहुत करता है, हर चीज जल्दी चाहिए जो जेंजी और अल्फा को चाहिए तो मैंने कहानी के माध्यम से उसको बताया कि तुम्हारे पिछली बार नंबर कम आए वो जल्दबाजी के चलते आए
1: जी।
0: तो मेरा मानना है कि एक परिवार ही समझा सकता है, आप या मैं ही उस जेंजी की नींव को मजबूत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि परिवार के पास टाइम ही नहीं है, माँ काम करके क्या करती है, मोबाइल में रील्स देखती है, पापा आ गए वो अपनी ऑफिस की मीटिंग में बिजी रहते हैं। आप सभी लोग एक बार आंख बंद करके देखिए कि आपने 24 घंटे में 1 घंटा या आधा घंटा अपने बच्चे के साथ बैठ के बात की है, नहीं की होगी। पूछा है कि हो सकता है कि क्लास में किसी से लड़ाई हो गई या किसी ने कुछ कर दिया, वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहा हो, या टीचर ने उसके साथ मिसबिहेव कर दिया हो या बोल दिया हो, कुछ भी बोल दिया हो, लेकिन हम नहीं करते। अब कॉन्सेप्ट आ गया मल्टी इनकम का, अब बच्चे की फीस इतनी ज्यादा होती है कि पेरेंट्स 2 लोगों की सैलरी से भी पूरा नहीं होता, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। पेरेंट्स इसी में बिजी रहते हैं कि अदर सोर्स इनकम क्या हो जाए। सभी से कहती हूँ कि आप जिसके लिए कर रहे हैं ना, आप उसके साथ बैठ के आप बताइए कितना टाइम बिता रहे हैं।
1: यानी कि सबसे जरूरी है कि माँ और जो पिता हैं वो अपने बच्चे के लिए समय
0: निकालें, तभी ये जेंजी का जो ये वायरल होने का वो है ना, इसके आपको प्रभाव बताने पड़ेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। एक दिन में आप बन सकते हो, आप मुंह से जो भी शब्द निकाले पहले 3 बार अपने दिमाग में उसको सोच लीजिए कि पहले क्या होता था मैम कि आपने या किसी ने भी या मैंने आपको बोला या आपने मुझे बोला, खत्म हो गया, लेकिन आज आप कैमरे के सामने बोल रहे हो, वो खत्म ही नहीं होगा।
1: नहीं बिल्कुल, बल्कि वो वायरल होके गूंजता रहेगा।
0: हाँ
1: जी, गूंजता रहेगा और बार बार वो गलतियों को अंडरलाइन करता रहेगा।
0: बिल्कुल। और कोई भी चीज है ना, पेरेंट्स को बताना चाहिए कि आज आप यंग हैं, कर रहे हैं, लेकिन यही परिणाम आप 10-20 साल बाद देखिए कि जब आपके बच्चे होंगे तो कैसा होगा। 17-18 साल का आपका बच्चा, तो आपको उसी की उम्र का बन के बताना पड़ेगा। आपको पिता नहीं बनना पड़ेगा, माँ नहीं बनना पड़ेगा, आपको उनका जनजी माँ बाप बनना पड़ेगा,
1: जनजी सलाहकार बनना पड़ेगा। बातें जारी रहेंगी और एफएम गोल्ड में हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं तो साथ में चलता है सुंदर मधुर गीत संगीत। तो अनु जी क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी वो बताएं।
0: क्योंकि हमारी बात भी ऐसी जंजी पे चल रही है तो हाँ, मुझे वो गाना याद आ रहा है, दुनिया में आए हैं तो
1: जीना ही पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म का ये गीत।

0: बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अनु जी, ये सारी जिससे हमारी बातचीत चल रही है जेंजी के बारे में, अल्फा जेन के बारे में, तो समाज तब से जब आपने पढ़ाई शुरू करी थी और अब में बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन आज भी अगर हम बात करें पत्रकारिता की, तो आप कौन सी चुनौतियां देख पा रही हैं लड़कियों के लिए, जो आज की लड़कियां हैं जो पत्रकार बनना चाहती हैं या स्वावलंबन की दिशा में जब कदम बनाना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या देख पा रही हैं, क्या कहना चाहेंगी?
1: अब जो लड़कियां पत्रकार बनना चाहती हैं, सभी में यही है कि सबको कैमरे पे आना है, कोई भी डेस्क पे काम नहीं करना चाहता, फील्ड पे काम नहीं करना चाहता। हमारे टाइम में हमें कहा जाता था कि पहले फील्ड पे घिस के आइए, तब वहां पहुंचिए, तो आपका जो अनुभव दिखेगा वो आपकी बातों से समझ आ जाएगा। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, खासकर लड़कियां, उनको लगता है कि सिर्फ कैमरे पे एंकरिंग करने से ही वो पत्रकार है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पत्रकार वो होता है जो फील्ड में जाता है, लोगों से मिलता है, उनके अनुभव समझता है, और हर हालात में रह के भी वो क्या करता है, पत्रकारिता करता है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है मैम कि हम जब जाते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, चप्पल टूट जाते थे, और पहुंचना है नंगे पैर ही चले जाते थे। आप सोचिए नंगे पैर सड़क पे चलना कितना मुश्किल होता है,
0: लेकिन मन में बस स्टोरी घूम रही होती थी
1: कि भाई जाना है, कवर करना है और जल्दी से ऑफिस पहुंचकर उसको फाइल करना है, शाम तक वो प्रिंटिंग के लिए जाएगी रात तक। लेकिन आज का पत्रकार क्या होगा, बच्चों को फोन आ जाता है, जब फील्ड पे भेजते हैं, अच्छी जगह भेजते हैं इवेंट के लिए, किसी होटल में जाओ कवर कर लो, मैडम वहां जाने के ही मतलब 500 रुपए लग रहे हैं कैब से, तो जा नहीं सकते। आप ये सोचिए कि आपको इतने अनुभवी पत्रकार आपको सिखाएंगे, आप इतने बड़े ब्रांड में काम करेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि छोटा पैसा होता है, आप इसे छोटे लालच में मत आइए, सीखिए जितना सीख सकते हैं। ये मैं लड़कियों को कहती हूँ कि आपको अगर वाकई अपना नाम बहुत अच्छे से चमकाना है, तो पहले आपको धूप खानी ही पड़ेगी। धूप में काले नहीं होंगे तो आप पत्रकार नहीं बनेंगे। और एक मैं सभी लड़कियों को कहूंगी, पत्रकार ही नहीं सभी को, जो मेरा अपना अनुभव है, मैं जैसे निकली और मैंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, कि आप कुछ भी काम कीजिए, ट्यूशन पढ़ाइए, चाहे आप कोई भी काम कीजिए, लेकिन चाहे वो 5,000 की नौकरी हो, लेकिन आप जरूर कीजिए, वो पैसा आपका होगा। और एक, आप ड्राइविंग जरूर सीखिए, आप कभी किसी की मोहताज नहीं होंगी कि माँ से मिलने जाना है और कोई आपको लेके जाएगा,
0: ये बहुत जरूरी है जी।
1: तो ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, आप अपना कमाइए, और कमाने की ये मत सोचिए कि मुझे इतना बड़ा अमाउंट कमाना है या लाखों कमाने हैं, 5,000 भी आपके लिए बहुत है, लेकिन वो आपका है,
0: वो शुरुआत
1: है, वो शुरुआत है, वो आपके सम्मान की राशि है
0: जी,
1: वो सम्मान जब आप अपने हाथ में रखते हैं तो वो अलग दिखता है। ठीक है, आपके घर में बहुत पैसा है, लेकिन आपका सम्मान आपके हाथ में होना चाहिए
0: जी।
1: और एक, आपको ड्राइविंग जरूर आनी चाहिए। मैं हर किसी से कहती हूँ, जब भी मुझे कहीं गेस्ट के लिए बुलाया जाता है, मैं यही बोलती हूँ, चाहे साइकिल चलाओ, स्कूटी चलाओ या कार चलाओ, हवाई जहाज चलाओ, पर चलाओ जरूर, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: यानी कि अगर आपके पास एक छोटा सा वाहन चलाने की क्षमता है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं,
1: कहीं भी जा सकते हैं, आपको किसी का मुंह नहीं देखना।
0: और साथ में उस वाहन में तेल डालने के लिए अगर आप छोटा सा भी पैसा कमाती हैं, तो वो आपको बड़े बड़े अधिकार कमाने का रास्ता मिल जाता है। तब आर्थिक सुरक्षा होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो थोड़ी सी ही हो, तो क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो फिर रास्ते कभी ना कभी कहीं ना कहीं
1: चले जाते
0: खुलते ही हैं,
1: खुलते चले जाते
0: तो हैं। बहुत सुंदर आपने संदेश दिया, दिल से जुड़ा हुआ संदेश दिया, और ऐसा लगता है, महसूस होता है कि जो आपका अनुभव है 24 वर्षों का, उसका जो निचोड़ है वो यही है कि आप छोटे से शुरू कीजिए, लेकिन लगातार काम कीजिए। जो आपने कहा ना 2 वर्षों का, कि भाई अपने डिजिटल बेबी को 2 वर्षों तक लगातार कंटेंट फीड कीजिए, तो आप लगातार मेहनत कीजिए, आप पाएंगे कि आप उस जगह पहुंच गए जो आपकी मंजिल थी। जैसे कि जो हमारी आज की मेहमान है डॉक्टर अनु चौहान, वो भी मंजिल की जो चोटियां हैं वहां पर पहुंच रही हैं, और उसके बाद अगला लक्ष्य भी निर्धारित कर लेती हैं अपना कि उन्हें आगे कहां जाना है। तो डॉक्टर अनु चौहान का अगला लक्ष्य क्या होने वाला है, ये चलते चलते और बता दीजिए।
1: मैंने अभी अपना एक डिजिटल बेबी 40 की उम्र में शुरू किया, जो अभी 2 महीने का है।
0: अच्छा।
1: जो 2 महीने का अभी
0: जी।
1: लेकिन 2 महीने में मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको 2 साल के लिए बोला उसको, अभी मुझे 2 महीने में रिजल्ट दिखने लगे।
0: क्या बात है।
1: हम सभी बिजी हैं, तो आप वो चीज डालिए जो आप इजीली क्रिएट कर सके। तो मैं ऑफिस के लिए जब तैयार होती हूँ, तो सिर्फ मैं 30 सेकंड का एक वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो उसमें सिर्फ मैं ऑफिस में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये भी बहुत जरूरी होता है
0: जी।
1: तो 24 साल में मैंने जितना समझा, उसमें वो मैं 30 सेकंड में दिखा देती हूँ कि आज ये पहन के जा रही हूँ, कैसे पहनना चाहिए।
0: जरूरी ये कि आप अपनी ताकत पहचाने,
1: ताकत पहचाने,
0: आपने अपने जो आपके प्लस पॉइंट्स हैं वो गिन के चले कि कौन सी मेरी ताकत है, कौन सी मेरी शक्तियां हैं जिनको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ।
1: रश्मि जी, कि आपको वही डिजिटल बेबी को फीड कराना है जो आपके पास घर में भोजन उपलब्ध हो,
0: आसानी से उपलब्ध
1: हो, वो खाना है,
0: लेकिन वो होना चाहिए पोषक।
1: हाँ पोषक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी ऐसा डाल दे कि वो डिजिटल बेबी कुछ और बन
0: बीमार
1: जाए,
0: हो जाए, बीमार हो जाए।
1: तो आपको ये देखना कि आपके घर में वो इजीली अवेलेबल हो। तो मेरे पास जो इजी अवेलेबल था कि डेली ऑफिस जाना है, डेली की लाइफ है, वो दिखा के। तो ये 2 महीने का है, लेकिन इसका अगर आप लोग 2 साल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको अगर वायरल होना है, कुछ करना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं एक और गीत।

0: जी बहुत अच्छा आपने जो मंत्र दिया है कि कैसे वायरल हुआ जा सकता है पत्रकारिता में, कैसे जमे रहे स्वावलंबन की जो है महिलाओं को टिप्स दिए, अच्छे अच्छे बहुत सारे खूबसूरत बातें की। और एक विद्रोही पत्रकार के रूप में जो आपने शुरू किया था वो ऐसा लगा कि बिल्कुल अब चलते चलते शांत और गंभीर हो गया है
1: हो
0: अपने
1: गया है।
0: अनुभवों को जो लंबी कतार लेकर, मुझे लग रहा है कि उससे बिल्कुल एक स्थायित्व सा आ गया है, एक थम जाता है ना, जो नदियां चलते चलते जब गहरी होती जाती है वो थोड़ी सी थम सी जाती है, उसके अंदर गंभीर भी आ जाता है और उसके अंदर की गहराई भी आ जाती है। तो ऐसा सुंदर व्यक्तित्व हमारा आज का मेहमान था डॉक्टर अनु चौहान। तो पत्रकारिता से आपने बहुत कुछ सीखा, जिंदगी की किताब से आपने बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर अनु चौहान, आप FM गोल्ड के स्टूडियो में आई और हमारे सुनने वालों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और वायरल होने के तरीके बताए। तो ऐसी सारी जो संघर्ष की कहानियां हमने सुनी, अच्छी अच्छी बातें जानी, और मुझे लगता है सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का कार्यक्रम। और इसी के साथ समेटते हैं हम ये कार्यक्रम जिसका नाम है आज के मेहमान। और आज के मेहमान, जैसा हमने आपको बताया, डॉक्टर अनु चौहान, और उनसे कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर आज सवेरे एक बीएमडब्ल्यू कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। घायल व्यक्ति को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और देश अब भारत को अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारत ने जापान के आयची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वेलारिवन, सोनल मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जापान को कांस्य पदक मिला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई दी। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की है। जापान एशियाई खेलों में महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया था। चीन के साथ क्वार्टर फाइनल में वर्षा के कारण

इससे नवाजा गया। फिल्म की कहानी आपको बताएं, उसका गीत आपको सुनाएं, क्यों ना उससे पहले आपको ये बता दें कि किस कलाकार ने कौन सा किरदार निभाया। आमिर खान ने रोल निभाया राहुल मल्होत्रा का। वैजंती अय्यर के किरदार में थी जूही चावला, और माया एक किरदार जो था माया बिजलानी, वो निभाया नवनीत निशान ने, और इनके पिता का किरदार निभाया यानी बिजलानी का किरदार दलीप ताहिल ने। वैजंती के पिता मिस्टर अय्यर के रोल में थे केडी चंद्रन, और नटराजन अय्यर के थे रूप में वीरू कृष्णन। इसके अलावा टीकू तलसानिया, मुश्ताक खान, जावेद खान, रॉबिन भट्ट, ये सभी छोटी छोटी भूमिकाओं में थे। और सनी चोपड़ा यानी तीन जो बच्चे थे उसमें सनी का किरदार निभाया मास्टर कुणाल खेमू ने।

वसीयत के मुताबिक राहुल केयरटेकर बनकर जब तक वो बच्चे बालिग नहीं हो जाते तब तक पूरे बिजनेस की और उनकी देखभाल करेगा। राहुल भी अपना फर्ज समझता है इस बात को कि उसकी बहन की आखिरी निशानी है ये तीनों, सनी, मुन्नी और विक्की, इनकी देखभाल उसे ही करनी है, वरना उसके अलावा इनका इस दुनिया में है ही कौन। तो लिहाजा अपनी दिवंगत बहन के इस निशानी को परवान चढ़ाने के लिए राहुल अपने सपनों

बलिदान कर देता है और निकल पड़ता है गारमेंट फैक्ट्री की उस लड़ाई में, जहां पर उसे पता चलता है कि उसके सर पर, इस फैक्ट्री के सर पर तो बहुत कर्जा है। दरअसल उसके बहनोई ने, व्यापारी जो है बिजनेसमैन बिजलानी, उससे लिया है बहुत बड़ा लोन। लोन इसलिए कि 1,00,000 शर्ट्स बनाकर देने का किया वादा, लेकिन अब वो वादा तो पूरा हो नहीं सकता। लिहाजा बिजलानी ने एक एफिडेविट

दौड़ता है, गिड़गिड़ाता है बिजलानी के सामने कि कुछ मुझे कुछ वक्त की मोहलत और दे दो और कुछ और कर्जा दे दो ताकि मैं इस ऑर्डर को पूरा कर सकूं। लेकिन बिजलानी तो एक बिजनेसमैन है, लिहाजा एक मदद फूटी कौड़ी की नहीं करता। थका हारा निराश राहुल वहां से निकलता है। बिजलानी के ऑफिस के बाहर ही उसकी मुलाकात होती है माला से, माया से। माया जो

पर फिदा है, लेकिन राहुल उसे अक्सर नजरअंदाज करता है। माया पूछती है कि यहां कैसे, तो राहुल बताता है कि मैं बहुत मुसीबत में हूं। यहां पर बिजलानी नाम का एक बिजनेसमैन है जिससे मेरे बहनोई ने कर्जा लिया था और आज उसे लौटाने के लिए महज 15 दिन बचे हैं, लेकिन ये मुझे और मोहलत नहीं दे रहा और ना ही कुछ और उधार दे रहा है ताकि मैं उस ऑर्डर को पूरा कर सकूं। तो माया मुस्कुरा कर कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ और लंबी तान

बना। तब वैजयंती बताती है कि वो उसे बेहद प्यार करती है। अब जब वैजयंती ने अपने दिल की बात सबके सामने बोल दी तो राहुल भी चौंक सा जाता है, लेकिन अपने मन की बात भी वो बता देता है। अगले दिन सुबह बिजलानी माया के साथ दोबारा से राहुल को एक मौका देने के लिए आता है, लेकिन राहुल वैजयंती के खिलाफ जो भी अपमानजनक बातें कही गई हैं उनका बदला लेने के लिए सोचता है और ये कह

पहुंच जाता है। इस तरह से बिजलानी को मुंह की खानी पड़ती है और राहुल की फैक्ट्री और घर दोनों बच जाते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म हम हैं राही प्यार के। और इसके बाद वैजंती और राहुल एक हो जाते हैं, वैजंती के पिता भी मान जाते हैं और खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ राहुल के हाथ में देते हैं। शर्त यही होती है कि हमारे

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित

ये उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। बांग्लादेश के ढाका में आज कई देसी बम फटे। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया है। ढाका में कल शाम

0: जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेद विभागाध्यक्षः प्रोफेसर देवेंद्र कुमार शर्माणः शर्मा महाभागानां हर्षातिरेकाभिनंदन वचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहम् सुरेश चंद शर्मा हार्दिकम् अभिनंदनम् स्वागतं च करोमि।
1: धन्योस्मि अहमपि आगत्य प्रसन्नोस्मि सर्वेभ्यो नमो नमः।

0: 17 मुल्कों के मारूफ जज और अदालती नुमाइंदे भी शरीक हुए। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: नशा मुक्त भारत के लिए नौजवानों को यकजा करने की खातिर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का अहतमाम किया जा रहा है। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे की वजारत के मुताबिक मुल्क में 1067 मुकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का इनेकाद किया जा रहा है। इसका मकसद नशा मुक्त वादों, दस्तखत करने की मुहिम, नुक्कड़ नाटक, नारे तहरीर करने और नौजवानों की ज़ेर क़यादत मुबाहसों के जरिए मस्कूरा मुहिम का पैगाम सीधे नौजवानों तक पहुँचाना है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के तीसरे मरहले का आगाज कानून और इंसाफ महकमे के मरकजी वजीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल फाजिलका की सादिकी सरहद से कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने रियासती बीजेपी के सदर केवल सिंह ढिल्लों और पार्टी के दिगर रहनुमाओं के हमराह आसफ वाला जंगी मेमोरियल पर 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा

तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, मशरकी राजस्थान, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कौमी राजधानी दिल्ली में आज आसमान पर जुजवी तौर पर बादल छाए रहने और अगले दो दिन के दौरान मौसम साफ रहने की पेशगोई की है। जापान में जारी एशियाई खेलों में खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में भारत की एलावेनिल वलारिवन ने इनफरादी तौर पर चांदी का तमगा जीता है। 2025 के आलमी चैंपियनशिप में उन्होंने कांसे का तमगा हासिल किया था। फाइनल में वलारिवन ने 252.4 पॉइंट हासिल किए और इस तरह वो जापान की हिनाता ताइची के मुकाबले दूसरे मुकाम पर रहीं। ताइची ने 253 पॉइंट के साथ सोने का तमगा हासिल किया। इससे कबल खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में भी भारत ने चांदी का तमगा जीता। इस तरह एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने एशियाई खेलों में मुल्क के लिए पहला तमगा हासिल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इस काबिले सताइश कामयाबी से

0: with a dominant 19-0 win over Uzbekistan in the Pool B opener at the Gifu Prefectural Green Stadium today. Deepika Sherawat was the star of the match as she scored 8 goals. Ishika Chaudhary scored 3 while Lal Than Luangi and Neha each bagged 2. India will next take on Indonesia tomorrow. In swimming, Indian swimmer Rishabh Das has qualified for the final of the men's 100-meter breaststroke after finishing 5th overall in the heats with a time of 54.85 seconds at the Asian Games. China's Shi Jiayu topped the heats while Japan's Hidekalu Takehara finished 2nd. Union Sports Minister Mansukh Mandavia today joined members of the Indian diaspora in Japan for a special Sundays on Cycle event organized to cheer for the Indian contingent. In a statement, Mr. Mandavia praised the Indian diaspora in Japan for supporting the country's athletes. The Indian Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana during the day. Madhya Maharashtra, Odisha, East Rajasthan, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Marathwada, Telangana, Vidarbha are expected to experience thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. Rashtriya Sankalp Samaroh will be organized at various locations across the country to eradicate drug abuse among youth. Tensions escalate in West Asia's Houthis launch missile and drone attacks in Saudi Arabia. Indian shooters shine at Asian Games with 2 silver medals in Nagoya, Japan. India storms into the finals of Asian Games women's cricket after defeating Bangladesh in Nissin, Japan. Shefali Verma becomes first batter to score century. Smriti Mandhana becomes highest run scorer in the Women's T20 International. And IMD forecasts heavy rainfall of Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry and Telangana today. And with that, we end the midday news.
1: दोनों वायु सेनाओं के बीच
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है।

0: 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
1: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की तीन प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
2: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपागोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
3: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
4: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य, यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं, तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो, उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन, चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी, उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
3: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी

0: प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखें अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
4: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस चालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
5: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए
1: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
7: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला टी20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन

0: हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई है। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3, जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आइए सुनते हैं नाटक आकाशदीप। मूल कहानी जयशंकर प्रसाद, रेडियो नाट्य रूपांतरकार डॉक्टर प्रतिभा जैन, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।

0: रामा,
1: याद कर जब इस सागर द्वीप में महानाविक उतरे थे तब से अब तक कितना कुछ बदल गया है।
0: और ना होती ममतामयी स्वामिनी
1: तो
0: कैसे एक जंगली लड़की रानी की सेविका बनती।
1: क्या रानी?
0: हाँ रानी कहो उन्हें, महानाविक का यही आदेश है।
1: जया जया देख उधर, वो उच्च सौंध पर बैठी रानी अभ्रक मंजूषा में दीप रखकर कैसे दीप आधार की डोरी खींच रही है धीरे धीरे अपनी कोमल उंगलियों से।
0: ऊपर चढ़ते दीप को निहारती रानी किसी तपोरत अप्सरा से कम नहीं लग रही।
1: हाँ जया, समुद्र साक्षी है और साक्षी है यह नक्षत्र। प्रतिदिन यही क्रम वर्षों से देखती आ रही हूं मैं।
0: पर स्वामिनी कभी थकी नहीं, रुकी नहीं। वे अपना आकाश दीप ऊंचे नक्षत्रों में मिला देना चाहती हैं।
1: हाँ, लेकिन ये तो असंभव है।
0: मैं भी जानती हूं, किंतु उनकी आशा कभी टूटती ही नहीं।
2: जया, ओ जया,
0: आई स्वामिनी। आज्ञा दे स्वामिनी।
2: महानाविक कब तक आएंगे? तनिक बाहर जाकर पूछो तो सही।
0: अधीर न हो रानी, शरद ऋतु का ये चंचल पवन संदेश लेकर आया है स्वामी का, तभी तो ढीठ बनकर आपके आंचल को छेड़ रहा है।
2: ओ जया, कम से कम आज मत छेड़ मुझे, अकेला छोड़ दे मुझे। आज मेरा मन बहुत व्याकुल है, स्मृतियां नैनों में नैया सी डोल रही हैं। वो काली अंधियारी तूफानी रात, वो जलदस्यु का भयानक युद्ध, और उसके बाद

0: मुख्य पोत से बंधी छोटी नाव का नायक हूं मैं। मैं तक्षक सेन और ये जल युद्ध में जीते गए बंदी। अरे ये तो है जल दस्यु राज बुधगुप्त महायोद्धा, जिसके आतंक से समुद्री लहरें कांप उठती है, जिसकी वक्र दृष्टि हुंकार से आदमी का रक्त ही सूख जाता है। आज यही बुधगुप्त समुद्री जीव सा निरी अधमरा औंधा पड़ा है। इसे पोताध्यक्ष मणिभद्र को सौंप दूं तो पुरस्कार अवश्य मिलेगा और पदोन्नति भी है। मरवा।
1: हाँ सरकार।
0: इस बंदी पर विशेष ध्यान रखना।
1: बिल्कुल, आप चिंता ना करें सरकार।
0: ध्यान रखना पूरा।
1: जी सरकार।
2: बंदी, ओ बंदी, बंदी
3: क्या है? सोने दो।
2: मुक्त होना चाहते हो?
3: अभी नहीं, नींद खुलने पर।
4: जाते रहो।
2: सुनो।
3: हाँ।
2: फिर अवसर नहीं मिलेगा, आंधी की संभावना है और तारे भी छिप गए हैं।
3: तो क्या तुम भी बंदी हो?
2: धीरे बोलो, आज ही मेरे बंधन ढीले हैं।
3: अच्छा, कौन हो तुम?
2: देखो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं।
3: शस्त्र मिलेगा?
2: हाँ, मिल जाएगा। मुख्य पोत से बंधी रस्सी काट सकोगे तुम?
4: जाते रहो, जाते।

0: लो, मेरे ढीले बंधन तो खुल गए। लाओ तुम्हारे बंधन भी खोल दूं।
1: हाँ।
0: दो इधर लाओ ना।
1: ये यहाँ से ध्यान से। मैं मुक्त हो गया। शस्त्र कहाँ है?
0: वो नायक के पास है और वो वहाँ सोया है, इसलिए कह रही हूँ धीरे बोलो। ठहरो, मैं निकाल कर लाती हूँ उसके कृपाण। चुप करना। निकाल ली। लो बंदी, मैंने मैंने नायक के कृपाण निकाल ली है, ये लो।
1: अत्यंत साहसी हो तुम।
0: वो तो हूँ।
2: लगता है तूफान आ रहा है रे मरवा।
3: सरकार सरकार सरकार, तूफान
2: तूफान। सावधान सावधान, आपत्ति सूचक संकेत दो।
0: बंदी देर ना करो, जल्दी से रस्सी काटो।
1: हाँ तुम ठीक कहती हो।
0: ये रही पोत से बंदी रस्सी।
1: ये
0: हाँ, मैं इधर से पकड़ती हूँ, जल्दी करो।
1: काट दिया इसे। हम मुक्त हुए, हमारी नौका मुख्य पोत से अलग हो गई। जाओ जाओ, अरे जाओ, डूब जाओ।

0: देखो बंदी, भूर होने को है।
1: हाँ? अरे हाँ।
0: देखो उधर, इस उजाले में लहरें कितनी शांत और सुंदर लग रही है ना।
2: अच्छा हुआ तूफान शीघ्र ही चला गया, वरना। अरे मरवा।
3: जी सरकार।
2: मैं क्या देख रहा हूँ?
3: क्या सरकार?
2: ये बंदी मुक्त कैसे हो गए?
3: अरे हाँ, मुक्त कैसे हो गए ये? अरे
2: तुम्हें किसने मुक्त किया?
4: मुझे मुक्त किया है इस कृपाण ने।
2: कृपाण? तुम्हारे पास कैसे हैं? मैं तुझे फिर से बंदी बनाऊंगा दुष्ट।
4: किसके लिए तक्षक? पोताध्यक्ष मणिभद्र के लिए। वो तो इस अतल जल में अब तक डूब चुका होगा तक्षक।
2: क्या?
4: अब इस नौका का मैं ही स्वामी हूँ।
2: एक जलदस्यु और इस नौका का स्वामी? ठहर, मैं अभी बताता हूँ तुझे।
4: क्या टटोल रहे हो तक्षक? मेरे हाथ में ये तुम्हारी ही कृपाण है, इस स्त्री ने लाकर मुझे दी। क्या सोच रहा है तक्षक? अरे पुरुष है तो आ, मुझसे द्वंद कर।
2: तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे चुनौती दे? अभी तुझे इसका फल चखाता हूँ। अहंकारी, लड़ मुझसे, देखूं तेरी भुजाओं में कितना दम है।
5: शर्मा,
0: इतना भीषण घात प्रतिघात, ये कोई तो रोको से।
5: झरवा
6: बोल। नरवा,
5: सरकार की स्थिति ठीक नहीं लग रही है।
6: हाँ, दस्यु राज के आगे तो वो टिक नहीं पा रहे हैं। तो फिर देर मत कर, जयकारा बोल। दस्यु राज की जय हो। दस्यु राज की जय हो।
5: दस्यु राज, अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपनी शरण में लीजिए।
4: बोल तक्षक, अभी और युद्ध करेगा।
2: क्षमा करो दस्यु राज, प्राण दान दो मुझे।
4: ठीक है, जा, मैं तुझे अभय देता हूँ।
7: स्वामी बुधगुप्त की
8: जय हो।
7: स्वामी बुधगुप्त की
8: जय हो।
4: तक्षक
2: जी। स्वामी,
4: अभी हम लोग कहाँ होंगे?
2: स्वामी, इस समय हम बाली द्वीप से बहुत दूर आ चुके हैं। एक अनजाने

0: द्वीप के पास है।
1: कितने दिन में पहुंचेंगे वहां?
0: अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में स्वामी। आप चिंता ना करें, खाने पीने की कमी नहीं होगी। अरे अरे नाविको
2: जी स्वामी,
0: जल्दी डांड लगाओ, इधर लाओ
2: जी,
0: लाओ पतवार मुझे दो, लाओ
2: ये।
1: अरे क्या हुआ तक्षक?
0: यहाँ जल में डूबी एक चट्टान है स्वामी, सावधान ना रहने पर नाव टूटने का भय है।
1: ओ
0: नाविको
2: जी सर,
0: दाहिनी ओर पतवार चलाओ, दाहिनी ओर। हाँ हाँ, इधर बस बस बस, ठीक है। अब कोई संकट नहीं है स्वामी।
1: चंपा, तुम्हारा घर कहाँ है?
3: गंगा तट पर चंपा नगरी की क्षेत्रीय बालिका चंपा हूँ मैं। पिता इसे मणिभद्र के यहाँ प्रहरी थे। माँ के स्वर्गवासी होने पर पिता के साथ 8 वर्षों से समुद्र ही मेरा घर है।
1: पिता अब कहाँ है चंपा?
3: 1 माह पहले भयंकर आक्रमण हुआ तुम्हारा, और उस युद्ध में पिता ने 7 दस्युओं को मारकर खुद जल समाधि ले ली। उसी समय से इस आकाश तले नीले समुद्र के ऊपर अकेली अनाथ हूँ मैं। एक दिन मणिभद्र ने मुझे घृणित प्रस्ताव दिया। मैं जल उठी, असह्य हो गया था उस नरपिशाच का वार्तालाप मेरे लिए। मैंने उसे कोसा तो उसी दिन से जकड़ दी गई इन श्रृंखलाओं में।
1: ओ, अब तुम क्या करोगी?
3: जहां भाग्य ले जाए।
1: ओ चंपा, तुम्हारी आंखों में बालकों से दृढ़ता है। मैं दुर्दांत दस्युराज, तथापि मेरा हृदय क्यों कांप रहा है? ये कैसी हिलोर उठ रही है? ओह, इस तेज के सामने मेरा बल, मेरी चेतना क्यों लुप्त हो रही है? मैं किसके अधीन हो रहा हूं? ये क्या उग रहा है मेरे भीतर? कोमलता
0: स्वामी,
1: हाँ?
0: वहां देखिए, हम नए द्वीप पर पहुंच रहे हैं।
3: कितने दिनों बाद ये धरती दिखी मुझे।
1: हाँ।
3: कितनी प्यारी है ना ये धरती। और नाविक, नाविक ये कौन सा हरियाला द्वीप है?
0: इसका कोई नाम नहीं है स्वामिनी,
1: किंतु अब हम इसे चंपा द्वीप कहेंगे। आओ चंपा, इस पर पहला चरण तुम रखो।
3: ये किसने मेरी आंखें बंद कर दी? मैं समझ गई। छोड़िए ना मेरी आंखों से हाथ हटाइए बुधगुप्त।
1: अरे कैसे पहचाना?
3: हृदय से।
1: यहाँ बैठी दीप जला रही हो।
3: मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो महानाविक।
1: बंदी गृह?
3: हाँ।
1: किसने तुम्हें बंदी बनाया? नहीं चंपा, तुम कोई बंदी नहीं हो, इस द्वीप की अधीश्वरी हो, हमारी चंपा रानी।
3: महानाविक, मुझे तो वो दिन अच्छे लगते थे जब आपके पास एक ही नाव थी। चंपा तट का सामान लादकर हम सुखी जीवन जीते थे ना।
1: चंपा, अब तो हम उससे भी अच्छे ढंग से घूम सकते हैं। चंपा, तुम मेरी प्राणदायी, मेरी सर्वस्व हो।
3: नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति भले ही छोड़ दी हो, किंतु तुम्हारा हृदय वैसा ही कठोर तृष्णा से भरा हुआ है। याद करो महानाविक, उस प्रचंड आंधी और दिशाहीन काले समुद्र में प्रकाश की एक किरण के लिए हम उस वक्त कितने व्याकुल थे, याद है तुम्हें?
1: चंपा।
3: हाँ हाँ नाविक, आज भी वो दृश्य मेरी आंखों में जीवित है। जब मेरे पिता समुद्र में जाते तो मेरी माता बांस के पिटारी में दीप रखकर बांस के साथ ऊंचे डांग देती और फिर प्रार्थना करती। नाविक, नाविक, वो आकाश दीप उसकी पुण्य स्मृति है, वो आस्था की साक्षात मूर्ति। और तुम मेरे वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण। जाओ, दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से।
1: ये क्या चंपा, ऐसे तो तुम अस्वस्थ हो जाओगी।
4: जाओ जाकर विश्राम।

0: काम करो, जाओ जाया।
1: स्वामिनी, इस संध्या में टकटकी लगाए आप क्या देख रही हैं?
2: कुछ नहीं,
1: मन उदास है। अच्छा उठिए, जल विहार से संभव है रानी का मन तरंगित हो जाए।
2: आश्चर्य है, तू मेरी मन की बात कैसे समझ लेती है जया।
1: उठिए स्वामिनी, आज नौका मैं ही खेऊंगी।
2: तेरा ये सखी भाव ही तो मुझे भाता है जया।
1: तो मन की बात कहिए ना, संभवतः है मैं आपके कुछ काम आ जाऊं।
2: सखी, देखना कितना जल, कितनी शीतलता है ना यहाँ, किंतु किंतु फिर भी मेरे हृदय की प्यास नहीं बुझी। क्या क्या कभी पी पाऊंगी मैं इसे? नहीं ना, बोल बोल तो फिर क्या करूं मैं? रुदन करूं, तट से चोट खाकर जैसे सागर चिल्लाता है वैसे चिल्लाऊं, या फिर जलते हुए सूर्य के समान इस अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं?
1: नहीं रानी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सूर्य सदा जलता हुआ अंगार भी नहीं। देखिए ना उधर देखिए, कैसे लाल सूर्य अनुरागमय होकर धीरे धीरे चौथाई, फिर आधा और अब पूरा ही डूब गया अपनी प्रिया के अंक में।
2: नहीं नहीं नहीं, देख सकती मैं ये सब कुछ?
1: स्वामिनी स्वामिनी, इधर तो देख सकती है ना, देखिए महानाविक का वज्रा हौले हौले कितने निकट आ गया है।
2: महानाविक तुम
0: आओ चंपा, मेरे हाथ का सहारा लेकर इस वज्रे पर चढ़ जाओ, आओ आओ, यहां मेरे पास बैठो रानी। चंपा, इतनी छोटी नौका पर यहां घूमना ठीक नहीं, कहीं डूबी चट्टान से टकरा जाती
2: तो क्या अच्छा ही होता, या बंदी होने से तो अच्छा ही होता ना।
0: चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो, एक बार बुद्धगुप्त को आदेश देकर तो देखो, जो तुम्हारे लिए नया द्वीप, नई प्रजा, नया राज्य बना सकता है, उसकी उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो तो चंपा, इस कृपाण से अपना हृदय निकालकर अपने ही हाथों से इस अतल जल में विसर्जित कर दो।
2: नहीं, जिसके नाम से पवन थर्राती हो उसका यूं घुटनों के बल छलछलाई आंखों से बैठ जाना शोभा नहीं देता। उठो महानाविक, उठो।
0: ओ, चारों ओर फैली हरियाली शैलमाला, क्षितिज में आकाश सिंधु का मिलन।
2: ये प्रकृति भी कैसे स्वप्न लोक का सृजन करने लगी, चारों ओर फैलती नीलिमा का रहस्यपूर्ण इंद्रजाल, ये नील कमलों की सुगंध। ओह, ओ, मैं तो पागल हो जाऊंगी। महानाविक, महानाविक, मुझे सहारा तो दो।
0: चंपा, चंपा, ये मदर स्पर्श, ये आलिंगन तुम्हारा, कृपाण तुम्हारे आंचल में,
2: ये प्रतिशोध का कृपाण है। मैं आज ही इसे अतल जल में डुबो देना चाहती हूँ। जा, अब तू जाकर सागर में ही विश्राम कर, जा, चला जा यहां से।
0: तो आज से विश्वास करूं कि तुमने मुझे ये क्षमा कर दिया?
2: कदापि नहीं बुद्धगुप्त, जब मैं अपने ही हृदय पर विश्वास न कर सकी तो फिर तुमसे कुछ कैसे कहूं। हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे घृणा करती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ मैं। ओ बुद्धगुप्त, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
0: बस

0: बस चंपा, सपनों की इस रंगीन संध्या में तुम्हारे इन शब्दों में मैंने सब कुछ पा लिया। जीवन की इस पुण्यतम घड़ी की स्मृति में चंपा, मैं एक प्रकाश गृह बनवाऊंगा। वहां उस पहाड़ी पर संभव है मेरी धुंधली जीवन संध्या प्रकाशमय हो जाए।
1: चुप रहो दस्युराज, क्या मुझे अनाथ और कंगाल जानकर इस तरह से प्रतिशोध लेना चाह रहे हो तुम?
0: चंपा, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ। वो किसी दूसरे दस्यु के हाथों मारे गए थे।
1: काश दस्युराज की मैं इस बात पर यकीन कर सकती तो वो दिन कितना सुखद होता मेरे लिए, और तुम इस क्रूरता में भी कितने महान होते मेरे लिए।
0: मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ चंपा, मुझे क्षमा कर दो। हम लोग अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर, इन भोले भाले वनवासियों में इंद्र इंद्राणी की तरह पूजित हैं, पर न जाने किस शाप से हम अभी तक अलग हैं। चंपा, मुझे प्रतिदिन याद आता है दार्शनिकों का वो देश, याद आती है वो महिमामयी भारत माता, किंतु मैं जा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सब कुछ पाकर भी मैं कंगाल हूं। माना कि मैं पशु बल और धन का उपासक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता, पाप और परलोक में विश्वास नहीं करता, फिर भी मुझे मेरे हृदय के एक कोमल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक भटकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य आकाश में उदित हो गई। तुम्हारी हंसी की खनक से मेरा एकांत कटने लगा। चंपा, तुम चलोगी ना? राजरानी सी जन्मभूमि की गोद में। चंपा, तुम बोलती क्यों नहीं? चंपा, चंपा, आज ही हमारा परिणय हो और कल ही असंख्य धन लाद कर भारत की ओर प्रस्थान करें। बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें भी मानती हैं। चलोगी ना चंपा?
1: बुद्धगुप्त?
0: मेरी चंपा,
1: महानाविक,
0: अधीश्वरी चंपा रानी, मेरी हथेली में तुम्हारा ये आरक्त मुख, ये अर्ध निमिलित नयन, परितृप्त हुआ मैं।
1: बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में नहीं, मात्र शून्य का विस्तार है मेरे चारों ओर। तो इसलिए प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ, ऐश्वर्य सुख भोगो, और मुझे अकेला छोड़ दो इन निरीह भोले भाले वनवासियों की सेवा सहानुभूति के लिए। जाओ, चले जाओ।
0: अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहां रहकर अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं इसमें संदेह है मुझे। इन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। चंपा, तुम यहां अकेली क्या करोगी?
1: पहले तो विचार था कि स्तंभ से दीप जलाकर वीर पिता की समाधि की खोज करूंगी, किंतु आप लगता है कि मुझे अकेले जलना होगा इस आकाश दीप की तरह। हाँ,
2: अरे ओ मरवा
3: जी सरकार,
2: दक्षिण पवन अनुकूल है, पाल बंद गया
3: जी,
2: क्या रस्सियां ठीक से कस ली?
3: जी हाँ सरकार।
2: अरे जरवा, खाने का पूरा सामान रख लिया?

0: स्वामिनी,
1: हाँ,
0: इस दीप स्तंभ से देखिए तो प्रभात बेला में महासर्प की भांति नावों की श्रृंखला, वो देखिए।
1: हाँ, तो महानाविक सदा के लिए अपने अपने इस चंपा द्वीप को छोड़कर भारत की ओर जा रहे हैं। ओ हृदय,
0: स्वयं को संभालिए रानी।
1: नहीं जया, जिसका राजकुमारी नहीं वो रानी भला कैसे हुई?
0: स्वामिनी, आप तो पहले ही वनवासियों की देवी हैं, उनको सभ्यता संस्कार की शक्ति देने वाली, संसार की पहचान कराने वाली देवी,
1: और उस वन देवी की आंखों में आंसू नहीं हो सकते। अभय होता है, अभय।
2: अभी आप सुन रहे थे नाटक आकाशदीप, मूल कहानी जयशंकर प्रसाद, रेडियो नाट्य रूपांतरकार डॉक्टर प्रतिभा जैन, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे मंगत राम, अनुराग अरोरा, मेधा शुक्ल, ममता मलकानी, विशाल कुमार और राज शर्मा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिन के सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्यप्रणाली को साझा करने का

0: जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधान प्रदर्शित किए जाएंगे। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उनकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमरीका अपनी प्रतिबद्धताएं लागू नहीं करता। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कलीबाफ ने यह टिप्पणी की है। एक रिपोर्ट।
1: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। हुर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए
0: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनिल वेलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। इससे पहले भारत की एला वेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जापान को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सराहनीय उपलब्धि के साथ भारत का एशियाई खेलों में पदकों का खाता खुल गया है। देश को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सुजी बेट्स के 4758 रनों के रिकॉर्ड के पीछे छोड़ा है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. The two-day conference has been organized by the National Green Tribunal, NGT. During the session, in the midst of Pawan Manohar Lal, Supreme Court Judge Justice B.V. Nagaratna, Chairperson of the NGT Justice Prakash Srivastav, and Solicitor General of India Tushar Mehta are likely to be present. The Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics provided a platform for the exchange of judicial approaches, scientific knowledge, environmental governance, practices and institutional experiences across jurisdictions. Rashtriya Sankalp Samaroh has been organized at various locations in the country to eradicate drug abuse among youth as part of Nasha Mukt Yuva Abhiyan. The Minister of Youth Affairs and Sports has said that Rashtriya Sankalp Samharo

0: came together to celebrate the traditional Lo Zao Pui farming festival, an occasion marked by joy, gratitude and cultural pride. The event, which coincides with the weeding of fields in preparation for the harvest, honored the tireless efforts of farmers while expressing gratitude for nature's blessings. Our Aizawl correspondent Isaac brings us this report.
1: In Mizoram, a traditional subsistence farming technique known as slash and burn or jhum agriculture is widely practiced across the state. It involves cutting down trees and other plants, burning it, and then using the ash to temporarily fertilize the soil. Speaking at an event at Saitsal in Saitwal district, PNE Minister Roding Liana said Lo Zao Pui has gained popularity in different parts of the state and called for efforts to make it more attractive to visitors. He said that the government gives priority and respect to the farmers and thanked them for their products. He said the initiative would help people appreciating farming and manual work while urging rural communities to improve visitors. The event, jointly organized by the Tourism Department and Agricultural and Farmers Welfare Department, included a community farming activity at Saitsal Zao Pui, a feast and an evening concert. With its blend of tradition, unity and sustainability, the Lo Zao Pui celebration stood as a vibrant example of Mizoram's commitment to preserving culture while embracing eco-friendly practice. For Notice Diary, this is Isaac from Akashvani News, Aizawl.
0: A grassroots innovator from Temi in South Sikkim has achieved a significant milestone in the field of intellectual property. Prashant Lamchane, founder of the Temi Innovation Festival, has secured design registration from the Patent Office, Government of India, for his innovation spoon. The achievement marks an important milestone for grassroots innovation and entrepreneurship in Sikkim. Our Gangtok correspondent, Dili Ramdulal, brings us this report.
2: Lamichani's journey begins during his school day, driven by curiosity and a passion for solving everyday problems. His understanding of intellectual property protection deepened through his interaction with Dr. Mukul Rani Parajuli, a researcher in intellectual property right and law, who encouraged him to look behind creation and explore the protection, development and commercialization of his idea. Speaking about what the design registration of a spoon means to him, Prashant Lamichani said,
3: "First of all, thank you so much All India Radio team for having me here. और जो innovation का मेरा जो field है, उसमें मैं लगभग 16 से 17 years मेरा बीत चुका है ये field में आया हुआ. तो आज मैं ये platform के through मेरा जो eco spoon है, जिसमें मैं जो patent भी grant हुआ है, वो project के सिलसिले में ये इस platform के through मैं deliver करना चाहूँगा. और अभी तक मैंने बहुत सारा innovation projects में काम किया, जैसे anti-theft charger, wireless switch control सिस्टम, परंपरा डोको, जीवन रक्षक कुकुरी, और बहुत सारा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है. मैं मशीन्स वगैरह भी डिजाइन कर रहा हूँ और उसमें मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह को भी लेकर मैं उस इनोवेशन को थोड़ा मार्केट में भी लाने के लिए प्लान में चल रहा हूँ मैं. और जो इको स्पून है, वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट का जर्नी मेरा कैसे स्टार्ट हुआ कि जैसे मैं लास्ट ईयर मैं उत्तराखंड घूमने के लिए जा रहा था, तो मैं दिल्ली का ट्रेन था मेरा, उसमें मुझे जो फूड लंच टाइम में मुझे फूड दिया गया था, उस पैकेट के अंदर में स्पून वगैरह नैपकिन वगैरह था. तो उसमें शायद 2-3 नैपकिन थे, तो 2 तो मेरा ऑलरेडी बिगड़ गया वहाँ, वो फूड का स्टीम वगैरह से होकर दाल वगैरह के साथ लगकर, और एक गिर गया. तो मैं नैपकिन लेस हो गया उस टाइम पे. तो क्या हुआ कि मैं दूसरा नैपकिन भी नहीं मंगवा सकता किसी के से. तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम जो मैं फेस किया अभी, वो प्रॉब्लम ये ट्रेन में कितने लोग फेस कर रहे हैं. तो उस टाइम पे मैं मुझे ख्याल आया कि ये नैपकिन और जो स्पून का जो रिलेशन है, ये हर टाइम जोड़ी में रहता है. तो मैंने क्या सोचा कि व्हाई नॉट टू कंबाइन दिस टू प्रोडक्ट इन अ वन प्रोडक्ट. सो मैंने 2-3 डिजाइन ट्राई किया, दे फेल्ड. तो मैंने दूसरा तरीका देखा कि मुझे एक टैबलेट जैसा बनाकर मुझे नैपकिन में एक होल करके उसमें डालना है, जैसे हम लोग मेडिसिन वगैरह निकालते हैं. उस आइडिया को मैंने एडॉप्ट करके मैंने इसको स्पून बनाया बनाया और उस इको स्पून को मैंने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में सबमिट किया था और वो प्रोजेक्ट वहां से भी एक्सेप्ट हो गया है और मेरा इको स्पून का पेटेंट भी आ चुका है, सक्सेसफुली ग्रांट हो गया है और एक डिजाइन रजिस्ट्रेशन में भी मेरा कम्प्लीटली हो गया है, अब यूटिलिटी पेटेंट भी आ रहा है.
2: As founder of the Temi Innovation Festival, Lamichane has also been contributing to the promotion of innovation at the grassroots level. His journey demonstrates that innovation need not begin in a laboratory or

0: large institution. It can begin with an individual identifying a problem, developing a solution, and taking steps to protect the idea as intellectual property. On how Sikkim can build a stronger culture of innovation among young people, Prashant Lamichani said.
1: And yes, regarding Dhimi Innovation Festival. So it was my dream since from my childhood to organize one science fair. Okay? और मैं जब छोटा था तब से, लेकिन मैं जो innovation field में मैं खुद तो project बनाता हूँ, लेकिन मैं बच्चों को भी mentorship देता हूँ. बहुत सारा बच्चे मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, वो भी innovations पे काम कर रहे हैं, उनको भी मैं motivate करता हूँ. और बहुत सारे students तो already national level भी पहुँच चुके हैं, national level, regional level, state level. ये सारा चीज में बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने मेंटरशिप देकर उन लोगों को भी भेजा है, और अभी भी मेरे साथ 10-12 बच्चे मेरे साथ जुड़ा हुआ है. तो ये सब करते करते मुझे आइडिया है कि व्हाई नॉट टू हैव अ वन फेस्टिवल ऑफ इनोवेशंस. और इसमें मुझे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, आवर ऑनरेबल एरिया एमएलए श्री बेदू सिंह पंसर, चेयरमैन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आवर एंटी भुटिया सर, उन सभी से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. उन सब ने मुझे बहुत सारा हेल्प किया, और मुकुल मैम तो ऑलरेडी मेरे ये इनोवेशन में जुड़े हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारा इंकरेजमेंट दिया, और हम लोगों ने सक्सेसफुल तिमी इनोवेशन फेस्टिवल फेज वन हम लोगों ने कंप्लीट किया. और अभी हम लोग तिमी इनोवेशन फेस्टिवल फेज टू हम लोग नेक्स्ट ईयर करने के लिए प्लान में चल रहे हैं. और उसको हम लोगों ने इस बार थोड़ा मॉडल चेंज किया है. इस बार हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हम लोग का लोकल एरियाज वगैरह के स्कूल्स वगैरह होंगे, तो हम लोग वहां से आइडियाथॉन करेंगे पहले वन मंथ, और पहले बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडिया को वो करके हम लोग उसको मेंटरशिप देंगे, हम लोग प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेंगे, और उसके बाद तिमी इनोवेशन फेस्टिवल में हम लोग डिस्प्ले करके उन सभी को हम लोग नेशनल और प्लेटफॉर्म वगैरह के लिए भी हम लोग एनआईएफ, जैसे हम लोग का सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है एनआईएफ वगैरह, ये सब में हम लोग हमारा प्रोजेक्ट्स वगैरह को वहां पर भी सबमिट करवा देंगे. और ज्ञान वगैरह भी है एनजीओ, तो हम लोग वहां पर भी हेल्प करेंगे, और दूसरा भी बहुत सारे हैं, हम लोग वहां पर भी नॉमिनेट करेंगे बच्चों को. और इस तरीके से क्या होगा कि एक बच्चे में जो साइंटिफिक टेम्परमेंट है तो वो आगे जाकर और ज्यादा बढ़ेगा. तो इसीलिए हम लोग मेंटरशिप भी करेंगे और साइंस फेयर भी करेंगे, और हम लोग बच्चों को और सिक्किम को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर में हम लोग प्राउड मोमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग लगे पड़े हुए हैं. सो तिमी इनोवेशन इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग माइंड्स.
0: प्रशांत लामिछानी अचीवमेंट सेंड्स ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू एस्पायरिंग इनोवेटर्स. Every idea has potential, and protecting that idea can be the first step towards opportunity. With Mainak Chatterjee, Diliram Dulal, Akashvani News, Gangtok for Northeast Diary.
2: And folks, that brings us to the close of this edition of Northeast Diary. Join us again next week, same day, same time, for more inspiring stories from this enchanting part of India. Until then, goodbye, and do take good care of yourself.

0: लीजिए सुनिए फिल्म बावरे नैन से ये नगमा, स्वर है मुकेश और गीता रॉय का। आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz।
1: ये तस्वीर तो मेरी है।
2: नहीं, ये तस्वीर है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है, और इससे मैं कहती हूँ

श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम रेडियो किड्स। प्रतिभागी बच्चे हैं आरुषि, उपल, सिमरन खत्री, हिमान्या, कामथान, ईरा शर्मा, पार्थ वशिष्ठ, स्वास्तिक प्रजापति, अक्षय रावल, आर्या उपल और दिशा वशिष्ठ। संचालन कर रहे हैं सुहानी, यश, शिखा और निखिल।

0: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति रेडियो किड्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सुहानी,
1: और मैं यश।
0: तो हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको खूब रोचक लगेगा और ज्ञान वर्धक लगेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आज हमारे स्टूडियो में हमारे कुछ ऐसे दोस्त जुड़ चुके हैं जो यूनाइटेड किंगडम से स्पेशली हमसे मिलने आए हैं। तो चलिए, स्टूडियो में उपस्थित हमारे साथी अब हमें अपना परिचय देंगे, और मैं तो बहुत उत्सुक हूँ उनके बारे में जानने में, उनकी रुचियाँ जानने में, और भारत में अनुभव कैसा रहा उसके बारे में जानने में। क्यों यश?
1: बिल्कुल सुहानी, मैं भी जानने के लिए बेहद उत्सुक हूँ।
0: बिल्कुल, तो चलिए हम शुरू करते हैं आप सभी के नाम से।
2: नमस्ते, मेरा नाम सिमरन खत्री है, मैं लंदन से हूँ और मैं महाविद्यालय में पढ़ती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम हेमान्या कमठान है, मैं यूके में मैनचेस्टर शहर से हूँ।
4: नमस्ते, मेरा नाम तविशा है।
5: नमस्ते, मेरा नाम इरा है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
6: नमस्ते, मेरा नाम पार्थ वशिष्ठ है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं लीड्स में रहता हूँ जो उत्तर इंग्लैंड में है।
7: नमस्ते, मेरा नाम अक्षय चितावल है और मैं लिवरपूल से हूँ।
8: नमस्ते, मेरा नाम स्वस्तिक है और मैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में रहता हूँ।
0: हम क्यों ना इनसे पूछे कि आखिर हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे लिए ये क्या तैयार करके लाए हैं। तो चलिए एक एक करके पूछते हैं, शुरू करते हैं हम सिमरन से। तो सिमरन, आज आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनाएंगी?
2: जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरी मनपसंद कविता मैथिली शरण गुप्त जी की नर हो ना निराश करो मन को, तो आज मैं आपको उन्हीं की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ।
0: मैं तो बहुत उत्सुक हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं।
2: नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो, ये है जन्म हुआ कि अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को, संभलो कि संयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपयाय भला, समझो जग को ना निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। धन्यवाद।
0: बहुत ही खूबसूरत सिमरन, लेकिन एक प्रश्न मेरा आपसे अभी भी है कि आपके जो दोस्त यूके में रहते हैं, अगर उनको भी हिंदी सीखनी हो तो आपकी उनके लिए पहली सलाह क्या होगी?
2: पहली सलाह होगी कि यूके हिंदी समिति से क्लासेस लेना शुरू कर दो। हमारी जो अध्यापिका हैं और अध्यापक भी हैं, सारे इतनी अच्छी तरीके से हिंदी सिखाते हैं, इतने अच्छे भाव के साथ सिखाते हैं, इतने मन से सिखाते हैं कि किसी का भी मन कर जाए हिंदी सीखने का।
0: तो मुझे तो ये उम्मीद है कि यह संदेश यूके में बैठे उन बच्चों का जो हिंदी सीखना चाहते हैं उन तक जरूर गया होगा। तो चलिए अब सिमरन से आगे बढ़ते हैं हम हेमान्या पर। हेमान्या, तो आज आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या लाई हैं?
3: हाँ जी, तो इसके संबंधित मैं भी एक कविता सुनानी चाहूंगी ब्रेग्जिट के बारे में, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव ब्रिटेन पर पड़ा था। ये पद्मेश गुप्त जी की कविता है और इसका शीर्षक है 24 जून 2016 ब्रेग्जिट, जिसकी मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी।
0: तो चलिए, देरी किस बात की?
3: जी, चिड़ियों की चहक में उत्साह कुछ कम था, सूरज की रोशनी में प्रकाश कुछ नम था, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरे यूरोप के नक्शे पर कुछ जख्म था, तुम्हें उड़ना मना है अब उस पार, कतरे जा रहे थे मेरे गोरैया के पर, मेरे एक्वेरियम के बाएं कोने में सहमी थी देश विदेश की मछलियां उनका डर, आज सुबह जब मैं सोकर उठा ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अंग्रेजी माँ मुझे गोद में लेकर छोड़ रही है मेरे फ्रांसीसी पिता का घर, ये माँ जिसने कभी सिखाया ही नहीं कि पड़ोसियों के संग रहने में है कोई बुराई, बचपन से मैं खेलता आया रंग बिरंगी तितलियों से, अब देखना पड़ेगा कौन सी अपनी है और कौन पराई।
1: बहुत अच्छा, अब मैं अक्षज से उनकी कविता सुनना चाहूंगा कि वो क्या तैयार करके आए हैं।
7: मेरा कविता है कोई अर्थ नहीं, जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, फिर सुख का मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं, जब फसल सुखकर जल के बिन तिनका तिनका बन के जाए, फिर होने वालों वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, संबंध कोई भी हो यदि

0: दुख में ना साथ दे, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं।
1: बहुत अच्छे अक्षत।
2: तो अक्षत, आपने हमें एक बहुत ही प्रेरणादायी कविता सुनाई है ना, लेकिन मेरा प्रश्न एक और आपसे है। जब आप जीवन में थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करते हो, एग्जाम के दौरान आपको डर लगता है, या जिंदगी में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें आप सोचते हैं कि अब नहीं होगा, तो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या सुनते हैं, क्या करते हैं, आप किसको याद करते हैं?
0: मेरा पापा से बात करता हूँ और मुझको बहुत अच्छा सलाह देता है कि मैं क्या करूँ और कैसे करूँ।
1: बहुत अच्छे अक्षय, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया आपने। और आप जैसे आपने अभी रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पढ़ी, तो इस तरह की कविता आप अपने दोस्तों को जो आपके साथ यूके में रहते हैं, आप उन्हें सुनाते हैं या आप उनसे पूछते हैं कि आपको इस तरह की कविताएं सुन के कैसा लगता है?
0: उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसका सच मीनिंग क्या है, तो मैं बताता हूँ कि ये मोटिवेशनल कविता है।
1: बहुत अच्छे।

बनता।

0: मैं स्वास्तिक से जानना चाहूंगा, आपने किस कवि की प्रस्तुति तैयार करी है?
1: मेरा कविता का नाम है हो गए है पेड़ पर्वत सी, ये दुष्यंत कुमार ने लिखा।
2: तो चलिए देरी किस बात की।
1: हो गई है पेड़ पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलने चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करने मेरा मकसद नहीं, मेरा कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद।
0: बेहद ही सुंदर कविता। अब हम आगे बढ़ते हैं और पाठ सुनाएंगी हमें अगली अपनी प्रस्तुति, किस कवि की उन्होंने कविता तैयार करी है।
2: मैं आपको शिखा वार्ष्णेय जी की कविता सुनाना चाहूंगा, जिसका नाम है शब्द। शब्दों के बारे में और उसके महत्व बताती है। कुछ कहते हैं शब्दों के पांव होते हैं, वे चलकर पहुंच सकते हैं कहीं भी, दिल तक, दिमाग तक, जंग के मैदान तक। कुछ ने कहा शब्दों के दांत होते हैं, काटते हैं, दे सकते हैं घाव, पहुंचा सकती है पीड़ा। मेरे ख्याल से तो शब्द रखते हैं सिर्फ अपना रूढ़ अर्थ, कब, कहां, कैसे, कहे, लिखे, सुने गए। ये कहने सुनने वाले की नियत पर है निर्भर। कोई भी शब्द अच्छा या बुरा नहीं होता, भली बुरी तो नियत होती है। धन्यवाद।
3: क्या बात है पार्थ, सच बताऊं तो मैंने ये कविता पहली बार सुनी है और मुझे ये इतनी अच्छी लगी ना कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम आरुषि की ओर। तो हेलो आरुषि, आज आप हमारे दोस्तों के लिए क्या प्रस्तुत करने जा रही हैं?
4: आज मैं भारत की प्रसिद्ध कवित्री जो आप सबको मालूम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लोकप्रिय कविता वीरों का कैसा हो पसंद की कुछ पंक्तियां सुनाने जा रही
3: हूं। बहुत खूब, तो चलिए शुरू करते हैं।
4: आ रही हिमालय से पुकार है उद्धति गर्जता बार बार, प्राची पश्चिम भूनब अपार, सब पूछ रहे है दिग दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुध पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। धन्यवाद।

0: आरुषि, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आपको लगता है कि कोई ऐसे क्रांतिकारी रहे जो आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करते हो, या उनके जीवन के बारे में जानकर आप मोटिवेटेड हो जाते हो?
1: कल हम नेताजी का चश्मा का वो स्टैच्यू देखा था, और हम नेताजी का चश्मा का जो कहानी था हम हिंदी क्लास में पढ़ते थे, तो फिर जब वो असली में हमने देखा था कि उसका स्टैच्यू, तो फिर हमें बहुत अच्छा लगा।
0: अरे वाह, अच्छा अभी आपने नेताजी के चश्मे की जो कहानी है उसका उल्लेख किया, लेकिन क्या आप हमें पूरा नाम बता सकती हैं कि आखिर उन महान व्यक्ति का नाम क्या है?
1: नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
0: बिल्कुल सही, जोरदार तालियां हो जाए। अब हम बढ़ते हैं आर्या की तरफ। आर्या, आज आप हमारे लिए क्या प्रस्तुति लेके आई हैं?
2: आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ।
0: तो उस कविता का शीर्षक क्या है?
2: मेरी कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा, जिसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी।
0: अरे वाह, तो चलिए शुरू करते हैं।
2: चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इतलाओ मुझे तोड़ लेना वनमाले, उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीरनेक। जय हिंद।
3: क्या बात है आर्या, माखनलाल जी की ये कविता बेहद ही अच्छी थी।
0: तो चलिए दोस्तों, आप सभी के साथ वार्तालाप करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आपसे मुलाकात फिर होगी, लेकिन उससे पहले एक और जस्ट छोटा सा प्रश्न, आप हमारे भारतीय दोस्तों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
4: कोई भी भाषा पकड़ो, हिंदी हो, हिंदी तो आपको पता होगा, अंग्रेजी या फ्रेंच स्पेनिश जो भी पकड़ते हो आप, उससे अच्छे से सीखो, क्योंकि भाषा सिर्फ भाषा नहीं है, वो दिल को जोड़ता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, इस उत्तर ने बिल्कुल हमारे दिल को भी जोड़ा।

0: इतनी रचनात्मक चीजें हमें जानने को मिली, सुनने को मिला, नए नए तरीके से हिंदी को जाना।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि हमारा कार्यक्रम जैसे यश को पसंद आया, आपको भी आज का कार्यक्रम बेहद रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक लगा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगले सप्ताह आप हमारे साथ फिर जुड़ेंगे रेडियो किड्स पर, मुझे यानी सुहानी को
0: और मुझे यश को
1: दीजिए इजाजत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो किड्स। बाल प्रतिभागी थे आरुषि उपल, सिमरन खत्री, हिमान्या कामथान, इरा शर्मा, पार्थ वशिष्ठ, स्वास्तिक प्रजापति, अक्षज रावल, आर्या उपल और दिशा वशिष्ठ। संचालन कर रहे थे सुहानी, यश, शिखा और निखिल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली

0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। 14 दिन का यह अभ्यास मंगलवार को संपन्न होगा। यह अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक कि उनकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलेवाफ ने ये टिप्पणी की।
1: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए
0: जापान एशियाई खेलों में भारत की इलावेलिन वालारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल के व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। इससे पहले भारत की इलावेलिन वालारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता जबकि जापान को कांस्य पदक मिला। भारत की इस जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिला टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस सराहनीय उपलब्धि के साथ भारत का एशियाई खेलों में पदकों का खाता खुला है। देश को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। डॉ मांडविया ने भारतीय दल के भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट मैच के फाइनल में भी पहुंच गया है। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराया। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Prashant Kumar Sinha. President Draupadi Murmu will address the valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal, NGT. We have a report.
3: The Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics provided a platform for the exchange of judicial approaches, scientific knowledge, environmental governance practices and institutional experiences across jurisdictions. The conference witnessed the participation of environmental experts, judges of the Supreme Court of India and High Courts, district court judges, secretaries of various ministries, senior government officials and other stakeholders. It also brought together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. It facilitated dialogue on critical environmental and climate challenges, including gaps in policy formulation, implementation and enforcement, and explore ways to strengthen environmental governance and institutional cooperation. Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi had addressed the gathering on the first day of the conference yesterday. The Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across the country to strengthen the fight against drug abuse among young people under the Nasha Mukti Yuva Abhiyan or the Drug Free India campaign. The Ministry of Youth Affairs and Sports said the campaign is witnessing active mobilization of young people, with the program being held at 1,067 locations across the country under the 100 weeks Nasha Mukti Yuva Abhiyan, aimed at building a

0: that the future of humanity shall be shared. Now, the time has come for the speech by Honorable Minister Shri Manohar Lal Ji, the Honorable Minister of Housing and Urban Affairs and Minister of Power. Shri Manohar Lal Ji will now address this August gathering.
1: विकसित भारत का संकल्प भी तो माननीय मंत्री जी के विचारों को आमंत्रित करते हैं और मैं आदर पूर्वक आमंत्रित करती हूं आदरणीय श्री मनोहर लाल जी को द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द मिनिस्टर ऑफ पावर
2: महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जस्टिस श्रीमती बीवी नागरत्ना जी मान्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मान्य अध्यक्ष श्री तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑनरेबल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जजेज ऑफ हाई कोर्ट देश विदेश से पधारे हुए डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स एक्सपर्ट्स एंड डिग्निटरीज देवी और सज्जनों नमस्कार मुझे लगता है कि आज बहुत सही समय पर मुझे इस कॉन्फ्रेंस में आने का अवसर मिला है आज ही मैं अमेरिका से लौटा हूं जहां ह्यूस्टन में G20 एनर्जी अबंडेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला वहां भी हमारी चर्चा के केंद्र में यही प्रश्न था कि दुनिया की बढ़ती ऊर्जा और विकास की जरूरतों को पूरा करते हुए हम एक ऐसा फ्यूचर कैसे बनाएं जो सिक्योर अफोर्डेबल रिलायबल और सस्टेनेबल हो और मैं धन्यवाद देता हूं NGT के सभी साथियों को जिन्होंने इस दो दिवसीय चिंतन कार्यशाला का आयोजन किया है क्योंकि जलवायु परिवर्तन आज केवल चिंता का विषय नहीं है बल्कि चिंतन का विषय है और जब हम किसी चीज की चिंता से निकलकर उस पर चिंता करने लगते हैं तो समस्या का समाधान जरूर निकलता है साथियों ये वह क्षण है जब जलवायु परिवर्तन केवल एक वैज्ञानिक परिकल्पना से निकलकर सार्वजनिक और राजनीतिक चेतना का विषय बन गया है और आज इस कॉन्फ्रेंस के समापन पर जहां द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स थीम पर पिछले दो दिनों से विचार विमर्श हुआ है मुझे विश्वास है कि उसमें भी यही भावना प्रमुखता से सामने आई होगी हमारे लिए ये गर्व की बात है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना के साथ ही भारत में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद डेडिकेटेड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश और पहला डेवलपिंग कंट्री बन गया है ये हमारी उस पुरानी सोच का आधुनिक इंस्टीट्यूशनल रूप है जिसमें मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को महत्व दिया गया है साथियों भारत आज तेज गति से विकास और बदलाव के दौर से गुजर रहा है हमारी इकोनॉमी का विस्तार हो रहा है एनर्जी की जरूरतें बढ़ रही हैं और साथ ही हमारे शहर भी तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसे में हमारे सामने चुनौती केवल बढ़ती जरूरतों को पूरा करने का नहीं है बल्कि उन्हें इस तरह पूरा करने की है कि विकास की गति भी बनी रहे और पर्यावरण के साथ संतुलन भी पावर तथा हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स दोनों मिनिस्ट्रीज की जिम्मेवारी संभालते हुए मैं इस चुनौती को बहुत करीब से देखता हूं जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ स्वास्थ्य पर नहीं हमारी बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा है मई में लगातार 4 दिन तक बिजली की मांग ने नए रिकॉर्ड बनाए और इस वर्ष 21 मई को यह सर्वकालिक उच्चतम स्तर अर्थात 270.82 गीगावाट तक पहुंच गई थी बढ़ते हुए भारत को अधिक बिजली चाहिए अधिक आवास चाहिए बेहतर मोबिलिटी पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए साथियों एनर्जी सेक्टर में हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं अगस्त 2026 तक हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 304 गीगावाट से अधिक हो चुकी है इसमें सोलर एनर्जी

0: लगभग 168 गीगावाट है। आज हमारी इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी का लगभग 55% नॉन फॉसिल सोर्सेज से है और इसमें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ही भारत ने रिकॉर्ड 44.6 गीगावाट सोलर और लगभग 6 गीगावाट विंड कैपेसिटी जोड़ी है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पावर सेक्टर में 50% नॉन फॉसिल सोर्सेज की हिस्सेदारी का जो लक्ष्य 2030 तक हासिल करने का संकल्प लिया था उसे जून 2025 में 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी है और हमारी संस्कृति भी। अब इसी सोच को हम अपने शहरों के विस्तार और विकास में भी आगे बढ़ा रहे हैं। भारत तेजी से अर्बनाइज हो रहा है। आज हम जो शहर बना रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ेगा। हम आगे शहरों की समस्याओं के समाधान के लिए अभी अर्बन चैलेंज फंड लेकर आए हैं। अमृत 2.0 के माध्यम से हम शहरों में वाटर सिक्योरिटी और सीवरेज सिस्टम्स को मजबूत कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ग्रीन मोबिलिटी हमारे अर्बन डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज देश के 29 शहरों में मेट्रो और RRTS ऑपरेशनल या अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें लगभग 1170 किलोमीटर नेटवर्क ऑपरेशनल हो चुका है और करीब 1013 किलोमीटर निर्माणाधीन है। आज हम मेट्रो के जहां तक विषय है दुनिया के तीसरे बड़े देश में आ चुके हैं। हमारे से पहले केवल चाइना और USA है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले 2 वर्ष में हमारा स्थान दूसरा हो जाएगा, हम USA से भी आगे निकलेंगे। इसी के साथ देश में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में लगभग 25.5 लाख EVs रजिस्टर्ड हुए और कुल व्हीकल सेल्स में EVs की हिस्सेदारी 8% से अधिक रही है और ये सब हमारे साझा प्रयास और चिंतन का ही परिणाम है। साथियों, आज जब हम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो ये केवल एक वैज्ञानिक विषय नहीं रह गया, ये मानव सभ्यता के अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। जब हम जब तक जलवायु परिवर्तन को केवल वैज्ञानिक दृष्टि से देखते रहेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। जिस दिन हम इसे अपने इतिहास, संस्कृति, संस्कार और जीवन शैली के नजरिए से देखेंगे हमें इसके समाधान मिलने लगेंगे। साथियों, समस्या जलवायु परिवर्तन की नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन की रफ्तार है। जिस रफ्तार से आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस गति से कोई भी जीव उसके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि परिवर्तन संसार का नियम है। सवाल बस इतना है कि हम इस परिवर्तन की दिशा में अपनी भागीदारी सकारात्मक रखते हैं या नहीं, या नकारात्मक रखते हैं, ये सोच का विषय है। हमारी सकारात्मक भागीदारी केवल पर्यावरण को नहीं बचाएगी बल्कि हमारे भविष्य को भी बचाएगी। आइए इसी भावना के साथ हम विकसित भारत और सस्टेनेबल भारत की ओर आगे बढ़ें। मैं पुनः आप सभी को इस सार्थक और सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं और मुझे आप सभी के बीच आने और इस चर्चा का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
1: ये थे माननीय आवासन और शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल जी। आपने विकास और पर्यावरण के बीच किस तरह से संतुलन किया जा सकता है इस पर प्रकाश डाला।
2: मूविंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड भारत, अ सस्टेनेबल भारत इज इंडिया। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन इमेंस, covering all the areas with our powers to keep the environment protection to be of utmost importance. Now, it's the time for the chief guest of this international conference, Srimati Draupadi Murmu, the Honorable President of India, to address the August gathering.
3: इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय शहरी और आवासन कार्य तथा विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल जी, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन श्री न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी, भारत के सॉलिसिटर जनरल

तुषार मेहता जी, यहाँ उपस्थित सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के सभी जजेस, देश विदेश से आए सभी डिग्निटरीज, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सभी स्वजनों, सभी को नमस्कार। इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित सम्मेलन में उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न चुनौतियों पर केंद्रित इस आयोजन में अनेक देशों के विशेषज्ञों, न्यायाधीशों, विधि विद्याओं और पर्यावरण के मुद्दे पर सक्रिय प्रमुख स्टेक होल्डर्स की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और उनकी समर्पित टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पर्यावरण से जुड़े लीगल मैटर्स ने एनजीटी में की विशेष भूमिका है। मुझे बताया गया है कि ट्रिब्यूनल ने बहुत बड़ी संख्या में विवादों का त्वरित निपटारा किए हैं। देश में नदियां, एयर क्वालिटी और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े मामलों में ट्रिब्यूनल ने एक प्रभावी कॉम्प्लायंस आर्किटेक्चर विकसित किया है। ये सराहनीय है। ये आयोजन एनजीटी के पर्यावरण से जुड़े विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श करने की लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है। यह सर्वविदित है कि क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है। क्लाइमेट इम्पैक्ट पहले से अधिक तीव्रता और बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी से सामने आ रहा है। फूड सिक्योरिटी, स्वास्थ्य और आजीविका पर भी क्लाइमेट चेंज गंभीर प्रभाव सामने आ रहा है। ऐसी जटिल और अनिश्चितता चुनौतियों का सुनिश्चित प्रकार से सामना करने के लिए नीतियों और कार्रवाई का एक संगठित ढांचा आवश्यक है। ऐसा व्यवस्था जिसमें केवल सरकारी और कानूनी विशेषज्ञों ही नहीं बल्कि वे समुदाय भी सक्रिय रूप से भागीदार होना चाहिए जिनको क्लाइमेट चेंज सर्वाधिक प्रभावित करता है। ग्रामीणों और वनवासी समाज, छोटे किसान, महिलाएं तथा अन्य वल्नरेबल कम्युनिटीज की आवश्यकताओं के प्रति विशेष संवेदनशीलता आवश्यक है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का सबसे अधिक प्रभाव उन्हीं को पड़ता है। देवियों और स्वजनों, दुनिया की अधिकतर ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के पास सदियों से संजोया हुआ पारंपरिक ज्ञान हुआ करता है। प्रकृति के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ साथ रेजिलियंस और क्लाइमेट एडप्टेशन उनकी जीवन शैली का हिस्सा होता है। मेरा बचपन सुदूर ग्रामीण अंचल में बीता है। प्रकृति से जुड़कर जीने की जनजातीय समाज की सरलता और रेजिलियंस को मैंने स्वयं अनुभव किया है। अपने बचपन का एक उदाहरण मैं कभी कभी देती हूँ, आज भी उसको दोहराना चाहती हूँ। मेरे पिता घर में खाना बनाने के लिए पास के जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाते थे। लकड़ी को जलाने के लायक बनाने के लिए और एक बार उसको घर में उसको कटना पड़ता है। जो उन्हें कटना शुरू करते हैं उसके पहले उसको नमन करते हैं।

0: बहुत बार देखा। मैं छोटी थी तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ये तो सूखा है, ये सूखा लकड़ी को क्यों नमन करते हैं। मैं एक दिन पूछा कि पिताजी ये तो सूख गया है, हम इसको जलाने वाले हैं, तुम नमस्कार क्यों करते हो। समझ में आ रहा है कि एक जिंदा पेड़ को काटने से वहां से खीर निकलता है और उस वो जिंदा होता है, ये मुझे समझ में था। लेकिन ये सूखी उन्होंने नहीं, आज वो सूख गया फिर भी मेरे हम लोगों के काम में आ रहा है, हम लोगों का सेवा में काम में आ रहा है, जो एक जिंदा था, जो भी जिंदा था वो हवा दे रहा था, हम ऑक्सीजन दे रहा था, अम्लोजन हम कहते हैं, अम्लोजन दे रहा था। इसके जोड़े, इसके पत्ता, इसके छली को हम दवा के रूप में इस्तेमाल करते थे, इसके फूल फल हम खाते थे, इसके पेड़ को हम घर बनाते थे। तो आज वो बूढ़ा हो गया फिर भी हम लोगों का सेवा करता है। इसलिए इससे ही आपको पता चलता है जनजाति के लोग कितने संवेदनशील अपने प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधा के प्रति। पेड़ पौधा, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर को मेरे गांव लेकर गई थी, उनको ऐसे नहीं कि मैं गांव बहुत सुंदर चलिए देखिए, ऐसे नहीं। जनजाति के लोग कैसे पेड़ पौधा को पूजा करते थे, आज भी हम कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कोई फोटो हम बनाते नहीं, हम पेड़ पौधा को ही पूजा करते हैं। एक जाहिरा कहा जाता है, वहाँ बहुत सारे पेड़ रहता है, हम साल में जैसे सालों में 12 मास में 50 पर्व होता है, ट्राइबलों का भी होता है, लेकिन वो कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। सामूहिक रूप में गांव के बीच में एक रहता है ऐसे जगह जहाँ पेड़ सूखा पेड़ को नमस्कार करते हैं, और गांव का अंत में जाहिरा रहा है। सभी गांव में जितने भी संथाल गांव है, वैसे बहुत सारे ट्राइबल, जितने शेड्यूल लिस्ट में, संविधान के शेड्यूल लिस्ट में जितना ट्राइबल सूची में है, जितने ट्राइबल लोग हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ ट्राइबल जिसको हम आदिवासी कहते हैं, आज उसको वनवासी कहते हैं, जनजाति कहते हैं, हम आदिवासी, पहले से हमको सिखाया गया हम आदिवासी हैं, आदिम आदिवासी। तो आज भी जंगलों को पूजा करते हैं, आज भी पेड़ पौधा पूजा करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जी गए थे वहाँ, नमन किए, उनका कोई बहुत सारा प्रसाद, बहुत सारे जगजमत की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अरुआ चावल और नमन, आज भी वो मानते हैं। तो और ये एक कहानी नहीं है, हम जो 5 एलिमेंट्स कहते हैं उसको पूजा करते हैं, केवल पेड़ को नहीं पूजा करते हैं, धरती को भी पूजा करते हैं, पहाड़ को पूजा करते हैं। आज भी हम लोगों का बड़ा वाला जो ठाकुर जी है वो मारांग गुरु मीन्स सबसे बड़ा पहाड़ के अधिकारी, उसका नाम कोई नहीं है लेकिन हम बड़ा वाला पहाड़ आज भी पूजा करते हैं और धरती को पूजा करते हैं। इसीलिए मैं घर पे सबसे बड़ी थी, घर के पास में जो जमीन है, जमीन पिताजी के साथ में जाती थी। पिताजी जब हाल चलाते थे या फावड़ा मारते थे उसके पहले धरती को नमन करते थे। मैंने बोले तुम क्यों करते हो, मैं बार बार मैंने देखा, उन्होंने बोले ये धरती हम लोगों का माँ है, हम जो इसके ऊपर हाल चलाते हैं, हम जो इसके ऊपर हाल चलाते हैं, फावड़ा मारते हैं, हम लोगों के आवश्यकता के हिसाब से हम करते हैं, लेकिन धरती के ऊपर भी अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे कीट, बहुत सारे चीजें वहाँ रहते हैं, बास करते हैं। हम लोगों को हाल चलाने से, फावड़ा मारने से उन लोगों का जान चला जाता है। तो इसीलिए मैं धरती माता को नमन करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं आवश्यकता हिसाब से इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। हम जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं।
1: विनम्रता की ये भावना हमारी संस्कृति में

रची बसी है। ये मनुष्य और प्रकृति के मूलभूत संबंधों को समझदारी से स्वीकार करती है। हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं, ऋषि मुनि जंगल में रहते हैं। मुझे बताया गया है ऋषि मुनि जो कि पेड़ पौधा धरती आकाश जीव जंतु से भी बातें करते हैं, करते थे। इसीलिए उस टाइम एक ऋषि कहते हैं जो ये तो वेद की वाक्य है, यत्ते भूमे बिखनामि क्षिप्रं तदोपि रोहतु। इतमें ऋषि जी कहते हैं, जब पृथ्वी को कहते हैं मैं तुमसे जो कुछ लेता हूँ उसे शीघ्रता से लौटाने के लिए प्रयत्न करूँगा। इसीलिए हम अभी जिस युग में जीते हैं, मैं जो छोटी थी जंगल गांव से सटा हुआ था, लेकिन आप वो नहीं है। उन दिन भी उसी दिन में भी लोग रहते थे, गांव में रहते थे, लकड़ी आके जलाते थे, लेकिन आज हम पत्ता का बिजनेस, लकड़ी का बिजनेस शुरू किए हैं, जो हमको जिंदगी देते हैं। मुझे लगता है इसको कम कर देना चाहिए। पत्ता को हम साल भर बार बार तोड़ेंगे तो पेड़ कैसे बढ़ेगा? इसीलिए उसको उसको जीने देंगे तो हम लोगों को भी जीने देंगे, क्योंकि आप साल भर पत्ता तोड़ेंगे तो वह कैसे जिएंगे? क्योंकि हम जानते हैं साइंस, हम वो लोग साइंस के बारे में पता नहीं, लेकिन इतना पता है ये लोग जिएंगे तो हम जिएंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइंस कहते हैं कि पत्ता से और पेड़ के लिए खाना बनाते हैं। तो फिर वो पेड़ को ही बार बार तोड़ा जाए तो पेड़ कैसे बचेगा? आज युग बदल गया है, हम लोगों के पास गैस है। हम लोग गरीब लोगों को भी आज पक्का घर दिया जाता है, तो जंगल क्यों कम होता है? इसीलिए कहते हैं सौ परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले आप परिवर्तन हो जाए तो धरती आपे आप परिवर्तन। ये सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स स्थानीय समुदाय की प्रथाओं और उनके जीवन के अनुभवों की क्लाइमेट अडॉप्टेशन की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। हमें ट्रेडिशनल नॉलेज पर आधारित पीपुल सेंट्रिक और कम्युनिटी बेस्ड अडॉप्टेशन के माध्यम से क्लाइमेट रेजिलियंस को सुदृढ़ करने के प्रयास करने चाहिए। क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाने में सस्टेनेबल अफोर्डेबल की भी अफोर्टेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आज बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड में फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट लैंड तो है, लेकिन उसमें कोई फॉरेस्ट का नाम निशान नहीं। उसमें फॉरेस्ट की अफोर्टेशन की आवश्यकता है। सस्टेनेबल अपोर्टेशन का वास्तविक लक्ष्य केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि स्वयं और स्वनिर्भर इकोसिस्टम को फिर से स्थापित करना है। डेवलपमेंट को अपोर्टेशन का एक रूप मानना भी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है। विकास के लिए मजबूत हेल्थ सिस्टम और क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता है। ये कृषि उत्पादकता बढ़ाने और अफोर्डेबल तथा विश्वसनीय ऊर्जा की उपलब्धता से भी जुड़ा है। रोप टू सोलर पैनल्स उपलब्ध कराने की योजना भारत सरकार की ऐसे ही एक पहल है जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से भारत के एनर्जी लैंडस्केप को नया रूप दे रही है। विकासशील देशों को ऐसा मार्ग तय करना चाहिए जो विकास की गति को सुनिश्चित रखते हुए रेजिलेंस बढ़ाए। जिम्मेदार क्लाइमेट एक्शन की प्रतिबद्धताएं देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं और आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप होने

0: टेक्नोलॉजी जैसे नवीन टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल नॉलेज और स्थानीय समुदाय के जीवन अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। ये समन्वय क्लाइमेट विस्टम के ऐसे युग का सूत्रपात कर सकता है जो अधिक प्रभावी क्लाइमेट रेस्पॉन्स का मार्ग प्रशस्त करेगा। देवियों और स्वजन, भारत की युवा आबादी देश की अत्यंत मूल्यवान संपदा है। युवाओं और जनसाधारण को जोड़कर पर्यावरण चेतना बढ़ाने की दिशा में भारत ने सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत सरकार की मिशन लाइफ पहल ने ये दिखाया है कि जन भागीदारी और कम्युनिटी ओनरशिप के माध्यम से इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के लिए बहुत सार्थक कार्य किए जा सकते हैं। सरकार के कई अन्य पहलों को भी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के प्रभावी कार्यक्रम के रूप में वैश्विक सराहना मिली है। मुझे विश्वास है कि विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, न्यायपालिका के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, एक्टिविस्ट और अन्य हितधारकों के इस सभा में अनेक इनोवेटिव दृष्टिकोण सामने आए होंगे और इस मंथन के फलस्वरूप अनेक व्यवहारिक समाधान विकसित किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इस आयोजन का समावेशी नीतियों और प्रभावी कार्यों के आधार पर क्लाइमेट रेजिलिएंट सोसाइटीज के निर्माण की दिशा सुनिश्चित करने में योगदान रहेगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। उपयोगी अनुभवों के आदान प्रदान का मंच प्रदान करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विशेष प्रशंसा के पात्र है। मैं आप सभी के प्रयास के माध्यम से सस्टेनेबल और सुनिश्चित भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज राइज।
2: एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द नेशनल सॉन्ग एंड द नेशनल एंथम दैट विल बी प्लेड बाय द राष्ट्रपति भवन मिलिट्री बैंड।

0: जय हिंद।
1: इसी के साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भविष्य विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो रहा है और माननीय राष्ट्रपति महोदया मंच से प्रस्थान के लिए तैयार हैं। सभी लोग खड़े होकर उनको अभिवादन कर रहे हैं और धीरे धीरे मंच से प्रस्थान सभी गणमान्य व्यक्तियों का।
2: As the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu highlighted that the soils, rivers, mountains, forests, the five elements are highly revered in our culture. Our country knows how important, how vital these are for our survival. Every Indian should be proud, every citizen should be proud that ancient Indian traditional knowledge systems combine science and values to give the highest regard to nature. As quoted by Sir David Attenborough and included in his speech by Honorable Justice Prakash Srivastavji, the chairperson of NGT, what we do now shall have a profound impact on the next 1,000 years. As stated by Justice Honorable Srimati B.V. Nagaratnaji, Honorable Judge of Supreme Court of India, that we have to learn from the Panchabhutam, from the five elements. From earth we learn patience and steadiness, from air broad-mindedness and adaptability, from fire warmth and energy, from sky equality, and from water purity and continuity. Let's hope that all the objectives of the conferences, like the knowledge exchange, like innovation and technology, like policy development, collaborative action and public engagement, all are working together, all work in a better way, for a better future, for a combined future, for all of humanity.
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भविष्य विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में न सिर्फ वर्तमान में विश्व के भविष्य में इस गंभीर विषय को लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया ताकि इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाया जा सके और हमारी इस पृथ्वी और पर्यावरण को हरा भरा और संतुलित बनाए रखा जा सके जहां तकनीकी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। इसी के साथ मैं यहां मौजूद आकाशवाणी की पूरी टीम, तकनीकी सहायता के लिए श्री कमल सिंह, सुमित कटियार, नकुल, मोनिका और अभिषेक के साथ ओबी कार्यक्रम प्रभारी श्री जय सिंह और संपूर्ण मार्गदर्शन और समन्वय के लिए श्री प्रमोद कुमार जी का आभार व्यक्त करते हैं। आइए इसी संकल्प के साथ कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे और इस धरती को हरा भरा बनाए रखेंगे, मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं।
3: अभी आपने

जी हाँ, यूं ही गाते गुनगुनाते सफर चलता रहे, और इस सफर में हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं लेकर बहुत सारे प्यारे प्यारे तराने, बहुत सारी बातें। अभी आप सुन रहे थे कि भाई पर्यावरण को लेकर हम लोग कितनी चिंता में हैं और पर्यावरण को लेकर कितने गंभीर प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो आज के इस सफर को आगे बढ़ाने से पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी को आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर बहुत हम अभिनंदन करते हैं। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। आगाज करते हैं इस नगमे से जो हमने लिया है शहीद भगत सिंह से, और इसमें स्वर है रूप कुमार राठौड़, हरभजन और मोहम्मद सलामत का।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते, मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। अगला नगमा जो हमने लिया है आपके लिए वो फिल्म है 1994 में आई फिल्म जिसका नाम था 1942 लव स्टोरी। विधु विनोद चोपड़ा इस फिल्म के निर्देशक थे और फिल्म में बहुत मेहनत की गई, काफ़ी तारीफ भी की गई इस फिल्म की। इसके गाने बहुत अच्छे थे, संगीत था आर डी बर्मन का, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी, लोगों ने खूब पसंद किया, स्क्रीन प्ले सब कुछ अच्छा था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जैसा कमाल इस फिल्म से उम्मीद की गई थी वैसा नहीं हुआ। हालांकि फिल्म ने अपनी लागत से लगभग 3 गुना कमाई की और लोगों ने काफी पसंद भी किया इस फिल्म को। फिल्म में मुख्य कलाकार थे अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ, डैनी, अनुपम खेर, चांदनी और प्राण। चलिए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक हम आप तक पहुंचाते हैं जिसमें आवाज है कुमार सानू की।

जी हाँ, एक चलते चलते एक नगमा हम आप तक पहुंचा देते हैं। इस आज की इस पेशकश का आखिरी नगमा होगा वो, और आप बने रहें एफएम गोल्ड के साथ, जहां बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे कार्यक्रम आपसे जुड़े रहेंगे। और ये जो नगमा है, ये फिल्म है हम आपके हैं कौन, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।

0: उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
0: पूर्वोत्तर डायरी।
1: श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में कृषि का जुड़ाव संस्कृति से गहरे तौर पर है और इसी बात का उदाहरण हमें हाल ही में मिजोरम में मनाए गए एक कृषि उत्सव से मिला। इस कृषि उत्सव के जरिए न सिर्फ पारंपरिक खेती को प्रदर्शित किया गया बल्कि पर्यटन को भी आकर्षित किया गया। तो कैसे कृषि और पर्यटन का एक मिला जुला रूप हमें पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, हमारी मिजोरम से इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से ये सुनने को मिलेगा।
2: मिजोरम के सेतुअल जिले के सोचल में किसानों और ग्रामीणों ने पारंपरिक कृषि उत्सव लो जाईपुई मनाया। यह उत्सव खेतों में फसल तैयार होने से पहले होने वाली निराई गुड़ाई की प्रक्रिया से जुड़ा है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने सामुदायिक रूप से खेती में हिस्सा लिया और प्रकृति से मिली उपज के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सामूहिक भोज और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मिजोरम में पारंपरिक रूप से झूम खेती यानी स्लैश एंड बर्न कृषि पद्धति का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जंगल और वनस्पतियों को काटकर जलाया जाता है और उससे बनी राख का इस्तेमाल कुछ समय के लिए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह पद्धति राज्य के कई ग्रामीण समुदायों की पारंपरिक कृषि व्यवस्था का हिस्सा रही है। सैचल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिजोरम के पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी मंत्री रोडिंग लियाना ने कहा कि लो जाईपुई को राज्य के अलग अलग हिस्सों में लोकप्रियता मिल रही है। उन्होंने इसे पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाने

0: करने की दिशा में प्रयास करने की जरूरत बताई। किसानों के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार किसानों को प्राथमिकता और सम्मान देती है। उन्होंने किसानों को उनकी उपज और मेहनत के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से लोगों को खेती और मेहनत के महत्व को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने ग्रामीण समुदायों से पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने और पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित रखने का आग्रह किया। पर्यटन विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में लोकगीत, पारंपरिक नृत्य, रीति रिवाज और स्थानीय मौसमी व्यंजन भी प्रस्तुत किए गए। लो जायपुई ने खेती, संस्कृति और सामुदायिक एकजुटता को एक साथ जोड़ते हुए मिजोरम की ग्रामीण परंपराओं को सामने रखा। यह उत्सव आने वाली पीढ़ियों के लिए कृषि और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने का संदेश भी दिया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार।
1: पूर्वोत्तर भारत न सिर्फ संस्कृति परंपरा में लगातार एक समृद्ध क्षेत्र माना जाता है, बल्कि यहाँ दिन प्रतिदिन नवाचार और उद्यमिता के हमें उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। अब हम आपको एक ऐसी ही नवाचार की कहानी सिक्किम से सुनवाने जा रहे हैं। तो ये किस तरह का नवाचार है और कैसे पूर्वोत्तर भारत इनोवेशन के मामले में नए कीर्तिमान रख रहा है, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में।
2: प्रशांत लामिछानी के नाम जारी आधिकारिक प्रमाण पत्र के अनुसार स्पून का डिजाइन रजिस्ट्रेशन नंबर 4652420001 है। इसे डिजाइन्स एक्ट 2000 और डिजाइन्स रूल्स 2001 के तहत क्लास 0703 में पंजीकृत किया गया है। इस डिजाइन का रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई 2025 को हुआ, जबकि इसका प्रमाण पत्र 19 अगस्त 2026 को जारी किया गया। प्रशांत की नवाचार की यात्रा स्कूल के दिनों में शुरू हुई। रोजमर्रा की समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने की जिज्ञासा ने उन्हें नए विचारों पर काम करने के लिए प्रेरित किया। बौद्धिक संपदा अधिकार और कानून की शोधकर्ता डॉक्टर मुकुल रानी पराजुली के साथ बातचीत से उन्हें अपने विचारों को सिर्फ विकसित करने का ही नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा, आगे के विकास और व्यवसायीकरण के बारे में भी समझ मिली। स्पून के डिजाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर अपने अनुभव और इस उपलब्धि के महत्व के बारे में प्रशांत लामिछाने ने बताया।
3: जो इनोवेशन का मेरा जो फील्ड है उसमें मैं लगभग 16 से 17 इयर्स मेरा बीत चुका है ये फील्ड में आया हुआ। तो आज मैं ये प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरा जो इको स्पून है, जो मेरा जिसमें मुझे पेटेंट भी ग्रांट हुआ है, वो प्रोजेक्ट के सिलसिले में इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं डिलीवर करना चाहूंगा। और अभी तक मैंने बहुत सारा इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में काम किया, जैसे एंटी थेफ्ट चार्जर, वायरलेस स्विच कंट्रोल सिस्टम, परंपरा डोको, जीवन रक्षक खुकुरी और बहुत सारा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है। मैं मशीन्स वगैरह भी डिजाइन कर रहा हूँ और उसमें मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह को भी लेकर मैं उस इनोवेशन को थोड़ा मार्केट में भी लाने के लिए प्लान में चल रहा हूँ मैं। और जो इको स्पून है, जो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट का जर्नी मेरा कैसे स्टार्ट हुआ कि जैसे मैं लास्ट ईयर मैं उत्तराखंड घूमने के लिए जा रहा था, तो मैं दिल्ली का ट्रेन था मेरा, उसमें मुझे जो फूड लंच टाइम में मुझे फूड दिया गया था उसमें मेरा उस पैकेट के अंदर में स्पून वगैरह नैपकिन वगैरह था। तो क्या हुआ कि मेरा उसमें शायद 2-3 नैपकिन थे, तो 2 मेरा ऑलरेडी बिगड़ गया वहाँ, वो फूड का स्टीम वगैरह से होकर दाल वगैरह के साथ लगकर, और एक गिर गया। तो मैं नैपकिन लेस हो गया उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि मैं दूसरा नैपकिन भी नहीं मंगवा सकता किसी के से। तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम जो मैं फेस किया अभी, वो प्रॉब्लम ये ट्रेन में कितने लोग फेस कर रहे हैं। तो इसी ख्यालत के साथ मैं मेरा जर्नी कंप्लीट किया, तो मैं घर आया। मैं इसमें काम करने के लिए सोच ही रहा था, फिर मेरा दूसरा प्रोजेक्ट वगैरह में भी मैं बिजी था, तो मुझे एक वेडिंग में इन्विटेशन आया था, मैं वहां गया था। वेडिंग फंक्शंस वगैरह में क्या होता है कि जो प्लेट हम लोग को फूड लेते वक्त वो हम लोग को प्लेट दिया जाता है, वो फॉर स्टार्टिंग में, और एक चम्मच और एक नैपकिन दिया जाता है। तो नैपकिन नीचे में रहता है और स्पून था, तो मेरा नैपकिन क्या हुआ कि वो प्लेट में भी थोड़ा पानी वगैरह था तो वो लग गया, तो उस कारण से मेरा वो नैपकिन भी गिर गया। तो मैंने फिर एक्स्ट्रा नैपकिन मंगवाया। तो मुझे उस टाइम पे मुझे ख्याल आया कि ये नैपकिन और जो स्पून का जो रिलेशन है ये हर टाइम जोड़ी में रहता है, क्योंकि स्पून हम फूड वगैरह लेते वक्त मुझे स्पून भी चाहिए होता है, नैपकिन भी चाहिए होता है। तो मैंने क्या सोचा कि व्हाई नॉट टू कंबाइन दिस टू प्रोडक्ट इन अ वन प्रोडक्ट। सो मैंने घर आया, मैंने 2-3 डिजाइन ट्राई किया, दे फेल्ड। तो मैंने दूसरा तरीका देखा कि मुझे एक टैबलेट जैसा बनाकर उसको डालना, मुझे नैपकिन में एक होल करके उसमें डालना।

0: में, जिसे हम लोग मेडिसिन वगैरह निकालते हैं, उस टाइप का आइडिया पे मैंने काम किया। मैंने पहले स्क्रोल टाइप में ट्राई किया था हैंडल में, वो आइडिया फेल हो गया, वो कॉस्ट भी ज्यादा लग रहा था। लेकिन मैंने वो जो दवाई वगैरह निकालते हैं हम लोग, उस आइडिया को मैंने एडोप्ट करके मैंने इको स्पून बनाया। और उस इको स्पून को मैंने क्या किया कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में सबमिट किया था, और वो प्रोजेक्ट वहां से भी एक्सेप्ट हो गया है। और मैं क्या हुआ कि आफ्टर सम मंथ मैं डॉक्टर मुकुल से भी मिला, और लाइक उनको आईपीआर के रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज है, तो सी इंस्पायर्ड मी टू हैव पेटेंट वो मेरा प्रोजेक्ट में। और उन्होंने कहा कि प्रशांत, यू हैव मेड लॉट्स ऑफ इनोवेशंस और तुमने अभी तक पेटेंट क्यों नहीं किया। तो फॉर मी पेटेंट वॉज लाइक ये क्या होता है। तो शी एजुकेटेड मी, सी एनलाइटेंड मी अबाउट पेटेंट, और मैंने मैम ने ही मुझे सारे स्पॉन्सर कर दिए थे और मेरा इको स्पून का पेटेंट कर दिया था, और मेरा पेटेंट भी आ चुका है, सक्सेसफुली ग्रांट हो गया है, और एक डिजाइन रजिस्ट्रेशन में भी मेरा कम्प्लीटली हो गया है। अब यूटिलिटी पेटेंट भी आ रहा है मुझे, वो शायद वो भी मिलने वाला है रिसेंटली। तो इसी प्रकार से मेरा ये इको स्पून का जर्नी ऐसे ही हुआ था।
1: इसके बाद प्रशांत का परिचय पेटेंट शाला से हुआ। यह संस्था सौरभ अग्रवाल और डॉक्टर उमेश कुमार केयू से जुड़ी है। संस्था की ओर से स्पून के लिए डिजाइन और यूटिलिटी पेटेंट आवेदन करने और दाखिल करने में पेशेवर सहयोग दिया गया, जिसके लिए कोई पेशेवर शुल्क नहीं लिया गया। प्रशांत लामिछाने टेमी इनोवेशन फेस्टिवल के संस्थापक भी हैं। इस मंच के जरिए वे जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने और युवाओं को नए विचारों के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। उनकी यात्रा यह दिखाती है कि नवाचार के लिए हमेशा बड़ी प्रयोगशाला या संस्थान की जरूरत नहीं होती। किसी रोजमर्रा की समस्या को पहचान कर उसका समाधान विकसित करना और फिर उस विचार को बौद्धिक संपदा के रूप में सुरक्षित करना भी नवाचार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सिक्किम में युवाओं के बीच नवाचार की संस्कृति को मजबूत करने और उन्हें नए विचारों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशांत लामिछाने ने अपने विचार साझा किए।
0: रिगार्डिंग टीमी इनोवेशन फेस्टिवल, सो इट वॉज माई ड्रीम सिंस फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू ऑर्गेनाइज वन साइंस फेयर। और मैं जब छोटा था तब से, लेकिन मैं जो इनोवेशन फील्ड में मैं खुद तो प्रोजेक्ट बनाता हूँ, लेकिन मैं बच्चों को भी मेंटरशिप देता हूँ। बहुत सारा बच्चे मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, वो भी इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, उनको भी मैं मोटिवेट करता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऑलरेडी नेशनल लेवल भी पहुंच चुके हैं, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल, स्टेट लेवल, ये सारा चीज में बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने मेंटरशिप देकर उन लोगों को भी भेजा है। और अभी भी मेरे साथ 10-12 बच्चे मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब करते करते मुझे आइडिया है कि व्हाई नॉट टू हैव अ वन फेस्टिवल ऑफ इनोवेशंस। और इसमें मुझे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, आवर ऑनरेबल एरिया एमएलए श्री बेदू सिंह पंसर, चेयरमैन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आवर एंटी भुटिया सर, उन सभी से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उन सब ने मुझे बहुत सारा हेल्प किया, और मुकुल मैम तो ऑलरेडी ये इनोवेशन में जुड़े हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारा इनकरेजमेंट दिया, और हम लोगों ने सक्सेसफुल टीमी इनोवेशन फेस्टिवल फेज वन हम लोगों ने कंप्लीट किया। और अभी हम लोग टीमी इनोवेशन फेस्टिवल फेज टू हम लोग नेक्स्ट ईयर करने के लिए प्लान में चल रहे हैं। और उसको हम लोगों ने इस बार थोड़ा मॉडल चेंज किया है। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हम लोग का लोकल एरियाज वगैरह के स्कूल्स वगैरह होंगे, तो हम लोग वहां से आइडियाथॉन करेंगे पहले वन मंथ, और पहले बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडिया को वो करके हम लोग उसको मेंटरशिप देंगे, हम लोग प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेंगे, और उसके बाद टीमी इनोवेशन फेस्टिवल में हम लोग डिस्प्ले करके उन सभी को हम लोग नेशनल और प्लेटफॉर्म वगैरह के लिए भी हम लोग एनआईएफ, जैसे हम लोग का बहुत सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है एनआईएफ वगैरह, ये सब में हम लोग हमारा प्रोजेक्ट्स वगैरह को वहां पर भी सबमिट करवा देंगे। और ज्ञान वगैरह भी है एनजीओ, तो हम लोग वहां पर भी हेल्प करेंगे, और दूसरा भी बहुत सारे हैं, हम लोग वहां पर भी नॉमिनेट करेंगे बच्चों को। और इस तरीके से क्या होगा कि एक बच्चे में जो साइंटिफिक टेम्परमेंट है तो वो आगे जाकर और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग मेंटरशिप भी करेंगे और साइंस फेयर भी करेंगे, और हम लोग बच्चों को और सिक्किम को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर में हम लोग प्राउड मूवमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग लगे पड़े हुए हैं। सो टीमी इनोवेशन इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग माइंड्स।
1: प्रशांत लामिछाने की उपलब्धि युवा नव प्रवर्तकों के लिए यह संदेश देती है कि एक विचार की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सही दिशा, दस्तावेजीकरण और बौद्धिक संपदा संरक्षण के जरिए उसे आगे बढ़ाने के अवसर तैयार किए जा सकते हैं। मैनाक चटर्जी और दिलीराम दुलाल की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची वाजपेयी।

0: सिक्किम से अब हम रुख करते हैं मेघालय का। मेघालय में बाजारों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है और हाल ही में एक विशेष पहल के माध्यम से मेघालय के मुख्यमंत्री ने शिलांग के एक बाजार के एक आधुनिकीकरण की पहल की। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम समझते हैं कि ये किस तरह की पहल थी और कैसे मेघालय में बाजारों को सरकार द्वारा नया रूप दिया जा रहा है।
1: शिलांग के मलकी इलाके में लंबे समय से स्थानीय लोगों और व्यापारियों की जरूरतों को पूरा कर रहे मलकी मार्केट के अब नए रूप में विकसित होने की दिशा में काम शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने मलकी ग्राउंड में बाजार के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। राज्य सरकार के अनुसार करीब 24 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत वाली यह परियोजना मलकी और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार के लिए किया गया यह आवंटन राज्य की बाजार परियोजनाओं में सबसे बड़े आवंटनों में से एक है। उन्होंने कहा कि बेहतर बुनियादी सुविधाओं के जरिए व्यापार के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराने और स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर तैयार करने पर बल दिया जा रहा है।
2: दिस इज वेयर द इकॉनमी मूव्स एंड व्हेन यू क्रिएट मार्केट स्पेसेस The exchange of goods and services and products and the economic rotation of the money that we want to see in the economy takes place through these marketplaces. And that's why, and obviously that creates jobs. So that's why the development and overall improvement of these places are very, very crucial to us. So therefore, this is not just a one-off project.
1: मलकी मार्केट का पुनर्विकास शिलांग में बाजार और शहरी ढांचे को मजबूत करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। राज्य सरकार ने शिलांग में विभिन्न बाजारों और व्यापारिक क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 130 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की है। इनमें लैतुम खरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लाबान मार्केट, पोलो क्षेत्र के विकास और स्ट्रीट वेंडर मार्केट जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा शिलांग में स्मार्ट सिटी पहल के तहत भी 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मलकी और आसपास के इलाकों में आने वाले वर्षों में शहरी ढांचे में और बदलाव की बात भी कही। उन्होंने बारिक पॉइंट को एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सड़क परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। इस तरह मलकी मार्केट का पुनर्विकास व्यापार, स्थानीय रोजगार और शहरी सुविधाओं को एक साथ मजबूत करने की दिशा में मेघालय सरकार की व्यापक योजना का हिस्सा है। निशा साहू की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं करिश्मा राय, आकाशवाणी समाचार।
0: श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत निवेश और उद्योगों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है और खासतौर पर हमने देखा कि बीते वर्षों में असम में ढांचागत विकास की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं, उद्योगों को लगाने के जो प्रयास हैं, उन्होंने असम की तस्वीर को बदला है। हाल ही में ICC ग्लोबल बिजनेस समिट में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने असम में निवेशकों को अपने उद्योग लगाने के लिए आकर्षित किया और असम में किस तरह से ज्यादा निवेश को बढ़ाया जा सकता है, इस बात पर अपने संबोधन में जोर भी दिया था। तो आइए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा के इस संबोधन पर आधारित और जिस तरह से उन्होंने ICC ग्लोबल समिट में असम की निवेश की संभावनाओं को रखा, इस संबंध में हम आपको ये विशेष रिपोर्ट सुनवाते हैं।
3: नई दिल्ली में 18 और 19 सितंबर को आयोजित ICC ग्लोबल बिजनेस समिट 2026 में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने राज्य में निवेश की संभावनाओं को सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक, आर्थिक और तकनीकी माहौल ने भारत के सामने उत्पादन के नए अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में उत्पादन, निवेश और नवाचार के लिए नए स्थानों की तलाश हो रही है और भारत को इस बदलाव का लाभ उठाने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं और वैश्विक बाजारों से जुड़ाव को और मजबूत करना होगा।
4: इंडिया डिसेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप प्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी। ग्लोबल प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन आर लुकिंग टुवर्ड्स न्यू लोकेशन एंड स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप। द नेक्स्ट

0: will therefore depend increasingly on bringing more regions and enterprise into national and global value chain.
1: उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अगले चरण में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों और उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक वैल्यू चेन से जोड़ना जरूरी होगा। उनके अनुसार पूर्वोत्तर और विशेष रूप से असम इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री ने असम की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान पर है। उन्होंने असम को आसियान क्षेत्र से जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे, कुशल मानव संसाधन और निवेश के लिए अनुकूल नीतिगत व्यवस्था का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार, उद्योग, विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और उद्यमी मिलकर काम करें तो निवेश से केवल एक परियोजना नहीं बल्कि पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित किया जा सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर कौशल विकास, रोजगार, आपूर्ति श्रृंखला और नए व्यवसायों के अवसर तैयार हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने वैश्विक उद्योग जगत को असम आने और राज्य में निवेश की संभावनाओं का आकलन करने का भी निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि असम पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से और भारत को आसियान क्षेत्र से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हो सकता है। ICC ग्लोबल बिजनेस समिट 2026 में कारोबार, निवेश, तकनीक, विनिर्माण, हरित ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। सम्मेलन 18 और 19 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। निशा साहू की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
2: श्रोताओं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में एक विशेष आयोजन हुआ और इसमें जनजातीय संस्कृति और परंपरा को सहेजने को लेकर विशेष पहल की गई। हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में जहां एक तरफ परंपरागत जनजातीय संस्कृति को संजोने के प्रयास होते रहे हैं, वहीं आधुनिकता से जुड़कर भी परंपरा और आधुनिक समाज में एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जाता रहा है। इसी की झलक हमें इस समारोह में देखने को मिली, तो आइए ये रिपोर्ट सुनते हैं।
3: अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के रुक्सिन सर्कल स्थित लेई बांगो दोलुंग अकांगोल में पहली बार लेई बांगो सेंट्रल सोलुंग गदे समारोह का शुभारंभ हुआ। समारोह का उद्देश्य आदि जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ सामुदायिक एकता को मजबूत करना है। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, पंचायती राज मंत्री ओजिंगता सिंह, अरुणाचल ईस्ट सांसद तापुर गाव, विधायक निन्नोंग ईरिंग एवं नारीकोयू विधायक तोजिर कादू सहित जनप्रतिनिधि, सामुदायिक नेता और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत सभी गणमान्य अतिथि ने आधुनिक शिक्षा और विकास के साथ सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। विधायक तोजिर कादू ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस समारोह को एक मजबूत सांस्कृतिक मंच बनाया जाना चाहिए, क्योंकि संस्कृति की रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं समुदाय की होती है। वहीं सांसद तापुर गाव ने युवाओं से अपनी मातृभाषा और स्थानीय बोलियों को सीखने, बोलने, पारंपरिक परिधान अपनाने और सोलुंग जैसे सांस्कृतिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। ओजिंगता सिंह ने आदि और गालो समुदायों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया तथा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अरुणाचल प्रदेश की विविध समुदायों के बीच एकता, आपसी सम्मान और शांतिपूर्ण संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समारोह संस्कृति के संरक्षण और परंपराओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के जन केंद्रित मंच बने रहने चाहिए। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
2: श्रोताओं, हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री ने मिजोरम का 3 दिवसीय दौरा किया और किस तरह से मिजोरम एक खेल का बहुत बड़ा गंतव्य बनकर उभर सकता है, इस मामले में उन्होंने समीक्षा की। तो आइए इस विषय पर हम आपको अगली रिपोर्ट सुनवाते हैं।
4: युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में खेलों में प्रगति भी राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार खेलों को शिक्षा के साथ जोड़ने और युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए कई पहल कर रही है। उन्होंने युवा कनेक्ट पहल का भी उल्लेख किया, जिसके माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों

0: में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को सही दिशा देना सरकार की प्राथमिकता है। मिजोरम के खेल मंत्री लालन घिंगलोवा हमर और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य के खेल ढांचे और खिलाड़ियों की जरूरतों पर भी चर्चा हुई। विभिन्न खेल संगठनों के प्रतिनिधियों ने जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों के विकास से जुड़ी जरूरतों की जानकारी दी। श्रीमती खड़से ने मिजोरम के खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें आगे बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में खेल प्रतिभाओं की अच्छी संभावनाएं हैं और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, पोषण, खेल विज्ञान, चिकित्सा सहायता और प्रतियोगिताओं में अधिक अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से शहरों के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों में भी प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही महिला खिलाड़ियों की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मिजोरम में साई प्रशिक्षण केंद्र, आइजोल में सिंथेटिक हॉकी टर्फ और प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी परियोजना भी खेल सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। श्रीमती खड़से ने इस बात पर जोर दिया कि केवल खेल मैदान और बुनियादी ढांचा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण और लगातार सहयोग भी मिलना चाहिए। मिजोरम के सेतुअल और कोलासिब जिलों में हुई समीक्षा बैठकों में भी खेल बुनियादी ढांचे, नियमित कोचिंग और युवा प्रतिभाओं के साथ विकास पर चर्चा हुई। कोलासिब में फुटबॉल, हॉकी और कुश्ती जैसे खेलों में स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया गया। मिजोरम में हुई इन चर्चाओं में खेलों को शिक्षा, युवा विकास और बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं से जोड़कर आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं विशेष शुक्ला।
1: अब हम कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं हाल ही में आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंटरस्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप से। और हाल ही में आयोजित हुई इस चैंपियनशिप में करीब पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों के 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हम सभी जानते हैं कि खेलों में पूर्वोत्तर भारत लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है और ऐसे में स्थानीय स्तर पर किस तरह से इस चैंपियनशिप से नई प्रतिभाओं को मौका मिला और नई प्रतिभाओं ने अपने प्रदर्शन को रखकर अपने लिए नई संभावनाओं को प्रस्तुत किया, अगली इस रिपोर्ट में आपको सुनवाते हैं।
2: मेघालय में नॉर्थ ईस्ट जोन इंटरस्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 16 से 19 सितंबर तक किया गया। यह प्रतियोगिता वर्ष 2016 के बाद पहली बार मेघालय में आयोजित हुई। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का आयोजन मेघालय स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन ने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया। यह चैंपियनशिप 2027 में मेघालय में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के टीम मुकाबलों के लिए आधिकारिक क्वालिफाइंग मंच भी रही। टीम मुकाबलों में असम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बॉयज, गर्ल्स, पुरुष और महिला वर्ग चारों में खिताब जीते। बॉयज टीम फाइनल में असम ने अरुणाचल प्रदेश को 2-0 से, जबकि गर्ल्स फाइनल में मिजोरम को 2-1 से हराया। पुरुष टीम फाइनल में असम ने मणिपुर को 3-1 और महिला फाइनल में मिजोरम को 3-0 से हराया। महिला टीम की जीत में स्टार खिलाड़ी अश्मिता चालिहा की भी अहम भूमिका रही। मेघालय के खेल और युवा मामलों के मंत्री वेलाडमिक्की शैला ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों के साथ मुकाबला करने और अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मंचों से चैंपियन तैयार होते हैं। राज्य के खेल बजट में हुई बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 8 से 9 वर्षों में यह करीब 40 करोड़ रुपए से बढ़कर 844 करोड़ रुपए हुआ है। इसका उद्देश्य खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय खेलों के लिए चयनित मेघालय टीम को प्रशिक्षण के दौरान विशेष स्टाइपेंड देने की भी बात कही गई। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही असम की स्टार शटलर अश्मिता चालिहा ने भी पूर्वोत्तर में उभरती प्रतिभाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों के लिए नियमित प्रशिक्षण के साथ उच्च स्तर के मुकाबलों का अनुभव भी जरूरी है। उन्होंने मेघालय के खिलाड़ियों को बिना दबाव के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की सलाह दी। इस चैंपियनशिप ने जहां पूर्वोत्तर के खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा का बड़ा मंच दिया, वहीं अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रीय खेलों से पहले मेघालय की खेल सुविधाओं और आयोजन क्षमता को भी सामने रखा। निशा साहू की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं नेहा गोस्वामी, आकाशवाणी समाचार।

तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए, और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्व

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में

0: शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सह अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोध संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबाइनिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबियानिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हुए हैं। दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देशभर में 1100 यूक्रेन के ड्रोन मार गिराया है। नेपाल में करीब 4 हफ्ते पहले अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। इस आपदा में अब तक 1400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 6000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने अपने अपने मैच में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times stresses the urgent need for strong climate action to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. She called for stronger cooperation among stakeholders at the local, regional and global levels to address the challenges posed by climate change.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: President Murmu said farm ponds can help local communities in water-stressed regions. On the first day of the conference yesterday, Prime Minister Narendra Modi addressed the gathering. The Indian Air Force and the Japan Air Self-Defense Force are conducting bilateral air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur to bolster defense collaboration. The fortnight exercise, which will conclude on Tuesday, involves a diverse mix of Indian Air Force frontline combat aircraft, including the indigenous light combat aircraft Tejas, Su-30 MKI and Rafale, while Japan is participating with F-2A fighter aircraft. Japanese Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew a Tejas jet with a pilot, while Air Chief Marshal AP Singh flew solo on the Tejas jet as part of their sorties under the Indo-Japan bilateral air exercise. Talking to media in Jodhpur during an ongoing bilateral air exercise, Air Chief Marshal Singh said Japanese fighter aircraft operating from Indian soil for the first time marks a major milestone in defense cooperation between India and Japan. Union Minister of State for Defense Sanjay Seth today witnessed an air show by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team at Meerut in Uttar Pradesh. The Defense Minister said the two-day air show began yesterday, drawing more than 1 lakh spectators, including students, NCC cadets and NSS volunteers. Speaking to media, Mr. Seth described the performance as a remarkable demonstration of discipline, precision, teamwork and professionalism reflecting the capabilities of the Indian Air Force. The Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across the country to strengthen the fight against drug abuse among young people under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan or Drug Free India campaign. The Ministry of Youth Affairs and Sports said the campaign is witnessing active mobilization of

0: Young People with the program is held at 1,067 locations across the country. Under the 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan, aimed at building a drug-free youth community for a developed India. In Punjab, the third phase of the BJP's Nasha Mukt Yatras was launched today from the Siddiqui border in Fazilka by Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal. Ukraine launched more than 1,000 drones at Russia overnight, including hundreds targeting Moscow. Mayor of Moscow, Sergei Sobyanin, called it the largest ever drone attack on the capital, reporting damage to an oil refinery and a residential building. Mr. Sobyanin said two people were killed and 20 injured in the attacks across wider Moscow region. Russia's Ministry of Defense said its forces shot down 1,100 Ukrainian drones across the country. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Kyiv used a range of missiles and drones in the attack. Pakistani authorities today detained Aleema Khan, the sister of jailed former Prime Minister Imran Khan, ahead of a planned protest by his Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI party next week. Aleema Khan was detained in Lahore and transferred to Kot Lakhpat Jail. She was campaigning for the release of her 73-year-old brother, who has been incarcerated since 2023. India has made a strong start to its medal campaign at the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, with two silver medals coming from shooting on the opening day. Indian shooter Ella Venil Valarivan won silver in the women's 10-meter air rifle individual event. Earlier, Ella Venil, Sonam Muskar and Vidarsa K. Vinod had won silver in the women's 10-meter air rifle team event, giving India its first medal of the Games. China won gold. Meanwhile, Indian women's cricket team has entered the final of the Asian Games after defeating Bangladesh by 114 runs in the semi-final. Indian men's hockey team opened their Asian campaign with a 13-win win over Indonesia today. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जया भारती। श्रोताओं, हमारे देश में खनिज बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला, लौह अयस्क और दूसरे खनिजों से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और देश को राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन जिन इलाकों में खनन होता है, वहाँ रहने वाले लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। खनन के कारण जमीन और पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। कई बार लोगों की पारंपरिक आजीविका प्रभावित होती है और विस्थापन जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। ऐसे में ये जरूरी है कि खनन से मिलने वाले लाभ का कुछ हिस्सा उन लोगों और इलाकों के विकास पर भी खर्च हो जो खनन गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना यानी PMKKKY 17 सितंबर 2015 को शुरू की गई। इस योजना को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी DMF के माध्यम से लागू किया जाता है। DMF खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के कल्याण के लिए काम करने वाले गैर लाभकारी न्यास हैं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना क्या है, इसका पैसा कहां से आता है, इसे किन कामों पर खर्च किया जाता है और खनन से प्रभावित लोगों के जीवन में इससे किस तरह का बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत खनन से प्रभावित इलाके के लिए किस तरह के काम किए जाते हैं और इसमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की क्या भूमिका है।
3: श्रोताओं, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य है खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के विकास और कल्याण के लिए काम करना। इस योजना को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी DMF लागू करता है। वर्ष 2015 में खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में बदलाव करके DMF का प्रावधान किया गया था। DMF का गठन उन जिलों में किया जाता है जो खनन गतिविधियों से प्रभावित हैं। इन फाउंडेशन स्टेशन में खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के हित में काम किया जाता है। डीएमएफ के लिए पैसा जिला स्तर पर जमा किया जाता है और इसका प्रशासन संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहता है। अब

0: तक 23 राज्यों के 656 जिलों में डीएमएफ का गठन किया जा चुका है। श्रोताओं, सवाल आता है कि डीएमएफ के पास पैसा आता कहां से है? खनन कंपनियों और पट्टा धारकों को खनिज निकालने के बदले सरकार को रॉयल्टी देनी होती है। डीएमएफ में भी इसी रॉयल्टी के आधार पर योगदान किया जाता है। 12 जनवरी 2015 को या उसके बाद दिए गए खनन पट्टों के मामले में रॉयल्टी का 10% डीएमएफ में दिया जाता है। वहीं 12 जनवरी 2015 से पहले दिए गए खनन पट्टों के मामले में रॉयल्टी का 30% डीएमएफ में दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल किन कामों के लिए किया जाता है। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के लिए नए और संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए। इनके अनुसार डीएमएफ की कम से कम 70% राशि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च की जानी है। इनमें सबसे पहले आता है पेयजल, यानी खनन से प्रभावित इलाकों में लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराना। इसके अलावा पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण को कम करने, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा को बेहतर बनाने पर भी पैसा खर्च किया जाता है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के कल्याण को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही कौशल विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने, स्वच्छता और आवास, कृषि और पशुपालन जैसे कामों के लिए भी इस राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी 30% तक राशि अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च की जा सकती है। इनमें सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाएं, सिंचाई, ऊर्जा और जल संभर विकास तथा खनन वाले जिलों में पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने के काम शामिल हैं।
1: श्रोताओं, इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि खनन से प्रभावित अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जाता है। ऐसे क्षेत्रों में संविधान के संबंधित प्रावधानों के साथ साथ पंचायतों और वन अधिकारों से जुड़े कानूनों का भी पालन किया जाता है। यानी योजना का उद्देश्य केवल पैसा खर्च करना नहीं है, बल्कि खनन से प्रभावित लोगों की जरूरतों के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोजगार और दूसरी जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। श्रोताओं, अब सवाल ये है कि इस योजना के अंतर्गत जमीन पर कितना काम हुआ है और खनन से प्रभावित इलाकों में विकास के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2026 तक प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत कितनी प्रगति हुई है और इसका लाभ किन क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
2: श्रोताओं, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत अब तक बड़े स्तर पे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जुलाई 2026 तक 4,70,020 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 1,09,938 करोड़ रुपए है। इनमें से 2,92,156 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा 78,809 परियोजनाएं अभी चल रही हैं और इन परियोजनाओं के लिए जुलाई 2026 तक 30,512 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निर्धारित की गई है। श्रोताओं, इन आंकड़ों से पता चलता है कि खनन से प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए बड़ी संख्या में परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इन परियोजनाओं का संबंध लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से है। कहीं पीने के पानी की सुविधा बेहतर करने का काम हो सकता है, तो कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा बढ़ाने का प्रयास, तो कहीं रोजगार और कौशल विकास के अवसर पैदा करने की कोशिश। कृषि और पशुपालन से जुड़े काम भी इस योजना के तहत किए जा सकते हैं। इससे उन परिवारों को अपनी आजीविका को मजबूत करने में मदद मिल सकती है जिनकी पारंपरिक कमाई खनन गतिविधियों से प्रभावित हुई है। श्रोताओं, योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करना भी है। खनन वाले क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी डीएमएफ की राशि का उपयोग किया जाता है। यानी योजना में विकास के साथ साथ पर्यावरण और लोगों के जीवन से जुड़े जरूरी मुद्दे पर भी ध्यान दिया गया है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है लंबे समय तक चलने वाले रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा करना। किसी परिवार को केवल एक बार ही सहायता देने की बजाय अगर उसे कौशल सीखने और कमाई का बेहतर अवसर मिले तो वह लंबे समय तक अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता है। इसलिए कौशल विकास और आजीविका को भी योजना के प्रमुख क्षेत्रों में रखा गया है।

0: श्रोताओं, खनिज देश की संपत्ति है, लेकिन जिन क्षेत्रों में खनिज निकाले जाते हैं वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन पर भी इसका असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के माध्यम से प्रयास है कि खनन से मिलने वाले लाभ का एक हिस्सा उन्हीं क्षेत्रों के विकास और वहां के रहने वाले लोगों के कल्याण पर भी खर्च हो। पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, आवास, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास और रोजगार जैसे क्षेत्रों में किए जाने वाले काम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इस तरह खनन से देश के विकास के साथ साथ खनन से प्रभावित स्थानीय समुदायों के कल्याण पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह। नमस्कार।
1: विश्लेषण।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Sunday, we'll be taking your calls on mutual funds and matters related with them. But do remember that we will not be able to address fund-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद राजेश और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. ख्याल रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से संबंधित सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे. अपने सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
0: वेलकम स्नेहा.
2: थैंक यू.
1: पहले हेडलाइंस के साथ राजेश.
0: ईरान सेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल रिमेन क्लोज्ड अंटिल कंडीशंस आर मेट. Foreign portfolio investors withdraw nearly 21,000 crore rupees from Indian equities in September so far. And in bullion market, gold and silver prices rise last week.
1: ईरान ने कहा उसकी शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा. इस महीने अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 21,000 करोड़ रुपए निकाले और सोने और चांदी की कीमतों में पिछले सप्ताह फिर से तेजी.
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts

0: in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to the first story. Iran has said that the Strait of Hormuz will remain closed until their conditions are met and commitments from the United States are implemented. Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf made these comments according to Iran's semi-official Fars News Agency. Ghalibaf said Iran would continue to fight and negotiate using military force against its enemies and diplomacy to consolidate what it considers gains on the battlefield. Meanwhile, the wider regional conflict continues. Saudi Arabia stated that it intercepted a ballistic missile launched towards Riyadh yesterday, while Yemen's Houthi movement has claimed attacks against Saudi targets. More from our correspondent.
1: Iranian officials have once again said that reopening the Strait of Hormuz depends on US commitments, including an end to fighting and changes to sanctions and restrictions on Iranian shipping. The strait remains heavily disrupted, even as US Central Command has claimed that it has helped more than 2,000 commercial vessels pass through the waterway in the past 2 months. The US State Department, citing the Houthi hostilities with Saudi Arabia, has renewed its travel alert for the West Asia region. The US has warned that the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. Manish Shiva for Akashwani News from Dubai.
2: जी और चलिए कुछ श्रोताओं के पास जो इंतजार कर रहे हैं अपने सवालों के साथ. दिल्ली से योगेश हमारे साथ हैं. स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
3: जी नमस्कार आप सभी को.
2: नमस्कार.
3: मेरा सवाल ये है कि जैसे आजकल की जितनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी एक फाइनेंशियल डिजिटल मोड से हो रही हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो गोल्ड के बॉन्ड्स हो, चाहे वो रियल एस्टेट में रीट्स के इन्वेस्टमेंट्स हो या बॉन्ड्स या पीपीएफ वगैरह शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड वगैरह हो, तो जितने भी एसेट क्लास है सब में डिजिटल माध्यम से ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है. तो ऐसे में डाइवर्सिफाई करने के लिए इस लेवल पे कितना जरूरी आप समझते हैं कि जो फिजिकल एसेट्स होते थे पहले जिनको हम ओन करते थे, जैसे वो प्लॉट या घर हो सकता है या फिजिकल गोल्ड हो सकता है, तो फिजिकल एसेट्स का होना भी कितना जरूरी है एक बैलेंस बनाकर रखने के लिए.
4: योगेश जी, जो आपका ओवरऑल सवाल है वर्चुअल एसेट्स वर्सेस फिजिकल एसेट्स का, तो हर चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान रहते हैं. बट जहां तक डिजिटल ओनरशिप की बात है ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वाइल यू गेन द एक्सपोजर टू दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास वाया दैट मेथड, बट फिजिकल एसेट से आप ओनरशिप से जो एक हमारे दिमाग में एक चीज आती है वो रहती है एक साइकोलॉजिकल, हमें लगता है कि ये चीज हमारे पास है. डिजिटल या वर्चुअल कोई भी चीज होती है तो हमें लगता है कि इसकी पकड़ हमारे हाथ में नहीं है. बट जब भी कोई एसेट क्लास का एक्सपोजर हमें लेना होता है, ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं उनको साइड में रख के हमें ये देखना होता है कि किसी भी चीज को जब आप चाहे फिजिकल ओन कर रहे हो चाहे वर्चुअल ओन कर रहे हो, बट उसका बेनिफिट क्या है आपके लिए, मतलब वो आपके किसी गोल से लिंक्ड है या फिर वो किस टाइप का एक रिस्क या फिर लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स ऐसे कैसे हैं उस फिजिकल एसेट्स में जो आपको सोचना चाहिए, चाहे फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहां तक डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम की बात है तो अगर हम फंड्स के पर्टेनिंग बात करें तो जैसे हमारे कुछ बेसिक थंब रूल्स रहते हैं विच हेल्प अस डाइवर्सिफाई अ पोर्टफोलियो, कि हम एएमसी लेवल पे डाइवर्सिफाई करें, हम कैटेगरी लेवल पे डाइवर्सिफाई करें, हम एसेट क्लास लेवल पे डाइवर्सिफाई करें, ये कुछ चीजें करके हम लंबे समय के लिए अपना पोर्टफोलियो संतुष्टि से बना सकते हैं.
2: जी, आपने जैसा कहा अभी स्नेहा या जैसा सवाल था इनका कि डिजिटल सब कुछ लगभग डिजिटल हो गया है, तो ये सहूलियत है. और लेकिन ये सवाल इनके मन में क्यों आया, मैं उस पर विचार कर रहा था कि क्या इसके पीछे डर क्या है, क्या सब कुछ डिजिटल है तो कहीं सब कुछ कॉलैप्स हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब कुछ ज़मीन पर है. अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसे म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जा रहे हैं और वहां से फिर वो शेयर बाजार में अगर जा रहे हैं या बॉन्ड मार्केट में जा रहे हैं तो वहां से भी वो फिर वो कंपनी एक्चुअली वो बाजार में है वो पैसे.

0: पर यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि चाहे वो बाजार में है, आपने लगाए हुए हैं, ये सब एसेट क्लासेस एक रेगुलेटरी बॉडी के अंडर है, जिनका मेन बेनिफिट ही यही है कि इन्वेस्टर की सुरक्षा और इन्वेस्टर का जो एक एक्सपीरियंस है उसको कन्वीनियंट और इजी बनाने के लिए मतलब यहाँ पे कुछ डाउट नहीं रखना चाहिए।
1: कोई ऐसी कोई हवा हवाई चीज नहीं है डिजिटल की अचानक कॉलैप्स हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ
0: सारे
1: इरेज हो जाएगा,
0: सारे रिकॉर्ड्स डिजिटली रहते हैं
1: जी।
0: मतलब पुराने टाइम पे वो जो शेयर सर्टिफिकेट वाली बात होती थी, काफी लोगों को पता नहीं होता था कि अंदर पड़ा हुआ है कुछ, या वो पेपर
1: भूल जाते थे लोग। अभी भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं हमारे पास ऐसे।
2: सो द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर actually focusing quite a bit on macroeconomic data, the geopolitical developments. You also have the foreign institutional investors flows, the commodity prices and global bond yields. In such a scenario, what should an investor be doing when it comes to mutual funds? How should they navigate particularly the geopolitical situation that's prevailing today?
0: Right. So, there is a specific problem here, which is that in the last 3-4 years, information has been all over. The information flow and thereby the interpretation of every minor macro detail has really reached investors in a way that, so let's say for people who entered post-COVID, we've always been talking about how their experience for 2-3 years had been spectacular, given the kind of returns or the run-up that they were seeing in their portfolios. But suddenly when things started to change, I would not say collapse, change being that is the market design, the ups and downs, then the information started taking importance beyond a particular investor's circumstances or situations. So I would say for investors in a world where everything sort of seems haywire or for the time being, all of that, it is good to know all of it to remain aware of what is happening in the macro world and outside the domestic as well. But when it comes to your own portfolio, you should be grounded in the fact that how your personal policies are, how your circumstances are, how your situation is. If let's say you need some money for a very important thing which you had been investing for, you should really not think about what is happening in the geopolitical arena or anywhere in the world, because you invested your money for this day, so you should pull it out. If in case you do not need your money, just continue with your asset allocation, with your SIPs. Don't be scared because of what is happening out there, because this is the most tough part, staying in the game when things look red in your portfolio.
2: So are there any sector specific mutual funds that you would recommend that people should focus on?
0: I would say specific to sectors, more than that, to understand and or let's say to sort of keep control over where you are investing, you should actually be investing into diversified funds. Thereby, you will be giving the fund manager the opportunity to, with the macro developments, to let's say change the sectoral exposures or the company dynamics within the portfolio for your benefit. And that should be the focus, and
2: so the mantra, according to you, should be that one should continue to invest.
1: Bilkul. Sneha ki raay yahi hai, Rajesh, ki aap girte hue bazaar ka fayda uthaye aur bazaar mein paisa lagate rahe taki aap kam price pe units khareed sake, mutual fund mein bane rahe. Agle caller hai Jaipur se Shivam, swagat hai aapka, sawal puche.
3: Namaste sir.
1: Namaste.
3: सर, मैं अभी आने वाले 7-8 साल के लिए लगातार मंथली SIP करना चाहता हूँ फ्लेक्सी कैप फंड में. तो सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये पारस्परिक का फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो कौन सा बेटर रहेगा सर, प्लीज ये बताइए.
0: शिवम जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने टाइम होराइजन को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, एंड इसीलिए आपने जो एसेट क्लास सिलेक्ट करी है वो भी बिल्कुल सही है, विच इज इक्विटी. जब भी कुछ चुनाव की बात आती है इन अ कैटेगरी लाइक फ्लेक्सी कैप, तो जैसे अभी हम पहले श्रोता को बता रहे थे, डाइवर्सिफिकेशन एक की रहती है अपने पोर्टफोलियो के लिए. तो हमें हमेशा जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम कम से कम 2 फंड्स का चुनाव करें फ्लेक्सी कैप, मतलब किसी भी कैटेगरी में वैसे, बट आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कहा तो 2 फंड्स का चुनाव करें, वो ज्यादा बेहतर रहता है.

0: ताकि किसी भी एक फंड पे हमारी जो पोर्टफोलियो की डिपेंडेंस है उससे प्रॉब्लम ना रहे, और जब इन्वेस्ट करें तो SIP के माध्यम से ही करें।
1: जी आइए और अगली खबर पे नज़र डालते हैं। इस महीने अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIs ने भारतीय शेयर बाजार से 20,974 करोड़ रुपए निकाले हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के कारण निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित हुई है। वैसे देखा जाए तो देश के शेयर बाजारों में कुल बिक्री के जरिए FPIs ने 23,676 करोड़ रुपए निकाले, लेकिन प्राथमिक बाजार में उन्होंने 2,700 करोड़ रुपए का निवेश भी किया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में 25 आधारभूत अंकों की वृद्धि से वैश्विक तरलता की स्थिति पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। भारतीय ऋण बाजार में भी FPIs की बिकवाली का दबाव बना रहा। सितंबर में अब तक FPI ने FAR के जरिए ऋण प्रतिभूतियों से 10,296 करोड़ रुपए निकाले हैं। VRR के जरिए 1,817 करोड़ रुपए की निकासी हुई, जबकि जनरल लिमिट मार्ग से समीक्षा अवधि के दौरान 1,068 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई।
2: If you have any questions related to mutual funds, we have in our studio mutual funds expert Sneha Suri with us. So you can call us at 2331-4444 or 2331-0481 or 2371-7106. In the meantime, we are joined in by Shankar from Bhopal. Shankar, a warm welcome. Please ask your question.
3: Good evening, Market
2: Good
3: Mathur team.
2: evening.
3: Ma'am, my question is about REITs fund. If someone is invested in REITs fund, what should be the allocation into REITs fund as far as equity and debt is concerned and gold? What should be the REITs fund investment? And secondly, REITs fund earns on what? Do they earn on rental income or do they earn on price appreciation of property? How this model of REITs work? Can you please explain to us? Thank you.
0: So, Shankar, when it comes to the kind of allocation you should have beyond the traditional equity and debt allocation. By traditional, I mean equity asset class and debt asset class overall versus, let's say, gold or REITs. In your portfolio, while majorly equity and debt should be along with as per your asset allocation, for a REITs kind of exposure or say gold, you can look to have, let's say, a 10 to 15% kind of an allocation. Having said that, now even equity mutual funds have the leeway to invest some portion in REITs or the listed real estate and gold slash silver or any kind of commodities. So there is no longer a need to have a specific allocation carved out for, say, gold or REITs. Having said that, if you're still looking for some, of course, you can look to have a lower allocation, as I said, around 10%. When you say how they earn, while the details of that I will definitely have to look at, but since they are listed, the price appreciation is well part of it. So that part remains same as shares.
1: जी और अभी के जो हालात हैं स्नेहा, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि गिरते हुए बाजार का फायदा उठाएं, और लेकिन आम तौर पर ये गिरता हुआ बाजार जब काफी समय तक कायम रहता है और देर तक, तो थोड़ी घबराहट तो होती है। चलिए हम इस पर आगे चर्चा रखेंगे जारी अपनी। और नोएडा से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
4: सर, मेरे पास SBI का कॉन्ट्रा फंड है, वो बहुत अच्छा प्रूव नहीं कर रहा है। एक बार मैंने मार्केट मंत्रा में ही मैंने सुना था कि SBI कॉन्ट्रा में आप निवेश कीजिए SIP, लेकिन कोई अच्छा परसेंटेज उसमें जनरेट नहीं हो रहा है, तो कृपया सलाह दें।
0: विनोद जी, हम जिस कभी भी जिस भी कोई भी इक्विटी फंड्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्ट करते टाइम कि हमारा कोई भी फंड होता है वो हमेशा उतार चढ़ाव से गुजरते हुए उसके बेस्ट फेजेस आएंगे और उसके वर्स्ट फेजेस आएंगे, और कुछ ऐसे फेजेस होंगे जब आपको ना ही कोई बेनिफिट हो रहा होगा, बहुत ही मिडलिंग टाइप ऑफ फेजेस होते हैं। यही वो एक्चुअल फेजेस होते हैं जब हमें उसमें लगे रहना होता है, बिकॉज अगर वो फंड आपके पोर्टफोलियो को ओवरऑल कंप्लीट करता है तो हमें उसके जो एक मिडलिंग फेज होता है उसमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। स्पेसिफिकली जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग एज अ स्ट्रैटेजी रहती है, ये इसमें चुनाव ऐसे शेयर्स या स्टॉक्स का करते हैं फंड

0: मैनेजर्स जिनकी संभावना ऐसी रहती है कि ये अभी मार्केट से अलग चल रहे हैं, बट जब मार्केट का एक दूसरा टाइप ऑफ लेट्स से डायरेक्शन आएगा तब ये आपको बेनिफिट देंगे. तो कॉन्ट्रा और जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्टाइल्स होते हैं, इनमें थोड़ा जो एक धैर्य या पेशेंस होता है वो हमें ज्यादा लेकर चलना होता है. ओवरऑल फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में सूटेबल है, आप SIP के माध्यम से उसमें लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो भी आपको समय देना चाहिए. और अगर आपने हाल फिलहाल में स्टार्ट करा है तो एक्विटी को रंग दिखाने के लिए कम से कम 3 या 5 साल हमें चाहिए ही रहते हैं. तो मेरी समझ में आपको बने रहना चाहिए.
1: फ्रॉम ओडिशा वी आर जॉइंड इन बाय अंबुजा. अ वार्म वेलकम अंबुजा.
2: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा.
1: गुड इवनिंग.
2: माय क्वेश्चन इज व्हेन आई विल टेक ए लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, व्हाट डिसिप्लिन शुड आई फॉलो?
0: सो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड इज अ वेरी यू नो अ वेरी न्यू एंड अ वेरी गुड वे ऑफ लेट्स से कंटिन्यूइंग द कंपाउंडिंग पार्ट ऑफ योर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टिल गेटिंग सम लिक्विडिटी इन योर फेवर. आई वुड से यू शुड जस्ट नॉट वेन एवर टेकिंग एनी काइंड ऑफ लोन. अकॉर्डिंग टू मी वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट रिमेन्स दैट एनी काइंड ऑफ यू नो इंटरेस्ट पेमेंट यू शुड रिमेन ऑन टॉप ऑफ इट एंड यू शुड नॉट लेट्स से कंसिडर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट of taking a loan for every liquidity needs that crops up. So you should have discipline in the sense that you are taking loan against your mutual fund units for this particular reason because you are not able to arrange for any other, let's say, way out. While this remains a good way to take to get some liquidity immediately, but a dependence of a kind that this becomes your way to go every time should be, I guess, taken care of.
3: जी. अगले कॉलर है मुंबई से पंकज. स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
4: हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंडल टीम.
3: गुड इवनिंग.
4: आई हैव गॉट टू क्वेश्चंस. वन इज इफ आई हैव अ 5+ ईयर होराइजन, हाउ मेनी फंड्स शुड आई एक्चुअली हैव इन माय पोर्टफोलियो एंड हाउ डू आई अवॉइड ओवर डाइवर्सिफिकेशन इन माय पोर्टफोलियो? वन इज दैट. एंड द सेकेंड वन इज अबाउट म्यूचुअल फंड्स नाउ इन्वेस्टिंग इन फॉरेन मार्केट. सो हाउ गुड और बैड आर दीज? एंड स्पेशली नाउ एट सच अ टाइम व्हेन से द US मार्केट्स और अदर मार्केट्स आर डूइंग आउट परफॉर्मिंग द इंडियन मार्केट. सो इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन सच फंड्स? थैंक्स.
0: राइट. सो पंकज, टेकिंग योर सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट, you know, one important aspect of diversification beyond AMC and fund level diversification or asset class diversification is having some diversification or some of your money beyond the domestic or the local horizon, which becomes the domestic country. So having some allocation to international funds is a really good way of topping up diversification in your portfolio. Having said that, international specific mutual funds which are 100% investing in those sort of are going through a blockage of a kind that you are not able to invest in those funds. But there are funds out there, if you let's say search, a Google search would tell you that there are funds which are investing some portion of their investments, their money, into international specific stocks, which can be a good way to start if they are overall diversified. Now coming to your first question, that since you're beginning, you have a long-term horizon, how many funds you should have? So there is no scientific formula or rule of thumb as such that these many funds will get you this much kind of a benefit of any kind. How you should go about selecting is something that I can help you with. One, look by looking at your time horizon and risk appetite, have some sense of asset allocation, how much equity you want, how much debt you want. Secondly, in case of equity, you can look to have, let's say, 1-2 flexi cap, multi cap as core of your portfolio because they are diversified. They get you large, mid, small all at once. And then when you have some experience already, then you can look to have some 20% into small and mid cap, which require longer horizon because of the risk that they get you, but of course the return benefit for the generation of wealth of your overall portfolio can enhance with that kind of exposure.
1: Ji. Dinesh from Delhi joins us now. Dinesh, a warm welcome.
5: Namaskar. I am Dinesh Kumar from Delhi, Ashok Vihar. I want to ask that from long-term perspective benefits, which funds are likely to perform better, gold funds, silver funds, or aggressive hybrid funds? Thank you.
0: Right. So, Dinesh ji, the kind of comparison that we are making here is

0: is somewhat not aligned because aggressive hybrid funds are a mix of equity and debt, while gold and silver become part of the commodities. And we've seen historically how you know, there have been times when commodities or gold, let's say here, performs really well when there is uncertainty in the equity market, which hurts, of course, aggressive hybrid funds since they are about 65-70% in equity. So I would say you can look to have, if you're looking for a long-term horizon, you can look to have exposures of all of these asset classes into your portfolio, because a combination is what will help you in the long term. And, you know, specific allocations, standalone allocations may not be able to generate that much benefit.
1: जी, MP से DS शर्मा हमारे साथ हैं. स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
2: हेलो.
1: हेलो जी.
2: नमस्कार सर.
1: नमस्कार.
2: मैं DS शर्मा बोल रहा हूँ, मंदसौर MP से.
1: जी.
2: मैं 2017 में मैंने HDFC से कुछ फंड लिए थे सर.
1: जी.
2: बैलेंस में करीब 15 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए एक टैक्स सेविंग में, और कुछ दूसरे भी लिए थे. 2-3 साल तक तो उनके मेरे पास में रिजल्ट आते रहे, मगर अब क्या है, 2-3 साल से उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है. बैंक जाता हूँ तो कहते हैं ये है ही नहीं हमारे अकाउंट में, जबकि मेरे पास में उनका हार्ड कॉपी है, सब कुछ है. तो क्या करना चाहिए सर?
0: जी डीएस शर्मा जी, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो बैंक को अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें सर्च करके वो मिलना चाहिए, या फिर अगर आपने डायरेक्टली बैंक के साथ करा था तो बिल्कुल ही मिलना चाहिए. और अगर कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बीच में था जिसके साथ आपने करा था, आप उनसे मदद ले सकते हैं. और दूसरा तरीका ये रहता है कि आप मतलब हम एज इन्वेस्टर्स, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम डायरेक्टली जो AMC है जिनसे हमने इन्वेस्ट करा है उनको भी रीच आउट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट के जरिए, या फिर सेबी भी अलाउ करता है हमें कंप्लेन रेज करने का. तो ये तरीके आप,
3: कोई अम्बड्समैन नहीं है जिनके पास जा सकते?
0: बिल्कुल सेबी, तभी मैं बोल रही हूँ कि वहां पे भी होगा.
1: आइए अगली खबर पर नजर डालें हम. सोने और चांदी की कीमतों में पिछले सप्ताह फिर तेजी देखने को मिली. ये बढ़त मुख्य रूप से सप्ताह के अंत में आई रिकवरी के कारण रही, जिसे कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से समर्थन मिला. MCX में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 1% की बढ़ोतरी हुई और ये 1,54,381 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. दिसंबर अनुबंध वाली चांदी के वायदा भाव में 2.8% की बढ़त दर्ज की गई और ये 2,41,603 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाले सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 0.4% की बढ़ोतरी हुई और ये $4,390.70 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर बंद हुआ.
3: फ्रॉम जयपुर वी आर जॉइंड इन बाय जितेंद्र. वार्म वेलकम जितेंद्र.
4: हेलो. हाँ मैडम, ये एक्टिव फंड क्या होता है? एक नया NFO आया है शायद, मोतीलाल ओसवाल का ना किसका, एक्टिव फंड. तो क्या मतलब वो किस टाइप का, मतलब एक्टिव से क्या समझ में आ रहा है?
0: जितेंद्र जी, पूरी जानकारी के लिए मुझे पूरा नाम चाहिए होगा फंड का, कि मतलब मोतीलाल के कौन से फंड या क्या नाम.
3: वी विल गेट बैक टू हिम नेक्स्ट वीक समटाइम. मूविंग ऑन, द न्यू मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फ्रेमवर्क विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ. Under this framework, Unified Payments Interface UPI transactions of up to 2,000 rupees will attract zero MDR. As a result, there is no impact on small value UPI transactions up to 2,000 rupees. National Payments Corporation of India said these small value UPI transactions comprise more than 95% of the total volume of UPI person to merchant transactions. It added that the intent of levying reasonable MDR is to ensure that UPI remains accessible and convenient for everyday transactions while supporting long-term ecosystem sustainability.
1: Ji, agli caller hai Punjab se Meenakshi. Swagat hai aapka, sawal poochhein.
5: मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ बठिंडा से. मेरा सवाल लगभग इसी से मिलता जुलता था कि अगर मैं UPI के थ्रू SIP में इन्वेस्ट करती हूँ और अमाउंट अगर 2,000 रुपए है तो क्या MDR लागू होने के बाद उस पर कोई असर आएगा?
0: मीनाक्षी जी, अभी तक जो मैं आपको बता सकती हूँ वो यही है कि एज एन SIP इन्वेस्टर हम पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बाकी आगे आने वाला समय बताएगा.

0: Domestic investors are expected to focus on macroeconomic data, geopolitical developments, foreign institutional investor flows, commodity prices and global bond yields for Qs in the week ahead. On the economic front, market participants will closely track core industries data. The primary market is also set for another busy week with six main board initial public offerings, IPOs, opening for subscription. Globally, investors will monitor developments surrounding the West Asia conflicts. Focus will also be on anticipated visit by Chinese President Xi Jinping to the United States.
1: और जल्दी जल्दी स्नेहा हम दो चार सेंटेंस में अगर हम बताना चाहें, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि बस गिरते हुए बाजार का फायदा उठाएं, बाजार में बने रहें, आप आगे क्या जोड़ना चाहेंगे इस पे?
0: और कंपाउंडिंग कैसे होती है? हाउ शुड वी आस्क, यू नो, आस्क द लिसनर्स टू बी वेरी वेरी यू नो वेरी वेरी इन्वॉल्वड इन द म्यूचुअल फंड्स.
2: सो अगर आप एक से दो साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको जो एक बढ़ोतरी दिखती है उसी को कंपाउंडिंग कहते हैं.
1: वक्त इतना ही है आज स्नेहा कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
2: जी धन्यवाद.
0: हेडलाइंस वंस अगेन. ईरान सेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल रिमेन क्लोज्ड अंटिल कंडीशंस आर मेट. FPI withdraw nearly 21,000 crore rupees, and in bullion market, gold and silver prices rise last week. That's what we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर ब्रिजेश गंझू मारा गया है। ये मुठभेड़ उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ हुई। ब्रिजेश गंझू को गोपाल सिंह भोक्ता के नाम से भी जाना जाता था। वो प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी का शीर्ष कमांडर था।

0: बैठक की सह अध्यक्षता मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबियानिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई और 20 घायल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारिवन महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने आज अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Prashant Kumar Sinha. President Draupadi Murmu has said numerous natural disasters in recent times have made it clear that robust climate action is essential to mitigate climate impacts. Addressing the valedictory session of Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening, the President said the global scientific community is warning that climate risk has become very serious. She stressed on the need to strengthen active cooperation amongst stakeholders at local, regional and global levels to prevent and address the issue. President Murmu said it is well known that climate change is causing imbalances across various levels of human existence. She said biodiversity loss, water stress and land degradation are examples of the imbalances.
2: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
1: Union Minister Manohar Lal, Supreme Court Judge Justice B.V. Nagaratna and NGT Chairman Justice Prakash Srivastav also addressed the conference. The Indian Air Force and the Japan Air Self-Defense Force are conducting bilateral air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur to bolster defense collaboration. The 14-day exercise, which will conclude on Tuesday, involves a diverse mix of Indian Air Force frontline combat aircraft, including the indigenous light combat aircraft Tejas, Su-30 MKI and Rafale, while Japan is participating with the F-2A fighter aircraft. Japanese Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew a Tejas jet with a pilot, while Air Chief Marshal A.P. Singh flew solo on a Tejas jet as part of their sorties under the Indo-Japan bilateral air exercise. Later talking to media, Air Chief Marshal Singh said Japanese fighter aircraft operating from Indian soil for the first time marks a major milestone in defense cooperation between India and Japan. Union Minister of State for Defence Sanjay Seth today witnessed an air show by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team at Meerut in Uttar Pradesh. The Defence Ministry said the two-day air show began yesterday, drawing more than 1 lakh spectators, including students, NCC cadets and NSS volunteers. Speaking to the media, Mr. Seth described the performance as a remarkable demonstration of discipline, precision, teamwork and professionalism, reflecting the capabilities of the Indian Air Force. The Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across the country to strengthen the fight against drug abuse among young people under the Nasha

0: Mukt Yuva Abhiyan, or Drug Free India campaign. The Ministry of Youth Affairs and Sport said the campaign is witnessing active mobilization of young people, with the program being held at 1,067 locations across the country under the 100 weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan, aimed at building a drug-free youth community for a developed India. Moving on to sports, India has made a strong start to its medal campaign at the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, with two silver medals coming from shooting on the opening day. Indian shooter Ilavenil Vilavarayan won silver in the women's 10-meter air rifle individual event. Earlier, Ilavenil, Sonam Maskar and Vidarsha K. Vinod had won silver in the women's 10-meter air rifle team event, giving India its first medal of the games. China won gold. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi congratulated Ilavenil Vilavarayan on her individual silver. Both also congratulated the women's 10-meter air rifle team for opening India's medal account at the Games. Meanwhile, Indian women's cricket team has entered the final of the Asian Games. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के चौथे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा पानी संकट से सुरक्षा तक। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
2: कहते हैं जल है तो जीवन है, लेकिन भारत जैसे देश में पानी की कहानी सिर्फ जीवन की कहानी नहीं है, ये खेती की कहानी है, गांव की अर्थव्यवस्था की कहानी है, महिलाओं के श्रम की कहानी है, स्वास्थ्य की कहानी है और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की कहानी भी है। पिछले 25 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन को देखें तो जल प्रबंधन का विषय उनकी प्रशासनिक यात्रा के महत्वपूर्ण पहलुओं में रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के अंतर्गत चर्चा करेंगे 25 वर्ष पानी संकट से सुरक्षा तक, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में राष्ट्रीय जल मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्ते
4: जी, धन्यवाद।
2: अशोक जी, सबसे पहले आपसे पूछा जाए तो जल क्षेत्र में आपका लंबा अनुभव रहा है, मोदी जी की जो गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर जल सुरक्षा के अंतर्गत किए गए उपायों को आप किस तरह से आंकते हैं?
3: धन्यवाद। पहले मोदी जी को बधाई 25 ईयर्स कम्प्लीशन करने के लिए। मोदी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, पावर, रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर सब में इकोनॉमी में क्या है, बट जो वाटर सेक्टर में जितना योगदान किया है, बहुत बड़ा योगदान उन्होंने प्रधानमंत्री और सीएम के तौर पे किया था। बेसिकली उनके जो फिलॉसफी थे वाटर के बारे में, ये वाटर एक बुनियादी रिसोर्स है जिसको हम मानते थे पहले कुदरत के देने, तो हमेशा आते रहते हैं, बट उसको भी संभालना है, उसको डेवलप करना है। ये उन्होंने 2001 में जब सीएम गुजरात बने थे तब से वो शुरू कर लिया था। कच्छ में वो पानी लेके उसको अच्छा वो खासा बनाया, ग्रीनरी बनाया, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया था। और इनफैक्ट अनरिलेटेड सेक्टर जो हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में एक ग्राम ज्योति योजना किया था उसने, दैट इज एक्चुअली फॉर सेपरेशन ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर फीड लाइन, उसका भी प्रभाव वाटर में पड़ा था। प्रधानमंत्री के नाते भी इन्होंने यहाँ के 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन भी किया था। जल का मैनेजमेंट तो अनेक छोटे छोटे साइलोस में बांटे हुए थे, उन्होंने 2019 में सबको एक ही अम्ब्रेला के अंडर में लाके एक नया दिशा दिया था। इंस्टीट्यूट मेजर इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के
2: मंत्रालय बना के, और ये बहुत बड़ा कदम साबित हुआ और इससे धीरे धीरे बदलाव भी आ रहा है। अमरेंद्र जी, आपने जो गुजरात के जल संकट को बहुत करीब से देखा है, तो गुजरात जैसे राज्य में जहाँ कई क्षेत्रों को लंबे समय तक पानी की कमी से जूझना पड़ा था और उसे दूर करा जब मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, और फिर यही सोच वे राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए और उन्हीं जो प्रोग्राम से उन्हीं जो मिशन थे उसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया, तो इस दृष्टिकोण का क्या महत्व है आप देखते हैं?
5: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
4: एक प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व हैं, लगातार प्रयोग करते हैं और उनका प्रयोग बड़ा सफल रहता है। गुजरात को मैंने बहुत ही करीब से देखा है और बार बार देखा है। वहाँ की जो जल समस्या रही है या आज थोड़ी बहुत जो भी है, वही राष्ट्रीय स्तर पर वही समस्या मौजूद है और उन चीजों को, उन मुद्दों को सही तरीके से वहां पर लागू किया जाता है। जैसे देखिए, गुजरात में है कि कच्छ का एक युगीन सूखा है, आप जानते हैं जमाने से चला आ रहा है, ये नहीं कि वहां पर किसी तरीके का कुछ असंतुलन पैदा हुआ। दूसरा है सौराष्ट्र में पानी की लगातार कमी रही है। तीसरा है उत्तर गुजरात में जो भूजल का दबाव है आबादी की वजह से, वो भी है। और चौथा जो है वो हर जगह आप देखने को मिलता है पूरे भारत में, जो तटीय इलाका है, समुद्र तटीय इलाका, खारे पानी की समस्या है। इन सारी समस्याओं को बहुत ही करीब से देखकर समझकर जो नीतियां बनी गुजरात में, वही राष्ट्रव्यापी बन गया। कोई भी नीति हो, कोई भी योजना हो, जब राज्य से चलकर केंद्र तक पहुंचे, न कि केंद्र से चलकर राज्य तक पहुंचे, तो वो पैरासूट अप्रोच तो है नहीं। आम आदमी की जो समस्या है, वही राज्य की समस्या को ही आम आदमी की समस्या कहते हैं। मामले को आइडेंटिफाई करके जिस तरीके से उन्होंने चीजों को परिवर्तित किया और फिर पानी की समस्या सुलझती चली गई। एक उदाहरण मैं शुरुआत में ही मैं दे दूं कि कच्छ का जो नमक इलाका है, नमक जहां से पैदा होता है, जहां नमक की खेती होती है, वहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। भूजल का प्रयोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि नमक बनाने के काम में आता है वो, और वो पानी जो है वो समुद्र के पानी से 6 गुना ज्यादा खारा है, पीने लायक तो है नहीं। लेकिन और अंग्रेजों के समय की जो व्यवस्था थी, पाइपलाइन से, मिट्टी के पाइप से जो है पानी की आपूर्ति हो, तो नरेंद्र मोदी जी जब वहां पर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पानी की आपूर्ति शुरू की नमक किसानों के लिए, और एक परिवार को जो भी पानी मिलता है उससे उनके जीवन की एक आस बनी रहती है और उनके जरूरतों को पूरा हो जाता है इस तरह का। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है जो अक्सर सुनने को और पढ़ने को नहीं मिलता है। ये मेरा अपना अनुभव, मैंने देखा है और सच में ये सराहनीय कदम रहा।
2: जी,
4: आज आप केंद्र स्तर पर पूरे देश में पानी को लेकर जिस तरीके का की उपलब्धि हुई है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, लेकिन वो शुरुआत वहीं से हुई। बहुत संजीदगी से चीजों को समझना एक बहुत बड़ी बात होती है।
2: जी हाँ, खासकर जो नमक की खेती कर रहे हैं, सारा दिन पानी में रह रहे हैं लेकिन उनको पानी नहीं मिल पा रहा क्योंकि वहाँ का पानी खा रहा है, और ऐसे परिवारों तक आप पीने लायक पानी पहुँचा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर सराहनीय और बहुत ही पावन कदम।
4: और आप देखिए ना, पानी नमक की जो खेती होती है वो एक व्यक्ति की खेती नहीं होती है, पूरे परिवार की संबद्धता उसमें होती है। पूरे परिवार को पानी मिल जाए ये कितनी बड़ी बात होती है, जीवन रक्षा की बात हो गई।
2: आइए सुनते हैं एक विशेष रिपोर्ट जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए।
5: गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल वर्ष 2001 से 2014 के दौरान जल संरक्षण को राज्य की प्रमुख विकास प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। उस समय सरकार ने पानी की कमी और गिरते भूजल स्तर से निपटने के लिए बारिश के पानी को रोकने, भूजल रिचार्ज करने और नर्मदा के पानी को सूखे क्षेत्रों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में जल संरक्षण के लिए चेक डैम, तालाबों की गहराई बढ़ाने और अन्य जल संचयन संरचनाओं का बड़े स्तर पर निर्माण किया गया। गुजरात के नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसर विभाग के अनुसार मार्च 2013 तक राज्य में 76,477 चेक डैम बनाए गए थे। विभिन्न योजनाओं को मिलाकर जल संसाधन विभाग के तहत चेक डैम की कुल संख्या 88,312 तक पहुंच गई थी। चेक डैम का उद्देश्य बारिश के पानी को बहकर समुद्र में जाने से रोकना था। इनसे पानी कुछ समय तक जमा रहता है और धीरे धीरे जमीन में उतरता है। इससे कुओं और बोरवेल में पानी का स्तर बढ़ाने तथा सिंचाई की सुविधा सुधारने में मदद मिलती है। इस अभियान में सरदार पटेल सहभागी जल संचयन परियोजना की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें सरकार के साथ स्थानीय लोगों, सामाजिक संस्थाओं और लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस मॉडल के तहत सरकार और लाभार्थी मिलकर चेक डैम तथा अन्य जल संरचनाएं तैयार करते थे। गुजरात की दूसरी प्रमुख योजना थी सुजलाम सुफलाम योजना। राज्य सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य मध्य और दक्षिण गुजरात के अपेक्षाकृत अधिक पानी वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी को उत्तर गुजरात के पानी की कमी वाले इलाकों तक पहुँचाना था। योजना में सिंचाई, जल संचयन और पेयजल तीनों पर ध्यान दिया गया। इस योजना के तहत लगभग 332 किलोमीटर लंबी सुजलाम सुफलाम स्प्रेंडिंग नहर विकसित की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक आधिकारिक जानकारी में कहा गया था कि सुजलाम सुफलाम योजना के तहत तालाबों की गहराई बढ़ाई

0: गई और लंबे रिचार्ज चैनल बनाए गए ताकि बारिश का पानी समुद्र में ना जाए और भूजल का स्तर सुधरे। इसके अलावा नर्मदा परियोजना को आगे बढ़ाना भी गुजरात की जल नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसका लक्ष्य सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के सूखे क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल पहुँचाना था। बाद के वर्षों में नर्मदा जल को बड़ी संख्या में तालाबों और जलाशयों तक पहुँचाने की व्यवस्था भी विकसित की गयी। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में गुजरात का जल संरक्षण मॉडल तीन प्रमुख आधारों पर टिका था: बारिश के पानी का संचयन, भूजल का पुनर्भरण और बड़े जल स्रोतों से सूखे क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना। चेक डैम, तालाब, रिचार्ज नहरों और जन भागीदारी के जरिए राज्य में पानी की समस्या से निपटने का एक व्यापक प्रयास किया गया।
1: अशोक जी, एक समय था जब गुजरात सूखा प्रभावित क्षेत्र था। पीने के पानी का 80% हिस्सा भूजल निकालकर पूरा किया जाता था। और उधर जब बरसात की बात करें तो बरसात के मौसम में नर्मदा का जो अतिरिक्त पानी आता था समुद्र में चला जाता था। फिर लाई गई सौसरी नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना यानी सौनी योजना, और इसने गुजरात, विशेषकर जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है, उसकी तस्वीर आप क्या मानते हैं किस तरह से बदल दी?
2: वाटर की समस्या में, वाटर सिक्योरिटी में दो चीज प्रभावित करते हैं, एक तो वाटर क्वांटिटी और एक वाटर क्वालिटी। जैसे आपने बताया वाटर क्वांटिटी की कमी थी वहां पे कच्छ के एरिया में, तो नर्मदा डैम तैयार करके उसके पापा वहां पानी लाया गया था। उन्होंने उस समय ये जो आपने बजाय सौनी योजना शुरू किया था, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरीगेशन स्कीम, उसमें बेसिकली वो नर्मदा के एक्सेस वाटर को, फ्लड वाटर को तकरीबन 100 से ज्यादा डैम्स बना के उसमें स्टोर करने की कोशिश की थी एंड बहुत सक्सेसफुल हो गया था। उस समय आंकड़े बताते हैं कि 77% इंक्रीज इन इरिगेशनबल एरिया हो गया और ऑलमोस्ट 55% ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो गया था। तो ये सक्सेसफुली वहां पे इम्प्लीमेंट होने के बाद एज ए मुख्यमंत्री ही अंडरस्टूड दी वैल्यू ऑफ सेविंग गुड वाटर एंड कलेक्टिंग गुड वाटर। तो रेन वाटर जो आप बोलते हैं ना, बाद में एज प्रधानमंत्री उन्होंने कैसरीन कैंपेन शुरू किया था, जल शक्ति अभियान कैसरीन कैंपेन, ये तो जन भागीदारी से के। तो टू और थ्री इम्पोर्टेंट जो पहलू है इनके जो वाटर के अप्रोच में, एक तो जनभागीदारी है। प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते थे कि जल आंदोलन है जन आंदोलन होने चाहिए, सबको मिला के काम करने से ही फायदा होता है। एंड सेकंड वन वाज डिसेंट्रलाइज स्टोरेज। ये तो हम डैम बनाते हैं, नर्मदा डैम उन्होंने कम्प्लीट किया था और इनॉग्रेशन किया था, और उस समय हम मानते थे कि बड़े बड़े डैम ही हमारा मॉडर्न इंडियन का टेम्पल्स होता है। बट उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि एनवायरमेंटली बहुत इश्यूज होते हैं, सबमर्जेंस का इश्यू होता है, कभी कभी डैम्स जो हम जिसके बेसिस में हम बनाते हैं उतना फुलफिल नहीं होता है। बट जन भागीदारी से और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच से जब हम पानी का संचयन करने का काम शुरू करते हैं, देन एवरीबडी गेट्स इन्वॉल्व। ये कैसरीन एग्जाम्पल है यहाँ पे। सो जहाँ पे बोलता है कि जो भी बारिश, जितने भी बारिश आपके घर में, खेत में, कहीं भी आते रहते हैं, उसको संचय करके रखेंगे तो सबकी भागीदारी भी होता है और जहाँ पे पानी बरसते वहीं सेव करना है, क्योंकि उसमें तीन ये था, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो सबका डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर स्टोरेज, उन्होंने ये गुजरात में देखा था और यहाँ पे देश भर में लागू किया था। और आंकड़े बताते हैं पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 1 बकरानंगल डैम का जो 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी पिछले 5 साल में जन भागीदारी से संजय कर
1: स्टोर हो चुका है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अमरेंद्र जी, आपसे जाना चाहूँ, हम सौनी योजना की बात करें तो सौनी जैसे जो बड़े वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट हैं, उसको आप जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के साथ कैसे देखते हैं?
3: देखिए, गुजरात ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ चेक डैम्स की जो बात अभी हुई, फार्म पॉन्ड्स और रिचार्ज स्ट्रक्चर जो बनाए गए, तो चेक डैम केवल पानी रोकने की संरचना नहीं है। मूलभूत जो बात है वह है बहाव की गति को कम कर देना और भूजल में रिचार्ज करना। देखिए, कुछ पानी तो वाष्पीकरण होता है, लेकिन ज्यादातर पानी, एक 10 फीट तालाब है गहराई का, तो उसमें 1.5 फीट पानी नीचे जाता है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक धारणा है और ये सच्चाई भी यही है। सौनी योजना के साथ जो सबसे अच्छी बात हुई है कि इसका उद्देश्य नर्मदा प्रणाली के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों और सिंचाई व्यवस्था तक पहुंचाना रहा है। और इसको बिल्कुल आम भाषा में यदि कहते हैं तो यह है नर्मदा के उपलब्ध पानी और पानी की कमी झेल रहे सौराष्ट्र के बीच में एक जल सेतु का काम किया है। और ये पूरे भारत में और कहीं नहीं आपको देखने को मिलता है। तो कोई योजना राज्य से इतनी ज्यादा प्रेरक हो जाए,

0: इस सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है। और गुजरात का अनुभव ये बताता है कि वाटर ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह जो आप भेजते हैं तो उसके साथ साथ जल संरक्षण, जल संवर्धन और उसके वास्तविक उपयोग की बात होती है। पानी इकट्ठा कर लेना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पानी आप इकट्ठा कर ले रहे हैं, रन ऑफ वाटर को आप रोक ले रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे हो? आने वाला समय जो भविष्य जो है वो यही है कि वाटर बजटिंग का अब जमाना आ गया है कि कैसे आप उन पानी की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा बचा कर रखते हैं और कितना अधिकतम उपयोग करते हैं। ये गुजरात की ओर से दिया गया, पूरे राष्ट्र को एक दिया गया बहुत बड़ा उपहार।
1: बिल्कुल,
2: आई कैन सप्लीमेंट दैट, आंकड़े बताएंगे तो 115 डैम्स में पानी भरा गया था और ऑलमोस्ट 1,84,000 चेक डैम्स और 3,27,000 फार्म पॉन्ड्स को रिज्यूविनेट किया गया था। इतना बहुत बड़ा संख्या है एंड जैसे आपने बताया ये जो फार्म पॉन्ड्स और चेक डैम से जल स्तर भी बढ़ता है वो सबके लिए यूजफुल भी होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे गुजरात के जब भूजल की हम बात कर रहे हैं तो भूजल का जो बहुत प्रयोग होता था, पानी की कमी थी, जल संकट था, लेकिन जब सोच बदली और इसका दोहन कम किया गया तो गुजरात विशेष रूप से जो राज्य के उत्तरी क्षेत्र में भूजल स्तर का जो स्तर है उसे ऊपर उठाने में एक योजना शुरू की गई, सुजलाम सुफलाम। तो ये किस तरह से कारगर सिद्ध हुई?
2: सुजलाम सुफलाम अगेन, दैट इज अगेन ए वेरी इनोवेटिव स्कीम जो वाटर टेबल बढ़ाने का कार्यक्रम किया था एंड उसमें काफी हद तक पर्टिकुलरली इन नॉर्थर्न गुजरात में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स तैयार करके लोगों जन भागीदारी से वाटर टेबल बढ़ाने का कार्यक्रम किया, वो वेरी सक्सेसफुल भी रहा था।
1: जी हाँ, तो अगर अमरिंदर जी आपसे जानना चाहूँ, जो सुजलाम सुफलाम है और चेक डैम्स की हमने खैर बात ही की है, तो ऐसे प्रयासों से गाँवों में क्या वास्तविक बदलाव पैदा होता है और कई ऐसी कहानी या उदाहरण आपको याद हो जो आप इस उसको बदलाव का उदाहरण मानते हैं?
0: पूरा गुजरात ही बदलाव का उदाहरण है, लेकिन आप भौगोलिक रचना देखें, संरचना कहिए, तो उत्तरी गुजरात का जो हिस्सा है वो भूजल के मामले में कमजोर रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दोहन हुआ उसका पहले से ही, क्योंकि उसके जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां भी पानी की समस्या रही है। अब देखिए सुजलाम सुफलाम जो योजना है ये जल प्रबंधन को स्थानीय गांव की सीमा से बाहर निकालकर, एक तो गांव का पानी हो गया लेकिन उस सीमा से बाहर निकालकर रीजनल लेवल पे क्षेत्रीय स्तर पर देखने की एक कोशिश की गई है और ये कोशिश ही नहीं, एक सफल कोशिश है। उपलब्ध जल को, उपलब्ध पानी की वाले इलाके को वहां तक पानी पहुंचाना, चाहे वो पाइपलाइन से हो या नहर से हो या जलाशय से हो, और रिचार्ज जैसी व्यवस्थाएं सुजलाम सुफलाम में है। नाम से ही लगता है कि हाँ हरितिमा है, हरियाली है, तो ये सफल रही है योजना। और इसका मूल संदेश जो रहा है, सफल संदेश है, वो यही कि जहाँ पानी उपलब्ध है उसे वहां तक पहुंचाया जाए जहाँ उसकी जरूरत अधिक है। बहुत बड़ी बात है, संवेदनशीलता है। देखिए पानी को लेकर जब तक आपके अंदर में हार्दिक श्रद्धा नहीं हो, अंदर संवेदनशीलता नहीं हो, ये सरकार के लेवल पे ही चीजें नहीं होती हैं। सरकार ने एक अच्छा प्रयोग किया और लोगों को बताने में, लोगों को जताने में सरकार सफल रही है कि पानी की जरूरत जो है उसके आखिरी प्रयोगकर्ता, उपयोगकर्ता आप हैं। आम जनता ने इस बात से, क्योंकि पानी की परंपरा रही, आप उदाहरण देखें तो पानी की परंपरा रही है, तो आम जनता तक उनके ज्ञान को, लोक ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करना एक बहुत बड़ी बात है। पानी का दुरुपयोग वहां गुजरात में मुझे देखने को कहीं नहीं मिला, राज्य के कम से कम 17 जिलों में मैंने देखा है। उस तरह की स्थिति नहीं है कि पानी का दुरुपयोग हो रहा है, तो खेती में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग खेती में है, वहां पर बचाकर पानी को रखना, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, ये सुजलाम सुफलाम योजना की एक बहुत बड़ी सफलता है। और इस तरह से जो योजना सफल रही है इसमें सरकार और आम जनता का सामंजस्य रहा है। और किसी एक इलाके की बात आप क्या करेंगे, उस पूरे इलाके में गांव के गांव आज हरियाली में, हरियाली का आनंद ले रहे हैं।
1: बिल्कुल, पारंपरिक आपने जैसे जल संरक्षण की बात की, तकनीक होती थी हमारे देश में, इतिहास रहा है, जैसे टांका है, बावड़ी है, कुंड है, कुएं हैं, तालाब, लेकिन बीच में ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। और अगर देखें तो कई क्षेत्रों में इसके आपने कहा पुनर्जीवित किया जा रहा है, फिर से इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। और विशेष रूप से जब से प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में ऐसे उपायों का, ऐसे जो एग्जाम्पल्स हुए हैं उनका जिक्र किया है, तो इन प्रयासों में और तेजी आई है।
0: बिल्कुल, और गुजरात ही नहीं, गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि देवास में क्या हो रहा है, किसी और इलाके में क्या हो रहा है, वहां पर भी एक आम जनता की जो जिम्मेवारी बनी और जिस तरीके से उन्होंने उसका तरीके से निर्वाह किया, तो पूरे मुल्क को, पूरे देश को वो बता रहे हैं कि पानी आपका अपना संसाधन है, इसे बचाइए, इसे तरीके से खर्च कीजिए और इसे बढ़ाइए।
1: जी अशोक जी, आपने शुरुआत में जिक्र किया

0: था कि जल संरक्षण में कई मुख्य बिंदु हैं और उनमें से एक है जन भागीदारी। तो ऐसे ही दिशा में गुजरात में भी कदम उठाए गए, जैसे हम वास्मो और पानी समितियां का बात की बात करते हैं तो उनके माध्यम से जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को महत्व दिया गया। तो इस मॉडल में ऐसा क्या रहा जिसने पानी की व्यवस्था से जो गांव है और जो समुदाय है उनकी भूमिका को इतना मजबूत कर दिया?
1: देखिए, ये एक बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशन लाया उन्होंने। हम क्या करते थे, सब जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देते थे, ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं, हमारा काम उपयोग करना है, दैट इज दी एटीट्यूड। बट यहाँ पे हैबिटेशन वॉस ड्रिंकिंग वाटर कमिटीज या जो पानी पंचायत और वाटर यूजर्स का एसोसिएशन बनाया था, उसको वाटर के मैनेजमेंट में हिस्सेदार बनाया था मोदी जी ने उस समय SCM। तो लोगों को भी लगा कि देखो काम हो रहा है, हमारे भी एक हिस्सा है, हमको भी इन्वॉल्व करना है, एंड उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया। और ऐसा नहीं है कि खाली पेपर में उसको एक जगह पे बिठा दे, तुम यहाँ बैठ को तुम इसका जो भी है डिसिग्नेशन हो, काम हम करते रहेंगे, डिसीजन हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने जिसको पद पर बिठाया था उसको डिसीजन देने का भी पावर दिया था और इम्प्लीमेंटेशन का भी पावर दिया गया था। इसमें क्या होता कि एक ओनरशिप आ गया, लोगों को जो भागीदारी से वो आगे आकर पानी के बजट का काम किया, उनको भी लगा कि ये हमारे लिए कर रहे हैं और हमको इसमें इन्वॉल्व होके एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे काम करना है, उसने किया गया। तो ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो मोदी जी ने किया बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ कि मोदी जी ने पानी को अनेक रूप होता है, मतलब पानी बहते पानी नदी में जाते हैं, वो स्टैगन वाटर तो लेक में होते हैं, कुएं में होते हैं, पॉन्ड्स में होते हैं, फिर रेन वाटर है, वो बारिश गिरते रहते वो रेन वाटर होते हैं, आइस होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, और वेस्ट वाटर भी होते थे, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि बहुत सारा पानी जो इंडस्ट्रियल में वेस्ट में जाता था और उसको ट्रीट करके हम दूसरे तरफ प्रयोग कर सकते थे। तो ये एक नया सोच था और सर्कुलर इकोनॉमी, उन्होंने वहां पे भी ये रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर का भी यूज किया था। तो जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज पर फिक्स किया गया कि आपको जो पानी यूज करते हैं उसका रिड्यूस करो, रिड्यूस नहीं कर सकते उसको कम से कम ट्रीट करके रीयूज करो। तो ये ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन कम करने का और सरफेस वाटर एक्सप्लॉयटेशन करने का जो प्रयोग उन्होंने किया, दैट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल।
0: रीयूज ऑफ वाटर के ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जब मैं फिलहाल समितियों की जन भागीदारी की बात कर रही हूँ, तो जो पानी समितियां जैसे गांव जल और स्वच्छता समिति की जो अवधारणा है उसे आप किस तरह से देखते हैं अमरेंद्र जी? और अगर हम देखें तो क्या पानी की व्यवस्था तभी टिकाऊ बनती है जब गांव खुद उसके संचालन और रखरखाव की जो जिम्मेदारी है स्वयं उठाए?
2: देखिए, गोंड लोगों का जब शासन था मध्य प्रदेश में, तब से तालाब की और पानी की एक परंपरा रही है जो इतिहास मैंने पढ़ा है। गुजरात में जो प्रयोग हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसे हम एक वाक्य में कहें तो जल सुधार कह सकते हैं
0: जी।
2: पानी को सरकार और आम जनता की साझेदारी की जो संस्कृति विकसित हुई है वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। ये जो जल सुधार का जो महत्वपूर्ण प्रयोग रहा है उसमें इस बात का जोर रहा है कि ग्रामीण पेयजल केवल सरकारी इंजीनियरिंग का विषय नहीं रहे
0: जी।
2: बेयरफुट प्लम्बर पैदा हुए, बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अमूमन आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैंने देखा है उन इलाकों में, कई गुजरात के कई रिमोट एरिया में देखा कि वहां बेयरफुट प्लम्बर हैं, जल का उनको ज्ञान भी है, वो लोक ज्ञानी भी हैं, और गांव को स्वयं अपनी जल व्यवस्था करनी है जिम्मेवारी सौंपी गई, उत्तरदायित्व, सारा काम नौकरशाही कर दे और सरकार कर दे नहीं। और जब तक उत्तरदायित्व की भावना नहीं आएगी, स्वामित्व की भावना नहीं आएगी, तब तक आप जल जैसे संसाधनों को एक व्यवस्था में लाकर उसे अनुशासित नहीं कर सकते हैं। इस जल व्यवस्था में जो कम्युनिटी ओनरशिप जिसकी मैंने बात की है और स्थानीय जन भागीदारी और जवाबदेही, यह एक अवधारणा मजबूत हुई है। गुजरात एक बहुत बड़ा प्रेरक रहा है इस मामले में, और यही सोच बाद में राष्ट्रीय स्तर, जो हमारे डिस्कशन की शुरुआत जो हुई और आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आया, ये वही योजना जो बाद में जल जीवन मिशन में दिखाई देती है, जहां पानी समिति को ग्राम पंचायत की उप समिति के रूप में संस्थागत भूमिका दी गई। देखिए, पानी पंचायत तो उड़ीसा में भी देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से, अनुशासित ढंग से लाकर और उसका आउटकम निकालना, उसका रिजल्ट निकालना, इतना आसान काम नहीं था। गुजरात इस मामले में अग्रणी जरूर है।
0: बिल्कुल, और जो नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खासियत है। अशोक जी, अगर हम अभी हम रीयूज ऑफ वाटर की बात कर रहे थे, ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो आजकल बहुत ही बड़ा विषय बना हुआ है, और पानी को दोबारा उपयोग में लाना, अगर आम जनता को बताए कितना महत्वपूर्ण है और वे क्या कर सकते हैं इस दिशा में?
1: रीयूज ऑफ वाटर, ग्रे वाटर इज

0: इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, बट आई वुड से दैट मोर देन रीयूज ऑफ ग्रे वाटर, हमको व्हाट वी शुड लुक एट इज रीयूज ऑफ ऑल ट्रीटेड वाटर। स्वेज वाटर को भी ट्रीट करके वापस उपयोग ला सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में 85-89% वाटर यूसेज एग्रीकल्चर में होता है, वेस्ट होता है, तो उस पानी को एक अच्छे लेवल पर ट्रीट करके हम सिंचाई के लिए हम यूज करते हैं, तो जो एक्सट्रैक्शन फ्रेश वाटर रिवर्स या ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होते हैं वो कम होता है। भले अब व्हेन इट कम्स टू द ग्रे वाटर जनरली नॉट स्वेज वाटर, वो जो हमारा घर का पानी ये सब को रियूज करने का, उसे ज्यादा सेविंग ज्यादा होता नहीं, बट हर बूंद जो बचा है वो अच्छा है
1: जी।
0: उसी तरह से हमको इन्वॉल्व करना है, और क्योंकि रियूज ऑफ ग्रे वाटर में अभी जो घरों में प्रॉब्लम टू रिट्रोफिट डुअर पाइपलाइन ऐसा कुछ करना है, बट अगर इफ वी आर मेकिंग ए पॉलिसी दैट आगे के जो भी हाउसेज आते हैं उसमें डुअर पाइप लगाएं और लोकल एरिया में ग्रे वाटर को ट्रीट करके यूसेस में लाइक फॉर इरिगेशन पर्पसेस या फॉर आवर लॉन्स के लिए या पानी धोने के लिए कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए ये यूज कर सकते, तो ये जो अच्छे वाटर का जो वेस्ट कर वो कम कर सकते। तो रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीयूज ऑफ ग्रे वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आई वुड से दैट रीयूज ऑफ ब्लैंक बिगर थिंग रीयूज ऑफ ऑल ट्रीटेड वाटर फॉर अप्रोप्रिएट पर्पसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: जी हाँ बिल्कुल है, और इसमें जन भागीदारी चाहे वो गांव हो शहर हो सबको निभानी पड़ेगी, क्योंकि आरओ का पानी जो इतना वेस्ट होता है उसको भी आप बहुत ही आसानी से रीयूज कर सकते हैं। अशोक जी, जल जीवन मिशन मोदी जी की मुझे लगता है कार्यकाल की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और नल से जल पहुंचाना ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि गांवों में जहां महिलाओं को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, भर के लाना पड़ता था, तो इस योजना ने उनके समय को उनके रोजमर्रा के काम को बहुत ही आसान कर दिया। और एक आंकड़े के मुताबिक देश की कुल 19 करोड़ 35 लाख से अधिक जो ग्रामीण परिवार हैं उनमें से 81% से अधिक परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति हो रही है। तो आपके अनुसार ये आंकड़े क्या तस्वीर पेश करते हैं?
0: ये एक आई वुड से अनइमेजिनेबल सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क को अचीव किया है। जब मोदी जी 2015 में वो जो स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया था रेडफोर्ट से, दैट वाज वॉज एडिंग एस द वाटर क्वालिटी एस्पेक्ट, उसमें हम बाद में आएंगे। और जब पानी का जो टॉयलेट्स बन गया और वाटर बॉडीज खराब नहीं हो रहा था, देन ही मूव्ड ऑन टू प्रोवाइडिंग गुड ड्रिंकिंग वाटर टू दी फैमिलीज बी रिलीजियस। देखा जाए तो हर गाँव में महिलाओं पर जिम्मेदारी पड़ती है कि वो पानी कहीं से भी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के सर पर रखे आए और कुकिंग के लिए यूज करे, वो पानी की जिम्मेदारी उस पर होता है। और महिलाओं को और एक इस वाटर में इम्पोर्टेंस आता है कि वाटर बॉर्न डिसीजेस का प्रभाव भी उस पर भी ज्यादा पड़ता है। बच्चों पे डायरिया केसेस आते हैं और वाटर बॉर्न डिसीजेस का जो भी तकलीफ उठाना पड़ता है वो लेडीज को ज्यादा पड़ता है। इसलिए जब 2019 में मोदी जी जल जीवन मिशन एक वंडरफुल विजन ऑफ प्रोवाइडिंग जल एट द हाउस ऑफ द वुमन हाउस ऑफ फॉर द वुमन गिव सेविंग दम टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, वन ए ड्रजरी ऑफ वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस 5-6 किलोमीटर उसका टाइम सेविंग हो गया, सेकेंड अच्छा पानी पीने का पानी पीना योग्य पानी आपके घर में मिल रहा था, तो उनका जो हेल्थ बर्डन जिसके वजह गंदा पानी की वजह से जो होता था वो कम हो गया, एंड दैट लेड टू द सेविंग्स ऑफ द मनी विच यूज टू गो फॉर फॉर मेडिसिन एक्सेट्रा एंड ऑल्सो द डेज फॉर लेबर लॉस्ट। ये बहुत सारा आर्थिक और हेल्थ और सोशल जो डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट उसको हुआ, दैट वॉज ए ग्रेट सक्सेस, एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली पीपल इन द वर्ल्ड व्हेन आई हैड गॉन टू द वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस ऑल इन यूएन में दे वर नॉट एक्चुअली विलिंग टू बिलीव दैट हमें कर पाया, इतना बड़ा काम कैसे कर सके, बिकॉज इट रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ले करना पड़ता है। और जो आंकड़े बताया आपने 81% अभी कंप्लीट हुआ है, आगे बढ़कर हाउ उसको मैनेजमेंट करने का, उसका जैसे गुजरात में किया था दैट वाटर टैप का प्लम्बर्स का लोकल करना, ये सब जल जीवन मिशन में का हिस्सा है एंड दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस।
1: जी अमरेंद्र जी, गुजरात के अनुभव से लेकर जल जीवन मिशन तक क्या आपको पानी के मुद्दे में एक बदलाव दिखाई देता है जहां फोकस पानी पहुंचाने से जल सुरक्षा की ओर बढ़ा है?
2: जी हाँ, राज्य के जो पुराने अनुभव हैं और केंद्र के जल जीवन मिशन ने एक दूसरे में जुड़ाव है, जुड़ गए हैं, और उससे पानी की यात्रा बड़ी सफल दिख रही है। और जहां तक बात आगे के लिए है तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो जन सहभागिता है और स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन है, इसकी जो अवधारणा जो थी वो बिल्कुल उसकी संस्कृति जो विकसित हुई वो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की सोच को जल के जो

0: संकाय हैं, जल संकाय जिसको कहते हैं, वाटर बॉडीज या जो भी, तो 2019 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पष्ट मिशन का रूप ले, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को आज का नहीं देखना है, आने वाले 25 सालों का देखिए, जो बहुत ही वो चुनौतीपूर्ण होगा पूरे विश्व के लिए। देखिए अगला विश्व युद्ध पानी के लिए और मिट्टी के लिए ही होगा, तो उसमें ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होगी। लेकिन शुरुआत जो हुई है भारत में वो बहुत ही अच्छी शुरुआत है, और अब ये केवल नल से पानी पहुंचाने की बात नहीं है, चुनौती है नल में नियमित पानी हो, पानी की गुणवत्ता हो और सुरक्षित जल स्रोत हो।
1: जी
0: चुनौती यही है,
1: यही चुनौती है, और इसी चुनौती पर हमें खरा उतरना, इससे निपटना है। और
0: जितना पानी आप निकाल रहे हैं उतना पानी तो जाना ही चाहिए,
1: जाना ही चाहिए।
0: जी हाँ,
1: और उसमें जन भागीदारी बहुत ही महत्व रखती है। अशोक जी, आपने जैसे मोदी जी के नेतृत्व में वर्षा जल संचयन के लिए कैच द रेन मुहिम की शुरुआत की, आपने शुरुआत में इसका जिक्र भी किया, तो आप इस मुहिम को किस तरह से देखते हैं?
2: दिस वंडरफुल डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक वे ऑफ स्टोरिंग वाटर। पहले हमारा सोच था कि हम पानी को जो हम भी बरसते उसको कहीं लेके जाके डैम बना के वहां से फिर पंप करके वापस सिंचाई के लिए यूज करें, बट कैच द रेन टैगलाइन विद वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, पानी जहां बरसते हैं वहीं वहीं को उसी को सेव करना है और ग्राउंड वाटर वहां पे करना है। तो इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं, एक तो डिसेंट्रलाइजेशन का है बिकॉज हर घर में हर खेत में पानी सेव कर सकते हैं। सेकंड पार्टिसिपेशन, हर व्यक्ति बूढ़ा बच्चा महिला मर्द सब इसमें भागीदारी ले सकते हैं, और अपने घर में अपने आंगन में जो भी बारिश आते है उसको अगर संचय करके रखेंगे तो वाटर टेबल्स उसका बढ़ जाते हैं और हमारे एनर्जी भी सेविंग हो जाते हैं, क्योंकि पहले हम देते थे कि ग्राउंड वाटर को पंप करने के लिए मोटर यूज करते थे, 2 HP मोटर, 5 HP मोटर, 10 HP मोटर तक किया। अगर हम वाटर सेव करेंगे तो जल स्तर ऊपर हो जाते हैं और एनर्जी का भी सेविंग होता है। तो दिस इज अ वेरी बिग मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीपल टू सेव कैच द रेन।
1: जी अमरिंदर जी, कैच द रेन जो मूवमेंट था, मतलब उस दिशा में बहुत ही कदम उठाए गए हैं, तो आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं इस मुहिम के बाद कि लोगों की थॉट में, लोगों के विचारों में, लोगों के प्रयासों में किस तरह से बदलाव आया है?
0: देखिए ये अवधारणा तो नई तो है नहीं, लेकिन जो हाल के वर्षों में जो बदलाव दिखा है वो यह है कि बारिश को बहने नहीं बचाने की सोच भी, ठीक है। दूसरी बात है कि इसलिए इसका अगला संदेश जो है, जो मुझे लगता है सरकार की प्रतिबद्धता है, आत्म प्रतिबद्धता, वो यही है कि पानी का इस्तेमाल खत्म होना, पानी की उपयोगिता खत्म नहीं होना चाहिए, कि पानी की उपयोगिता ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, विभिन्न स्तर पर होनी चाहिए, जैसे ग्रे वाटर का है या खेती के अलावा भी क्या उसका उपयोग हो सकता है। और देखिए कितनी दूरदर्शिता है मोदी सरकार की, कि पानी की संभावना, पानी की मौजूदगी, कितना पानी है उसके अनुरूप प्रजाति की फसलें जो है वो विकसित की जाए, उनको एडॉप्ट किया जाए। जरूरी नहीं कि गेहूं से ही हम अपने खाद्य की आदतों में गेहूं को रखें, बाजरा का भी है, जो मोटे अनाज है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, पानी के लिए भी अच्छा है। वाटर बजटिंग जो है आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है, सरकार इस बात को बहुत ही तरीके से, बहुत गहराई से और बहुत विस्तार से इस बात को समझ रही है।
1: खेती बाड़ी में भी जल संरक्षण के अंतर्गत बहुत प्रयास किए गए हैं, पर ड्रॉप वाटर सेविंग करने के लिए, मतलब तो इस तरह से बदलाव को आप किस तरह से बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
2: इंडिया में 85-89% पानी की यूसेज एग्रीकल्चर में होता है, तो अगर हमको पानी बचाना है तो एग्रीकल्चर में बचाव चाहिए। हमारे वाटर यूज एफिशिएंसी एग्रीकल्चर में 30% है, तो अगर हम उसमें या 10% का भी इम्प्रूवमेंट किया तो हमारे लिए बहुत पानी पीने के लिए मिल जाएंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रम उसमें शुरू किया था, एक तो जैसे अप्रोप्रिएट क्रॉप्स का, लेस वाटर यूसेज क्रॉप्स का यूज करना है, देन PMKSY हर खेत को पानी का एक प्रोग्राम, इसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर ड्रॉप का एक प्रयोग किया, इसलिए उन्होंने इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन पे जोर दिया, ड्रिप इरिगेशन को बहुत प्रचार किया और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रोप्रिएट क्रॉप्स का भी कर लिया, और नया टेक्नोलॉजी को यूज करके वाटर की जरूरत के हिसाब से पानी को सिंचाई व्यवस्था करने के लिए इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्नोलॉजी का भी उन्होंने पुश दिया है। तो एग्रीकल्चर में इफ वी कैन इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, वी विल बी सेविंग अ लॉट लॉट लॉट वाटर।
1: जी हाँ, तो मोदी जी ने यही प्रयास किए हैं 25 वर्ष में कि खेती में भी कम पानी का प्रयोग हो, जल संरक्षण भी हो, गांवों तक भी पानी अच्छे से पहुंचे, नल से जल तक जो उनकी अवधारणा है वो भी कारगर सिद्ध हो रही है, और इस तरह से लोगों का

0: जीवन स्तर है उसमें भी बहुत बदलाव आ रहा है। तो जो पानी की कहानी सिर्फ एक नल तक पहुंचाने वाले पानी की कहानी नहीं है, ये कहानी है पानी के स्रोत को बचाने की, हर बूंद को संजोने की। और मोदी जी के 25 वर्ष की जो जन सेवा की यात्रा में गुजरात में जल प्रबंधन से जुड़े प्रयासों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन तक के प्रयासों ने जल सुरक्षा और जल उपलब्धता की दिशा में नई सोच और नए आयाम जोड़े हैं। अशोक जी और अमरेंद्र जी, आप दोनों स्टूडियो में आए और इस बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के चौथे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा पानी संकट से सुरक्षा तक। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: ये देख कैसे।
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: दीका हाँ, मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
5: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
5: आई नो ना।
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल के विकास के लिए दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली मेट्रो की सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड बर्लिन में इनोट्रांस 2026 में भाग लेगी, वैश्विक मंच पर सेवा विस्तार की दिशा में बड़ा कदम। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कैंसर देखभाल में नवाचार और किफायती उपचार विषय पर सेमिनार को संबोधित किया। और दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा पहल के अंतर्गत राजधानी में स्वच्छता पौधारोपण और जन जागरूकता अभियान चलाया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
9: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: उन्होंने स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सभी पक्षों के बीच सक्रिय सहयोग मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जल संकट वाले क्षेत्रों में कृषि जल संरक्षण इकाइयां स्थानीय समुदायों के लिए उपयोगी हो सकती हैं।
9: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी

0: मुर्मू ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य साझेदार राज्य के रूप में भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के रूप में आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस कड़ी में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम और दिल्ली नगर निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक का ऐतिहासिक टाउन हॉल केवल भवन नहीं बल्कि दिल्ली के समृद्ध इतिहास और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि इसकी ऐतिहासिक और स्थापत्य पहचान को सुरक्षित रखते हुए इसे आधुनिक पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ा जाए। श्रीमती गुप्ता ने कहा है कि ग्लोबल हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित होने के बाद ये परिसर देश दुनिया से दिल्ली आने वाले पर्यटकों को पुरानी दिल्ली के इतिहास, संस्कृति और विरासत से परिचित कराने का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौता ज्ञापन के अंतर्गत ऐतिहासिक टाउन हॉल, प्रेस बिल्डिंग और पार्क का संरक्षण करते हुए एक ग्लोबल हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य ऐतिहासिक भवन की मूल विरासत पहचान को सुरक्षित रखते हुए उसका अनुकूली पुनः उपयोग करना है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली मेट्रो रेल निगम की सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड बर्लिन में होने वाले इनोट्रांस 2026 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरुआत करेगी। इसके माध्यम से वो मोबिलिटी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करेगी।
3: इनोट्रांस 2026 जर्मनी के बर्लिन में हर 2 वर्ष में आयोजित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा व्यापार मेला और रेल परिवहन उद्योग पर आधारित केंद्र है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में DMIL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय जमुआर ने कहा कि इनोट्रांस 2026 DMRC और DMIL की विशेषज्ञता को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए एक अहम मंच प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी दुनिया भर के परिवहन अधिकारियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स और मोबिलिटी लीडर्स के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी। DMIL ने पिछले 3 महीनों में 5 अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं जमा की हैं, जो उसके अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार की एक अहम शुरुआत है। इनोट्रांस 2026 संस्करण उन तकनीक पर ध्यान केंद्रित करेगा जो रेल परिवहन को बदल रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज इंडियन कैंसर सोसाइटी द्वारा आयोजित कैंसर देखभाल में नवाचार और इलाज को किफायती बनाने से जुड़े विशेष सेमिनार को संबोधित किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए नवाचार और किफायतीपन का साथ साथ चलना जरूरी है। उन्होंने कैंसर की रोकथाम, जागरूकता, शुरूआती जांच और समय पर रेफरल को प्रभावी कैंसर देखभाल की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि समय पर बीमारी की शुरुआती पहचान से जान बचाने के साथ परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों से भी राहत मिलती है।
4: फॉर अ पेशेंट एंड देयर फैमिली, किसी मरीज और उसके परिवार के लिए कैंसर का निदान केवल एक चिकित्सकीय चुनौती नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक तनाव, अनिश्चितता और भारी आर्थिक बोझ भी लेकर आता है। इसीलिए वह नियता को नवाचार से अलग मुद्दे के

0: रूप में नहीं देखा जा सकता। दोनों को साथ साथ आगे बढ़ना होगा। कैंसर के इलाज को अधिक किफायती बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है बीमारी का शुरुआती चरण में पता लगाना।
1: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने मरीजों को 35 वर्षों तक सहानुभूतिपूर्ण सहयोग देने के लिए कैंसर सहयोग की सराहना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज नायर सर्विस सोसाइटी और ग्लोबल नायर सेवा समाज द्वारा आयोजित नायर शिखर सम्मेलन 2026 और विद्याधिराजा महोत्सव समारोह में शामिल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि महान संत और समाज सुधारक चट्टम्पी स्वामीकल ने सामाजिक भेदभाव और जातिगत रूढ़ियों के विरुद्ध समाज को जागरूक कर समानता और समरसता का संदेश दिया। ये आयोजन उनके इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाता है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इसी भावना के साथ दिल्ली में रह रहे केरलम के सभी भाई बहन अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजते हुए दिल्ली की विविधता को समृद्ध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में हरितालिका तीज महोत्सव 2026 में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने हरितालिका तीज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तीज व्रत नहीं बल्कि नारी के संकल्प और शक्ति की गाथा है। माता पार्वती के तप और संकल्प से जुड़ा ये पर्व आज भी सभी माताओं और बहनों की आस्था, शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने हरितालिका तीज को नेपाली और गोरखाली नारी की शक्ति और स्वाभिमान का पर्व बताते हुए समाज की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय कॉलेज के 55वें वार्षिक समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। श्री सूद ने कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों और उनके सफर का जश्न मनाना उनके लिए खुशी का अवसर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: राजधानी में विभिन्न रामलीला समितियों ने आज भूमि पूजन और ध्वजारोहण के साथ श्री रामलीला महोत्सव की तैयारियों का शुभारंभ किया। आज ऐतिहासिक लवकुश रामलीला समिति ने लाल किले के सामने लवकुश पार्क में भव्य भूमि पूजन और ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल और दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भूमि पूजन में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भगवान श्रीराम, माता सीता, प्रभु लक्ष्मण और भगवान श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना की। श्री हनुमान ध्वज को भूमि में स्थापित कर दिल्ली के रामलीला महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री खंडेलवाल ने कहा कि रामलीला केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों, आदर्शों, मर्यादा, कर्तव्यनिष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण का जीवंत उत्सव है।
3: प्रभु राम की जो मर्यादा है, उनके जो सिद्धांत है, वो प्रतिपादित होते रहे और हम सब मिलकर के प्रभु श्री राम के गुण गाते रहे। रामलीला हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है और आज से विधिवत रूप से भूमि पूजन के साथ दिल्ली में रामलीला महोत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो जाएंगी।
1: श्री खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली की रामलीलाएं देश की सांस्कृतिक विरासत का गौरवशाली प्रतीक हैं, जो नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। दक्षिण दिल्ली के बदरपुर और तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्रों में आज 11 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण और सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने इन विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और निगम पार्षद रोहतास बिधूड़ी तथा मंजू भी उपस्थित रहीं। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि इन कार्यों पर खर्च की जा रही राशि दिल्ली सरकार के अनुसूचित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने स्वच्छता ही सेवा पहल के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता, पौधारोपण और जन जागरूकता अभियान चलाए। पुरानी दिल्ली में विकसित फाउंडेशन के सहयोग से लाल किला और अंगूरी बाग क्षेत्र में आयोजित अभियान में करीब 400 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। अंगूरी बाग में पौधारोपण भी किया गया। पूर्वी क्षेत्र में स्वामी दयानंद मार्ग और उत्तरी क्षेत्र के तिमारपुर, गांधी विहार, वजीराबाद और जीटीबी नगर में विशेष सफाई अभियान चलाए गए। इस दौरान नागरिकों को कचरे के उचित निस्तारण और स्वच्छता बनाए

0: के लिए जागरूक किया गया। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आसमान साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल के विकास के लिए दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली मेट्रो की सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड बर्लिन में इनोट्रांस 2026 में भाग लेगी। वैश्विक मंच पर सेवा विस्तार की दिशा में बड़ा कदम। और दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा 2026 के अंतर्गत राजधानी में स्वच्छता पौधारोपण और जन जागरूकता अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर के युवा हिस्सा ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता के मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक के सह

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 8:11 हो गए हैं और एफएम गोल्ड पर यह समय है कार्यक्रम मधुरिमा का। आज की शाम मधुरिमा में मैं हूं आपके साथ रेशमा, और आज आपको सुनवा रही हूं राग किरवानी पर आधारित फिल्मी गीत, या फिर उसकी झलक लिए हुए फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं 1965 में आई फिल्म मेरे सनम के इस गीत के साथ, जिसमें आवाज है मोहम्मद रफी की और संगीत ओपी नैयर का।

जी, राग किरवानी पे आधारित ये गीत सुना आपने फिल्म मेरे सनम से। और राग किरवानी दरअसल कर्नाटक संगीत के किरवानी राग से लिया गया है, इसीलिए इसका अपना कोई थाट नहीं है। शुरू शुरू में जब ये राग कर्नाटक संगीत से हिंदुस्तानी संगीत में आया तो केवल वादन में इसका प्रयोग होता रहा, लेकिन धीरे धीरे गायकों में भी ये राग काफ़ी लोकप्रिय हो गया। तो यूं तो इस राग में ख्याल भी गाया बजाया जाता है, लेकिन सुगम संगीत के लिए ये राग उपयुक्त रहता है, इसीलिए फिल्मी गाने, भजन, गजल सब गाए जाते हैं इस राग में।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 8:21:09 हो गए हैं और FM गोल्ड पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा मेरे यानी रेशमा के साथ। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको सुनाया था दिल्ली का ठग फिल्म से गीत, जिसमें आवाजें थी आशा भोसले और किशोर कुमार की। और जाहिर सी बात है मधुरिमा में क्योंकि आज राग किरवानी की बात हो रही है, तो उसी की झलक लिए हुए था ये गीत भी। तो श्रोताओं, राग किरवानी की हम बात कर रहे हैं, तो इसके शास्त्रीय पहलू की बात करें तो इसका वादी स्वर है पंचम, समवादी है षडज, और इस राग में कोमल गंधार और कोमल ही धैवत का प्रयोग होता है और शेष सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसकी जाति है संपूर्ण संपूर्ण, क्योंकि आरोह और अवरोह दोनों में सारे स्वर लगते हैं। श्रृंगार रस, खासकर वियोग श्रृंगार वाले गीतों में राग किरवानी खूब खिलता है, जैसे 1963 में आई फिल्म दिल एक मंदिर के इस गीत में।

शैलेंद्र की बोल, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और शंकर जयकिशन का संगीत था इस गीत में। राग कीरवानी की बात हो रही है मधुरिमा में, जो कि वेस्टर्न म्यूजिक के हार्मोनिक माइनर स्केल जैसा लगता है और जिसका यूं तो कोई गायन या वादन समय तय नहीं है, पर रात्रि के दूसरे पहर में ये राग ज़्यादा पसंद किया जाता है। 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी से मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में शंकर जयकिशन के ही संगीत से सजे इस अगले गीत के साथ अब मधुरिमा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुनते रहिए FM गोल्ड और रेशमा को दीजिए अनुमति।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विशेष शुक्ला। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का हर अपडेट, खेल के मैदान की हर खबर और एशियन गेम्स के अधिक क्लेवर के साथ। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर, जहां पर आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे जापान के नगोया में जारी 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की, जहां भारतीय महिला निशानेबाजों ने अपने सटीक निशानों की बदौलत पदक तालिका में लगाई है भारत की हाजिरी। इसके बाद जानेंगे सुचिका तारियाल की कहानी, जिन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत के लिए पदक पक्का करके जापान में रचा है इतिहास। वही हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक बार फिर आ पहुंची है एशियाई खेल के फाइनल में। जानेंगे आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले का पूरा हाल और इसके साथ ही कार्यक्रम में चर्चा होगी भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम के दमदार प्रदर्शन की तथा बैडमिंटन और टेबल टेनिस से आई खुशखबरियों की। तो जापान में 20वें एशियाई खेलों का आगाज हो गया है और इसके साथ ही आगाज हो गया है दिन ब दिन नए खिलाड़ियों और सितारों के उदय का। इसी कड़ी में भारतीय निशानेबाजों ने आज अपने सटीक निशानों से जापान के आईची नगोया में एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत का पदार्पण कराया। एलावेनिल वलारिवेन ने आज महिलाओं के व्यक्तिगत और टीम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया।
1: सिल्वर मेडल, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर व्हाट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द एंटायर नेशन। वलारिवेन 252.4, सेकंड सिल्वर ऑफ द डे, सेकंड मेडल ऑफ दीज गेम्स फॉर दिस लेडी।
2: यू हैव सीन द फोकस इन हर फेस व्हाइल शूटिंग, नाउ यू सी हर स्माइलिंग। कांग्रेचुलेशंस टू हर।
3: भारत की एलावेनिल वलारिवेन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक हासिल किया। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता एलावेनिल ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। स्पर्धा का स्वर्ण पदक जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ जीता। इस शानदार उपलब्धि पर एलावेनिल ने अपने अनुभव कैसे साझा किए, आइए सुनते हैं।
4: For that one given shot. I'm very thankful to the entire government, to the state government for implementing such schemes that help the athletes grow. With all the schemes that have been coming up, we definitely can say that India is rightly towards being called a sporting nation, and we are just miles away from achieving our epitome. I think it was more about following my technique, following my process, and be the absolute best that I can do for that one given shot. I'm very thankful to the entire government, to the state government for implementing such schemes that help the athletes grow. With all the schemes that have been coming up, we definitely can say that India is rightly towards being called a sporting nation, and we are just
3: इससे पहले भारत ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेनिल वलारिवेन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। सोनम ने व्यक्तिगत क्वालिफाइंग में चौथे स्थान पर रहते हुए भारत के लिए 634.1 अंक हासिल किए, जबकि ओलंपियन एलावेनिल 633.5 अंकों के साथ सातवें स्थान पर रही। चीन 1904.2 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि भारत ने 1897 अंकों के साथ अपना दूसरा स्थान हासिल करते हुए 2026 एशियाई खेलों में अपना पहला पदक अर्जित किया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।

0: तो पदार्पण हो चुका है भारत का, और इसके बाद एक के बाद एक आज भारत ने कई खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने लिए पक्के कर लिए हैं। और इन तमाम परिणामों के बीच आज के दिन की मुख्य सुर्खी रही हरियाणा के रोहतक से आने वाली मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी सुचिका तारियाल। सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA में भारत के लिए पहला पदक पक्का कर दिया है। 36 वर्षीय सुचिका ने महिलाओं के ट्रेडिशनल कैटेगरी की 60 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया की अतला चिनमेग बेगलमा को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सुचिका कल स्वर्ण पदक की ओर कदम बढ़ाने के इरादे से सिंगापुर की तेव हुई हूं के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। इससे पहले आज इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सुचिका ने क्या कहा, सुनते हैं।
1: ये मेडल मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है और मेरे कोचेस ने मेरे ऊपर बहुत हार्ड वर्क करा है। मेरे फैमिली ने मेरे ऊपर बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें मुझे मतलब मेरे ऊपर खर्च करी है और मुझे सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर मेरा मेडल आएगा तो इंडिया के लिए MMA में ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी।
0: तो एक शानदार खिलाड़ी जिसने अपने शानदार प्रदर्शन से, एक ऐसा खेल जो भारत में परंपरागत नहीं है, जहां पे आपको जूडो, टाइकोंडो, काफी हद तक बॉक्सिंग, कई विदेशी खेल विधाओं का एक साथ संयोजन देखने को मिलता है और विश्व के सबसे कठिन खेलों में शुमार। और इतनी ही कठिन है सुचिका की कहानी। वो 36 वर्षीय है, आज से 24 साल पहले जब वे महज 12 वर्ष की उम्र में थी तो एक छेड़छाड़ की घटना के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब मैं अपनी आत्मरक्षा स्वयं करूंगी, और स्वयं के डिफेंस के लिए उन्होंने इस खेल को सीखा। और आज जापान में जब वो भारत के लिए पदक पक्का कर रही हैं तो कह सकते हैं कि खुद की आत्मरक्षा से लेकर के भारत का आत्मगौरव बढ़ाने तक इस खिलाड़ी ने हर मोर्चे पर अपना योगदान दिया है। विशेष एक शानदार खिलाड़ी के रूप में पिछले 5 से 6 साल में हमने सुचिका को देखा है।
2: बिल्कुल शक्ति, सुचिका का जो सफ़र रहा है वो बेहद शानदार रहा है। इन्होंने अपना डेब्यू 2017 में किया था, इसके बाद इन्होंने MMA से ब्रेक ले लिया क्योंकि इनको अपनी तैयारी के लिए समय चाहिए था। इस दौरान वह जूडो और जी जुत्सु में खेलती रहीं। 2024 में एक बार फिर उन्होंने MMA में वापसी करी और भारत के लिए पदक एशियन गेम्स में सुनिश्चित किया। इससे पहले वह MMA एशियन चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं, साथ ही साथ जूजित्सु में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड अपने नाम कर चुकी हैं।
0: जी बिल्कुल, और हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में जूनियर जूडो की कोच के रूप में कार्यरत थी। और कहा जाता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खेलनी होती थी तो अनपेड लीव लेकर के जाती थी, और ये तमाम मेडल्स और तमाम ट्रॉफियां इस खिलाड़ी ने भारत को दिए, और एक और पदक अब उनकी झोली में आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसके बाद अब बात क्रिकेट की। एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट में गत विजेता भारतीय टीम ने बांग्लादेश को सेमीफाइनल में 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
3: Will this be catching practice? And that shall bring an end to Bangladesh's innings. They bundle out for 81 and India find a place in the final. The hunt for gold will continue as they'll be up against Sri Lanka in their next encounter. India win by 114 runs.
0: तो ऐसे ही एक सन्नाटे के बीच जापान में भारतीय टीम ने एक बार फिर अपनी जीत की पताका लहराते हुए फाइनल में प्रवेश किया है, और महज एक कदम दूर अपना खिताब बचाने से। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया, जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम महज 81 रन पर सिमट गई। और मुकाबले में स्मृति मंधाना ने T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
4: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने आज एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। स्मृति मंधाना ने बांग्लादेश के खिलाफ एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में 19 गेंदों पर ताबड़तोड़ अंदाज में 37 रनों की शानदार पारी खेलकर ये उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में न्यूजीलैंड की पूर्व क्रिकेटर सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया। अब उनके नाम 171 पारियों में 4,788 रन है। इस मैच से पहले सूजी बेट्स से आगे निकलने के लिए उन्हें सिर्फ 8 रन चाहिए थे। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत करते ही 7 गेंदों में ये उपलब्धि अपने नाम कर ली। मंधाना और बेट्स पहले से ही पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बाबर आजम से आगे थी। सूची में मंधाना के बाद सूजी बेट्स 4,758 दूसरे और पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरे नंबर पर हैं। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो अब मंगलवार को फैसला होगा कि भारत

0: और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले के बाद स्वर्ण पदक किसकी झोली में आता है। और ऐसा ही शानदार प्रदर्शन किया आज भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने भी, जिन्होंने जीत के साथ अपने अभियान का आरंभ किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया, जबकि पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 से मात दी। महिला टीम की जीत में दीपिका ने 8 गोल किए, वहीं पुरुष टीम की ओर से दिलप्रीत सिंह ने 4 गोल दागे।
1: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पूल ए के पहले मुकाबले में इंडोनेशिया को 13-1 से हराकर अपने खिताब बचाओ अभियान की मजबूत शुरुआत की। भारत ने पहले क्वार्टर में 2 गोल किए और दूसरे क्वार्टर में लगातार 5 गोल दागकर हाफ टाइम तक 7-0 की बढ़त बना ली। दिलप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, जबकि राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने भी गोल किए। इंडोनेशिया ने तीसरे क्वार्टर में 1 गोल किया, लेकिन भारत की ओर से दिलप्रीत ने जवाबी हमला करते हुए हैट्रिक पूरी की और बाद में अपना चौथा गोल भी किया। शिलानंद लाखड़ा और सुखजीत सिंह ने 2-2 गोल किए। जुगराज सिंह ने भी गोल किया और भारत ने 13-1 से मुकाबला जीत लिया। वहीं भारतीय महिला टीम ने पूल बी के अपने पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। दीपिका ने ताबड़तोड़ 8 गोल किए, इशिका ने 3, जबकि ललथंग लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल किए। बलजीत कौर, नवनीत कौर, लालरेम सियामी और साक्षी राणा ने भी 1-1 गोल किया। भारत ने अपना दबदबा कायम रखते हुए हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में भी भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा। दीपिका ने लगातार 4 गोल करके भारत की बढ़त 13-0 कर दी। अंत में अन्य खिलाड़ियों के गोल की मदद से भारत ने मुकाबला 19-0 से अपने नाम किया। इस मुकाबले के साथ गोलकीपर सविता पुनिया ने भी खास उपलब्धि हासिल की। ये उनका 320वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था। इसके साथ ही वे वंदना कटारिया के साथ भारत की सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई। महिला टीम का अगला मुकाबला 21 सितंबर को इंडोनेशिया से होगा, जबकि पुरुष टीम 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
0: तो जारी है तमाम जीत का सिलसिला और पदक पक्के करने की दौड़। और अब बात बैडमिंटन और टेबल टेनिस की कर ली जाए, जहां भारतीय महिला टीम ने आज बैडमिंटन कोर्ट पर अपने शानदार प्रदर्शन से क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं महिला टीम ने भी अपने ग्रुप एफ के दोनों मुकाबले जीत करके कल अपना तीसरे मुकाबले की ओर स्थिति को मजबूत कर लिया है। विशेष बैडमिंटन और टेबल टेनिस को लेकर क्या अपडेट है?
2: शक्ति, बैडमिंटन में आज भारतीय महिला टीम ने डोमिनेटिंग अंदाज में जीत दर्ज करी है। पीवी सिंधु ने पहले, उन्नति हुड्डा ने दूसरे और तन्वी शर्मा ने तीसरे गेम में लगातार 2-2 सेट जीतकर मुकाबले को अपने नाम किया है। अब भारतीय टीम का जो मुकाबला है 22 सितंबर को जापान से होगा। अगर टेबल टेनिस की बात करें तो भारतीय टीम ने पहले इंडोनेशिया से मुकाबला किया, जहां 3-0 की जीत दर्ज करी। सथिया ज्ञान शेखरन, मानव ठक्कर और मानुष शाह ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही साथ महिला टीम ने भी इंडोनेशिया को 3-0 से हराया, जहां श्रीजा अकुला, दिया चिताले और यशस्वी ने इंडोनेशिया की टीम को कोई भी मौका नहीं दिया। हालांकि एक हार का सामना भी करना पड़ा है पुरुष टीम को, ईरान से, जहां पर मानुष शाह, मानव ठक्कर और हरमीत देसाई अपना अपना मुकाबला हार गए।
0: जी, तो ये तो था आज के खेलों का पूरा हाल, और इसके एवज में भी कई और प्रतियोगिताएं भी हुई जहां भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन दिए हैं। अब सबकी नजरें अगले दिन पर होंगी। कल के दिन भारत की नजरें किन खिलाड़ियों पर और किन खेलों पर टिकी होंगी?
2: कल के प्रमुख मुकाबलों की अगर बात करें शक्ति, तो शूटिंग में भारतीय खिलाड़ी कल सुबह प्रतिस्पर्धा करेंगे। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में हिमांशु ढिल्लों की अगुवाई वाली टीम पर भारत के समर्थकों की नजरें रहेंगी। वहीं स्कीट में मेंस और वुमेन्स इंडिविजुअल प्रतियोगिताएं होंगी। टेबल टेनिस में महिला टीम कल पाकिस्तान से मुकाबला करेगी। वहीं सुचिका तारियाल 60 किलोग्राम एमएमए में मुकाबला जीतकर कम से कम रजत पदक पक्का करने का प्रयास करेंगी। महिला हॉकी में भारतीय टीम का मुकाबला सुबह 9:30 बजे इंडोनेशिया से होगा और भारत के जांबाज कबड्डी खिलाड़ी भी जापान से भिड़ते नजर आएंगे। इसके बाद सितारों से सजी बैडमिंटन पुरुष टीम, जिसमें लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, सात्विक चिराग, वो बांग्लादेश के सामने चुनौती पेश करेंगे। दोपहर में पुरुष टेबल टेनिस पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला करेगी और महिला टीम बांग्लादेश के सामने चुनौती पेश करेगी।
0: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि एक बहुत व्यस्त शेड्यूल खिलाड़ियों के लिए भी और उनके साथ साथ तमाम दर्शकों के लिए भी। और आपने बैडमिंटन टीम का जिक्र किया, जिसने इसके पहले एशियाई खेलों में जो चीन में हुए थे होंगजोंग में, वहां पे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी का फाइनल मुकाबला, जिसने भारत को पहली बार बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जिताया था, और लक्ष्य सेन का कांस्य पदक। तो कह सकते हैं कि ये खिलाड़ी भी कल से अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए उत्सुक होंगे और उत्साहित होंगे।
2: बिल्कुल शक्ति, ये सभी खिलाड़ी कल भारत को एक पदक की नई उम्मीद देने के लिए तैयार हैं और अपने शानदार प्रदर्शन से कल कई पदक सुनिश्चित

0: करने का प्रयास करेंगे।
1: जी बिल्कुल, कई पदकों पर नजर होगी। हालांकि आज भारत के लिए एक छोटी सी दुर्भाग्यशाली खबर यह रही कि टैगबॉल में जहां भारत को आज कांस्य पदक की उम्मीद थी, भारत उसमें नाकाम रहा और कह सकते हैं कि सेमीफाइनल में वो दौर भारत हारता हुआ नजर आया।
0: जी बिल्कुल शक्ति, टैगबॉल जो कि एक नया खेल है भारतीय खिलाड़ियों के लिए, तो उसमें भारत को एक निराशा हाथ लगी है, लेकिन ये एक नया खेल है तो हमें उम्मीदें आगे जरूर रहेंगी।
1: जी बिल्कुल, एक नया खेल जहां भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीदें होंगी। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रूपये का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
3: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
2: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन

0: उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है। पार्टनरशिप बिटवीन द टू
0: कंट्रीज। उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितम्बर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था।
3: ब्रजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रूपये के इनाम की घोषणा की है। ब्रजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रूपये के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
4: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
5: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
4: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
6: सूर्यकिरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
1: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनाव का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार।

0: एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu calls for stronger climate action and global cooperation to tackle rising natural disasters, addresses conference on future of environment and climate dynamics in New Delhi. India and Japan air chiefs take Tejas sorties during joint air exercise in Jodhpur. IAF chief AP Singh says first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in defense ties. Naxal commander carrying 30 lakh rupee bounty killed in encounter with Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Ukraine fires over 1,000 drones at Russia in largest ever attack, including hundreds at Moscow oil refinery hit. And at Asian Games, India bagged 2 silver medals in shooting. Women's cricket team reaches final and badminton team enters quarterfinal. Men's and women's hockey teams begin campaigns with wins in Japan. Now the news in detail. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent time underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability, and land resources.
2: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
1: The president said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts, but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur today. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur. This is the first time that Japanese fighter aircraft are operating from the Indian soil as part of a bilateral exercise, further deepening the defense partnership between both the countries. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties.
3: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time is a great milestone in the history of our relationship. I very clearly remember in Tarang Shakti 24, your team was here. I had come as the vice chief, met them all, but unfortunately your aircraft could not ferry because of bad weather in the southeastern part of Asia, and we missed the opportunity.

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक पगली। ये नाटक देवदत्त हरिभाऊ रुकड़ीकर के लिखे मराठी नाटक बेड़ी का हिंदी नाट्य रूपांतर है। हिंदी रूपांतरकार हैं पुरुषोत्तम जोशी और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक पगली।
1: जोशी साहब, आपने कभी लड़कियों का मजाक उड़ाया है, उन्हें छेड़ा है?
2: घोर बेइज्जती।
3: क्यों कोई बॉस हमें किसी काम लायक नहीं समझता है, पत्नी किसी लायक नहीं समझती। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने जवानी के चार दिन देखे ही नहीं है।
2: अरे बापट भाई, हमारे बाल सफेद क्या हुए, तुमने हमें पैदाइशी बूढ़ा मान लिया।
3: हाँ।
2: भाई तुम लड़कियों का मजाक उड़ाते हो या नहीं, छेड़ते हो या नहीं?
1: अरे जोशी साहब, हमारी तो उम्र ही है लड़कियों का मजाक उड़ाने की।
2: अच्छा, डॉक्टर ने हमें भी तो मना नहीं किया, क्यों ठीक है ना देशमुख?
3: और क्या। अरे बापट मांजरेकर, हम भी कभी जवान थे।
2: पर दुर्भाग्य से हमारी शादी हो गई। हाँ। और कहानी में सितार की जगह सारंगी ने दे दी। पर भाई वो मजाक उड़ाना या छेड़ना तमीजदारों की तरह होता था, पिटने और गाली खाने वाला नहीं। हाँ।
4: अरे आपके समय की बात अलग थी, अब तो मिलावटी जमाना है।
1: अच्छा जोशी साहब।
2: हाँ।
1: हमारे ये देशमुख साहब कैसे थे, तमीज की कमीज वाले या हमारी तरह के?
2: ये देशमुख, पूछो मत, तुम्हारे से छोटी उम्र का था तभी से नौकरी कर रहा।
1: अच्छा।
2: मगर जब ये कुवारा था तब भी इसके अंदर एक शादीशुदा प्रेत की आत्मा बसती।
4: शादीशुदा प्रेत की आत्मा मतलब?
2: मजाल है जो देशमुख ने किसी टाइपिस्ट की तरफ नजर उठाकर देखा।
1: अच्छा।
2: हम भले और हमारा काम भला
1: हो,
2: पर आज ना वो जमाना रहा ना वैसे लोग, अब तो कर्णिक जैसे बंदों से ऑफिस भरा पड़ा।
4: अरे हाँ जोशी जी। कर्णिक की बात पर याद आया, ये तो बताइए कि बड़े साहब ने कर्णिक को बुलाया किस लिए था?
2: हाँ, बड़े साहब किस लिए बुलाते हैं ये आपको नहीं मालूम? अजी साहेब, बड़े साहब ने बुलाया है तो समझिए कि आज
1: चंपी। अरे कर्णिक के सामने तो लड़की बैठती है, कहीं उसने कोई शिकायत तो नहीं कर दी कर्णिक के अगेंस्ट?
2: कर्णिक हमेशा मजाक उड़ाता रहता है उसका।
3: अजी साहब, अपने ऑफिस में 4-5 दिन पहले जो एक लड़की आई है ना, वो उसका भी हमेशा मजाक उड़ाता है।
2: कौन सी लड़की?
3: अरे वही जो मांजरेकर के टेबल के बाजू में बैठती है।
1: अरे मिस साने, क्या लड़की है साहब। अरे सच में ऑफिस में आज तक इतनी खूबसूरत लड़की ने काम नहीं किया कभी।
2: बापट बापट, तुम बता रहे हो या अपने आप को याद दिला रहे हो?
1: बता रहा हूँ जोशी साहब।
2: दिल पर हाथ रख कर इतनी मीठी आवाज में।
1: आप बिना।
4: अरे चलो भाई चलो, बहुत काम पड़ा हुआ है।
1: हाँ चलिए चलिए चलिए, आइए। अरे बस क्यों नहीं आ रही है? जोशी साहब।
2: हाँ बोलो बोलो करने।
1: हमारे ऑफिस में वो जो नई लड़की आई है ना, मिस साने। हाँ मिस साने। अजी साहब वो हाफ मैड है। हाफ मैड?
4: कैसे?
1: तुम्हारे थोबड़े पर कुछ दे मारा क्या उसने करने का? अजी साहब बड़ी अजीब लड़की है।
3: अरे आखिर हुआ क्या?
1: अरे बात ऐसी हुई कि कल मैं लंच ब्रेक में आपकी तरफ आ रहा था, रास्ते में वो मुझे मिली, उसकी तरफ देखकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। वो मेरे पास आई और कहने लगी, डार्लिंग करने, तुम मुझे बहुत पसंद हो, चलो ना हम शादी कर लें, हाँ कहीं दूर भाग जाएं। और मेरे गले में बाहें डालने आगे बढ़ी। अरे मैं तो इतना घबराया कि बस आप ही कहिए, कोई ठीक ठाक लड़की ऐसा करेगी क्या? अरे पगली है वो पगली।
4: अरे तुम भी बड़े फेंकू हो करणिक, किसी भी शरीफ सभ्य स्त्री का अपमान करके तुम्हें बहुत आनंद आता है।
1: मिस्टर मंजरेकर, मैं तो मिस साने के बारे में बात कर रहा हूँ, और मिर्ची आपको लग रही है, है? कोई लगती है क्या तुम्हारी?
5: अरे करणिक, वो मंजरेकर की टेबल के पास बैठती है, इतना संबंध काफी नहीं है क्या?
4: देख करणिक, लगती तो कोई नहीं है, मगर तुम किस किस्म के आदमी हो ये पूरा ऑफिस जानता है। हर लड़की के बारे में तुम्हारे विचार बड़े ही ऊंचे होते हैं। तुम में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो है। मिस साने पगली है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास?
1: सबूत? मेरे पास सबूत है, पूरा पूरा सबूत है।
4: तो दीजिए ना सबूत।
1: आपके सामने जो मिस्टर बापट है ना, आप उनसे ही पूछ कर देखिए।
4: बापट, तुम्हारे साथ क्या किया उसने? करणिक सही कह रहा है?
5: हाँ मांजरेकर, करणिक का कहना सही है, मिसाने एक पगली है भाई, ये बात सच है। मैं सबसे बताना तो चाहता था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई।
3: क्या कह रहे हो, मिस साने पगली है? तुम्हारे साथ क्या किया उसने?
1: अब मिस्टर मांजरेकर, आपके टेबल के नजदीक वो जरूर बैठती है, लेकिन याद रखना, उससे ज्यादा नजदीकी मत बढ़ाना, उससे दोस्ती वोस्ती के चक्कर में मत पड़ना। पगली है वो, और पागलों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा।
2: हे भगवान, नियति भी क्या क्या खेल दिखाती। नहीं, कौन सोच सकता था कि इतनी सुंदर लड़की पगली होगी। बेचारी। चलो भाई चलो दोस्तों।
4: अरे जोशी जी, आप
2: मेरे पास आ गए। मैं चलता हूँ भाई।
4: अरे भाई अनारकर।
6: जी सर।
4: जरा इधर आओ।
6: जी सर।
4: ये लो, ये फाइल बड़े साहब के पास ले जाना, और मेरे लिए एक गिलास पानी भी ले आना।
6: जी अच्छा।
7: एक्सक्यूज मी मिस्टर मांजरेकर।
4: जी, आपने मुझसे कुछ कहा?
7: जी माफ कीजिए, मैं आपको कुछ तकलीफ दे रही हूँ, क्या आप मेरा एक काम करेंगे?
4: काम?
7: जी ये कैलकुलेशन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, डेटा ही नहीं मिल रहे, आप जरा देखिए ना इस फाइल को। आप इधर उधर क्या देख रहे हैं?
4: किधर? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या कह रही थी आप?
7: नंबर्स मैच ही नहीं हो रहे हैं, यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो कृपया मेरी मदद कीजिए ना।
4: जी फाइल कहाँ है?
7: ले लीजिए।
4: एक मिनट है। हाँ ये देखिए, ये रही गड़बड़ी।
7: कहाँ? ये?
4: हाँ हाँ हाँ, ये और ये जो, हाँ नीचे, ये हैं आपके मिसिंग नंबर्स।
7: अरे वाह, इतनी जल्दी मिल गए। मैंने 4 बार रिकैलकुलेशन किया और इस गलती पर ध्यान ही नहीं गया मेरा तो।
4: इसमें सब अटकते हैं, अनुभव से आता है ये, जल्दी सीख जाएंगे आप। ये आपकी फाइल।
7: थैंक यू।
4: नहीं नहीं, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, एक दूसरे की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे 6:30 बज भी गए। अच्छा मिस साने, मैं निकलने की तैयारी करता हूँ, कल मिलते हैं।
7: मिस्टर मांजरेकर, एक मिनट रुकिए।
4: जी
7: मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ?
4: मेरे साथ मगर मैं।
7: चलिए मिस्टर मांजरेकर, आइए।
4: जी जी जी।

0: वैसे आप इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हैं?
1: कोई 2 वर्षों से। क्यों पूछ रही हैं आप?
0: अरे कुछ नहीं, यही पूछा। अच्छा ऑफिस है।
1: हाँ वो तो है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 11:30 बजे से ऑफिस शुरू होता है, सुबह के ट्रैफिक से भी बच जाते हैं और शाम के पीक ट्रैफिक की भीड़ से भी।
0: ये तो है, कोई चाहे तो सुबह किसी दूसरी जगह भी काम कर सकता है।
1: आप बस कहाँ से लेती हैं?
0: मैं तो वो मंदिर वाले स्टैंड से लेती हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: मैं उल्टी साइड वाले स्टैंड से लेता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ फिर। है नमस्ते।
0: माफ कीजिए मिस्टर मांजरेकर, यदि आपको कुछ असुविधा ना हो तो हम कहीं चाय पी सकते हैं? आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा है।
1: बस गया रे। वो मुझे आज
0: क्यों वाइफ ने आज जल्दी बुलाया है आपको?
1: नहीं नहीं वाइफ ने नहीं, वो मेरी दीदी ने बुलाया है, जल्दी पहुंचना है, कुछ काम था। अच्छा आज्ञा दीजिए हैं।
0: अच्छा
1: जी जी, कल मिलते हैं।
0: बाय
1: बाय बाय बाय बाय। ईश्वर मलाडली। दीदी दरवाजा खोलो। दीदी
2: आई।
3: अरे सचिन बहुत देर लगा दी आज तूने।
1: हाँ दीदी जरा देर हो गई। अरे ये क्या दुकान खोल रखी है?
3: हम बच्चों के पेपर से जांचने बैठी थी। अच्छा तू हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ। अभी लाती हूँ। ये ले चाय।
1: दीदी
3: क्या हुआ?
1: दीदी अब तुम अपनी नौकरी छोड़ दो।
3: हाँ नौकरी छोड़ दो? सचिन बेकार की बातें मत कर। नौकरी छोड़कर घर बैठी बैठी क्या करूंगी? समय बिताने के लिए तो मैं नौकरी करती हूँ।
1: दीदी मगर तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है?
3: अरे उसमें काहे की तकलीफ, अब तो आदत हो गई है मुझे। जब से सवेरे का स्कूल हुआ है ना, क्या बताऊं दोपहर काटनी मुश्किल हो जाती है।
1: दीदी तुमने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए हैं, मुझे पढ़ाने लिखाने के चक्कर में तुमने
3: शादी तक नहीं की, मेरे सुख के लिए तुमने इतने दुखों के पहाड़ सिर पर उठा लिए वगैरह वगैरह। क्यों रे कैसी बच्चों सी बातें कर रहा है?
1: दीदी तुमने आज तक जो किया वो बहुत हुआ।
3: अच्छा अच्छा,
1: लेकिन अब और नहीं, मेरी तनख्वाह इतनी तो है कि हम दोनों का निर्वाह अच्छी तरह हो सकता है ना?
3: ठीक है लेकिन मिस्टर सचिन मांजरेकर जी घर में आपकी स्थिति का दिल नहीं लगता, इसीलिए वो नौकरी करती है।
1: मगर मैं चाहता हूँ कि अब तुम नौकरी छोड़ दो।
3: अच्छा तू कहता है तो नौकरी छोड़ दूंगी बस।
1: सचमुच?
3: बस रे तेरी शादी हो जाए, तेरा संसार बस जाए, फिर तू बाप बन जाए और मैं तेरे बच्चों को गोदी में लेकर लोरियां सुना सुना कर दिल बहला लूंगी।
1: दीदी क्या कह रही हो तुम, अपना सारा जीवन क्या मुझ पर उपकार करने में बिता दोगी?
3: सचिन अपने छोटे भाई पर कैसा उपकार है, हम दो ही तो बचे हैं परिवार में। अच्छा सुन अब तो शादी कर ले ठीक। कहीं लड़की भी देखी है या नहीं?
1: क्या कहती हो दीदी, मेरे लिए लड़की देखना तो तुम्हारा काम है।
3: पगला कहीं का।
1: पगला?
3: अरे
1: कोई
3: लड़की पसंद तो नहीं कर रखी है तूने जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
1: नहीं दीदी ये क्या बोल रही हो तुम, सच बताओ जब तुमने मुझे पगला कहा तो मुझे कुछ याद आ गया।
3: क्या?
1: दीदी 15 दिन हुए हमारे ऑफिस में एक नई लड़की आई है, दिखने में सुंदर है, काम भी बड़ी अच्छी तरह से करती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कहते हैं कि वो पगली है।
3: पगली?
1: हाँ दीदी, खूबसूरती और पागलपन का ये मेल कुछ अजीब सा लगता है।
3: लेकिन सचिन हर कोई उसे पगली क्यों बोलता है रे?
1: दीदी अगर वो हर किसी से ये पूछती फिरे कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे तो लोग तो पागल ही समझेंगे ना। अरे
3: ऐसा क्या? नहीं पूछा।
1: अभी तक तो मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मेरे ऑफिस के कर्णिक और बापट से उसने पूछा था।
3: बड़ी विचित्र सी लगती है लड़की, उसको नौकरी ऐसे मिल गई भाई।
1: दीदी यही तो मेरी समझ में भी नहीं आया। कहते हैं कि उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ था और हमारे साहब उस पर बहुत ही खुश हुए। जाने दो ना। खैर दीदी, तुम्हारे स्कूल में एक टीचर की जरूरत थी ना, वो बापट बोल रहा था कि उसकी चचेरी बहन।
3: देर हो गई है रे, कल ही एक टीचर को अपॉइंट कर लिया है, बहुत अच्छी है, BA BT, नाम भी बहुत प्यारा सा है, विभावरी, विभावरी साने।
1: साने? विभावरी साने? दीदी मैं अभी जिस लड़की के बारे में बता रहा था ना, वही ऑफिस वाली पगली।
3: हाँ हाँ,
1: उसका पूरा नाम तो मुझे मालूम नहीं, मगर सब उसे मिस साने ही कहते हैं।
3: तुम्हारी मिस साने होगी पगली, मगर हमारी विभावरी साने पगली नहीं है, वो तो बहुत समझदार और संस्कारी है। और हाँ, खूबसूरत भी बहुत है।
1: अच्छा, अजीब संयोग पर संयोग है, आपके यहाँ भी मिस साने, मेरे यहाँ भी मिस साने, एक ही दिन में दो साने।
3: सुन सचिन, विभावरी साने अभी अनमैरिड है, बात चलाऊं?
1: लो, अभी तो मैं दो दो साने के चक्कर में ही घन चक्कर हो गया हूँ। और तुम हो कि एक साने को घर में दुल्हन बनाकर लाने के चक्कर में पड़ गई। दीदी साने के बाकी गाने हम फिर किसी दिन गा लेंगे ना।
3: अरे जाकर देख ले एक बार उसका घर, पता है उसका मेरे पास। एक काम कर, परसों रविवार है, है? विभावरी के घर हुआ।
1: पागल तो नहीं हो गई हो? वहां जाकर क्या बोलूंगा मैं दीदी? विभावरी जी, मेरी दीदी आपसे मेरी शादी करवाने की सोच रही है, मैं इसलिए आपका घर देखने आया हूँ। क्या सोचेगी वो?
3: अरे पागल, तू बोलेगा कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक ट्यूटर की तलाश है, इसलिए आपके पास आया हूँ।
1: ए लो जी, अब मेरी बेटी भी पैदा करवा दी, शादी तो होने दो मेरी।
3: इसीलिए तो कह रही हूँ, रविवार को विभावरी साने का घर देखा। अरे मिल तो आ, वरना तेरी वाली मिस साने जैसी ना मिल जाए कोई। और हाँ हाँ सुन, याद आया, एक फाइल भी मंगवानी है उसके पास से, उसी को लाने के लिए मेरा दूत बनकर चले जाना।
1: अच्छा बाबा, चला जाऊंगा। क्या बनाया आज खाने में?
3: तेरी पसंद की सब चीजें बनाई है, चल आ जा।
2: यस,
1: मेरा नाम सचिन मांजरेकर है।
2: सचिन तेंदुलकर को तो मैं जानती हूँ, महान क्रिकेटर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी। संजय मांजरेकर जी को क्रिकेट की कमेंट्री करते देखा है, आप तो आधा उधर के और आधा इधर के हो गए। देखिए मिस्टर, आधा वो आधा ये, अगर आप कोई सामान बेचने आए हैं तो यहाँ आपकी कोई दाल नहीं गलने वाली। दीदी आपको देखते क्या बोलेगी मालूम? आगे जा रहे बाबा।
1: आपकी दीदी विभावरी साने ऐसा बोलती है मुन्नी?
2: अच्छा, तो आप मेरी दीदी को जानते हैं?
1: वो घर पर है क्या?
2: वो घर पर तो नहीं है, आने वाली होंगी। लेकिन उनके आने से पहले मैं एक बात हमेशा के लिए क्लियर कर दूं कि मेरा नाम मुन्नी नहीं सुरेखा है। क्या नाम है मेरा?
1: सुरेखा।
2: वेरी गुड मेमोरी, गुड बॉय।
1: थैंक यू।
2: अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि दरवाजा खोलो?
1: जी।
2: तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जब दीदी घर में नहीं होती तो मैं यूं ही ग्रिल के अंदर से बात करती हूँ।
1: ओ,
2: अनजान लोगों के लिए दरवाजा खोलने का मतलब है रात में क्राइम सीरियल में आपकी खबर, आप भी नहीं खोलना।
1: कभी नहीं खोलूंगा। क्या तुम

0: विभावरी साने की बहन हो?
1: हाँ, लेकिन मैं उन्हें विभावरी साने नहीं, दीदी कहती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, बड़ी होशियार हो तुम।
1: ये तो मुझे मालूम है।
0: अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम?
1: क्योंकि मैं होशियार हूँ।
0: हाँ ठीक है। अच्छा सुरेखा, ये तो बताओ कि तुम्हारी दीदी कब लौटेंगी?
1: बस अब वो आती ही होंगी, वो कह गई हैं कि जल्दी लौटूंगी। हमारी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती, अगर मिठाई लाऊंगी ऐसा कहती है तो वो जरूर ले आती है। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, और अगर रुकना है तो बातें करते हैं तब तक, ठीक?
0: हाँ, एकदम ठीक।
1: तो आपको रुकना है, चलिए बातें करते हैं फिर। नाम तो आपने बता दिया।
0: हाँ।
1: आप रहते कहाँ हैं? आप काम क्या करते हैं?
0: मैं यही मुंबई में रहता हूँ, और काम तो तुम्हारी दीदी को ही बताऊंगा। अच्छा आप ये बताओ, तुम्हारी दीदी जल्दी आएंगी या मैं जाऊं?
1: देखिए, दीदी कहती हैं किसी पर अपनी इच्छा कभी लादनी नहीं चाहिए, आपको जाना है तो जाइए।
0: अच्छा सुरेखा, दीदी स्कूल गई है क्या?
1: अरे आज तो रविवार है, आज क्या वहाँ झाड़ू लगाने जाएंगी? रविवार को छुट्टी होती है।
0: सॉरी सॉरी, भूल गया था।
1: फिर तो आप सुबह योगा किया करें, याददाश्त ठीक होती है। आपका नाम सचिन मांजरेकर है ना?
0: हाँ।
1: मैं आपको कैसे बुलाऊं? आपका नाम तो ले नहीं सकती, मेरी दीदी ने कहा है
0: कि बच्चे बड़ों के नाम नहीं लेते, यही ना?
1: हाँ, लेकिन आपको ये कैसे मालूम?
0: क्योंकि जैसे आपकी एक दीदी है ना, वैसे ही मेरी भी एक दीदी है।
1: आपकी भी बड़ों की भी दीदी होती है?
0: हाँ।
1: गुड। दीदी, मेरी दीदी आ गई। दीदी ये है
2: मिस्टर मांजरेकर।
0: मिस साने,
2: आप यहाँ?
0: आप यहाँ?
2: आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ रहती हूँ?
0: देखिए सच कहूँ, मैं तो विभावरी साने से मिलने आया था, लेकिन तुम अब आप, मुझसे गलती हो गई। ऑफिस में आपको सब मिस साने कहकर पुकारते हैं, आपका पूरा नाम मुझे मालूम ही नहीं था।
1: दीदी ये बड़ी अजीब बातें करते हैं कि इनकी भी दीदी है, और इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि रविवार को स्कूल की छुट्टी होती है। मैंने जब इनसे पूछा कि मैं इन्हें क्या कहकर बुलाऊं, तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया।
2: सुरेखा तुम अंदर जाओ। मिस्टर मांजरेकर आइए, अंदर आइए।
0: थैंक यू।
2: आइए बैठिए। आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया?
0: स्नेहलता मांजरेकर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, ऑफिस की फाइल के लिए। नहीं नहीं, ट्यूटर के लिए नहीं, फाइल, ट्यूटर।
2: स्नेहलता मांजरेकर आपकी?
0: वो मेरी दीदी है।
2: ओह अच्छा। चुप क्यों हो गए, क्या सोच रहे हो?
0: आपके बारे में?
2: मेरे बारे में क्या
0: सोच रहा था? कि
2: मैं दो जगह नौकरी क्यों करती हूँ?
0: जी,
2: अपना संसार चलाने के लिए। मेरे माता पिता अब नहीं रहे, और छोटे भाई बहनों की शिक्षा का भार मुझको ही उठाना है।
0: मैं समझ सकता हूँ, मेरी दीदी ने भी मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, और आज भी कष्ट उठा रही हैं। दुनिया के सारे कष्ट उन्होंने अपने हिस्से में रखकर मुझे सुखी बनाया।
2: परिस्थितियों के आगे हर किसी को माथा झुकाना पड़ता है।
0: ठीक कहा, दीदी कहती हैं परिस्थितियों के प्रवाह में बहते चले जाना ही जीवन है। एक बात पूछूं मिस साने
2: जी,
0: करणिक और कुछ और लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं।
2: क्या कहती?
0: कहते हैं कि आप आप
2: पगली हैं।
0: जी
2: ठीक ही तो कहते हैं।
0: यानी सचमुच आप?
2: करना पड़ता है, करना पड़ता है। अपने आप को अपने कर्तव्य के पथ पर सजग बनाए रखने के लिए करना पड़ता है सचिन।
0: मैं समझा नहीं।
2: सुंदरता कभी कभी अभिशाप भी बन जाती है। कर्णिक और बापट जैसे लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मुझे उन जैसे लोगों से खुद को बचाने के लिए कुछ अजीब सी हरकत करनी पड़ती है। और दूसरी बात है कि इससे मुझे लोगों से अलग रहने में आसानी होती है। सोचो, अगर मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जिसे मेरे कर्तव्यों का पथ स्वीकार ना हो, मेरी जिम्मेदारियों का एहसास ना हो, तो क्या होगा? सिर्फ अपनी खुशी के लिए मैं इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकती। मैं
0: लेकिन लोग तो पगली समझते हैं तुम्हें।
2: मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे अपने छोटे भाइयों और बहनों से वास्ता है। क्या आप भी मुझे पगली समझते हैं?
0: नहीं, मुझे इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ और इसी वजह से कर्णिक से झगड़ा भी हुआ था।
2: मेरे लिए
0: मिस साने, मुझे अब आपके बारे में सोचकर अजीब लग रहा है। दुख भी, सहानुभूति भी, इज्जत भी, सम्मान भी।
2: और कौन है? बोलो।
0: विभावरी, मेरी दीदी का एग्जाम्पल मेरे सामने है, जिसने अपने भाई के लिए अपना जीवन मिटा डाला, और शायद तुम भी उसी रास्ते पर हो। विभावरी, एक बात पूछूं? मुझसे शादी करोगी?
2: सच्ची?
0: मुझे भी तुम अपने कर्तव्य में हिस्सा लेने की स्वीकृति दो। तुमको अपने परिवार में पाकर मेरी दीदी को बहुत खुशी होगी, सुख पहुंचेगा। और फिर अरे
2: आप भी पागल हैं।
0: पागल?
2: हाँ पागल, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछने की वजह से लोग मुझे पगली कहते हैं, और अब तुम भी।
0: विभावरी, तो फिर क्या सोचा तुमने?
2: दीदी से भी तो पूछ लेना चाहिए ना।
0: सच? विभावरी, मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूं।
2: सचिन,
0: विभावरी, क्या हम दीदी के पास अभी चल सकते हैं?
2: अभी?
0: हाँ अभी।
2: ठीक है, चलो।
0: लेकिन वहां हंसने का पागलपन मत करना।
2: हाँ, तुम भी ये फाइल ट्यूटर मत करना।
0: नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। चले।
3: पगली, अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। ये नाटक देवदत्त हरिभाव रुकरीकर के लिखे मराठी नाटक बेड़ी का हिंदी नाट्य रूपांतर था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। जोशी की भूमिका में थे कीमती आनंद, देशमुख अशोक मलकानी, बापट राजेश काम्बोज, स्नेहलता सुचित्रा गुप्ता, मांजरेकर अनुराग अरोड़ा, कर्णिक संजय वर्मा, विभावरी साने कुमकुम जैन, और सुरेखा की भूमिका में थी बेबी सारा माइणकर। प्रस्तुतिकरण सहयोग शिवाली का था और इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनके यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकतानगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ETS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPS के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। रूस ने यह नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनाव का आखिरी चरण जारी था। जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेलिन वालरविन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता था। एला वेलिन वालरविन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने आज अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान पर 19-0 से शानदार जीत दर्ज की। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वहीं विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। ईरान ने कहा, अमेरिका के प्रतिबंधों और जहाजरानी संबंधी शर्तों को पूरा करने तक हार्मुज डबलू मध्य बंद रहेगा। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीम ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला मौका है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
2: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरितो ने भारतीय मेहमान नवाजी की तारीफ की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितंबर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। इस अभ्यास के तहत दोनों देशों के वायुसेनाएं काल्पनिक युद्ध परिस्थितियों के जरिए अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को परख रही हैं। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। एक रिपोर्ट।
2: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: रूस में ये ताजा हमले ऐसे समय में हुए हैं जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस दौरान क्रीमिया में भी मतदान हुआ, जो कि एक ब्लैक सी प्रायद्वीप है और साल 2014 में यूक्रेन के साथ संघर्ष के बाद से रूस के नियंत्रण में है। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्हें अंदेशा है कि रूस जिस तरह पूरे यूरोपीय महाद्वीप में अपने हाइब्रिड अभियान को तेज कर रहा है, उसे देखते हुए वो आने वाले समय में नाटो सदस्य देशों पर भी ड्रोन या मिसाइल हमला कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश ने विश्व नेताओं से शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी सत्र से पहले जारी एक संदेश में श्री गुतरश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संवाद और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से ही वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है। श्री गुतरश ने कहा कि महासचिव के रूप में ये उनका अंतिम संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां

मुख्य समाचार। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि।

0: सत्र 22 से 28 सितंबर तक न्यूयॉर्क में आयोजित होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों और जहाजरानी संबंधी शर्तों को पूरा करने तक हार्मूज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कालिफाफ ने यह टिप्पणी की। श्री कालिफाफ ने कहा कि ईरान संघर्ष और बातचीत दोनों जारी रखेगा। एक रिपोर्ट।
1: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले दो महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद की है। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वालरिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेनिल वालरिवन, सोनम मस्कर और विद्रसा विनोद की टीम ने देश को ये पदक दिलाया। उधर अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने आज अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला हॉकी टीम ने उज़्बेकिस्तान पर 19-0 से शानदार जीत दर्ज की। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही भारतीय महिला बैडमिंटन और टेबल टेनिस टीम ने अपने अपने मैच जीते। नेपाल में करीब 4 हफ्ते पहले आई अचानक विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। इस आपदा में अब तक 1400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 6000 लोग अब भी लापता हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे। एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। ईरान ने कहा, अमेरिका के प्रतिबंधों और जहाजरानी संबंधी शर्तों को पूरा करने तक हार्मूज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीम ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Nipunika Shahid with the World News. The headlines: India and Japan air chiefs take Tejas sorties during joint air exercise in Jodhpur. IAF chief AP Singh calls the first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil a major milestone in defense ties. Ukraine fires over

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 55 सेकेंड। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में, जिसका नाम है हर सिंगार। 260, 70 और 80 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का वो खूबसूरत दौर जब हर गीत अपने साथ एक कहानी, एक एहसास और एक याद लेकर आता था। एक तरफ लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश जैसे फनकार अपनी आवाज से गीतों में जान डाल रहे थे, तो दूसरी तरफ मदन मोहन, एसडी बर्मन, आरडी बर्मन, ओपी नैयर, शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जैसे संगीतकार सुरों की नई दुनिया रच रहे थे। और इन सुरों को अल्फाज की खूबसूरती देने वाले थे हमारे बेमिसाल गीतकार साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी, गुलजार और राजा मेहदी अली खान जैसे कलम के जादूगर। किसी ने मोहब्बत को अल्फाज दिए, किसी ने जुदाई को आवाज दी, किसी ने जिंदगी के फलसफे को गीत बनाया तो किसी ने खामोश एहसासात को नगमे में डाल दिया। मगर दोस्तों, इन सदाबहार गीतों के पीछे सिर्फ धुन और बोल ही नहीं थे, छिपे थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के दिलचस्प किस्से, अचानक बनी धुनें, बदले हुए बोल, अनोखे संगीत प्रयोग और फनकारों की बेमिसाल मेहनत। क्योंकि हर खूबसूरत गीत के पीछे एक धुन होती है, एक एहसास होता है और कभी कभी एक ऐसी कहानी जो गीत से भी ज्यादा दिलचस्प होती है। उन्हीं गीतों में से कुछ बेहद खूबसूरत नगमे हम आपके लिए चुनकर लाए हैं जो आपके दिल के बहुत ही करीब हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में किसी खास शख्स की आमद ऐसी होती है कि जैसे मौसम ही बदल जाए, दिल की सूनी गलियों में बहार उतर आए और हर तरफ मोहब्बत की खुशबू महसूस होने लगे। कुछ ऐसे ही खूबसूरत एहसास समेटे हुए हैं फिल्म जीने की राह का ये बेहद खूबसूरत सदाबहार गीत। तो आइए, दिलों में मोहब्बत, रिश्तों में मिठास के साथ आज के इस सफर का आगाज करते हैं उसी नगमे के साथ। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

यहाँ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार में। और हर सिंगार में हम पलट रहे हैं यादों की वो सुनहरी डायरी जो हमें सीधे लेकर चलती है सदाबहार रोमांटिक गीतों की दुनिया में। दोस्तों, कभी कभी कोई गीत सिर्फ कानों तक ही नहीं पहुंचता, बल्कि वो खामोशी से दिल में उतरता चला जाता है और फिर हमेशा के लिए वहीं बसा रह जाता है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा है 1962 में आई फिल्म अनपढ़ का, जिसके बनने की कहानी से आज हम पर्दा उठाएंगे। इस गीत को अपनी जादुई और दिलकश आवाज दी है लता जी ने, उसके अल्फाज लिखे थे राजा मेहदी अली खान ने और सुरों से इसे सजाया था महान संगीतकार मदन मोहन साहब ने। लेकिन दोस्तों, इन सदाबहार गीतों की दास्तान भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल हुआ ये कि रिकॉर्डिंग के वक्त इस गाने की जगह एक

दूसरा गीत तैयार किया गया था जो पहले से तैयार था, जिसकी रिकॉर्डिंग होनी थी। तभी राजा मेहदी अली खान एक नया गीत लेकर पहुंचे जिसको उन्होंने अभी अभी लिखा था, और ये नए बोल निर्देशक को सुनाए, और निर्देशक को दृश्य के लिए जो फिल्माए जाने थे उसके लिए ये बहुत ही मुनासिब लगा। फिर क्या था, मदन मोहन साहब ने जरा भी देर नहीं की और राजा मेहदी अली खान के साथ बैठकर वहीं पर नई धुन तैयार की, और उसी दिन लता जी ने भी इस गीत को अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर दिया। जरा सोचिए, जिस नगमे को हम आज हिंदी फिल्म संगीत की अमर धरोहर मानते हैं, उसकी पैदाइश इतनी अचानक हुई थी। शायद यही तो संगीत का जादू है, कभी बरसों की तैयारी से गीत जन्म लेता है और कभी एक पल का एहसास ही उसे सदाबहार बना देता है। तो आइए उसी सदाबहार गीत को सुनवाते हैं लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज में, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आपकी नजरों ने समझा। लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज में यह नगमा था 1962 में आई फिल्म अनपढ़ से, जिसे लिखा था राजा मेहदी अली खान ने और संगीत था मदन मोहन साहब का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आपके इस सफर में मैं हूं आपका दोस्त फिरोज, और महफिल है सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार। और हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में आप बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत फिल्म के एक गीत की। दोस्तों, कुछ यादें ऐसी होती है जिन्हें हम चाह कर भी दिल से जुदा नहीं कर पाते। कोई खास शख्स दूर चला जाए तो उसकी याद कभी खामोशी बनकर आती है और कभी किसी गीत की आवाज बनकर दिल को छू जाती है। जरा सोचिए, एक तरफ जुदाई की टीस, दूसरी तरफ यादों की मिठास, और इन दोनों एहसासात को लता जी और रफी साहब की आवाज मिल जाए तो फिर गीत सिर्फ गीत कहाँ रहता है, वो बन जाता है दिल की दास्तान। और ये अगला गीत भी कुछ ऐसा ही है। अब बात कर रहे हैं एक ऐसे संगीतकार जोड़ी की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में ऐसा यादगार गीत दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया, और वो संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दरअसल 1963 में आई फिल्म पारसमणि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की पहली स्वतंत्र फिल्म थी। हालांकि इससे पहले दोनों कई बड़े संगीतकारों के साथ अलग अलग और साथ में भी काम कर चुके थे, लेकिन इस फिल्म ने उनके अपने नाम से एक नए संगीत सफर का आगाज किया, और उसी सफर में लता जी और रफी साहब की आवाजें उनके साथ जुड़ी। एक ऐसा रिश्ता बना जिसने आगे चलकर हिंदी फिल्म संगीत को न जाने कितने यादगार नगमे दिए। उन्हीं नगमों में से ये यादगार नगमा आपके लिए। रात की इस रूमानी महफिल को आप भी महसूस कीजिए और सुनिए ये लाजवाब नगमा सिर्फ और सिर्फ अपने चहेते स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस गीत को लिखा है असद भोपाली साहब ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

वो जब याद आए बहुत याद आए। लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में नगमा था फिल्म पारसमणि से, और ये फिल्म आई थी 1963 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार में। अब बात एक ऐसी फिल्म की जो अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में से एक रही। दोस्तों, लोकगीत की मिट्टी, शास्त्रीय रंग और आधुनिक फिल्म संगीत, इन तीनों को मिलाना आसान नहीं, लेकिन आरडी बर्मन साहब ने अगले इस नगमे में ये कर दिखाया था। और उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा नगमा तैयार किया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। लता जी की मिठास और मन्ना डे की मजबूत शास्त्रीय पकड़ गीत को अलग पहचान देती है। ये गीत बताता है कि पंचम के संगीत में केवल वेस्टर्न बीट्स ही नहीं थे, भारतीय लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के रंगों के लिए भी उनकी बहुत ही खूबसूरत पकड़ थी और उसमें गहरी समझ भी थी। उसी गीत को लेकर आए हम आपके अपने पसंदीदा इस प्रोग्राम में, और अगला जो गीत है वो है फिल्म बहारों के सपने से, और ये फिल्म आई थी 1967 में। आवाज है लता जी की और साथ ही साथ मन्ना डे साहब की, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत है आरडी बर्मन साहब का।

लता जी और बन्ना डे साहब की इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फ़ेरोज़ को अब दीजिए इजाज़त। हर सिंगार से अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण, और उसके ठीक बाद 11:40 पर मैं रहूँगा आपके साथ लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा

0: ये वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
2: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स आईआईसीए ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics.

0: can with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद राजेश और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. ख्याल रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से संबंधित सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे. अपने सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
0: वेलकम स्नेहा.
2: थैंक यू.
1: पहले हेडलाइंस के साथ राजेश.
0: ईरान सेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल रिमेन क्लोज्ड अंटिल कंडीशंस आर मेट. Foreign portfolio investors withdraw nearly 21,000 crore rupees from Indian equities in September so far. And in bullion market, gold and silver prices rise last week.
1: ईरान ने कहा उसकी शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा. इस महीने अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 21,000 करोड़ रुपए निकाले और सोने और चांदी की कीमतों में पिछले सप्ताह फिर से तेजी.
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to the first story. Iran has said that the Strait of Hormuz will remain closed until their conditions are met and commitments from the United States are implemented. Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf made these comments according to Iran's semi-official Fars news agency. Ghalibaf said Iran would continue to fight and negotiate using military force against its enemies and diplomacy to consolidate what it considers gains on the battlefield. Meanwhile, the wider regional conflict continues. Saudi Arabia stated that it intercepted a ballistic missile launched towards Riyadh yesterday, while Yemen's Houthi movement has claimed attacks against Saudi targets. More from our correspondent.
3: Iranian officials have once again said that reopening the Strait of Hormuz depends on US commitments, including an end to fighting and changes to sanctions and restrictions on Iranian shipping. The strait remains heavily disrupted, even as US Central Command has claimed that it has helped more than 2,000 commercial vessels pass through the waterway in the past 2 months. The US State Department, citing the Houthi hostilities with Saudi Arabia, has renewed its travel alert for the West Asia region. The US has warned that the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. Manish Shiva for Akashwani News from Dubai.
1: जी, और चले कुछ श्रोताओं के पास जो इंतजार कर रहे हैं अपने सवालों के साथ. दिल्ली से योगेश हमारे साथ हैं. स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
4: जी नमस्कार आप सभी को.
1: नमस्कार.
4: मेरा सवाल ये है कि जैसे आजकल की जितनी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो सारी की सारी एक फाइनेंशियल डिजिटल मोड से हो रही है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो गोल्ड के बॉन्ड्स हो, चाहे वो रियल एस्टेट में रीट्स के इन्वेस्टमेंट्स हो या बॉन्ड्स या पीपीएफ वगैरह शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड वगैरह हो, तो जितने भी एसेट क्लास है सब में डिजिटल माध्यम से ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है. तो ऐसे में डाइवर्सिफाई करने के लिए इस लेवल पे कितना जरूरी आप समझते हैं कि जो फिजिकल एसेट्स होते थे पहले जिनको हम ओन करते थे, जैसे वो प्लॉट या घर हो सकता है या फिजिकल गोल्ड हो सकता है, तो फिजिकल एसेट्स का होना भी कितना जरूरी है एक बैलेंस बनाकर रखने के लिए.
2: योगेश जी, जो आपका ओवरऑल सवाल है वर्चुअल एसेट्स वर्सेस फिजिकल एसेट्स का, तो हर चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान रहते हैं. बट जहां तक डिजिटल ओनरशिप की बात है ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वाइल यू गेन द एक्सपोजर टू दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास वाया दैट मेथड, बट फिजिकल एसेट से आप ओनरशिप से जो एक हमारे दिमाग में एक चीज आती है वो रहती है एक साइकोलॉजिकल

0: हमें लगता है कि ये चीज हमारे पास है, डिजिटल या वर्चुअल कोई भी चीज होती है तो हमें लगता है कि इसकी पकड़ हमारे हाथ में नहीं है. बट जब भी कोई एसिड क्लास का एक्सपोजर हमें लेना होता है, ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं उनको साइड में रख के हमें ये देखना होता है कि किसी भी चीज को जब आप चाहे फिजिकल ओन कर रहे हो चाहे वर्चुअल ओन कर रहे हो, बट उसका बेनिफिट क्या है आपके लिए. मतलब वो आपके किसी गोल से लिंक्ड है या फिर वो किस टाइप का एक रिस्क या फिर लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स ऐसे कैसे हैं उस फिजिकल एसेट्स में जो आपको सोचना चाहिए, चाहे फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहां तक डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम की बात है तो अगर हम फंड्स के पर्टेनिंग बात करें तो जैसे हमारे कुछ बेसिक थंब रूल्स रहते हैं विच हेल्प अस डाइवर्सिफाई अ पोर्टफोलियो, कि हम AMC लेवल पे डाइवर्सिफाई करें, हम कैटेगरी लेवल पे डाइवर्सिफाई करें, हम एसेट क्लास लेवल पे डाइवर्सिफाई करें. ये कुछ चीजें करके हम लंबे समय के लिए अपना पोर्टफोलियो संतुष्टि से बना सकते हैं.
1: जी, आपने जैसा कहा अभी स्नेहा, या जैसा सवाल था इनका कि डिजिटल सब कुछ लगभग डिजिटल हो गया है, तो ये सहूलियत है. और लेकिन ये सवाल इनके मन में क्यों आया, मैं उस पर विचार कर रहा था कि क्या इसके पीछे डर क्या है. क्या सब कुछ डिजिटल है तो कहीं सब कुछ कॉलेप्स हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब कुछ जमीन पर है. अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसे म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जा रहे हैं, और वहां से फिर वो शेयर बाजार में अगर जा रहे हैं या बॉन्ड मार्केट में जा रहे हैं तो वहां से भी वो फिर वो कंपनी एक्चुअली वो बाजार में है वो पैसे.
0: पर यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि चाहे वो बाजार में है, आपने लगाए हुए हैं, ये सब एसेट क्लासेस एक रेगुलेटरी बॉडी के अंडर है, जिनका मेन बेनिफिट ही यही है कि इन्वेस्टर की सुरक्षा और इन्वेस्टर का जो एक एक्सपीरियंस है उसको कन्वीनियंट और इजी बनाने के लिए. मतलब यहाँ पे कुछ डाउट नहीं रखना चाहिए.
1: कोई ऐसी कोई हवा हवाई चीज नहीं है डिजिटल की अचानक कॉलैप्स हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ
0: सारे
1: इरेज हो जाएगा.
0: सारे रिकॉर्ड्स डिजिटली रहते हैं
1: जी.
0: मतलब पुराने टाइम पे वो जो शेयर सर्टिफिकेट वाली बात होती थी, काफी लोगों को पता नहीं होता था कि अंदर पड़ा हुआ है कुछ, या वो पेपर
1: भूल जाते थे. अभी भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं हमारे पास ऐसे.
2: So, Snehal, the domestic investors are actually focusing quite a bit on macroeconomic data, the geopolitical developments. You also have the foreign institutional investors' flows, the commodity prices and global bond yields. In such a scenario, what should an investor be doing when it comes to mutual funds? How should they navigate particularly the geopolitical situation that's prevailing today?
0: Right. So, you know, there is a specific problem here, which is that in the last 3-4 years, information has been all over. The information flow and thereby the interpretation of every minor macro detail has really reached investors in a way that, so let's say for people who entered post-COVID, we've always been talking about how their experience for 2-3 years had been spectacular given the kind of returns or the run-up that they were seeing in their portfolios. But suddenly when things started to change, I would not say collapse, change being that is the market design, the ups and downs, then the information started taking importance beyond a particular investor's circumstances or situations. So I would say for investors in a world where everything sort of seems haywire or for the time being, all of that, it is good to know all of it to remain aware of what is happening in the macro world and, you know, outside the domestic as well. But when it comes to your own portfolio, you should be grounded in the fact that how your personal policies are, how your circumstances are, how your situation is. If, let's say, you need some money for a very important thing which you had been investing for, you should really not think about what is happening in the geopolitical arena or anywhere in the world, because you invested your money for this day, so you should pull it out. If in case you do not need your money, just continue with your asset allocation, with your SIPs. Don't be scared because of, you know, what is happening out there, because this is the most tough part, you know, staying in the game when things look red in your portfolio.
2: So are there any sector specific mutual funds that you would recommend that people should focus on?
0: I would say specific to sectors more

0: than that to understand and or let's say to sort of keep control over where you are investing, you should actually be investing into diversified funds. Thereby, you will be giving the fund manager the opportunity to with the macro developments to let's say change the sectoral exposures or the company dynamics within the portfolio for your benefit. And yeah, that should be the focus and not really the.
1: So the mantra, according to you, should be that one should continue to invest.
2: बिल्कुल,
0: राइट
2: स्नेहा की राय यही है राजेश, कि आप गिरते हुए बाजार का फायदा उठाएं और बाजार में पैसा लगाते रहें ताकि आप कम प्राइस पे यूनिट्स खरीद सकें, म्यूचुअल फंड में बने रहें। अगले कॉलर हैं जयपुर से शिवम, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
3: हाँ नमस्कार सर।
2: नमस्ते।
3: सर मैं अभी आने वाले 7-8 साल के लिए लगातार मंथली SIP करना चाहता हूँ फ्लेक्सी कैप फंड में। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि ये पारस्परिक का फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो कौन सा बेटर रहेगा सर, प्लीज ये बताइए।
0: शिवम जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने टाइम होराइजन को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं एंड इसीलिए आपने जो एक एसेट क्लास सिलेक्ट करी है वो भी बिल्कुल सही है, विच इज इक्विटी। जब भी कुछ चुनाव की बात आती है ना कैटेगरी लाइक फ्लेक्सी कैप, तो जैसे अभी हम पहले श्रोता को बता रहे थे, डाइवर्सिफिकेशन एक की रहती है अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो हमें हमेशा जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम कम से कम दो फंड्स का चुनाव करें फ्लेक्सी कैप, मतलब किसी भी कैटेगरी में वैसे, बट आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कहा तो दो फंड्स का चुनाव करें वो ज्यादा बेहतर रहता है, ताकि किसी भी एक फंड पे हमारी जो पोर्टफोलियो की डिपेंडेंस है उससे प्रॉब्लम ना रहे, और जब इन्वेस्ट करें तो SIP के माध्यम से ही करें।
2: जी आइए और अगली खबर पे नजर डालते हैं। इस महीने अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIs ने भारतीय शेयर बाजार से 20,974 करोड़ रुपए निकाले हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के कारण निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित हुई है। वैसे देखा जाए तो देश के शेयर बाजारों में कुल बिक्री के जरिए FPIs ने 23,676 करोड़ रुपए निकाले, लेकिन प्राथमिक बाजार में उन्होंने 2,700 करोड़ रुपए का निवेश भी किया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में 25 आधारभूत अंकों की वृद्धि से वैश्विक तरलता की स्थिति पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। भारतीय ऋण बाजार में भी FPIs की बिकवाली का दबाव बना रहा। सितंबर में अब तक FPI ने FAR के जरिए ऋण प्रतिभूतियों से 10,296 करोड़ रुपए निकाले हैं। VRR के जरिए 1,817 करोड़ रुपए की निकासी हुई, जबकि जनरल लिमिट मार्ग से समीक्षा अवधि के दौरान 1,068 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई।
1: इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स, वी हैव इन आवर स्टूडियो म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी विद अस, सो यू कैन कॉल अस एट 2331-4444 और 2331-0481 और 2371-7106। In the meantime, we are joined in by Shankar from Bhopal. Shankar, a warm welcome. Please ask your question.
4: Good evening, Market Mukherjee.
1: Good evening.
4: Ma'am, my question is about REITs fund. If someone is invested in REITs fund, what should be the allocation into REITs fund as far as equity and debt is concerned and gold? What should be the REITs fund investment? And secondly, REITs fund earns on what? Do they earn on rental income or do they earn on price appreciation of properties? How this model of REITs work? Can you please explain to us? Thank you.
0: So, Shankar, when it comes to the kind of allocation you should have beyond the traditional equity and debt allocation. By traditional, I mean equity asset class and debt asset class overall versus, let's say, gold or REITs. In your portfolio, while majorly equity and debt should be along with as per your asset allocation, for a REITs kind of exposure or say gold, you can look to have, let's say, a 10 to 15% kind of an allocation. Having said that, now even equity mutual funds have the leeway to invest some portion in REITs or the listed real estate and gold / silver or any kind of commodities. So there is no longer a need to have a specific allocation carved out for, say, gold or REITs. Having said that, if you're still looking for some, of course, you can look to have a lower allocation.

0: as I said, around 10%. When you say how they earn, while the details of that I will definitely have to look at, but since they are listed, the price appreciation is well part of it. So that part remains same as shares.
1: जी और अभी के जो हालात हैं स्नेहा, जिसे हम पहले बात कर रहे थे गिरते हुए बाजार का फायदा उठाएं, और लेकिन आम तौर पर ये गिरता हुआ बाजार जब काफी समय तक कायम रहता है और देर तक, तो थोड़ी घबराहट तो होती है। चलिए हम इस पर आगे चर्चा रखेंगे जारी अपनी। और नोएडा से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
2: सर, मेरे पास SBI का कॉन्ट्रा फंड है, वो बहुत अच्छा प्रूव नहीं कर रहा है। एक बार मैंने मार्केट मंत्रा में ही मैंने सुना था कि SBI कॉन्ट्रा में आप निवेश कीजिए SIP, लेकिन कोई अच्छा परसेंटेज उसमें जनरेट नहीं हो रहा है, तो कृपया सलाह दें।
0: विनोद जी, हम जिस कभी भी जिस भी कोई भी इक्विटी फंड्स पे इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्ट करते टाइम कि हमारा कोई भी फंड होता है वो हमेशा उतार चढ़ाव से गुजरते हुए उसके बेस्ट फेजेस आएंगे और उसके वर्स्ट फेजेस आएंगे, और कुछ ऐसे फेजेस होंगे जब आपको ना ही कोई बेनिफिट हो रहा होगा, बहुत ही मिडलिंग टाइप ऑफ फेजेस होते हैं। यही वो एक्चुअल फेजेस होते हैं जब हमें उसमें लगे रहना होता है, बिकॉज अगर वो फंड आपके पोर्टफोलियो को ओवरऑल कंप्लीट करता है तो हमें उसके जो एक मिडलिंग फेज होता है उसमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। स्पेसिफिकली जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग एज अ स्ट्रैटेजी रहती है, ये इसमें चुनाव ऐसे शेयर्स या स्टॉक्स का करते हैं फंड मैनेजर्स जिनकी संभावना ऐसी रहती है कि ये अभी मार्केट से अलग चल रहे हैं, बट जब मार्केट का एक दूसरा टाइप ऑफ लेट्स से डायरेक्शन आएगा तब ये आपको बेनिफिट देंगे। तो कॉन्ट्रा और जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्टाइल्स होते हैं, इनमें थोड़ा जो एक धैर्य या पेशेंस होता है वो हमें ज्यादा लेकर चलना होता है। ओवरऑल फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में सूटेबल है, आप SIP के माध्यम से उसमें लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो भी आपको समय देना चाहिए। और अगर आपने हाल फिलहाल में स्टार्ट करा है तो इक्विटी को रंग दिखाने के लिए कम से कम 3 या 5 साल हमें चाहिए ही रहते हैं, तो मेरी समझ में आपको बने रहना चाहिए।
3: फ्रॉम ओडिशा वी आर जॉइंड इन बाय अंबुजा, अ वार्म वेलकम अंबुजा।
4: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
3: गुड इवनिंग।
4: माय क्वेश्चन इज, व्हेन आई विल टेक ए लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, व्हाट डिसिप्लिन शुड आई फॉलो?
0: सो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड इज अ वेरी यू नो अ वेरी न्यू एंड अ वेरी गुड वे ऑफ लेट्स से कंटिन्यूइंग द कंपाउंडिंग पार्ट ऑफ योर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टिल गेटिंग सम लिक्विडिटी इन योर फेवर। आई वुड से यू शुड जस्ट नॉट, वेन एवर टेकिंग एनी काइंड ऑफ लोन, अकॉर्डिंग टू मी वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट रिमेन्स दैट एनी काइंड ऑफ यू नो इंटरेस्ट पेमेंट यू शुड रिमेन ऑन टॉप ऑफ इट, एंड यू शुड नॉट लेट्स से कंसिडर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट of taking a loan for every liquidity needs that crops up. So you should have discipline in the sense that you are taking loan against your mutual fund units for this particular reason because you are not able to arrange for any other, let's say, way out. While this remains a good way to take you know, to get some liquidity immediately, but a dependence of a kind that this becomes your way to go every time should be, I guess, taken care of.
1: जी अगले कॉलर है मुंबई से पंकज, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
5: हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंडल टीम।
1: गुड इवनिंग।
5: आई गॉट टू क्वेश्चंस। वन इज, इफ आई हैव अ 5+ year होराइजन, हाउ मेनी फंड शुड आई एक्चुअली हैव इन माय पोर्टफोलियो एंड हाउ डू आई अवॉइड ओवर डाइवर्सिफिकेशन इन माय पोर्टफोलियो? वन इज दैट, एंड द सेकेंड वन इज अबाउट म्यूचुअल फंड्स नाउ इन्वेस्टिंग इन फॉरेन मार्केट, सो हाउ गुड और बैड आर दीज, एंड स्पेशली नाउ एट सच अ टाइम व्हेन से द US मार्केट्स और अदर मार्केट्स आर डूइंग आउट परफॉर्मिंग द इंडियन मार्केट, सो इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन सच फंड्स? थैंक्स।
0: राइट, सो पंकज, टेकिंग योर सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट, you know, one important aspect of diversification beyond AMC and fund level diversification or asset class diversification is having some diversification or some of your money beyond the domestic or the, you know, local horizon, which becomes the domestic country. So having some allocation to international funds is a really good way of, you know, topping up diversification in your portfolio. Having said that, international specific mutual funds, which are, you know, 100% investing in those, sort of are going through a blockage of a kind that you

0: are, you know, not able to invest in those funds. But there are funds out there. If you, you know, let's say search, a Google search would tell you that there are funds which are investing some portion of their investments, their money into international specific stocks, which can be a good way to start if they are, you know, overall diversified. Now, coming to your first question, that since you're beginning, you have a long-term horizon, how many funds you should have. So there is no scientific formula or rule of thumb as such that, you know, these many funds will get you this much kind of a benefit of any kind. How you should go about selecting is something that I can help you with. One, you know, look, by looking at your time horizon and risk appetite, have some sense of asset allocation, how much equity you want, how much debt you want. Secondly, in case of equity, you can look to have, let's say, 1-2 flexi cap, multi cap as core of your portfolio, because they are diversified, they get you large, mid, small all at once. And then when you have some experience already, then you can look to have some 20% into small and mid cap, which require longer horizon because of the risk that they get you, but of course the return benefit for the generation of wealth of your overall portfolio can enhance with that kind of exposure.
1: Ji. Dinesh from Delhi joins us now. Dinesh, a warm welcome.
2: Namaskar, I am Dinesh Kumar from Delhi Ashok Vihar. I want to ask that from long-term perspective benefits, which funds are likely to perform better, gold funds, silver funds, or aggressive hybrid funds? Thank you.
0: Right. So, Dineshji, the kind of comparison that we are making here is somewhat not aligned, because aggressive hybrid funds are a mix of equity and debt, while gold and silver become part of the commodities. And we've seen historically how, you know, there have been times when commodities or gold, let's say here, performs really well when there is uncertainty in the equity market, which hurts, of course, aggressive hybrid funds since they are about 65-70% in equity. So I would say you can look to have, if you're looking for a long-term horizon, you can look to have exposures of all of these asset classes into your portfolio, because a combination is what will help you in the long term. And, you know, specific allocations, standalone allocations may not be able to generate that much benefit.
3: जी, एमपी से डीएस शर्मा हमारे साथ हैं. स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
4: हेलो.
3: हेलो जी.
4: नमस्कार सर.
3: नमस्कार.
4: मैं डीएस शर्मा बोल रहा हूँ, मंदसौर एमपी से.
3: जी.
4: मैं 2017 में मैंने एचडीएफसी से कुछ फंड्स लिए थे सर.
3: जी.
4: बैलेंस में करीब 15 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए एक टैक्स सेविंग में, और कुछ दूसरे भी लिए थे. 2-3 साल तक तो उनके मेरे पास में रिजल्ट आते रहे, मगर अब क्या है, 2-3 साल से उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है. बैंक जाता हूँ तो कहते हैं ये है ही नहीं हमारे अकाउंट में, जबकि मेरे पास में उनका हार्ड कॉपी है, सब कुछ है. तो क्या करना चाहिए सर?
0: जी डीएस शर्मा जी, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो बैंक को अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें सर्च करके वो मिलना चाहिए, या फिर अगर आपने डायरेक्टली बैंक के साथ करा था तो बिल्कुल ही मिलना चाहिए. और अगर कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बीच में था जिसके साथ आपने करा था, आप उनसे मदद ले सकते हैं. और दूसरा तरीका ये रहता है कि आप मतलब हम एज इन्वेस्टर्स, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम डायरेक्टली जो एएमसी है जिनसे हमने इन्वेस्ट करा है उनको भी रीच आउट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट के जरिए, या फिर सेबी भी अलाउ करते हैं हमें कंप्लेन रेस करने का. तो ये तरीके आप,
1: कोई अम्बेसमैन नहीं है जिनके पास जा सकते?
0: बिल्कुल, सेबी, तभी मैं बोल रही हूँ कि वहां पे भी होगा.
3: आई अगली खबर पर नजर डालें हम. सोने और चांदी की कीमतों में पिछले सप्ताह फिर तेजी देखने को मिली. ये बढ़त मुख्य रूप से सप्ताह के अंत में आई रिकवरी के कारण रही, जिसे कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से समर्थन मिला. एमसीएक्स में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 1% की बढ़ोतरी हुई और ये 1,54,381 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. दिसंबर अनुबंध वाली चांदी के वायदा भाव में 2.8% की बढ़त दर्ज की गई और ये 2,41,603 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाले सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 0.4% की बढ़ोतरी हुई और ये $4,390.70 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर बंद हुआ.
1: फ्रॉम जयपुर वी आर जॉइंड इन बाय जितेंद्र. वार्म वेलकम जितेंद्र.
5: हेलो. हाँ मैडम, ये
4: एक्टिव फंड क्या होता है।

0: एक नया एमएफओ आया है शायद मोतीलाल ओसवाल का ना किसका, एक्टिव फंड, तो क्या मतलब वो किस टाइप का, मतलब एक्टिव से क्या समझ में आ रहा है?
1: जितेंद्र जी, पूरी जानकारी के लिए मुझे पूरा नाम चाहिए होगा फंड का, कि मतलब मोतीलाल के कौन से फंड या क्या नाम.
2: We'll get back to him next week sometime. Moving on, the new merchant discount rate MDR framework will come into effect from 15th of next month. Under this framework, unified payments interface UPI transactions of up to 2000 rupees will attract zero MDR. As a result, there is no impact on small value UPI transactions up to 2000 rupees. National Payments Corporation of India said these small value UPI transactions comprise more than 95% of the total volume of UPI person to merchant transactions. It added that the intent of levying reasonable MDR is to ensure that UPI remains accessible and convenient for everyday transactions while supporting long-term ecosystem sustainability.
3: जी, अगली कॉलर है पंजाब से मीनाक्षी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
4: मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ भटिंडा से. मेरा सवाल लगभग इसी से मिलता जुलता था कि अगर मैं यूपीआई के थ्रू एसआईपी में इन्वेस्ट करती हूँ और अमाउंट अगर 2000 रुपए है तो क्या एमडीआर लागू होने के बाद उस पर कोई असर आएगा?
1: मीनाक्षी जी, अभी तक जो मैं आपको बता सकती हूँ वो यही है कि एज एन एसआईपी इन्वेस्टर हम पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बाकी आगे आने वाला समय बताएगा.
2: Domestic investors are expected to focus on macroeconomic data, geopolitical developments, foreign institutional investor flows, commodity prices and global bond yields for cues in the week ahead. On the economic front, market participants will closely track core industries data. The primary market is also set for another busy week with 6 main board initial public offerings, IPOs, opening for subscription. Globally, investors will monitor developments surrounding the West Asia conflicts. Focus will also be on anticipated visit by Chinese President Xi Jinping to the United States.
3: Aur jaldi jaldi Sneha, hum दो चार सेंटेंस में अगर हम बताना चाहें, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि बस गिरते हुए बाजार का फायदा उठाएं, बाजार में बने रहें, आप आगे क्या जोड़ना चाहेंगे इस पे?
2: और कंपाउंडिंग कैसे होती है? हाउ शुड वी आस्क, यू नो, आस्क द लिसनर्स टू बी वेरी वेरी यू नो वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन द म्यूचुअल फंड्स.
1: सो अगर आप 1 से 2 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको जो एक बढ़ोतरी दिखती है उसी को कंपाउंडिंग कहते हैं.
3: इसीलिए वक्त इतना ही है आज स्नेहा कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
1: जी धन्यवाद.
2: हेडलाइंस वंस अगेन, ईरान सेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल रिमेन क्लोज्ड अंटिल कंडीशंस आर मेट. FPI withdraw nearly 21,000 crore rupees and in bullion market, gold and silver prices rise last week. That's what we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
6: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 10 सेकंड। मैं हूं आपके साथ

आपका दोस्त फेरोज लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत। और गीत मेरे मनमीत में सुनहरे दौर के उन नगमों को लेकर हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदा। और दोस्तों चलिए यादों की उस खूबसूरत दुनिया में जहां कहानी, संगीत और प्रकृति तीनों मिलकर सिनेमा को एक यादगार अनुभव बना देते थे, और उस दौर का नाम है सुनहरा दौर, यानी गोल्डन एरा, जिसमें बेहद खूबसूरत फिल्में बनी, बेहद खूबसूरत गीत लिखे गए और गाए गए। और पहला नगमा एक बेहद खूबसूरत फिल्म से, हम बात कर रहे हैं साल 1960 की बहुत ही चर्चित फिल्म जिस देश में गंगा बहती है की। फिल्म का निर्देशन किया था राधु कर्माकर ने और निर्माण किया था राज कपूर साहब ने। फिल्म में राज कपूर, पद्मिनी और प्राण प्रमुख भूमिका में नजर आए। राधु कर्माकर की ये पहली फिल्म थी जिसका निर्देशन उन्होंने किया था। इससे पहले वे राज कपूर की कई फिल्मों में सिनेमेटोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। फिल्म के गीतों को संगीत दिया था मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन ने, और गीत लिखे थे इस फिल्म के शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब ने। इसी फिल्म से हमें मिले कई सदाबहार नगमे, ओ बसंती पवन पागल, आप लौट चले और होठों पे सच्चाई रहती है, और भी बहुत सारे बेहद खूबसूरत गीत। फिल्म की खूबसूरती में मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों का भी खास योगदान रहा। प्रकृति की इस दिलकश पृष्ठभूमि ने फिल्म के दृश्यों को यादगार बना दिया। उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है जिसमें कई फनकारों ने अपनी बेहद खूबसूरत आवाज दी, उनमें लता जी, गीता दत्त जी, मुकेश मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर। तो आइए इसी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं। इसको लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है शंकर जयकिशन साहब का।

लता जी, गीता दत्त, मुकेश मन्नाडे साहब, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र की बेहद खूबसूरत, ये महेंद्र कपूर साहब की बेहद खूबसूरत आवाजों में नगमा था फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, 1959 की ये फिल्म धूल का फूल। बी आर चोपड़ा निर्मित और उनके छोटे भाई यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित यह फिल्म यश चोपड़ा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। इससे पहले वे हालांकि नया दौर में एक सहायक निर्देशक के रूप में काम कर चुके थे। फिल्म में माला सिन्हा ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो अपने प्रेमी द्वारा ठुकराए जाने के बाद अपने बच्चों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। एक बेहद खूबसूरत कहानी, एक बेहद खूबसूरत फिल्म, और इस फिल्म का ये नगमा बहुत ही प्यारा जिसे अपनी आवाज दी लता मंगेशकर जी और महेंद्र कपूर साहब ने। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा नगमा गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में।

महेंद्र कपूर साहब और लता जी की इन आवाज़ों के साथ मुझे यानी फिरोज़ को अब दीजिए इजाज़त। गीत मेरे मनमीत से फिर हो गई हमारी मुलाकात, तब तक के लिए आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से

0: गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ के कार्यालय ने साफ किया है कि भारत के चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू द्वारा दी गई जानकारी तथ्यों और दस्तावेजों की ठीक से जांच कर ली गई है। एक प्रेस नोट में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने कहा कि डॉ सिंधु की वोटर लिस्ट एंट्री को मंजूरी दे दी गई है और इसे विधानसभा क्षेत्र 38 दिल्ली कैंट की फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए बरकरार रखा गया है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। मौसम विभाग ने ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान पर 19-0 से शानदार जीत दर्ज की। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तरियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। इसके साथ ही भारतीय महिला बैडमिंटन और टेबल टेनिस टीम ने भी अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया है।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics, organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening. President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources.
2: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय

0: किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर। नमस्ते
0: भाई। मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
1: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए।
1: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से उसके नजरिए से सिखाया जाता है और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
0: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
2: हम जानते हैं कि ये बातचीत आपको बेहद रोचक लग रही है, लेकिन आपको हम ज्यादा तो ऑडियो क्लिप नहीं सुनवा पाएंगे। हाँ, कृष्णा शेषाद्री जी से हम बहुत सारे सवाल जरूर करेंगे ताकि इस वेबसाइट के बारे में, उनके इस प्रयास के बारे में हम और ज्यादा जान सके। तो सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करते हैं कृष्णा शेषाद्री जी का। कृष्णा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद धन्यवाद।
2: आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने आपकी वेबसाइट का उल्लेख मन की बात में किया और आपसे संवाद भी हुआ उनका, कैसा लगा आपको, आपका अनुभव कैसा रहा?
3: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे आपके स्टूडियो पे बुलाया। और जैसे बात आती है मन की बात की, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वेबसाइट मैंने बनाया था एकदम मैंने एक हॉबी की तरह से बनाया था, मेरे को इससे कोई अपेक्षा नहीं थी, मुझे पसंद था तो मैंने बनाया। तो जब मुझे पता चला कि इस वेबसाइट को प्रधानमंत्री जी ने ना ही देखा है बट उसे यूज भी किया है, उसे एक्सपीरियंस किया है, उसके बहुत सारे फीचरों के साथ खेला है, तो इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर माई फैमिली एज वेल। द मोस्ट इमोशनल मोमेंट फॉर मी वॉज वेन माई मदर क्राइड आफ्टर सीइंग द ब्रॉडकास्ट, इट वॉज टीयर्स ऑफ जॉय दैट शी हैड। मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ गई थी कि हमारे सबका एक लक्ष्य होता है, पूरी दुनिया चाहे ना चाहे हमें अपने माँ पिताजी, वी हैव टू मेक देम प्राउड, और वो मैंने इसके थ्रू किया, दैट वॉज माई बिगेस्ट सेटिस्फेक्शन। और मेरी जो वाइफ है शी इज अ नेशनल लेवल राइफल शूटर, सो शी नोज हाउ हार्ड इट इज टू अचीव समथिंग एट दैट लेवल, एंड सो शी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी। और रही बात बाकी दोस्तों या प्रतिक्रियाओं की, मेरे बहुत सारे जो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें कोई मैसेज नहीं भेजता था वो जाग उठे थे मन की बात के बाद। बहुत सारे लोगों ने उसमें कॉन्ग्रेचुलेट किया, बहुत सारे लोगों ने अपनी पॉजिटिव ओपिनियन या प्रतिक्रिया दी, वेबसाइट के बारे में तारीफ की, विच आई फेल्ट वेरी हैप्पी। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन माई पेरेंट्स, जो हमारे मम्मी डैडी अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे मम्मी डैडी को अच्छा वो आपका बेटा है, वो आपका बेटा है, जो वो एक फीलिंग मेरे मम्मी डैडी के, आज भी मेरी मम्मी डैडी के आंखों में वो जो प्राइड है, मैं आपको सच बताऊं तो अभी भी आज भी मैं थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है कि, मेरे हिसाब से आई थिंक 2 हफ्ता हो गया है लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक्चुअली ये मेरी वेबसाइट का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया।
2: अच्छा, ये बताएं कि वेबसाइट शुरू करने का विचार आपको कैसे आया, कब सोचा आपने कि इस तरह की एक वेबसाइट मुझे शुरू करनी है?
3: एक्चुअली आपने मन की बात में भी सुना होगा तो मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, तो मैं एक इंजीनियर हूँ, फिर मैं एक MBA हूँ, मैं अभी मार्केटिंग में काम करता हूँ, अभी जो मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ है और इतिहास में उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन बचपन से मुझे इतिहास में एक विशेष तरह की दिलचस्पी है, आई हैड अ वेरी गुड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। तो एक्चुअली उसका इंस्पिरेशन जाता है मेरी माँ को, वी आर ऑल तमिलियंस, मेरी माँ एक तमिल में एक मैगजीन आती थी उस टाइम पे, वीकली मैगजीन होती थी, उसका नाम कल्की था, तो उन्होंने एक जो साउथ इंडियन चोलास के ऊपर एक एपिक लिखी थी, उसका नाम था पोन्नियिन सेल्वन, 1-2 साल पहले उसकी पिक्चर भी बनी थी, तो उस मैगजीन में हर हफ्ते वीकली स्निपेट्स के हिसाब से छपती थी और मेरी माँ हर हफ्ते वो मैगजीन लेके आती थी और मुझे पढ़ के सुनाती थी, और उन्होंने इतने अच्छे से उस टाइम का, उन चोलास का, उन मंदिरों का और उस लैंडस्केप का इतने अच्छे तरह से वर्णन किया था कि मेरे तभी से मेरी हिस्ट्री में इंटरेस्ट शुरू हो गया था कि ये हम और किस तरह से देखें और किस तरह से जाने, और इस तरह से मैंने इतिहास के और सारे कई सारे किताबें पढ़ना शुरू की और वहीं से मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में था। और रही बात भारत राज्य के इंस्पिरेशन की, तो मेरे जब भी मैं हिस्ट्री क्लास में स्कूल में पढ़ता था या कोई मुझे हिस्ट्री सिखाता था, हमारे देश में जिस तरह से हिस्ट्री सिखाई जाती है उससे आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ इट, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक इतिहास जैसे एक सब्जेक्ट को या एक डेट या कोई किंगडम या कोई किंग उस लेवल पे लेके आ जाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि इतिहास जो है एकदम ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि जहांगीर ने क्या किया, उससे मेरा क्या लेना देना, तो मतलब हिस्ट्री एकदम बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है और हम कभी भी हिस्ट्री को पूरे भारत के दृष्टिकोण से नहीं देखते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताऊं कि हमको ये नहीं पता कि जब मुगल नॉर्थ में थे, जब बाबर आए थे देश में 1526 में, तब साउथ में क्या हो रहा था, जब वास्को डगामा आए थे 1400s के एंड में, तब नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था, तो हमें एक पूरा इंडिया का व्यू हिस्ट्री में कभी नहीं मिलता। तो ये जो था, ये आइडिया मेरे मन में 15 साल से इट वॉज ट्रबलिंग मी, मेरे को चुभ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब वो आइडिया आया तो मेरे पास वो ना टेक्निकल एक्सपर्ट

0: एक्सपर्टीज थी ना नॉलेज थी उस आइडिया को एक वर्किंग वेबसाइट बनाने में। लेकिन जब ये AI रेवोल्यूशन आया 3 साल, जब AI ने हमें कोडिंग और प्रोग्राम बनाने की शक्ति दी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे इस्तेमाल करके मेरे 15 साल के ख्वाब को सच बनाया जाए।
1: तो कृष्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐतिहासिक लेखों, दुर्लभ तस्वीरों और नक्शों को जब हम आर्काइव करते हैं, फिर उन्हें जब सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेटाबेस को कैसे आपने डिजाइन किया?
0: अगर आप भारत राज्य के वेबसाइट देखेंगे तो इसका स्ट्रेंथ ही इसकी सिंप्लिसिटी है। हम ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस या ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम यूज करते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू, जो वेबसाइट का जो हीरो है, वो मैप है। आप देखोगे तो बहुत सारे इंटरनेट में ऐसे ओपन सोर्स मैप मिलते हैं जहां पे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपको बराबर मैपिंग मिल जाती है। तो हमने क्या किया कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो मैप है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैप को लिया और हमने एक सब कॉन्टिनेंट व्यू लिया था। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, इस 5 कंट्री के मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल मैप्स मिले। और फिर मैंने क्या किया कि AI के थ्रू मैंने ऐसे सोर्सेस या ऐसे बुक्स चूज किए जो इतिहास में एक स्टैंडर्ड माना जाता है, जैसे जादूनाथ सरकार जी हैं और ऐसे बहुत सारे किताबें हैं जो हमने मैसूर किंगडम के एक हर्षवर्धन राव करके एक हैं, शायद मैं नाम में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर सकता हूँ, मुझसे माफी चाहता हूँ। तो ऐसे मैंने कम से कम एटलीस्ट 25-30 बुक्स को सोर्सेस के नाम पे डिसाइड किया। और फिर मैंने क्या किया कि AI को ये सारे बुक्स में सर्च करने बोला कि एक ईयर में उस डिस्ट्रिक्ट में कौन राज कर रहा था, और इस तरह से मैंने एक पूरी मैपिंग बनाई। अभी जो आप लेते जाओगे तो 300 CE से आपके पास डेटा है, तो 300 CE टू 2026 में हर एक साल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में किसने राज किया का मैंने मैपिंग बनाया, और वो मैपिंग से आपको भारत राज्य आज दिखता है।
1: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी यहाँ इसी मोड़ पर। मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: हाँ, ये जो गीत है ये मेरी वाइफ और मेरे पिताजी और मेरी मम्मी, ये तीनों का वन ऑफ मोर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। डेफिनेटली ये गाना सुनिए। ये गाना है अमर प्रेम से कुछ तो लोग कहेंगे।
1: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो पुरानी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें होती हैं या दस्तावेज होते हैं, जब हम वो चेक करते हैं तो वेबसाइट की जो स्पीड है बहुत धीमी हो जाती है उनकी वजह से। तो आपने ऑप्टिमाइजेशन की तकनीक इस्तेमाल की है ताकि ठीक से ये वेबसाइट चल सके?
1: तो हमारे वेबसाइट में मैंने ऐसे कोई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें या ये कोई नहीं डाला है, क्योंकि मेरा ये मैप बेस्ड वेबसाइट है, तो इसमें हम तस्वीरें नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम तस्वीरें डालते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि भारत राज्य का, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में किस किस भाग में कौन राज कर रहा था। तो मेरे को उस ऑब्जेक्टिव से डाइवर्ट नहीं होना था, तो इसके लिए पिक्चर्स हो या ऐसे हाई रेजोल्यूशन फोटो हो जिससे यूजर का ध्यान या यूजर का क्या बोलते हैं उसका एक्सपीरियंस हर्ट हो सकता है या डिमिनिश हो सकता है, वो कोई भी फीचर मैंने नहीं डाले हैं। और रही बात उससे डेटा निकालने में, हाँ बहुत सारी किताबें ऐसी थी जो एक फोटो के हिसाब से थी, तो हमने जब एरिया के लिए वो डेटा सेट लोड करने से पहले मैंने उसको OCR कराया, उसको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और उस कन्वर्जन से मैंने डेटा निकाला। लेकिन अगर आप देखने जाओगे वेबसाइट में कोई ऐसा कोई फोटो नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हम वो फोटो डालते हैं तो यूजर का ध्यान बट जाता है और हमारे वेबसाइट का कोर ऑब्जेक्टिव है वो शायद कहीं मीट नहीं हो पाता।
0: आपकी वेबसाइट में लोग सामग्री जोड़ सकते हैं और इस तरह से आपके प्रयास में वो भी जुड़ते हैं। मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि आपने सिक्योरिटी के लिए भी क्या कुछ फीचर्स ऐड किए हैं कि जो हमारे सही तथ्य हैं उनसे छेड़छाड़ ना हो।
1: हमने किसी को भी एडिट राइट नहीं दिए हैं, तो एडिट राइट्स अभी फिलहाल सिर्फ मेरे पास ही हैं। तो कोई भी सुझाव आते हैं, कोई भी हमको करेक्शंस आते हैं, कोई भी रिकमेंडेशंस आते हैं, तो मैं अपने सोर्सेज, जो हमने बुक्स की जो सोर्सेज गैदर की हैं, जो आपको हमारे वेबसाइट के सोर्सेज के टैब में भी मिल जाएंगी, उसके अगेंस्ट मैं मेजर करता हूं। अगर वो सोर्स में होता है तो ही मैं उसको इनकॉर्पोरेट करता हूं। पूरा वेबसाइट का कंटेंट है, मैं अकेले अपने कंप्यूटर से उसको अपलोड करता हूं। ये कहीं इंटरनेट में या कहीं ऐसे जगह नहीं है जहां पे आके लोग उसे हैक कर सके। तो इसके लिए जितना मैंने ये वेबसाइट को सिंपल बनाया है। और रही बात सिक्योरिटी या चोरी करने की डेटा की, तो मैंने ये जो वेबसाइट है ये ओपन सोर्स कर दिया है, फ्री कर दिया है, तो अगर कोई भी जाके मेरे वेबसाइट से वो मेरा जो भी सारा डेटा है वो डाउनलोड करके अपना खुद का वेबसाइट भी बना सकता है। क्योंकि मैंने जब ये वेबसाइट बनाया तो मुझे ये लगा था कि हमको कभी अपना जो नॉलेज है, अपनी जो भारत की इतनी वास्ट नॉलेज का जो हमारी रिपोजिटरी है, वो हमेशा सबको ओपन होनी चाहिए। इट हैज टू बी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। और हम वो नहीं कर सकते अगर हमने उसमें कुछ या पे वॉल लगा दिया या उसको पैसे लेके

0: को एक्सेस दिया, तो ये जो वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव है टू मेक हिस्ट्री फन टू एवरीवन, वो फेल हो जाएगा। इसके लिए मुझे सिक्योरिटी की कोई डर नहीं। अगर कोई तोड़ के डेटा ले भी जाता तो वो अच्छा ही है, क्योंकि मैं उसे बस विश करूंगा कि इससे भी अच्छा और वो वेबसाइट बना दे। तो अगर आप जब भारत राज्य के वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पे एक करेक्शंस करके एक टैब होगा, तो अगर वो आप करेक्शंस के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको दो टाइप के सजेशंस आप हमें दे सकते हो। एक है कि अगर हमें कुछ फीचर्स चाहिए, जैसे हम बहुत लोग ने मन की बात प्रोग्राम के बाद बहुत लोगों ने ऐसा सुझाव दिया कि ये वेबसाइट को आप रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल करो, तो वो टाइप के फीडबैक भी हम आप दे सकते हो। और अगर दूसरी टाइप का फीडबैक है, अगर आपको लगता है कि इस प्रदेश में जो हमने मार्क किया है ये जो रूलर है वो गलत है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल तक के करेक्शंस भी आप हमें पहुंचा सकते हो। इट इज अ वेरी इजी टू यूज, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टैब, और आप उसमें जैसे ही सबमिट करेक्शन सबमिट करोगे वो हमको मेल में आता है, हम उसे रीड करते हैं, अगर वो सोर्सेस के साथ वेरीफाई होता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि करेक्शंस की इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने 1000 डिस्ट्रिक्ट को कम से कम 1500 साल पे मैप किया है। इसका मतलब है हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको 1000x1000 टाइम्स एंट्री आपको मिलेगी, तो और हमें पता है कि कहीं ना कहीं हम गलतियां करेंगे और इस गलती को हमको सबको मिलकर सुधारना है। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री ऐसी चीज है जो एक आदमी या एक वेबसाइट की बस की बात नहीं है, ये हम सबका एक वेबसाइट है और हम सबको मिला के सामूहिक योगदान से ही हम इसके एंट्री को और एक्यूरेट बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं, ताकि अगले कुछ सालों तक ये हिस्ट्री लर्निंग को मजेदार बने।
1: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी यहाँ इसी मोड़ पर। मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: सो दिस इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू माई वाइफ, ये हमारी दोनों की फेवरेट मूवी तारे जमीन पर से है, और वो जो गाना है खोलो खोलो, तो ये हमें बहुत दोनों को बहुत पसंद है, एंड ये एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग है।
1: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। कृष्णा जी, ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट के दौरान आपकी जो सबसे बड़ी सीख थी वो क्या रही और शुरुआती दौर में कैसी चुनौतियां थी?
1: बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्न इन दिस एक्सपीरियंस इज बिल्डिंग थिंग्स, कि अगर आप कुछ चीज बिल्ड करते हो और अगर एक चीज क्रिएट करते हो, उसमें जो आपको मजा आता है वो और किसी चीज में नहीं आता। तो जब आप एक चीज आप देखते हो, एक वेबसाइट जो नहीं है, देन इट स्लोली कम्स टुगेदर एंड देन फाइनली एक विजुअली वो आपको दिखता है, जो आपको जॉय और वो एंजॉयमेंट आता है, इट आई डोंट थिंक देर आर वेरी फ्यू एक्सपीरियंसेस इन द वर्ल्ड विच आई थिंक प्रोबेबली मैच इट।
0: मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमारे जो दृष्टि बाधित साथी होते हैं, हम देखते हैं अक्सर कि वो पठन पाठन में बेहद रुचि लेते हैं और साथ ही बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, ऐसे में वो नए नए माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए, नई तकनीक इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी वेबसाइट पर क्या स्क्रीन रीडर जैसी सुविधा है ताकि दृष्टि बाधित साथी जो हैं वो भी आपकी वेबसाइट से जुड़ सके?
1: ये एक्चुअली आपने मुझे बहुत दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि ये जो है भारत राज्य जो है एक विजुअल मीडियम का वेबसाइट है। इसमें हम विजुअली इंडिया के मैप को दिखाते हैं, इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट, और अगर हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर भी दें तो एज अ स्क्रीन रीडर हो या जो तकनीक है वो वेबसाइट उनके लिए ऑप्टिमम एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। लेकिन हमने थोड़े कुछ फीचर्स डाले हैं, तो अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है या किसी को और कुछ है तो वो हमने कलर ब्लाइंड मोड इम्प्लीमेंट किया है ताकि वो भी ये वेबसाइट को एंजॉय कर सके।
0: जब आपने वेबसाइट डेवलप की तो उस दौरान बहुत सारे इतिहासकारों, शोधकर्ताओं या फिर कंटेंट राइटर्स के साथ आपका मिलना जुलना हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, तो ये बताएं कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे उन्हें समझाई और कहीं इसमें तकनीक तो कोई बाधा नहीं बनी?
1: एक बात मैं अभी सच्चाई में बताता हूँ कि मैंने ये कंटेंट रिसर्च है, ये जो कंपाइलेशन है, ये मैंने अकेले में किया है। लेकिन मैं कभी जिंदगी में ये नहीं भूलूंगा कि मैंने अकेले में किया है, क्योंकि आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। द एंटायर कंटेंट, द एंटायर मैपिंग, जो भी आप देख रहे हो भारत राज्य में डिस्ट्रिक्ट में किसने काम किया, ये मेरे से बहुत ही बड़े हस्तियों ने, बहुत ही बड़े हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर अपनी पूरी जिंदगियां डेडिकेट की हैं, और उसमें से ऐसे किताबें लिखी हैं जिसमें सब कुछ क्लियर है। जैसे हमारे जो सोर्सेस हैं, सबसे बड़े सोर्स जो है वो आरसी मजुमदार जी हैं, जिनके ऑलमोस्ट 10 से 11 वॉल्यूम हैं, जो इंडिया के वैदिक एज से लेके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल तक सारी चीजें कवर करती हैं। फिर हमने नीलकंठ शास्त्री, जिन्होंने साउथ इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। जादूनाथ सरकार जी, जिसने फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे इतने अच्छी किताबें लिखी हैं इंडियन हिस्ट्री के ऊपर कि इट इज अमेजिंग द डिटेलिंग दैट दे हैव गॉन थ्रू। और बहुत सारे और भी ऑथर्स हैं, जैसे एक ऑथर थे जिसने सिर्फ राजपूतों पे, राजस्थान पे 5 वॉल्यूम लिखे हैं। एक एक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट तक उन्होंने कवर किया है कि कब क्या हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, युद्ध में कौन सी टेरिटरी इधर से उधर गई। तो मैंने ऐसा नहीं समझा है कि मैंने अकेले में काम किया है। आई हैव ओनली रेफरेंस्ड एंड आई हैव ओनली यूज्ड द वर्क्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक मजुमदार, जादूनाथ सरकार जी, नीलकंठ शास्त्री एंड ऐसा और एंड सो मेनी मोर ऑथर्स, और बिकॉज ऑफ हुम दिस वेबसाइट इज अलाइव टूडे। मैंने ऐसा तो नहीं कि मेरे पास कोई टीम ऑफ हिस्टोरियंस है, बट मेरे पास इन जैसे महान दिग्गज हिस्टोरियंस का आशीर्वाद था जिसके वजह से आज ये भारत राज्य जो वेबसाइट है वो लाइव है।
0: जब प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हो रही थी उस वक्त आपने उनसे कहा था कि हम इतिहास को रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो इस बारे में आपके और क्या विचार हैं? एक प्रयास तो आप कर चुके हैं, आपको क्या लगता है हमें अपने बच्चों को अपना इतिहास, अपना गर्व कैसे बताना चाहिए?
1: जो आज हम इतिहास स्कूलों में पढ़ाते हैं या बहुत सारे जो नौजवान हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको ये एक सोर्स ऑफ विजुअल हिस्ट्री है, और अगर ये देखेंगे तो और हिस्ट्री या इतिहास को और अच्छे से वो याद रख सकते हैं। हम वो ही एंगल से इस वेबसाइट को नियर फ्यूचर में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा हमारे वेबसाइट में एक फीचर है ट्रम्प कार्ड का, तो हम सब जब बच्चे थे तब हमने WWE के या क्रिकेटर्स के ट्रम्प कार्ड के साथ बहुत एंजॉय किया है, और आज भी हमको बहुत सारे जो डेटा है वो ट्रम्प कार्ड के वजह से याद है, और हमने ये वेबसाइट में इतिहास के ट्रम्प कार्ड्स बनाए हैं, हर एक एम्पायर के या हर एक किंगडम के हमने ट्रम्प कार्ड्स बनाए हैं। तो अगर वो ट्रम्प कार्ड बच्चे रेफर करें या बच्चे यूज करें तो उनको इतिहास मजेदार ही नहीं रहेगा, याद भी रहेगा। मेरा उद्देश्य ये है कि हम हिस्ट्री को एक स्टोरी बनाए, और अगर हम स्टोरी की तरह सब बच्चों को ये इतिहास पढ़ाएं तो वो इतिहास उन्हें याद तो रहेगा ही, बट वो उसे वैल्यू भी करेंगे।
0: हो सकता है कि हमारे न्यू डेवलपर्स इस समय आपको सुन रहे हो, हमारे ऐसे साथी, हमारे ऐसे श्रोता जो अपनी कोई वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं या किसी वेबसाइट में सहयोग करना चाहते हैं, तो आप जरा उनके लिए बताएं क्या सलाह आप देंगे, उन्हें क्या क्या फीचर्स अपनाने चाहिए और कैसे तैयारी करें।
1: इफ एनीवन वांट्स टू बिल्ड एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, छोटी सी छोटी वेबसाइट हो सकती है या कुछ बड़ा भी प्रोजेक्ट हो सकता है, माय ओनली रिक्वेस्ट टू देम इज आप उसके अंदर जाइए, बिल्ड करना चालू कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बिल्ड करोगे वो आपके अंदर अच्छा एहसास होगा, यू विल फील बेटर, एंड देन यू विल नॉट ओनली बिकम अ बेटर बिल्डर बट यू विल ऑल्सो बिकम अ बेटर ह्यूमन। ये जरूर बोलूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात इनिशिएटिव है, इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग एंड अ मोटिवेटिंग इनिशिएटिव। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई जरूरत नहीं थी ये वेबसाइट के बारे में जाके मुझसे बात करने, बट उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया, मेरे से बात की, वो वेबसाइट में, इससे बड़ा मोटिवेशन एक फॉरगेट टेक पर्सन किसी को भी नहीं हो सकता। और ये मन की बात जब हो गई तो इसमें मुझे एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस आया, एक रिन्यूड एनर्जी आई है, जिसमें से मैं इस भारत राज्य को और भी ज्यादा बेहतर बनाऊं, और भी ज्यादा पीछे टाइम में जाऊं, जितना भारत का इतिहास है उसे कवर कर सकूं, और इसे एक ऐसा वेबसाइट बनाऊं जो आगे इतिहास के लिए सबसे ज्यादा यूज्ड वेबसाइट हो। तो ये मोटिवेशन मन की बात के साथ आया है, और सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका रिकॉग्निशन मिलेगा। ये मुझे मन की बात के ये प्रोग्राम के थ्रू, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स आई हैव लर्नड।
0: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी यहाँ इसी मोड़ पर। मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
1: तो ये गाना मेरे जो बॉस हैं सुरेश कुमार सर, आनंद सर और राजेश सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये उनका एक वन ऑफ देयर फेवरेट सॉन्ग्स, दिस इज फ्रॉम आई थिंक मूवी हम दोनों, द सॉन्ग इज मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
0: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।
2: Even now when I see myself on the screen, I rarely gaga about myself. I'm a very great critic of myself. I may not say so to the world, but because I'm a very healthy sign, because you are in constant process of improving and progress. And that's a very great sign for any worker in any field, which is creative.

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। यहाँ आपसे एक बात और पूछना चाहूंगे कृष्णा जी, आपकी वेबसाइट में बहुत सारे ऐतिहासिक पात्र हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन ये बताइए कि आपके फेवरेट पात्र कौन से हैं, आप किन पात्रों से ज्यादा प्रभावित हुए हैं?
1: अब तो वेबसाइट पूरा बना है तो सारे पात्र से प्रभावित हूँ ही, बट माई फेवरेट इज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, माई फेवरेट इज द ट्रम्प कार्ड सेक्शन। क्योंकि अगर हमने अलग अलग टाइम के, अलग अलग टाइम पीरियड्स के, अलग अलग एम्पायर्स के कार्ड प्रिंट करके हमने हमारे बच्चों या हमारे स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उनके थ्रू वो हिस्ट्री पढ़ाना मजेदार बना सकते हैं और उनके बच्चों के बीच में वो एक खुद ही में एक इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है, जो वो समर में या कभी भी जब उनको टाइम मिले तो खेल के ना ही वो रिलैक्स कर सकते हैं, बट इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। तो हमारे वेबसाइट के थ्रू जो है आपको आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। अगर आप रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप रायगढ़ पे क्लिक करोगे तो 300 CE से आज तक रायगढ़ में किस किस लोगों ने राज किया, कितनी बार वो जिला हाथ बदला,

0: कितने राजा आए, कितने राजा गए, ये सब का आपको एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वो ही नहीं, आपको और भी आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे उसका पॉपुलेशन क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका एवरेज टेम्परेचर क्या है, उसमें कौन से क्रॉप उगते हैं, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, कौन से मंदिर हैं, कौन से आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, सबकी लिस्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। वो भी आप खुद डाउनलोड भी कर सकते हो। कैन टेल यू अ फनी इंसिडेंट रिगार्डिंग दिस। किसी कलीग को दिखा रहा था तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा जिला कौन सा है, जहां से तुम हो तो उस जिला का नाम बताओ। तो उसने रायगढ़ बताया, तो हमने रायगढ़ पे क्लिक किया। तो रायगढ़ में अराउंड 1100-1200 के टाइम पे एक शिलाहारास करके एक जो डायनेस्टी थी वो रूल करती थी। तो वो उसने देखा और उसने बोला कि मेरा जो सरनेम है वो शिलाहारा है। तो वो उसी को नहीं पता था कि वो एक जमाने के राज परंपरा से था। तो वो एक अच्छा सा कोरिलेशन हो गया था हमको, और उसको भी एक अच्छी जानकारी मिली जो उसको तभी तक नहीं पता थी।
1: कृष्णा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और बहुत कुछ हमें आपकी वेबसाइट के बारे में जानने को मिल रहा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आने वाले समय के लिए क्या आप वर्चुअल रियलिटी या AI जैसे फीचर्स भी इसमें जोड़ने की योजना बना रहे हैं?
0: जैसे मैंने आपको बोला था कि 3D मॉडल्स ऑफ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, जैसे कैलाश टेम्पल हो, या जैसे मैंने बोला था बृहदीश्वर टेम्पल हो, या एलोरा केव्स हो, या अजंता केव्स हो, तो हम वर्चुअल रियलिटी के थ्रू लोगों को उन मॉन्यूमेंट्स को घर बैठे बैठे एक्सपीरियंस दे सकते हैं। मुझे VR के वर्ल्ड के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी है नहीं, तो इसके लिए मैं इसके बारे में आपको विस्तारित से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आई एम श्योर दैट इन द कमिंग टाइम टेक्नोलॉजी विल बी सोफिस्टिकेटेड इनफ वेयर आप घर बैठे बैठे कैलाश टेम्पल को एक्सप्लोर कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे फीचर डाल सकते हैं जहां पे लोग घर बैठे बैठे या वो मॉन्यूमेंट में ही वो मॉन्यूमेंट के बारे में जाने और उसको एंजॉय करें। अभी तो फिलहाल 3D मॉडलिंग तो हमने नहीं की, हमने तो एक सिंपल ओवर 2D मैप ओवर लेआउट में हमने एक टाइमलाइन किया है। जैसे हम सोच रहे हैं कि जैसे आगे बढ़े, हम ऐसा भी कुछ करें कि भारत के कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उसको हम एक 3D मॉडल बना के वेबसाइट में होस्ट करें, ताकि लोग वहां पे 3D के थ्रू उस मॉन्यूमेंट्स को एक्सपीरियंस कर सके। ये एक फीचर है जो हमने पाइपलाइन में रखी है, जल्दी में वो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। कोलैबोरेशन से हमारा जो एक्यूरेसी है, ये जो एनरिचमेंट ऑफ डेटा है, ये कोलैबोरेशन से आगे बढ़ेगा। बट हाउ आई विजुअलाइज दिस वेबसाइट एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर इज एन एजुकेशनल एड।
1: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी यहाँ इसी मोड पर। मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: दंगल टाइटल सॉन्ग है वो।
1: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आधारित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकतानगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को बड़ोदरा में महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे।

0: 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंझू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय ने साफ किया है कि भारत के चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु द्वारा दी गई जानकारी तथ्यों और दस्तावेजों की ठीक से जांच कर ली गई है। एक प्रेस नोट में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने कहा कि डॉ. संधु की वोटर लिस्ट एंट्री को मंजूरी दे दी गई है और इसे विधानसभा क्षेत्र 38 दिल्ली कैंट की फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए बरकरार रखा गया है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। रूस में यह नया हमला ऐसे समय हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। समरकंद में चल रहे 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड में आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश ने अनीश गिरी और इरविन अलामी के खिलाफ अहम जीत हासिल की, जिससे भारत ने नीदरलैंड्स पर 3-1 से जीत पक्की कर ली है। लेकिन भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। ओपन कैटेगरी में आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश की शानदार जीत की बदौलत भारत ने नीदरलैंड्स पर 3-1 से अहम जीत दर्ज की। दूसरी ओर महिला टीम को पोलैंड के हाथों 1.5-2.5 से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि आर वैशाली को अलेक्जेंड्रा माल्टसेवस्किया ने हरा दिया। अवंतिका अग्रवाल, दिव्या देशमुख और केनेरू हम्पी के मैच ड्रॉ रहे। इस बीच उज्बेकिस्तान की टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए 8वीं वरीयता प्राप्त हंगरी को 4-0 से हराया। अब उज्बेकिस्तान, जर्मनी और भारत तीनों ही 10-10 मैच पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening. President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources. The President said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur yesterday. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said, first ever operation of Japanese

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

फिल्म असली नकली से लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। संगीत शंकर जयकिशन का था और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। 1962 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को निर्देशित किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। देवानंद, साधना, लीला चिटनिस, अनवर हुसैन, संध्या रॉय और केस्टो मुखर्जी ने इस फिल्म में अभिनय किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही थी। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

फिल्म का नाम नीलकमल और आवाज़ थी रफ़ी साहब की, संगीत रवि का, और ये फिल्म आई थी 1968 में, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी वहीदा रहमान, राजकुमार, मनोज कुमार और ललिता पवार ने। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

आशा जी की आवाज़ में सुना आपने ये सदाबहार गीत फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से, और इस फिल्म का संगीत दिया था हेमंत कुमार ने और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। ये फिल्म आई थी 1962 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था अबरार अल्फी ने, निर्मित गुरुदत्त साहब ने किया था और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, मीना कुमारी, रहमान, वहीदा रहमान। और ये फिल्म 1956 की बंगाली फिल्म साहिब बीवी और गुलाम की रीमेक थी और जो बिमल मित्रा के उपन्यास पर आधारित थी। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म लव इन टोक्यो से।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:41 और 21 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत। फिल्म का नाम परवरिश और संगीत था दत्ताराम वाडकर का और गीतकार थे हसरत जयपुरी। ये फिल्म आई थी 1958 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था शानू बनर्जी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, माला सिन्हा और महमूद ने। अगला गीत तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज़ में।

फिल्म बाबुल से सुना आपने ये गीत शमशाद बेगम और तलत महमूद की आवाज़ में। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीत था नौशाद साहब का। ये फिल्म 1950 में आई थी और ये इस फिल्म को निर्देशित किया था एस यू सनी ने और नौशाद साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के अलावा इस फिल्म का म्यूज़िक भी दिया था और अहम रोल इसमें निभाया था दिलीप कुमार, नरगिस मुनव्वर सुल्ताना ने। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही और 1950 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। गीत अगला गीत अब तक पहुंच रहा है रफ़ी साहब की आवाज़ में। फिल्म का नाम गज़ल।

0: छोड़ी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंझू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतदाता गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। एसआईआर से पहले के 13,97,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। इस गणना प्रक्रिया में 28,944 मृत मतदाताओं की पहचान की गई, जबकि 1,23,749 मतदाताओं की अनुपस्थिति कहीं और चले गए या अन्य श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा 5,059 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस प्रक्रिया के बाद आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सर्विस वोटर सहित 12,06,457 मतदाता शामिल हैं। हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हैती में चल रही लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इस हत्या ने कैरिबियन देश को हिलाकर रख दिया था। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी रेडिंग क्विनोस ने के मुताबिक इन संदिग्धों पर फ्लोरिडा में मुकदमा चलेगा। उन्होंने कहा कि एफबीआई और अन्य एजेंसियां ये पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि देश के प्रमुख की हत्या से फायदा उठाने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाए। ये प्रत्यर्पण ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका इस मामले में कई अन्य संदिग्धों पर मुकदमा चला रहा है और उन्हें सजा सुना रहा है। समरकंद में चल रहे 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड में आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश ने अनीश गिरी और इरविन एलामी के खिलाफ अहम जीत हासिल की, जिससे भारत ने नीदरलैंड्स पर 3-1 से जीत पक्की कर ली है। लेकिन भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, The news read by Ashish P. Abraham. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi last evening.
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur yesterday. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force as conducting the joint air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said, "First ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties." A Naxal commander carrying a bounty of 30 lakh rupees has been killed in an encounter with the Uttar Pradesh Anti-Terrorism Squad in Varanasi. Brajesh Ganju, alias Gopal Singh Bhokta, was the chief of Jharkhand's banned extremist outfit, the Tritiya Prastuti Committee. A highly wanted fugitive, Ganju had been absconding.

0: तुमने जब पहली बार मेरा हाथ थामा था, तुमने जब पहली बार मेरा हाथ थामा था, तो मैंने जाना कि दो शहरों की दूरी सिर्फ हाथों को थाम लेने भर से कम हो जाती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 3 सेकंड। रात सुरमई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस सुरमई प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ।
1: ओ सोनिए मां छुट्टियां

वादे तो हम सभी करते हैं, कोई अपने दोस्त से करता है, कोई अपने पेरेंट्स से करता है, और कभी कभी हम खुद भी अपने आप से करते हैं। लेकिन जो वादे आँखों ही आँखों में किए जाते हैं, उनकी बात ही कुछ अलग होती है ना। अगर इस गाने को सुनकर आपको भी किसी की याद आई हो जिससे आपने आँखों ही आँखों में

प्यार में जब हम चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो एक खूबसूरत और एक अच्छा सा जो जहां होता है वो अपने आप बनता चला जाता है। प्यार में साथ चलने साथ साथ चलने से रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं और हम अच्छी मंजिलों की तरह की तरफ बढ़ने लगते हैं। और हम प्यार में ना सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें सामने वाले को जो हमारे लिए ख़ास है उसे ये बताना भी होता है कि तुम मेरे लिए ख़ास हो। सिर्फ गानों से काम नहीं चलता। तो अगली बार जब भी आपकी मुलाकात ख़ास इंसान से हो तो उसे बताना भी है कि वो उसकी ज़िंदगी में कितना ख़ास है। अगला गीत रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप ही के लिए। ना, ना, ना, ना।

जब बागों में बहार है तो फिर स्टूडियो में क्या होना चाहिए? स्टूडियो में होना चाहिए मीठी मीठी बातें और प्यार भरे गाने जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और उम्मीद है आपको पसंद भी आ रहे होंगे। जब इस गाने को सुनकर किसी ख़ास इंसान की याद आ ही गई है तो फिर उस तक बाहर पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये अगला गीत आप ही के लिए।

उठकर तो आ गए हैं तेरी बज्म से मगर, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज्म से मगर, कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। एक मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:40 और 15 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। रात के कितने रंग होते हैं, कभी वो उदास होती है, कभी खुश होती है, जिंदगी की तरह। और अगला गीत आप तक लता मंगेशकर की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के लिए।

कभी आपने रात की उदास चिट्ठियां पढ़ी हैं? मैंने पढ़ी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये उदास चिट्ठियां कभी भी अपने सही पते पर नहीं पहुंचती। ये श्राप है इनको, इनके हिस्से में सिर्फ भटकना ही आया है, जो दूर से देखने में अच्छी लगती हैं, चमत्कार भी लगता है, रोशनी भी लगती है, और जो अपनी ही रोशनी से इनका दम घुट जाता है। तो अगली बार जब भी आपको रात की चिट्ठी मिली, तो उसे उसकी रोशनी से नहीं, उसके अंधेरे से समझने की कोशिश करना। अगला गीत आप ही के लिए।

अभी तो बताया मैंने अपना नाम आपको। रात की चिट्ठियों में इतना नहीं खोना होता कि मुझे ही भूल जाओ। मैं आपकी रात की हम सफ़र, जहाँ जुड़ते हैं हम दिल से दिल तक। और ना जाने इस साथ के साथ इस सफ़र में कितने कस्में वादे हम बिना कहे निभाते चले जाते हैं। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ पे।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी मीना चौहान। मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतदाता गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। एसआईआर से पहले के 13,97,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। इस गणना प्रक्रिया में 28,944 मृत मतदाताओं की पहचान की गई, जबकि 1,23,749 मतदाताओं की अनुपस्थिति, कहीं और चले गए या अन्य श्रेणियों में रखा गया। इसके अलावा 5,059 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस प्रक्रिया के बाद कल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसमें सर्विस वोटर्स सहित 12,06,457 मतदाता शामिल हैं। हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हेती में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इस हत्या ने कैरेबियन देश को हिलाकर रख दिया था। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमरीकी अटॉर्नी रेडिंग क्विननॉन्स ने के मुताबिक इन संदिग्धों पर फ्लोरिडा में मुकदमा चलेगा। उन्होंने कहा कि एफबीआई और अन्य एजेंसियां ये पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि देश के प्रमुख की हत्या से फायदा उठाने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाए। ये प्रत्यर्पण ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका इस मामले में कई अन्य संदिग्धों पर मुकदमा चला रहा है और उन्हें सजा सुना रहा है। मौसम विभाग ने ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समरकंद में चल रहे 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड में आर प्रज्ञानानंद और डी गुरकेश ने अनीश गिरी और इरविन अलामी के खिलाफ अहम जीत हासिल की।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi last evening. President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources.
1: Climate change manav astitva ke anek staron par asantulan paida karta hai. Biodiversity loss, water stress aur land डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं। इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
2: President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat from today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. On Wednesday, the President will grace the 75th Annual Convocation Ceremony of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda at Vadodara. She will also launch Brahma Kumari's campaign, Spiritual Awakening for World Renewal, and inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center at Vadodara. The President will virtually launch the campaign Youth for Viksit Bharat, Awakening Inner Strength for Nation Building of Brahma Kumari's Nadiad on the occasion. Department of Fisheries will organize a review meeting on development of fisheries in Kolkata today. The meeting will be co-chaired by Union Minister of Fisheries Rajiv Ranjan Singh and West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari. The Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying said the review meeting is being organized to chalk out a roadmap for huge untapped fisheries potential in West Bengal. The ministry said it will provide a comprehensive platform to review the progress of various schemes and programs in West Bengal and deliberate on key focus areas for its future development. The Electoral Registration Officer of Delhi Cant Assembly Constituency has clarified the details, facts and documents furnished by Election Commissioner of India Dr. Sukhbir Singh Sandhu has already been duly verified. The Electoral Registration Officer said the electoral entry of Dr. Sandhu has been validated

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 3:11:04। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

नजरों की भाषा भी बड़ी कमाल की होती है, बिना कुछ कहे ही दिल की सारी बात कह जाती है। तो आइए सुनते हैं प्यार की इन्हीं हसीन इशारों से सजा कश्मीर की गली का ये सदाबहार गीत।

0: जानते हैं दोस्तों, यादों की भी एक अलग दुनिया होती है, जहां कोई दूर होकर भी हर पल हमारे पास रहता है। कभी किसी अपने की हंसी याद आती है, कभी साथ बिताए पल, और कभी बस यूं ही दिल कह उठता है कि तुम होते तो कितना अच्छा होता। इसी इंतजार और किसी अपने को फिर से पास बुलाने की खूबसूरत चाहत के साथ सुनते हैं फिल्म चरस का ये गीत।
1: सबसे बड़ा सच

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 MHz पर। समय हो चुका है 3:26:33। कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

जानते हैं दोस्तों, प्यार जब दिल में उतरता है ना, तो हर धड़कन किसी अपने को पुकारने लगती है। कभी ये पुकार शब्दों में होती है, कभी आंखों में, और कभी किसी गीत के सुरों में। इसी मासूम पुकार और प्रेम की खूबसूरत अनुभूति को अपने सुरों में समेटे हैं ये गीत।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों, जब किसी को अपना मान लेते हैं ना, तो दिल की दुनिया भी उसी के नाम हो जाती है। फिर उसकी खुशी में, अपनी खुशी और उसकी मौजूदगी में अपनी दुनिया नजर आने लगती है। इसी मासूम प्रेम और अपनेपन के एहसास को खूबसूरती से बयां करता फिल्म मिलन का ये गीत।

दोस्तों, किसी रिश्ते की असली खूबसूरती तब सामने आती है जब हालात बदल जाए, दूरियां बढ़ जाए, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए प्यार कम ना हो। वफा वही है जो वक्त की कसौटी पर भी अपने आप का अपनेपन का एहसास बनाए रखे। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, निभाए गए वादों से पहचाने जाते हैं।

शीशा हो या दिल, दोनों ही नाजुक चीजें हैं और दोनों की अपनी एक नाजुक दुनिया होती है। एक टूट जाए तो टुकड़े दिखाई देते हैं और दूसरा टूटे तो दर्द दिखाई नहीं देता। इसलिए रिश्तों में प्यार के साथ थोड़ी सी संभाल और बहुत सारा अपनापन भी जरूरी है।

दोस्तों, आज के दौर में बात पल भर में पहुंच जाती है, लेकिन कभी खत का इंतजार भी मोहब्बत का एक खूबसूरत हिस्सा हुआ करता था। कागज पर लिखे हर शब्द में अपनेपन की खुशबू होती थी और जवाब का इंतजार दिल को बेचैन भी करता था और खुश भी। उसी दौर की मीठी याद लिए सुनते हैं ये गीत।

मुझे यानी मीना चौहान को दीजिए इजाजत, नमस्कार। 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतदाता गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। एसआईआर के पहले से 13,57,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए थे। रूस में युद्ध के दौरान हुए पहले संसदीय चुनाव के लिए मतदान कल रात समाप्त हो गया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का कोई विरोध नहीं था और क्रेमलिन का दबदबा और मजबूत होना लगभग तय है। 3 दिन तक चले इस चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेनी सेना ने रूस पर 1,000 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों मॉस्को की ओर भेजे गए थे। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने बताया कि वोटिंग खत्म होने तक मतदान का प्रतिशत 56.66% रहा। हेती के राष्ट्रपति

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 4:11:05। अरुणिमा कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह के इस सुहाने पहर में जब एक नई सुबह धीरे धीरे दस्तक दे रही है, तो क्यों ना शुरुआत की जाए एक खूबसूरत एहसास के साथ। फूलों की खुशबू की तरह कुछ यादें भी मन को ताजगी से भर देती है और किसी अपने की याद दिला जाती है। तो आइए प्यारी सी सुबह की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

मिलने का इंतजार जब खत्म होता है ना, तो वो पल अपने आप में एक छोटी सी खुशी बन जाता है। अपनों से मिलने की खुशी में जैसे समय भी कुछ पल के लिए ठहर जाता है और दिल बस उसी खूबसूरत लम्हे को जीना चाहता है। आइए सुनते हैं इसी मिलन की खुशी और उमंग से सजा ये गीत।

फूलों की तरह खिलती हुई मुस्कान किसी भी सुबह को और खूबसूरत बना देती है। किसी अपने की एक मुस्कुराहट में वो जादू है जो बिना कुछ कहे दिल का मौसम बदल देता है। तो आइए इसी खिलखिलाते एहसास के साथ सुनते हैं ये गीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 4:26 और 16 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, दूरियां कभी कभी मन को बहुत बेचैन कर देती है। तब दिल बस यही चाहता है कि काश कोई ऐसी राह होती जहां रास्ते और फासले मायने ही ना रखते और हम बिना देर किए अपने प्रिय तक पहुंच जाते। इसी प्यारी सी ख्वाहिश को आवाज देता ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, जिंदगी भी एक सफर है और इस सफर में कई बार हम खुद से ही पूछ बैठते हैं कि आखिर जाना कहाँ है, कौन सी राह हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी। लेकिन शायद यही अनजानी राहें और छोटे छोटे पड़ाव जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। तो आइए सफर और मंजिल की इसी प्यारी सी बात को सुनते हैं इस गीत में।

दोस्तों, प्यार की बातें भी बड़ी अजीब होती है। किसी को देखते ही दिल की धड़कन बन जाए, मुस्कान अपने आप चेहरे पर आ जाए, फिर भी जुबान कहे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं। इसी भोलेपन और चुलबुले अंदाज के साथ सुनते हैं फिल्म शागिर्द का ये गीत।

मोहब्बत में नोक झोंक ना हो तो फिर प्यार में वो मिठास कहाँ। कभी कोई रूठता है, कभी कोई मनाता है और इसी बहाने प्यार की बातें भी हो जाती हैं। बस डर यही रहता है कि कहीं ये शरारतें दुनिया की नजरों में ना आ जाए।

जब दिल में किसी के लिए प्यार होता है ना, तो उसे छुपाना भी कहाँ आसान होता है। दिल चाहता है कि पूरी दुनिया को बता दें कि हमारे लिए सबसे खास कौन है और ये एहसास कितना खूबसूरत है। इसी बेझिझक प्यार की मीठी सी पुकार के साथ सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मीना चौहान को अरुणिमा कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस स्ट्रीट केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतगणना गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। एसआईआर से पहले के 13,57,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। इस गणना प्रक्रिया में 28,944 मृत मतदाताओं की पहचान की गई, जबकि 1,23,749 मतदाताओं को अनुपस्थित, कहीं और चले गए या अन्य श्रेणियों में रखा गया। इसके अलावा 5,059 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस प्रक्रिया के बाद कल मसौदा मतदाता सूची जारी की गई, जिसमें सर्विस वोटर्स सहित 12,06,457 मतदाता शामिल हैं। सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अयोध्या नगरी अब धार्मिक, पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से अयोध्या में विकास के नए दौर की शुरुआत हुई है और ये नगरी एक बार फिर सनातन धर्म के प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। रूस में युद्ध के दौरान हुए पहले संसदीय चुनाव के लिए मतदान कल रात समाप्त हो गया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का कोई विरोध नहीं था और क्रेमलिन का दबदबा और मजबूत होना लगभग तय है। 3 दिन तक चले इस सप्ताह के आखिरी दिन यूक्रेन की सेना

ने रूस पर 1,000 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों मॉस्को की ओर दागे गए थे। हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हैती में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 5:11:07। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, किसी खूबसूरत चेहरे की तारीफ करना भी आसान नहीं होता, क्योंकि खूबसूरती को शब्दों में बांधना भी मुश्किल होता है। कभी किसी की मुस्कान दिल जीत लेती है, कभी किसी की आंखों की चमक भा जाती है, और कभी किसी की एक झलक ही इतनी खास होती है कि तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं।

संगीत की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। सात सुर जब मिलते हैं ना, तो कभी खुशी बनकर चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, कभी किसी पुरानी याद का दरवाजा खोल देते हैं और कभी दिल की ऐसी बात कह जाते हैं जिसे हम शब्दों में नहीं कह पाते हैं। सारे गामा पाधा निसा, ये सिर्फ सात सुर नहीं बल्कि भावनाओं की एक पूरी दुनिया है। इन्हीं सुरों से सजे गीत हमारी जिंदगी के अलग अलग रंगों को आवाज देते हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:26 और 42 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।